ओम शांति। बाबा इस धरा को स्वर्ग बनाने के लिए हमारे सम्मुख अवतरित हुए हैं और उन्होंने अपने इस महान कार्य में सहयोगी बना दिया है हम सभी को। ये हमारा परम सौभाग्य है कि स्वयं भाग्य नियंता ने हमें इस महान कार्य के योग्य समझा। उसने हम पे दृष्टि डाली और हम में अनेक शक्तियां भर दी कि जाओ बच्चे, अवतार बनकर इस जग का कल्याण करो। हमें संसार को संदेश भी देना है, सत्य ज्ञान भी देना है, ये बताना है कि तुम्हारा परम पिता तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें सत्य ज्ञान देने के लिए, तुम्हें पावन करने के लिए आ गया है और वे तुम्हारे लिए स्वर्ग की सौगात लाए हैं। आ जाओ हे देवकुल की आत्माओं, आप सभी आ जाओ। तो हम रोज सवेरे योग युक्त होकर स्वमानधारी बनकर देवकुल की आत्माओं का आह्वान किया करें, क्योंकि हम पूर्वज हैं। हमारे आह्वान पर देवकुल की आत्माओं को प्रभु मिलन के लिए आकर्षण होगा। वो अपना सब कुछ छोड़कर सत्य ज्ञान लेने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी के संस्कार हैं और अब उन संस्कारों के उदय होने का समय तेजी से आ गया है, बिल्कुल समय पाता जा रहा है। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की ओर अति अधिक अट्रैक्शन अब होने जा रहा है, हो रहा है। तो हमें जहां ज्ञान देकर दूसरों की सेवा करनी है, वहीं बहुत बड़ी सेवा है वातावरण को पवित्र करने की, प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने की, आत्माओं को भी पवित्रता का दान देने की। हमें इस प्रकृति को बदलना है और ऐसा समय आने वाला है जब हमें संसार की आत्माओं को सकास देने में ही लग जाना होगा। सकास वही दे सकेंगे जिनके अंदर बेहद का वैराग्य होगा। वैराग्य को बहुत सहज भाव से हम यों समझ लें, वैराग्य माना व्यर्थ से वैराग्य, वैराग्य माना संसार में आसक्तियों से वैराग्य, वैराग्य माना इस संसार की इच्छाओं से और बहुत कुछ पाने से, मान सम्मान पाने से वैराग्य। हम डिटैच हों और ये वैराग्य उनको ही आ सकता है जिन्हें ये याद रहेगा कि समय अति निकट आ गया है और हमें घर जाना है और सभी

को घर ले जाने में बहुत मदद करनी है, दुखों से छुड़ाने में बहुत मदद करनी है, क्योंकि संसार में त्राही त्राही होने जा रही है। हम उस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस धरा को बाबा को अब खाली कराना है, जैसा कि उसका ऑर्डिनेंस निकल जाएगा मेरी देवकुल की महान आत्माओं के लिए, इस वसुंधरा को खाली करो, इसे पवित्र बनाकर यहाँ देवताओं का वास होगा। तो हम सभी अभी से बहुत अच्छी प्रैक्टिस करें सारे संसार को सकास देने की, आत्मिक दृष्टि बनाने की, और इसके लिए अपने को प्योरिटी से और सर्व खजानों से, योग से भरना होगा। जिसके पास शक्तियां बहुत होंगी वही दूसरों को दे सकेंगे और वाइब्रेशंस देकर सभी के दुख हर सकेंगे, सभी को मुक्तिधाम पहुंचवा सकेंगे। जो पीड़ित होंगे बहुत सारे लोग, उन्हें बहुत ज़्यादा बल दे सकेंगे। इसके लिए आज सारा दिन आत्मिक दृष्टि का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। और ये एक सिंपल सी प्रैक्टिस, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं, और जिसको भी आत्मा देखेंगे ये पवित्र किरणें उनको जाती रहेंगी, और बीच बीच में परम धाम से पवित्रता के सागर की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। कभी हम उनके पास चलेंगे परम धाम में, और कभी परम धाम से उनके पवित्र वाइब्रेशंस को ग्रहण करेंगे। ये अभ्यास आज सारा दिन बहुत तत्परता से करेंगे और लक्ष्य बना लें हमें अपने योग को सकास देने की सेवा में ही टर्न कर देना है। ओम शांति।

0: ओए रुका, ओए त्रिदेव, त्रिमूर्ति, ओ एक बाइक पे तीन हैं, ओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ओ बाइक एक और एक साथ तीन चढ़े जा रहे हो, ओ तीन लोगों का जाना अलाउड नहीं है बाइक पे, मालूम नहीं तुमको, ओ अपनी नहीं तो इस बाइक की सोचो बेचारी तीन के बोझ की मारी।
1: सर बहुत जरूरी मैच है सर आज।
0: ओए तुम्हारे मैच की तो, ओए एक बाइक पे तीन जा रहे हो और कुछ हो गया तो सीधे हमेशा के लिए क्रीज बोर्ड हो जाओगे, ओए जिंदगी के स्टंप उखड़ जाएंगे। ओए ये ट्रैफिक है भाई, यहाँ तो कोई फ्री हिट भी नहीं मिलती, ठोको ताली। ओए मुझसे कोई नहीं बच सकता क्योंकि ये है मेरी सड़क और मुझे कहते हैं हवलदार सड़क।
2: याद रखें, एक बाइक पर कभी दो से ज्यादा लोग एक साथ न जाएं, यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो परेटो ने 1897 में 80/20 का सिद्धांत खोजा था, जिसे अब परेटो का सिद्धांत कहा जाता है। उनकी खोज थी कि 20% योगदान से 80% उत्पादन होता है, 20% कारणों से 80% परिणाम निकलते हैं और 20% प्रयास से 80% फल प्राप्त होता है। जोसेफ जुरान ने उन 20% को कम लेकिन महत्वपूर्ण और 80% को ज्यादा लेकिन मामूली की संज्ञा दी। आशुलिपि शॉर्ट हैंड के आविष्कारक सर आइजैक पिटमैन की खोज थी कि हमारी दो तिहाई बातचीत को केवल 700 प्रचलित शब्द ही पूरा कर देते हैं। उन्होंने पाया कि हमारी 80% सामान्य बातचीत में यही शब्द काम आते हैं। एक छात्र अपनी 80% पाठ्यक्रम को अपने अध्ययन के 20% समय में पूरा कर लेता है। परीक्षा में प्रश्न पत्र के 80% प्रश्न 20% पाठ्यक्रम से लिए जाते हैं। 80%

विकास, लाभ और प्रतिफल में 20% ग्राहकों का योगदान रहता है, 80% व्यवसाय, 20% उत्पादन व सेवाओं से चलता है, 20% कर्मचारी 80% उत्पादन करते हैं, 20% लोगों की राय समाज को परिभाषित कर देती है और किसी देश की जनसंख्या के 20% का योगदान उस देश की अर्थव्यवस्था को परिभाषित कर देता है। अगर आपके बिक्री विभाग में 20% लोग हैं तो उनमें 4 बहुत बढ़िया होंगे, 6 साधारण होंगे और 10 तो बस यूं ही टहल रहे होंगे। बिक्री प्रबंधक गलती यह करते हैं कि वे उन अनुत्पादक और निष्क्रिय लोगों के साथ इस कोशिश में लगे रहते हैं कि उन्हें उत्पादक बनाया जाए, लेकिन इस वजह से सबसे बढ़िया काम करने वाले उपेक्षित रह जाते हैं।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

कि जीवन में जो हो रहा है उसमें से 4/5 आपको ना के बराबर दे रहा है। जिस 80% पर आपका बहुत अधिक ध्यान रहता है वह आपको केवल 20% ही प्रतिफल दे रहा होता है। अपनी सोच को बदलें, अपने दृष्टिकोण का पुनः निरीक्षण करें, काम के बंटवारे का निर्धारण दोबारा करें, इसे ज्यादा लेकिन मामूली से कम लेकिन महत्वपूर्ण की ओर ले जाएं। प्रभावोत्पादकता इस बात से नहीं आती है कि उस 80% का क्या हुआ, बल्कि इस बात से आती है कि आपने 20% का प्रबंधन, नियंत्रण व उपयोग कैसे किया। आपका 20% समय सचमुच यह बता देता है कि आप जीवन में क्या हैं और क्या होंगे। इस 20% पर ध्यान दें और आपके जीवन का 80% अपने आप ही बेहतर हो जाएगा।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: हम दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नियत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करें, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई। अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेंगे?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

इससे पहले कि वह कुछ अपने अधिकार में लेना सीखती, उसे साझा करने, सहभागी होने को कहा गया। जब वह मुश्किल से 5 वर्ष की रही होगी, तभी से उसे अपने भाई के लिए त्याग व बलिदान का पाठ पढ़ा दिया गया, जो कि मात्र 2 साल का था। वह अभी बच्ची ही थी, लेकिन उसके माता पिता उससे एक बड़ी बहन की भूमिका अदा करने की अपेक्षा रखते थे। 30 साल बाद अब उसका अपना परिवार है और उसके भाई का भी। वह अपने छोटे भाई के लिए अब भी वही जिम्मेदारी महसूस करती है। वह अब भी उसे सलाह देने में लगी रहती है। उसके भाई के वैवाहिक जीवन में जब भी कोई समस्या आती है तो वह हस्तक्षेप करती है। वह भाई की पत्नी को यह बताने में लगी रहती है कि बच्चे को क्या खिलाएं, उसका लालन पालन कैसे करें। वह अब भी त्याग बलिदान करने में लगी है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है? अपने प्रति किए जा रहे उदासीनता और बेरुखी के व्यवहार के कारण वेदना, दिल दुखना, रातों की नींद उड़ना और आंखों में अक्सर दबदबाते क्यों? उसका भाई अब इतना बड़ा हो चुका है कि वह अपने निर्णय खुद ले सके। भले ही कुछ निर्णय गलत साबित हुए हों, फिर भी भाई को लगता है कि उसे ये गलतियां करने का अधिकार है। उसे महसूस होता है कि इन गलतियों से वह बहुत कुछ सीख रहा है। उस महिला की भाभी उसे अपनी गृहस्थी में अवांछित घुसपैठ समझती है, क्योंकि उसका मानना है कि वह जिस भी ढंग से अपने बच्चे का लालन पालन करना चाहती है, उसे उसकी पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए एवं किसी और के द्वारा केवल इस आधार पर हस्तक्षेप किए जाने से उसे चिढ़ है कि वह उम्र में बड़ा है। इस किस्से में यही सीख मिलती है कि हमें सम्मान की जरूरत है, मार्गदर्शन की जरूरत से यह जरूरत बहुत बड़ी है। आप एक बहन तो हमेशा बनी रहें, लेकिन हर समय बहन की भूमिका न निभाती रहें। हम अपने विचारों को, अपनी सोच को जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं थोप सकते, बस सिर्फ इस कारण से क्योंकि हम उम्र में उनसे बड़े हैं। भले ही बचपन में हमने उनके लिए बहुत ख्याल रखा हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन बड़े होने के बाद हर व्यक्ति की अपनी एक सोच होती है, अपनी समझ होती है और हर व्यक्ति अपने लिए, अपने जीवन के लिए कुछ स्वतंत्रता चाहता है। तो बेहतर यही होता है कि अगर हम बिना मतलब अपनी सलाह देते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से अपमानित होते रहेंगे, लेकिन अगर हम सम्मान से जीना चाहते हैं तो इन बातों से न्यारे हो जाएं और किसी को भी बिना मांगे सलाह न दें, चाहे वह हमारे कितने भी नज़दीकी रिश्तेदार हों।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। और ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

एक बेटे द्वारा पहला शब्द बोलने में, पहला अक्षर लिखने में और पहला कदम चलने में, सभी में उसके पिता की सक्रिय भूमिका रही। उस बेटे के लिए उसका पिता हमेशा एक सुपरमैन, एक हीरो और आदर्श व्यक्ति रहा है। यहाँ तक कि उसके करियर के लिए सलाहकार का काम भी उसके पिता ने किया। बेटा आगे चलकर युवा उद्यमी बन गया, लेकिन इसमें भी उसके पिता का मार्गदर्शन था। आज वह बेटा एक प्रतिष्ठित उद्योगपति है, लेकिन आज भी वह पिता रोजाना शाम को यह पूछने और जानने का इंतजार करता रहता है कि कारखाने में क्या क्या हुआ। इससे उसका बेटा बड़ी घुटन महसूस करता है और उसे लगता है कि पिता को उसे थोड़ा खुलापन देना चाहिए। पिता अब अवसाद के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि अपने बेटे से उसे जितनी तवज्जो पहले मिला करती थी, अब उतनी नहीं मिल रही है। पिता को लग रहा है जैसे अब उसकी जरूरत ही नहीं रह गई। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा है और वह तेजी से बूढ़ा होता जा रहा है। आप एक अभिभावक के रूप में हमेशा प्यार पाएंगे, लेकिन आप हमेशा अभिभावक ही न बने रहें। एक दौर के बाद कोई भी आपके मैं तुमसे अधिक अनुभवी के रूप को स्वीकार नहीं करेगा। 3 साल की एक बच्ची भी चाहती है कि एक विशेष ढंग से उसका भी मान रखा जाए, और दरअसल यह उसकी जरूरत भी है। 3 वर्ष की आयु में वह जो कपड़े पहनना चाहती है, यदि उसे वो कपड़े ना पहनने दिए जाएं, तो इसका अर्थ वह यही निकालती है कि उसका मान नहीं रखा जा रहा है। 10 साल का बेटा मेन्यू कार्ड पढ़कर खुद ऑर्डर देना चाहता है। वह इसी को अपना मान रखा जाना मानता है। एक किशोर लड़की अपनी पसंद से सहेलियां बनाना चाहती है, और उसके लिए अपना मान रखे जाने का अर्थ है कि माता पिता उसकी पसंद का स्वागत करें। एक व्यक्ति चूंकि आपके साथ कई साल से काम कर रहा है, इसीलिए अब कुछ निर्णय वह खुद लेना चाहता है, और उन निर्णयों को आपके द्वारा न बदलना या नकारा न जाना उसकी नज़र में उसका मान रखा जाना है। हर आयु और जीवन की हर अवस्था अपने साथ मान सम्मान के लिए एक भावना रखती है, और आपको उस भावना का आदर करना चाहिए। भले ही हमारे इरादे नेक हों, लेकिन कभी कभी लोगों का मार्गदर्शन करने से, विशेष रूप से बिना उनके मांगे ऐसा करने से, उन्हें लगता है कि उनके सम्मान को ठेस लगी है। सम्मान की जरूरत मार्गदर्शन की जरूरत से बड़ी होती है। दूसरों को सम्मानित होने का एहसास कराएं, यह आपका काम है। वे आपसे मार्गदर्शन मांगे, यह उनका काम है। तो इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। दोस्तों, जब भी हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही चीज समझ में आती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। कभी कभार हम ये जरूर कह देते हैं कि मौसम की वजह से ऐसा हुआ, या फिर हमारे घर में ये बीमारी परंपरा से चली आ रही है कि वह हमारे घर के सदस्यों को थी, पूर्वजों को थी, इसलिए हमें भी है। ये चीजें कभी कभार तो समझ में आती हैं, मगर जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी चीजें जो हम देखते हैं, गड़बड़ियां होती हुई नजर आती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी कभार लोग ये बात भी कह देते हैं, अरे शायद ये चीज पहले पता होती तो मैं ये गलती करता ही नहीं। ये भी चीज सुनने को मिलती है। अब रेडियो मधुबन पर यही कोशिश की जा रही है कि ऐसी गलतियां जो प्रायः हम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को बीमार करते हैं, उनसे तो कम से कम बचने के लिए हम अपने प्रयास करते रहें और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करें। सहज स्वास्थ्य में स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमें इस विषय पर राय देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये कहते हैं कि सही जानकारी के अभाव में मनुष्य गलतियां कर लेता है और जब उन गलतियों का दंड उसे भुगतना पड़ता है या उसका फल जब उसे खाना पड़ता है, तब वो व्यक्ति समझता है, अरे मुझे अगर इस बात की सही पहचान होती है, सही समझ होती, तो शायद मैं ये गलती करता ही नहीं। अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के बारे में सही जानकारी लेने की जब बात कही जाती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल सी बात है, इन सब चीजों के बारे में हमें तो पता ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद ही होती है, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। और वही कुछ लोग ये भी बात कहते हैं कि पारंपरिक रूप से हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लेते आए हैं और सिर्फ अभी ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में यूं कहें कि लोग उस जानकारी को दरकिनार करते आए हैं और इसकी वजह से भी स्वास्थ्य में गड़बड़ियां हो रही हैं और ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, ऐसा कहा जाता है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं?
1: जानकारी जीवन में बहुत जरूरी है, सही जानकारी और भी जरूरी है, मगर सबसे जरूरी बात जो है कि जो जानकारी आपको मिली है उस जानकारी का प्रयोग आप अपने जीवन में कर पाए। जैसे बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है कि छोटे बच्चे को कहा जाता है ना, प्लग में उंगली मत डालो, करंट लग जाएगा। तो ये जानकारी उस बच्चे के पास है कि अगर हम प्लग में उंगली डालेंगे तो करंट लग जाएगा, मगर तब भी कुछ बदमाश बच्चे उंगली जरूर डालते हैं और तेजी से करंट लगता है। या माता पिता अपने छोटे बच्चे कहते हैं, अरे आग से दूर रहो, जल जाओगे, मगर अब मानने को तो कहते नहीं है, बाल मन है, मानेगा तो है नहीं। तो एक इंग्लिश में कहा जाता है, नॉलेज इज पावर। तो उस पावर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। भैया, जो चीज परंपरागत तरीके से परिवारों में चली आ रही है वो आरोग्य की कुंजी है। जो आपकी दादी नानी जो आपके चौके में भोजन बना रही थी, जो आपके दादा नाना आपको खिला रहे थे, वो बहुत ही जरूरी था। खासकर भारतीय परिवेश में मैं ये कहूंगा, विदेशी परिवेश

0: हो सकता है जो वो खा रहे थे और जिस चीज का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया वो आगे चल के मालूम चला कि बहुत हानिकारक है। मगर आप अगर भारतीय परिवेश में देखिए तो जो भी हमारे पूर्वजों ने खाया पिया हिले डुले व्यायाम किया वह उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। अभी बड़ा एक अजीब सा वाक्य मेरे सामने हुआ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जिम में मुझे बुलाया गया और जब मैं वहां प्रवेश कर रहा था तो मेरे पीछे से एक करीब 65 साल के एक बुजुर्ग आए और उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या यहाँ पे मिट्टी है जिसमें हम कुश्ती लड़ सकते हैं? तो जिम वाले का, नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुश्ती नहीं है, यहाँ मशीन से आप अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्या लकड़े का बल्लम है? अच्छा, मुझे भी इस बात का ये नहीं था। बोला, अरे उससे उठा के वर्जिश की जाती है। और उस 60 साल का बच्चा मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि उस 60 साल के व्यक्ति ने जो जिम में जो जानकारी दे रहे थे उसने कहा, जरा चलो आओ हमारे साथ दंड मार के दिखाओ। और जो जिम के ट्रेनर साहब थे वो उतना दंड नहीं मार पाए जितना उस 55-60 साल के उस व्यक्ति ने दंड मार दी। आज लोग बॉडी बनाने की बात करते हैं, भोजन बनाने की बात करते हैं। मैं सबको कहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं या जो मजदूर आपके अगल बगल काम कर रहे हैं या जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी देख लीजिए, एकदम सिक्स पैक, वेरी गुड एब्स, वेरी गुड शोल्डर देख लीजिए। आप उनका भोजन देखिए भैया, वो रोटी के साथ या तो चना या गुड़ या वो सब्जी जो खा रहे हैं उसके बाद वो स्वीट मिठाई की जगह गुड़ खाते हुए दिखेंगे। वो जब अपने काम का ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी ले। आज हम और आप बोल रहे हैं कि अंकुरित चना खाना चाहिए, वो एक अपने कहते हैं पोटली में चना बांध कर मूंगफली बांध के लाते हैं। और कहते ना लोग महंगा महंगा प्रोटीन खरीद रहे हैं, महंगा महंगा वो खा रहे हैं, वो बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोटीन जो है वो मूंगफली से और चने से ले ले रहे हैं और एक्सरसाइज उनका काम है उसकी वजह से ले रहे हैं और वो बहुत अच्छे फिट हैं भैया, बहुत अच्छे फिट हैं। तो आपको जो जानकारी मिली है अपने घर में वो जान, और स्पेशली भारतीय परिवेश में फिर बोलूंगा, वो जानकारी बहुत अच्छी है, आपके लिए बड़ी अच्छी है और उसका प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर करिए।
1: जब इन बातों को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग जो अपने घर में जो पारंपरिक रूप से जो जानकारी वो सुनते आए हैं, जिन चीजों का उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जो ज्ञान मिला है उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आज जब हम इन सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते तो बीमार पड़ना और आसान होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सिर से लेके पैर के नोक तक हर एक अंग को प्रभावित करता है। आपने आंखों का उदाहरण दिया था कि आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति आंखों से अंधा हो सकता है अगर वो डायबिटीज की सही जांच न करवाए और इसका इलाज न करवाए। वैसे ही आपने ये कहा था कि किडनी और अलग अलग अंगों पर इसका असर होता है, वैसा आपने बताया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये हमारे शरीर के दूसरे दूसरे अंगों पर प्रभाव डालने के लिए इसको कोई लंबा समय चाहिए या कभी भी हो सकता है, और शरीर के अंगों पर प्रभाव डालता है तो ये कब डालता है, ये भी लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है।
0: श्री भैया, मैं अपने श्रोताओं को एक और बात बोलना चाहूंगा आज की, हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपको सजग बनाने के लिए दे रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं। और अगर आप सजग रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप उसको कैसे बढ़ने न दिया जाए और कैसे आपके परिवार के लोग उससे बच पाए, इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। डायबिटीज की जो हमने बात की उसमें जिन चार अंगों के बारे में कल हमने बात की कि आंख के बारे में हृदय, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी मतलब हृदय पर, और डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब नसों पर। और महिलाओं में एक चीज और बोलना चाहूंगा या पुरुषों में भी, कि एक कंधा जाम हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था अपने पुराने लेक्चर में कि डायबिटीज कुछ करता नहीं है, वो चोरों के जो झुंड है उसका सबसे छोटा चोर है जो सिर्फ ताला तोड़ना जानता है, और वो ताला तोड़ के आपके शरीर में, अगर वो ताला तोड़ता है तो जैसे कोई चोर ने दुकान का ताला तोड़ दिया है और जो चाहे उसके अंदर घुस जाए। इसी तरीके से डायबिटीज वो चोर है जो आपके शरीर का जो है वो ताला तोड़ देता है और जो बीमारी चाहे उसके अंदर घुस जाए, वो इस तरह से आपके शरीर को नुकसान करता है। कब हुई ये अगर हमको नहीं मालूम चला तो थोड़े दिनों बाद जब वो किसी न किसी अंग को परेशान करने लगता है तब उस अंग के डॉक्टर के पास या उस बीमारी को हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को मालूम चलता अरे हमको डायबिटीज हो गई होगी। तीन जो सबसे जो कॉमन लक्षण है या जो सबसे साधारण लक्षण है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ये तीन चीज जो तीन सिम्टम सबसे ज्यादा कॉमनली मरीज को मिलते हैं, पहला कि उसको पेशाब बहुत होने लगती है, उसको बार बार जो है वो पेशाब करने या यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ता है, और उसकी रात की नींद भी है वो भी डिस्टर्ब होती है और उसको रात में भी पेशाब करने जाना पड़ता है। कभी कभार उसको सडन जो है वो मतलब वो कहीं बैठा होता है तो सडनली एक बड़ी तेज पेशाब आती है, वो जैसे कहता है भागो नहीं तो पैंट में हो जाएगी, इस तरह की अर्जेंसी उसको होने लगती है। दूसरा कि जब आपको बहुत पेशाब होगी तो आपको बहुत ज्यादा पानी की जो है वो जरूरत महसूस होगी, तो आप हद से ज्यादा पानी पीने लगेंगे, आप बहुत नहीं पिएंगे और आप बहुत ज्यादा पेशाब करेंगे। और तीसरा जो आप परेशान होंगे वो होगा कि आप इतना पेशाब कर रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं और वो जो चीनी है वो आपके कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पा रही है, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको थकान लगेगी, तो वो बार बार कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है तो बार बार वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि भाई हमको तो भोजन ही नहीं मिल रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लगता है। और एक लक्षण और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं खा बहुत रहा हूं पर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है और मुझे बहुत पेशाब आ रही है और मुझे बहुत ज्यादा पानी पीने का मन कर रहा है। तो यदि ऐसा कोई भी लक्षण जिसमें बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, आप बहुत ज्यादा पेशाब कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा भोजन करने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा हो, आपके चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा हो, आपके कंधे जाम होते चले जा रहे हो, बहुत दर्द हो रहा हो, तो कृपा करके हो सकता है कि ये डायबिटीज हो, तुरंत आपको जाकर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना जो रक्त की जांच होती है शुगर के लिए, चीनी के लिए, उसको तुरंत कराना चाहिए। जहां तक हम लोग ने चार बीमारियों की कल बात की और उसके पहले के एपिसोड में बोला था कि ये सर से लेके पैर तक सब चीज को असर अपना दिखा सकता है, तो ये आपको सर के ऊपर आपको भयंकर डैंड्रफ आपके बालों में कर सकता है, आपको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। अच्छा, बेहोश क्यों होंगे? क्योंकि हमारा दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से चलता है, हमारे दिमाग को कोई और भोजन नहीं चाहिए, वो सिर्फ ग्लूकोज को ही अपना भोजन मानता है, और जब हमारे को इंसुलिन कम होने लगता है तो हमारे जो दिमाग की कोशिकाएं हैं उसके अंदर ये ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है, और जब वो ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है तो जो व्यक्ति है उसके दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो भी मरने लगती हैं, और क्योंकि वो हमारे दिमाग को भैया दो चीजें हमेशा चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज, तो ये दोनों चीजें में से अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन या ग्लूकोज हमारे दिमाग को नहीं मिलेगा तो ये तुरंत अपना असर दिखाने लगेगा। आप देखिए कि अगर आदमी सांस पानी के अंदर नहीं ले पाता है और जैसे ही वो अगर स्विमिंग पूल या समुन्द्र में जाता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो छटपटाने लगता है, तुरंत बाहर आता है।

0: आपकी जो पसीना है वो भी महकने लगता है, और वो एक अलग सा महक आपको महसूस होती है। और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके अगल बगल वाले बोलते हैं, अरे तुम कुछ अलग तरह से महक रहे हो, एक अजीब सी महक आ रही है तुम्हारे में। तो सोचिए, वो शुगर जो शरीर में नहीं जा पा रहा है वो भी हमारे शरीर में डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है, और हमारी इवन हमारा जो स्वेट है, पसीना है, वो भी अलग तरह से महकने लगता है। हमारा हृदय की मैंने बात की कि हमारे हार्ट डिजीजेस के हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं, हमें त्वचा रोग हो सकता है, हमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारी शरीर में कोई जिस इन्फेक्शन का नाम लीजिए वो हमें हो सकता है, क्योंकि खूब सारा भोजन है बैक्टीरिया वायरस फंगस के लिए, तो वो खूब अच्छे से घूम टहल रहे होते हैं। हमको बहुत थकान लग सकती है। अब लोग पूछेंगे, भाई चीनी तो है ही है, तब थकान क्यों लग रही है? क्योंकि वो चीनी या जो शुगर हमारे रक्त संचार में चल रहा है वो कोशिकाएं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। तो हाई ब्लड शुगर एंड लो इंट्रा सेलुलर शुगर हो जाता है, मतलब खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, कोशिकाओं में चीनी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा थकान होने लगती है।
1: डॉक्टर साहब, जब आप इस बात को बताते हैं कि खून के अंदर तो चीनी की मात्रा है, मगर कोशिकाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, या वो कोशिकाओं के अंदर वो चीज जा नहीं रही है, तो प्रश्न उठता है कि जब चीनी है और वो खून के अंदर है और वो कोशिका के अंदर नहीं जा रही है, तो फिर उस चीनी का होता क्या है? क्योंकि वो चीनी इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं कर रही है, तो वो चीनी होगा क्या उसका?
0: वो चीनी हमारे शरीर में किसी काम की नहीं रहती है। और आप ये व्यथा समझ लीजिए कि आप समुन्दर में आपकी नाव चल रही है और आप पानी से घिरे हुए हैं, मगर आप उस पानी को पी नहीं सकते। तो जो कोशिकाएं हैं वो चीनी से घिरी हुई हैं, मगर इंसुलिन नहीं है तो वो कोशिका के अंदर नहीं जा पा रहा है। अब अंदर नहीं जा पा रहा है तो वो रक्त में बढ़ता चला जाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो जगह जगह से बाहर निकलना शुरू करेगा, और सबसे कॉमनली वो हमारे पेशाब के रास्ते वो बाहर निकलता है। ये करीब 30-35-40 साल पहले जब ब्लड शुगर की जांचें बहुत कॉमन नहीं थी और बहुत जगह पे जब मेडिकल फैसिलिटी पहुंची नहीं थी, तो डायबिटीज की डायग्नोसिस करने के लिए एक ये बात बोली जाती थी कि जहां आप पेशाब करते हैं वहां पे चींटी या कीड़े तो नहीं आ जाते हैं, इतना शुगर हमारी बॉडी के बाहर निकलने लगता है। और जब ये शुगर बाहर निकलता है, सोचिए कि वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो यूरिन के रास्ते आपके बाहर निकल रहा है, और वो बाहर जो कीड़े मकोड़े चींटियां हैं उनको बुला रहा है, तो आपके शरीर के अंदर जो होंगे कितने बैक्टीरिया, कितने वायरस, कितने फंगस घूम रहे हैं, उनको कितना अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड देगा जिससे वो भयंकर मल्टीप्लाई करके आपको बीमार कर दे। तो शुगर की बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अकेली ऐसी बीमारी है जो सारे के सारे अंगों को असर करती है। एक और बड़ी बात है कि इसको कहा जाता था कि जब मेडिकल में पढ़ाई कराई जाती थी पहले, तो दो तरह की बीमारियों में सारी बीमारी बांटी गई थी, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो एक छुआछूत से होगी और दूसरी जो आप छू भी दीजिए तो नहीं होगी। आप सोचिए कि पहले जो, अगर मेरे श्रोतागण सुन रहे होंगे कि पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता, अरे इसको कोढ़ है इससे दूर रहो, या इसको टीबी हो गई है इसको बाहर दूर भेजना है। अब आप ये देखिए कि कहीं कोई कोढ़ या लेप्रोसी उसकी बात ही नहीं कर रहा है, इवन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, या वो मेडिकल लोग बात कर रहे हैं, मगर अब कॉमनली आम जनमानस में इसकी बात नहीं हो रही है। हम बात क्या कर रहे हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और अस्थमा, चारों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चारों जो आपको हो सकती हैं और चारों जो आपके शरीर को खराब कर सकती। और पहले हम सारा यही दिमाग, कोविड सबको याद होगा कि कितनी बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज आई थी, एक से दूसरे को हो सकता है, चलो सबको बंद कर दो, कोई नहीं बाहर निकलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। भैया, कोविड ने लोगों को बहुत बीमार किया, मगर उस समय लोगों ने अच्छा खाया, क्योंकि ऋतु के अनुसार

0: आप ट्रांसपोर्टेशन बंद था तो लोकली फ्रूट वेजिटेबल मिल रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो पोल्यूशन कम हो गया था, और आदमी घर पे बैठा हुआ था, खाली था तो एक्सरसाइज कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, ठीक कर रहा था, अपने आप को ज्यादा अच्छा ठीक रख रहा था, और टेंशन बहुत कम हो गया था क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे, आदमी लोग के ऑफिस बंद हो गए थे, तो लोग अपने घर में थे, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो समस्याएं थी वो कम होने लग गई थी। तो अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे से रहेंगे और अच्छा एक्सरसाइज करेंगे तो हो हमारी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें भी हमको आराम मिल जाएगा।
1: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी जो छुआछूत से नहीं फैलने वाली बीमारियां हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ी जागरूकता रखते हैं तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि हम सजग बने अपने स्वास्थ्य के प्रति, और जो बीमारियां हो रही हैं उसके कारण को समझें और उसके लिए स्वास्थ्य के तरफ कदम बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए कुछ करें। आज समय को देखते हैं रुकना होगा, मगर आज डायबिटीज के विषय में बहुत ही पुख्ता जानकारी आज हासिल हुई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी डायबिटीज के चिन्हों के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप अधिक मात्रा में पानी पी रहे हैं या बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं, जहां पेशाब करते हैं वहां पर अगर चींटियां या मकोड़े आते हैं, जो ये बताता है कि आपके पेशाब के रास्ते बहुत सारी चीनी निकल रही है अपने शरीर से, तो आप डायबिटीज के मरीज हो सकते हैं और आपको तुरंत इलाज के लिए या डायबिटीज के इस बीमारी का पता करने के लिए खून पेशाब की जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आज के सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं। आज आप सभी श्रोता मित्रों को इतनी नई जानकारियां डॉक्टर मोदी जी ने दी, इसके लिए आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। जो जानकारी सुनी है उस पर अमल करना जरूरी है। ध्यान देना शुरू करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं। रिश्तों को जब नए नज़र से देखा, नए अंदाज से देखा, तो सबसे पहली बात जो हमारे सामने आई वो ये कि जब भी एक रिश्ते में हम हैं तो उसमें जो मुझे चाहिए उसे अगर मैं देना शुरू कर दूं तो वो मुझे ही मिलता है सबसे पहले, चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो शांति की बात है, चाहे वो खुशी की बात है। और जब भी हमने अगर पिछली कड़ी को देखें, बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आई थी कि जब हम झगड़ा हो रहा होता है या नाराज़ हो रहे होते हैं, एक सेकंड अगर हम रुक जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे ही होकर गुजर रहा है जो वो नेगेटिविटी दे रहे हैं या वो हमारे बारे में कुछ कह रहे हैं, बेसिकली वो खुद दर्द में है। उनके उस दर्द को अगर मैंने अंदर ले लिया या मैंने अपने अंदर क्रिएट किया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ कहा है, तो मैं खुद दर्द में चला जाता हूँ और मैं तब तक किसी और की मदद नहीं कर सकता अगर मैं स्टेबल नहीं हूँगा। ये तो बात बहुत क्लियर सामने आई थी और हमने हर बार की तरह कहा कि एक्सपेरिमेंट करें, अनुभव करके देखें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और रिश्तों को उस नज़र से देखते हैं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा है फिर भी कुछ खालीपन है, कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जिस तरह से अगर पिछली कड़ी को थोड़ा सा टच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशंस थी, सिचुएशंस बहुत वोलेटाइल हो जाती हैं। अभी तो हम यहाँ बात कर रहे हैं तो इसलिए सिचुएशंस मुश्किल नहीं लगती हैं, लेकिन जब हम उन सिचुएशंस में होते हैं और हम में से हर कोई उससे दो चार हो रहा है, चाहे वो सुबह घर से निकलते वक्त है या शाम घर पहुँचते वक्त है, एक्चुअली देखा जाए तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल प्रोसेस पूरा जो होता है। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम वो दर्द को लेना चाहते हैं या हम उस पर स्टेबल हो सकते हैं, थोड़ा सा हम और उसके ऊपर जाएंगे कि आप हमें हमारे साथ बात करें।
1: यू जस्ट सेड दैट द होल प्रोसेस इज वेरी पेनफुल। प्रोसेस इज नॉट पेनफुल, आई क्रिएट पेन व्हाइल गोइंग थ्रू द प्रोसेस। सो दैट्स द ओनली शिफ्ट जो चाहिए। अभी तक हम कहते हैं प्रोसेस इज पेनफुल, सिचुएशन इज डिफिकल्ट, केओटिक, ये जो वर्ड्स भी है ना सिर्फ मतलब जो हमारी थॉट्स हैं, जस्ट क्रिएटिंग दिस काइंड ऑफ थॉट्स मेक्स द होल थिंग वेरी बिग। सिर्फ यहाँ पर अगर एक शिफ्ट शुरू कर दें, प्रोसेस इज व्हाट इट इज। लाइक आपने कहा सिचुएशंस तो आनी है, अब जैसे आपने कहा सुबह उठकर जो सीन क्रिएट होता, लेकिन ये तो रोज होना है ना। रोज होना है। ईदर आई विदड्रॉ फ्रॉम द सिचुएशन, आई कांट डू दैट। ईदर आई ट्राई टू चेंज द सिचुएशन, आई कांट डू दैट।
0: स्टार्ट डूइंग दीस थिंग्स, यू नो, विदड्रॉ करके हम फिर चुप हो जाते हैं, हम फिर कहीं और अपना दिमाग लगाने लगते हैं, मतलब कहीं कहीं और शिफ्टिंग शुरू हो जाती है।
1: लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल टू रन अवे फ्रॉम सिचुएशंस। आप एक परिस्थिति से विड्रॉ करेंगे, एक रिलेशनशिप से विड्रॉ करेंगे, दूसरे रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई चैलेंज आ जाएगा। सो स्पिरिचुअलिटी जस्ट टीचेस अस, यस सिचुएशंस आर देयर, यस रिलेशनशिप्स कैन बी अ लिटिल चैलेंजिंग, फोकस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सिचुएशन अपने आप ठीक होती जाएगी। सिर्फ थोड़े दिन के लिए ये एक्सपेरिमेंट करके देखना, अपना फोकस अपने आप चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट करना है कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति में भी मुझे ध्यान अपना रखना है, बस उतना करना है। जैसे बड़ी से बड़ी बीमारी में भी ध्यान किसका रखते हैं पहले?
0: अपना,
1: राइट? चाहे एक छोटा सा वायरस है या एक बड़ा सा एपिडेमिक फैल गया हो पूरे देश में, ध्यान किसका रखा जाता है? अपना, कि हम कैसे बचे। ये थोड़ी ध्यान रखा जाता है कि वायरस को कैसे रोका जाए। सो फोकस इज वेरी क्लियर। तूफान आया है, ध्यान किसका रखा जाता है? हम कैसे बचे। तूफान के साथ थोड़ी जाके लड़ते हैं बैठकर कि तूफान को रोकते, नहीं, हम कैसे बचे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जबकि फिजिकल चीजों में हमारा फोकस हमेशा राइट होता है कि मुझे अपने को बचाना है, तो फिर इमोशनल में भी तो सेम ही करना। सपोज हम ड्राइव कर रहे हैं एंड आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है, मेरी गाड़ी यहाँ से आ रही है, लेट्स से मे बी दैट आई एम ऑन द रोंग साइड, यू नो, बट व्हाट विल यू डू इफ आई एम ड्राइविंग ऑन द रोंग साइड? आप क्या करेंगे?
0: मैं अपने आप को बचाऊंगी, यू नो।
1: तो इज़न्ट दैट ऑलवेज द फोकस कि ठीक है, जो सामने वाला आ रहा है, ही और शी इज ड्राइविंग ऑन द रोंग साइड, मुझे क्या करना है? आई डोंट वॉन्ट टू मीट विद एन एक्सीडेंट, आई विल जस्ट डाइवर्ट, चेंज माई रूट, वट एवर। लेकिन जब रिश्तों में आते, यू आर ऑन द रोंग साइड, सो वट डू आई डू? हैड ऑन कोलिजन, क्यों? क्योंकि यू आर ऑन द रॉन्ग साइड, सो आई हैव टू कम एंड टेल यू दैट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड.
0: मुझे दूसरे को सुधारना भी, तो कई बार हम जो सामने वाला गलत आ रहे होते हैं उसको गाली भी तो दे रहे होते हैं कि देखो कहां से.
1: लेकिन पहले क्या करते हैं?
0: पहले अपने आप को बचा लेते हैं. यस,
1: ऑलवेज पहले अपने को बचाना, पहले अपने को बचाना. अब वहां अपने आप को बचाते हैं ना कि कहीं मेरी गाड़ी को ना लग जाए, कहीं मुझे ना लग जाए. और यहां जो सारा दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वहां ये ध्यान नहीं रखते. वहां कहते हैं वो रॉन्ग साइड से आ रहा है तो मैं क्यों ना उसी साइड से जाकर मैं भी उसको बोल कर आऊं. एंड देन कोलिजन. एंड ये जो कोलिजन सारा दिन हो रहे हैं कितना इम्पैक्ट छोड़ कर जाते हैं. मुझ आत्मा पर भी इम्पैक्ट छोड़ते और मेरी गाड़ी पर भी इम्पैक्ट छोड़ते और रिश्तों पे तो इम्पैक्ट रखता है. तो सिर्फ एक फोकस, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. दिस फोकस. अब आप देखो वही सिचुएशन, आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? आप उसको ईजिली क्रॉस कर जाएंगे जस्ट बिकॉज द अटेंशन इज I have to cross the situation, so I have to take care of myself. दर्द में जाकर कौन सी सिचुएशन क्रॉस की जाएगी? फिर तो वो सिचुएशन ही पेनफुल लगती है.
0: एक्चुअली और हर मॉर्निंग जो हम कहते हैं बार बार कर रही हूँ मैं, वो बिल्डअप भी तो हो रहा होता है. वो उठते ही बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि अब ये होगा और सीक्वेंस वैसे वैसे वैसे ही होने लगते हैं.
1: अब जहाँ तक ये मॉर्निंग सीन की बात आती, ये तो एक तूफान है जो पहले से ही पता है कि ये तो रोज ही वो सीन आता है. तो जबकि पहले से पता है कि ये परिस्थिति आती है, डोंट यू थिंक वी कैन प्रोग्राम आवर सेल्फ फॉर क्रॉसिंग इन द राइट वे? सो आई हैव टू आस्क माई सेल्फ कि ये एक एग्जाम है जो मुझे रोज देना होता है, तो इसको मैं अपने आप को तैयार करके दूं या रोज़ गुस्सा करके शोर मचा के? एंड उसके लिए मुझे एक ही चीज़ करनी है, एक दिन उसको आराम से क्रॉस करके देखना है.
0: इनफैक्ट और इसको मैं एग्जाम क्यों बनाऊं? एक्चुअली वो मैंने ही बनाया हुआ है बेसिकली.
1: एक्चुअली जितना हम दर्द में जाते हैं उतना हमें लगता है कि सिचुएशन बहुत बड़ी है. जितना हम स्टेबिलिटी से क्रॉस करेंगे हमें लगेगा सिचुएशन कुछ भी नहीं है, वो तो नॉर्मल एक सीन है जो रोज सामने आता ही है. सो इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल, जस्ट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअलिटी.
0: यस, यू नो इनफैक्ट यहाँ एक बात बहुत जरूरी सामने आती है कि सबसे इम्पोर्टेंट कौन हो जाता है और किसकी स्थिति. कोई भी सिचुएशन है रिश्तों में जब हम हैं, और रिश्ते कहीं पे भी हो सकते हैं, हम ऑफिस के भी रिश्तों की बात कर सकते हैं, हर रिश्ते में अब चेक सिर्फ ये करना है कि मैं क्या हूँ, मैं किस सिचुएशन में हूँ. वेरी गुड. इनफैक्ट इट विल बी टोटली फोकस ऑन माई सेल्फ. तो ये तो सिचुएशंस वो रही थी सचिवानी जहाँ बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, लेकिन जनरली भी रिश्ते बन नहीं रहे हैं, रिश्तों में खटास आ गई, ये जो विड्रॉल है इधर, मतलब आई डोंट वॉन्ट टू फेस, देर इज़ नथिंग टू टॉक, आई डोंट फील रियली रियली कनेक्टेड, यू नो कोई कम्युनिकेशन नहीं है. यहाँ क्या करें हम? यहाँ फिर दूरियाँ इतनी बढ़ने लगती हैं कि वो कहते हैं फिर कि उसके ग्रेविटी सर्कल से बाहर चला जाता है.
1: When we don't experience the connection with each other, it is because of three major reasons related to time. One is past, कि कोई past hurt है उस रिश्ते के अंदर, कोई past की बात है जो हर time सामने आकर खड़ी हो जाती है. तो जब भी अगर कोई ऐसे पास्ट की बात होती है तो हम एक बैरियर क्रिएट करके रख देते हैं कि पास्ट में आपने मुझे हर्ट किया था
0: और अभी तक मेरे साथ चल रहा है,
1: आपने कुछ ऐसा किया जो मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार नहीं था, यू हैव लेट मी डाउन, यू हैव डन समथिंग विच आई डिसअप्रूव ऑफ, यू हैव ऑफेंडेड मी, यू नो ऑल दिस इज यू हैव डन दिस. तो जितना हम इस तरह की थॉट्स क्रिएट करते तो हम एक अंदर एक स्टोरी सी बना लेते हैं अपने रिश्ते को लेकर, और इस स्टोरी का जो यू नो प्राइम सीन है वो ये है कि आई एम हर्ट एंड मेरा हर्ट का कारण कौन है? आप. तो क्योंकि मैंने ये एक सीन बिकॉज ऑफ अ पास्ट इंसिडेंट, इंसिडेंट कुड बी वेरी बिग, वी आर नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन मैंने वो पास्ट हर्ट को पकड़ कर रखा है एंड वो दर्द मुझे अभी भी महसूस हो रहा है एंड आई होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट हर्ट. तो इसलिए जब भी मैं आपके कनेक्शन में अभी भी आती, आई काइंड ऑफ हैव अ बैरियर बिकॉज पेन इज अ बैरियर. और ये बैरियर जब बीच में आ जाता है तो एनर्जी विल नॉट फ्लो. सो वी हैव टू रिमेंबर कि जो हमारे पास्ट की बातें हैं वो हमारे प्रेजेंट पर इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि वेन एवर आई मीट द पर्सन नेक्स्ट, दैट पास्ट के पास्ट में ये हुआ था, आई एम नॉट एबल टू लेट इट गो.
0: तो मैं भुलाऊं कैसे? भूल पाना ही तो पॉसिबल नहीं है.
1: सबसे इजी तरीका भूलने का फिर से वही मंत्र है कि आपने मुझे हर्ट नहीं किया,
0: मैंने खुद क्रिएट किया हुआ ये हर्ट. आपने जो कुछ किया, स्पेशली अगर कुछ ऐसा हुआ है, अगर हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप.
1: आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. वन पेरेंट कॉल्स अप couple doctor hain dono, and calls up and says, my son has let me down. 10th standard mein son hai. So what happened? And it sounded as if, pata nahi bete ne kya kiya hai. My son is in the 10th standard and he's having a relationship in school with a girl. Said, okay, yes, fine. But it's a situation. Okay, maybe as a parent, aap us baat se approve nahi karte.
0: Maine usko itni freedom di, maine itni independence di, aur mere vishwas ko main pata, I can actually write the script.
1: Now see, script, yeah, standard script ho gaya na hum sab ka. Ab dekho, wo jo vicious cycle of thoughts shuru hota. You know, the parent said, मैंने उसको इतने अच्छे संस्कार दिए थे, वो इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊँ आपको सिस्टर, वो इतना अच्छा था. एंड इन दैट फोन कॉन्वर्सेशन ऑफ अबाउट 10 मिनट्स, 5 टाइम्स दैट ब्रदर सेड, वो इतना अच्छा था, वो इतना अच्छा था. आई सेड, था मतलब क्या? एंड देन ही जस्ट स्टॉप्ड बिकॉज ही रियलाइज व्हाट ही वाज सेइंग. आई सेड, आर यू ट्राइंग टू से कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था एंड अब उसने कोई एक बात ऐसे कर दी है विच यू आर फीलिंग सो लेट डाउन, सो डिसअपॉइंटेड, कि नाउ व्हेन आई से वो इतना अच्छा था मीन्स कि अब वो अच्छा
0: नहीं है.
1: कौन सी एनर्जी फ्लो करेगी रिलेशनशिप?
0: पर वो मान ही रहे होंगे ना कि वो अच्छा नहीं है, बिकॉज आपने एक उनके उस पे आप उतरे नहीं, खरे नहीं उतरे हैं
1: किसी एक बात में ना. सो वी आर नॉट सेइंग, अब व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, कि दूसरा बिल्कुल वही करेगा जो मेरी डेफिनेशन ऑफ राइट और रॉन्ग में.
0: पर मैं जीवन भर उसकी हर बात मानता रहा, मैंने उसको सब कुछ दिया जो उसने कहा, जो उसने मांगा, और वो इस तरह, मतलब वो,
1: सी वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चा अपने पर्सपेक्टिव से तो गलत ही नहीं कर रहा है. एंड एज अ पेरेंट, इफ यू डू नॉट अग्री विद व्हाट योर चाइल्ड इज डूइंग, यू हैव अ कॉन्वर्सेशन, यू टॉक अबाउट इट. लेकिन वो कॉन्वर्सेशन के लिए भी एक एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी तो चाहिए. एक कनेक्शन ही होगा ना, कॉन्वर्सेशन भी तो तब होगा व्हेन वी बोथ कनेक्ट. लेकिन जहाँ मैंने ये एनर्जी भेजनी शुरू कर दी कि आप इतने अच्छे थे, मैंने आपको इतने संस्कार दिए, आपने क्या किया उनका, इफ आई थ्रो दिस काइंड ऑफ एनर्जी एट यू, डू यू थिंक हम एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं इसके बाद?
0: ओह नो, इनफैक्ट, और it will not happen. I can actually see a lot of parents doing it, you know, and they feel they are justified.
1: And this can be on small things or on little big things, but ye scenes to aane hi hai. This is a part of the parent child relationship. This is a part of the child upbringing.
0: In fact, yahan ek aur baat main aapse janna chahti hu, it's like about parent child only. Usually kya hota hai, 7th, 8th tak mother takes care of child's education, usually बच्चे के स्कूल से जुड़ी हुई या उसकी पढ़ाई की बात या उसके, क्योंकि मे बी फादर जो है वो क्लाइंब कर रहा होता है अपने करियर में. जैसे ही 9th आता है, 10th आता है, हायर क्लासेस आ जाते हैं, विच आई हैव नोटिस्ड. हायर क्लासेस आते ही अब टेंशन शुरू हुई, अब ट्यूटर लगेगा, अब एजुकेशन की प्रॉब्लम आएगी, अब करियर की प्रॉब्लम आएगी. फादर कम्स एंड टेक्स ओवर द एजुकेशन पार्ट. चाइल्ड डज नॉट इवन रिलेट टू द फादर. फादर इज नॉट इवन अवेयर कि बच्चे का, मेरे पढ़ने का पैटर्न क्या है, उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, कैसे वो पढ़ता है. दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन विद सो मेनी पेरेंट्स. और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इतना मेजर होता है, तब बच्चे मेजर डिप्रेशन में जाते हैं,
1: क्योंकि कनेक्ट नहीं है ना,
0: यहाँ कनेक्ट नहीं रहा ना. ये जो मैं कह रही हूँ कि कनेक्ट नहीं है, फादर कहते हैं मेरे बेटा मेरी बात समझता क्यों नहीं, जबकि मैंने सारी जिंदगी इंडिपेंडेंस दिए रखे, फ्रीडम दिए रखे. तो यहाँ ये जो, और बच्चा जो है, आई हैव सीन वन चाइल्ड गोइंग सो मच इन टू डिप्रेशन क्योंकि वो फादर की एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट नहीं कर पा रहा था.
1: सो दैट इज व्हाट हैपेंस, यू हैव नॉट मेट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. इसके लिए आई एम हर्ट. हमने ही एक्सपेक्टेशंस बनाई, हमने ही फिर अपने आप को कहा कि यू हैव नॉट मेट अप टू माई एक्सपेक्टेशंस, और फिर हमने ही उसको लेकर हर्ट क्रिएट किया. सारा प्रोसेस कौन कर रहा?
0: मैं.
1: और उससे एनर्जी जो होगी ब्लॉक हो जाएगी. नाउ इस एनर्जी ब्लॉकेज के बाद रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन, क्योंकि हम कहते हैं कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप में वो कम्युनिकेशन कैसे होगा? जहाँ भी एक बैरियर आ गया, दर्द आ गया, हर्ट आ गया, उसके बाद कम्युनिकेशन
0: नहीं होता,
1: बहुत अच्छा नहीं होता. आपको याद होगा एक प्रोग्राम में एक बच्चे ने हमारे साथ शेयर किया था, एंड शी वाज आई थिंक इन द 10th स्टैंडर्ड और समथिंग, एंड शी सेड के माय पेरेंट्स गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन जब भी मुझसे कोई गलती होती है, कि दे फील कि उनकी उनकी अपब्रिंगिंग अच्छी नहीं है. बट ये भी है हर्ट, लेकिन उसने कहा कि दे गो थ्रू सो मच पेन कि नाउ आई फील लाइक कमिटिंग सुसाइड. अब suicide tak aapki thought aa gayi hai. And we just asked her one thing. Hmm. Have you talked to your parents about this? She said no. This is a sign that our communication is... मतलब मैं सुसाइड करने तक का सोच लिया
0: क्योंकि मेरे पेरेंट्स हर्ट हो रहे हैं
1: लेकिन
0: मेरी वजह से
1: लेकिन आई हैव नॉट गॉन एंड टॉक्ड
0: सी दिस इज व्हाट डिस्कनेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअली मेरे रॉन्ग टेक खड़े हो गए बिकॉज़ दिस इज व्हाट वी आर ऑल गोइंग थ्रू
1: एंड अंदर ही अंदर उसके साथ हम जूझ रहे हैं हम उसको ठीक भी करने की कोशिश कर रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा क्या करना है लेकिन वी आर नॉट एबल टू कनेक्ट वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड सो मच पेन सो दैट्स व्हाई अगेन इट विल कम बैक टू आवर बॉटम लाइन कि जब तक हम अपना ध्यान नहीं रखेंगे वी विल नॉट बी एबल टू हैव दैट गुड रिलेशनशिप तो पास्ट का जो हर्ट है वो भी हमारे एनर्जी फ्लो को ब्लॉक करता है दूसरा है प्रेजेंट प्रेजेंट बिहेवियर आपका कैसा है एज आई एम ग्रोइंग अप एज अ चाइल्ड आई सी माई पेरेंट्स एंड टीचर्स बीइंग वेरी जजमेंटल यू नो मैं सीखती हूँ कि अच्छा ये ऐसा है ये ऐसा है ये ठीक नहीं है ये गलत है वेरी जजमेंटल हम बहुत इजीली औरों के प्रति अपनी जजमेंट्स पास करते हैं और जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स भी बनती जा रही हैं आई लाइक
0: और क्लियर होती जा रही हैं हमारी
1: वेरी क्लियर आई एम वेरी क्लियर मुझे क्या पसंद है मुझे क्या नहीं पसंद है एक तरफ है जजमेंट्स देना और दूसरी तरफ है मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है दोनों चीज़ें ठीक हैं लेकिन दोनों चीज़ें जब मिक्स हो जाती हैं माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स गेट मिक्स्ड विद जजमेंटल तो जो जो चीज़ें मैं डिसलाइक करती हूँ उसके प्रति मैं बहुत ईजिली एक जजमेंट दे देती हूँ कि ये है ही गलत
0: खराब हाँ
1: यू नो लाइक फॉर एग्जाम्पल यू आर वेयरिंग इफ यू आर वेयरिंग ब्लैक कलर आई डोंट लाइक ब्लैक कलर लेट्स से इट्स ओके आई डोंट लाइक ब्लैक कलर बट मैंने अपने डिसलाइक को अगर जजमेंटल बना दिया तो मैंने कहा ब्लैक कलर ही अच्छा नहीं
0: खराब है हाँ
1: तब वो एक अलग पर्सपेक्टिव ले लेती है चीज़
0: यस यू नो द टू डिफरेंट थिंग्स आई डोंट लाइक ब्लैक कलर बट ब्लैक कलर ही खराब है
1: दोनों में बहुत अंतर है दोनों में बहुत अंतर है लेकिन हम जाकर
0: आई डोंट लाइक योर फ्रेंड बट योर फ्रेंड इज बैड
1: यस
0: ओ यस
1: See, they're two different things. Uh-huh. Each one will have their likes and dislikes. That's a part of the journey. Uh-huh. लेकिन उसके ऊपर जब हम अपनी negativity project करके उस पे judgmental हो जाते हैं, ये है ही खराब. जैसे आपके अंदर कोई संस्कार हो सकता है जो मुझे पसंद नहीं लेकिन अगर मैंने कह दिया ये है ही खराब तो मैंने क्या कर दिया उतनी अपनी एक डिसलाइक की वजह से मैंने जजमेंट पास कर दी एंड नाउ वंस आई हैव लेबल्ड यू Like this, now which energy will flow?
0: Yeah, this will be total disconnect. Yeah. You will not right. accept.
1: तो मैं बहुत easily judgmental होके लोगों के प्रति labels लगा देती हूँ. ये तो ऐसे ही हैं. ये तो ऐसे ही हैं. और जैसे ही हमने एक negativity का label अगर किसी के प्रति लगाया, and हम justified feel करते हैं. मेरा label right है. वो तो है ही ऐसे energy कौन सी flow करेगी?
0: Complete disconnect की
1: negative. अब जब भी हम मिलेंगे हम उनको उस लेबल के थ्रू देखेंगे वो जो हैं जैसे हैं वो नहीं दिखाई देंगे क्योंकि मैंने लेबल कर दिया मैंने जजमेंट कर दी कि आप तो है ही देर आर सो मेनी लेबल्स ये तो है ही मैनिपुलेटिव ये तो है ही श्रूड ये तो है ही चलाक ये तो है ही धोखे यू नो सो मेनी थिंग्स So many things. ये judgments pass कर दी.
0: और हम अपनी पूरी जिंदगी उस पर oh yes, you know, हम अगर और अपने अपने close रिश्तों में भी in fact हम अपने क्लोज रिश्तों में जितने judgmental होते हैं ना उतने शायद बाहर कहीं नहीं होते हैं yes. और उनके साथ हम जीवन भी जी रहे हैं
1: लेकिन जितना जितना हम judgments pass करेंगे उतना energy फ्लो करना बंद हो जाएगी देर विल बी अ ब्लॉक नाउ बिकॉज मैंने जजमेंट ही पास कर दी नाउ आई विल सी यू थ्रू दैट जजमेंट तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी कौन सी होगी फ्री फ्लोइंग तो होगी ही नहीं वो ब्लॉक हो जाएगी तो एक है पास्ट हर्ट एक है प्रेजेंट आपका कोई बिहेवियर
0: और इसमें बहुत आई थिंक इट्स लाइक अमेजिंगली क्लियर नाउ कि स्पेशली अगर हम देखें सिस्टर इन लॉज मदर इन लॉज और ये जो रिश्ते थे मामी चाची ये जो सारे रिश्ते वो सारे ही क्लोज रिलेशन है मुझे उनकी कोई एक चीज अच्छी नहीं लगी मतलब कुछ एक बिहेवियर
1: तो
0: अच्छा नहीं लगा
1: कोई ना कोई संस्कार
0: नहीं अच्छा लगा लेकिन मैंने कहा कि नहीं वो वही है
1: ये हो गया, तो हमने अपने डिसलाइक पर एक जजमेंट पास
0: कर, फिर मैं अच्छा देखने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं अपनी आंखों से वो पट्टी हटाना ही नहीं चाहते, बिकॉज आई फील सो स्ट्रांगली अबाउट माई डिसलाइक, यू नो दैट माई डिसलाइक इज राइट,
1: इज राइट, इट्स राइट, इट्स जस्टिफाइड, ये लेबल करेक्ट है जो मैंने लगाया है आपके,
0: इसलिए उसमें कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा अच्छा दिखाना भी चाहेगा, आई डोंट वांट टू हियर दैट।
1: अब एनर्जी कैसे फ्लो करे?
0: ओह यस, ब्लॉक, टोटल ब्लॉक।
1: So we're talking about relationships, matlab free flowing energy. Mm-hmm. So that will not happen. So one is past hurt, dusra hai vartaman samay aapka vyavahar, aur teesra hai future threat. Aapse mujhe kuch ek feeling aati hai of insecurity. To kya hota, main ek barrier create kar leti hu. Main pehle hi jaise ek deewar create kar leti hu taki main aapko chance hi nahi do
0: ki aap mere nazdeek aaoge.
1: Yes. So I will either overpower you or I will withdraw from you. कई बार तो हम defensive mechanism पर aggressive भी हो जाते हैं कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए मैं आपके ऊपर ही गुस्सा करने लग जाती हूँ. This is all happening because of some kind of threat कि कहीं ना कहीं आप मेरी position या मेरी जो power या personality है इसको कहीं आप ले ना जाएं. This can happen in an office. It happens very often in an office. It happens in a mother-in-law daughter-in-law relationship.
0: Yes.
1: Yeah, it happens very often there. कि एक future threat है कि कहीं ना कहीं ये ही ना पूरे घर के ऊपर या पूरे परिवार के ऊपर या मेरे बेटे के ऊपर, you know, whatever. तो वो जब पहले से ही हमने एक जो हुआ भी नहीं है अभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, लेकिन मैंने already वो कहानी पहले से ही क्रिएट कर दी, और जैसी कहानी फिर क्रिएट करेंगे तो एनर्जी फ्लो कैसा होगा?
0: वो होने लगती हैं फिर चीजें,
1: क्योंकि फिर थॉट्स लीड टू डेस्टिनी.
0: इवन रिलेशनशिप में, मतलब इवन हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में भी, अगर वाइफ पहले से ही सोच ले कि मैंने ये काम किया है या ओके मैंने एक साड़ी खरीद ली है बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए, वो आएंगे और वो कुछ कुछ कुछ कुछ बोलेंगे, एंड इनवेरिएबली इट स्टार्ट्स हैपनिंग कि वो वैसा ही बोलते हैं.
1: yeah, लेकिन अभी तो उन्होंने ऐसा बोला ना, कई बार आप देखो क्योंकि मैं पहले से ही वो आइडिया कंसीव कर लेती हूँ कि दूसरा ऐसा बोलेगा, तो उसके बोलने से पहले ही मैं कुछ और जोर जोर से बोल देती हूँ ताकि मैं आपको बोलने का चांस ही नहीं दूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोच लिया था कि आप ऐसा कुछ बोलेंगे. सो दिस वॉज समथिंग आई कॉन्सेप्चुलाइज्ड पहले से ही, और मैं डर गई और इसलिए मैं पहले से ही बोल. एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अगर उनसे कुछ टूट गया या कुछ, अब उनको पता है एक फ्यूचर उन्होंने ऑलरेडी कंसीव कर लिया कि मुझे डांट पड़ने वाली है, डिफेंस मैकेनिज्म वो पहले से ही जोर से रोते
0: लग जाते हैं.
1: नाउ दिस इज अ संस्कार जो हमारे साथ बिल्डअप होता है, और हम बड़े होकर भी सेम चीज करते हैं कि आप मुझे क्या बोलोगे, मैं उसे पहले ही इतना जोर से बोलने लग जाती हूँ कि आपके पास बोलने का कोई चांस ही नहीं रहता. तो ये फिर भी हम एक बैरियर बना लेते हैं कि इनसे मुझे सिक्योरिटी नहीं है. सो अगेन आई क्रिएट अ बैरियर बिकॉज ऑफ विच द फ्लो ऑफ एनर्जी डजंट टेक प्लेस. सो ये तीन फैक्टर्स समय को लेकर होते, पास्ट हर्ट कोई बात पकड़ी हुई है, वर्तमान समय आपका व्यवहार, या भविष्य में आपसे कोई इनसिक्योरिटी. इन तीन कारणों के वजह से हमारा जो एनर्जी ब्लॉकेज है वो हो जाता, एंड रिलेशनशिप इज नॉट फ्री फ्लोइंग.
0: बट एक्चुअली हमारा जो सवाल है वो यही है कि इनको बैरियर्स को तोड़ें कैसे.
1: राइट, फर्स्ट थिंग बैरियर्स को पहचान लें, और फिर सेकेंडली समझ लें कि बैरियर क्रिएट किसने किया, मैंने क्रिएट किया. फिर थर्ड स्टेज ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि बैरियर तोड़ना किसने है,
0: मैंने ही
1: तोड़ना है.
0: वंडरफुल, इनफैक्ट दैट्स अ लॉ, इट्स अ प्रोसेस,
1: एंड वी विल सी देन हाउ टू डू दैट,
0: बिकॉज़ इट्स अ प्रोसेस. बट फर्स्ट थिंग इज वी हैव आइडेंटिफाइड, हमने वो आइडेंटिफाई किए बैरियर्स कि हम जो रिश्तों में डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कमी, वो ऐसा लगता है कि खालीपन है, वो सब कुछ मेरे द्वारा ही क्रिएट किया हुआ है. और जैसे कि आपने कहा कि पास्ट हर्ट को लेके या प्रेजेंट सिचुएशंस में लेकर कि कौन किस पर हावी होगा, और फ्यूचर कि मुझ पे कोई हावी हो जाए उससे पहले ही मैं हावी हो जाता हूँ. तो दैट इज़ एक्चुअली इट्स अमेजिंग, यू नो, हमारा माइंड कैसे वर्क कर रहा होता है, और हम अपने आप को कैसे, अब सपोजिटली हम अपने आप को सिक्योर कर रहे होते हैं,
1: लेकिन एक्चुअली हम कितना हर्ट क्रिएट कर रहे हैं,
0: और हम अपने आप को हर्ट से सिक्योर कर रहे होते हैं,
1: लेकिन हर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं,
0: पहले ही कर लेते हैं वो क्रिएट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी दीज बैरियर्स. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी.
1: शांति
0: शांति. अब अ अगर हमारे सामने सिचुएशंस आती हैं, कोई रिश्ते जहाँ कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि खालीपन है, नहीं हम पहुँच पा रहे, फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी एक्चुअली हम सबको महसूस हो जाता है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, जहाँ पे भी वो सिचुएशन आती है रुक जाएं, उसी वक्त रुक जाएं और देखने की कोशिश करें कि वो कौन सा बैरियर है, कोई पास्ट का हर्ट हमने पकड़ा हुआ है, कहीं आज जिस सिचुएशन में हम हैं उसमें भी कोई ऐसी बात है जो हमें रोक रही है, रुकावट डाल रही है, और वो कोई हर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, या फिर फ्यूचर का थ्रेट कि अगर मैंने ऐसा कर दिया, अगर मैंने इसे ज़्यादा लिवरेज दे दी, अगर आज बच्चे की बात मानती गई मैं तो कल को ये मेरे सर पर चढ़ जाएगा, अगर मैं सर्वेंट के साथ भी अगर मैंने ज़्यादा उसको करता गया तो कल को ये मेरे सर पर चढ़ के बैठ जाएगा, तो ये भी एक बैरियर हो सकता है जो मेरे रिश्ते में रुकावट डाल रहा है। तो इन बैरियर्स को आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ आज का काम इतना है, आगे हम बात करते रहेंगे कि इन बैरियर्स को तोड़ना कैसा है, ये जो हमारे आगे दीवार आ गई है उसे कैसे तोड़ना है। कोई सवाल, और हम कहेंगे कि आप हमारे अपने अनुभव भी ज़रूर हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि आप ही के सवाल, आप ही के अनुभव इस प्रोग्राम में हम शामिल करते हैं, तो सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत बड़ी बात है रिश्ते, तो आपका हम स्वागत करेंगे, आप हमें फोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0-9873-666-5, 0-9899-744-555, 0-9999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही, लेकिन आपसे हम यही गुजारिश करेंगे जो आज बात हमें समझ में आई है उसको अपने साथ रिवाइंड करें, रिव्यू करें, उन बैरियर्स को तलाशें और उनको आइडेंटिफाई करके रखें। तोड़ना कैसे है ये हम आगे प्रयास करेंगे। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ गार्डन, जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है। पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ द फ्लावर्स। फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस मींस खुशबू, करेक्ट। अगर हमें जीवन को सचमुच एंजॉय करना है तो एक काम कर सकते हैं, गो वेरी क्लोज टू नेचर, प्रकृति के नजदीक आइए। प्रकृति के जितने नजदीक होते हैं तो उतना फील कर सकते हैं कि हमारा जीवन कितना वंडरफुल है और उसको आप एंजॉय कर सकते हो। तो आप ऐसा डिसाइड करना कि साल में एटलीस्ट 10-15 दिन आप अपने बिजी लाइफ को निकाल कर गो वेरी क्लोज टू नेचर, गो टू वेरी क्लोज टू माउंटेन्स, गो टू रिवर्स, है ना, नेचुरल फ्लोरा और फौना की तरफ जाइए। लिसन टू द चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, जहाँ बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, और वहां जाकर अकेले में आप बैठिए एंड स्लोली इंट्रोस्पेक्ट, और वहां के साइलेंस को आप अनुभव करेंगे। बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, यू विल रियली एंजॉय इट, करेक्ट। अच्छा, नेचर का दो अर्थ होता है, एक होता है नेचर का अर्थ प्रकृति, उसी तरह दूसरा होता है नेचर मींस नेचर ऑफ पीपल। हमें यह समझना है कि जीवन एक बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अलग अलग फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। गुलदस्ता की भी रौनक कब होती है? जब उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं। उसी तरह इस जीवन रूपी यात्रा में आपको अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे जिनके अलग अलग नेचर होते हैं। कैन यू एक्सेप्ट देयर नेचर? और अगर आप उनको एंजॉय कर सकते हो, बिलीव मी, लाइफ वुड बिकम रियली वंडरफुल, रियली ग्रेट।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। गुड मॉर्निंग राजस्थान, गुड मॉर्निंग गुजरात, गुड मॉर्निंग आप सभी को जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं। नई किरण इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज 13 जुलाई 2026 आज का तारीख है और राष्ट्रीय शिखे 1948, शिखे 22 गते 29, आषाढ़ सोमवार आज है। विक्रम संवत 2083 आषाढ़ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी सोमवार अद्रा आज है। इस्लामी हिजरी 1448-27 मुरहम पीर अद्रा आज है। और इसके साथ ही सुनीता जैन इनका जन्मदिन है, जिनके बारे में हम लोग बातें करेंगे कुछ समय के बाद। लेकिन अभी आपको कार्यक्रम के शुरुआत में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, सोमवार का दिन है, हफ्ते की शुरुआत है, तो आप सभी को पूरे हफ्ते के लिए ढेरों शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब बात करते हैं आज के दिन विशेष जिनका जन्मदिन है, सुनीता जैन के बारे में मैंने जिक्र किया था शुरू में ही। तो हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार के रूप में याद किया जाता है और वे एक कवियत्री के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। और अम्बाला में जन्मी सुनीता जैन ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का में पीएचडी की पढ़ाई प्राप्त की। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका।
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग रमेश जी।
0: ओम शांति, सुभाष जी, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग।
1: आज मैं बोलूं कि बुरी राम जी, बुरी लाल जी, सुरेश भाई जोटाना, उनके पहले नंबर लगा दो सुबह सुबह। आज हफ्ते की शुरुआत है तो हफ्ते की नहीं, महीने की नहीं, कई सालों की आपको रेडियो मधुबन परिवार और हमारे सभी श्रोते भाई बहनों को सुभाष भाई का नमस्कार। और बहुत ही अच्छा गीत, परमात्मा की महिमा, शिव की महिमा के बारे में आपने गीत सुना दिया, तो मेरा भी एक गीत है, वो गीत भी है, भजन भी है, सत्यम शिवम सुंदरम का। ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही शिव है, और शिव ही सुंदर है। जागो, उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। तो सभी को नमस्कार और ओम शांति भाई जी, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सुभाष जी, अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। चलिए, 8:29 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ और सुनीता जैन जी के बारे में बातें हो रही थी। और पढ़ाई पूरा करने के बाद शिक्षा और साहित्य का पद्मश्री अलंकार प्राप्त करने वाली सुनीता जैन अंग्रेजी और हिंदी में बेहतरीन कविताएं लिखना शुरू किया। उनके उपन्यास, लघु कथाएँ, रचनात्मक अनुवाद और आलोचनात्मक विश्लेषण पाठकों की भरपूर सराहना अर्जित कर चुकी थी। कई पुरस्कार उनको फेलोशिप के रूप में उनके खाते में दर्ज है। तो आइए ऐसे सुनीता जैन जी के बारे में बात करते हैं जो अम्बाला से बिलोंग करती हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाएंगे और ये गीत अभी सुरेश सुभाष जी ने याद कराया है और एक दोस्त हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो जी, नमस्कार।
2: हेलो जी, नमस्कार भाई जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, सुभाष जी याद कर रहे थे आपको, गुड़ीलाल जी।
2: सुभाष जी को भी मेरी तरफ से याद करना चाह रहा, सुरेश भाई भी है, भूरा राम जी है, कंचन भाई है, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक मैंने भी एक गाना निकाला है सर, उस गाने को सुना देना, तेरा भजन है। ओ संता कौन आवे न कौन जावे, ओ संता कौन आवे न कौन जावे, सबूरी करो खासी बोली प्यारी प्यारी लागे। वो गाना सर ये निकाली उनका होली हुआ तो होली निकाली हुआ तो दोबारा गाना गा दीजिए, तुम्हारे मजा हो जाएगा और आनंद मिलेगा और सभी को साथियों को मेरा प्यार प्यार। आवाज क्यों कम कम आ रही है, आवाज कुछ बढ़ सकती है क्या?
0: हाँ जी,
2: आवाज कुछ बढ़ सकती है क्या? रेडियो में
0: बढ़ जाएगी, क्यों नहीं बढ़ेगी?
2: हाँ तो थोड़ी सी आवाज बढ़ा देंगे तो और आनंद आ जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: भजन के बोल सुन लिया ने?
0: हाँ जी सुन लिया।
2: हाँ, संता कौन आवे न कौन जावे, अपना कौन सा आवे कौन जावे, ये भजन है सर, और जल्दी बोली प्यारी प्यारी लागे। ठीक है सर,
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन

आइए आगे बढ़ते हैं। और ये थे गुड़ीलाल जी जो अपनी बातें हमारे साथ साझा कर रहे थे, कौन आवे और कौन जावे ये भजन आप जो है सुनना चाहते हैं, चेतावनी भजन है शायद ये, और मुझे लगता है कबीरा का होगा या किसी और का होगा। और तो चलिए, बिना राय सुनीता जैन जी की बातें हो रही थी। सुनीता जैन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य करते रहे। अब तक उनके 70 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जबकि 20 कविता संग्रह के अलावा हिंदी में उनके 5 उपन्यास और 4 कहानी संग्रह भी बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं। तो आइए एक सुंदर गीत आपके नाम, सत्यम शिवम सुंदरम।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 107.8 FM पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ। सुनीता जैन जी के बारे में बातें हो रही थी। साहित्यिक कद बड़ा ऊंचा था इनका, अपने बहुगुणी विस्तार में उनकी काटी विस्तृत रही और कविता, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, आलोचना, इन सभी विधाओं में जितने अधिकार पूर्वक उन्होंने निरंतरता में लिखा है वो विस्मित करता है कि उनकी प्रथम कविता वर्ष 1962 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में, प्रथम उपन्यास 1964 में ब्लूज में प्रकाशित हुआ। धर्मयुग में उनकी पहली कहानी आई थी। 2008, 2009, 2010 और 11 में उनकी कविताएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। 2009 में वर्तमान साहित्य में पांचवा हाथ, सरकारी खरीद तथा कहानी अक्षर पर्व के 2010 अंक में अम्रपाली स्त्री सुनती है वापिस उसी किताब में 15 वर्षों बाद वर्तमान साहित्य उसने चुना वो लाया जीवन भर की आग जैसे बेहतरीन कविताएं उनकी लोगों को काफी पसंद आए। तो आइए आगे बढ़ते हुए एक और सुंदर गीत आपके नाम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8:51 हो रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत भजन से आपने सुने। आशा करूंगा ये भजन सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हुए अब एक और शख्सियत के बारे में बातें करते हैं, बीना रॉय के बारे में। जी हाँ, हिंदी फिल्म की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री थी। उनका वास्तविक नाम कृष्णा शरीन और 50 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से वो एक थी, जिन्होंने 1951 में प्रदर्शित फिल्म काली घटा से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। हेलो जी, नमस्कार।
3: जी सर नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
2: नमस्ते सुरेश जी, स्वागत है आपका।
3: जी सर, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। बहुत अच्छी गाने सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने। आज सोमवार है तो सत्यम प्रियम सिंह का भी गाना सुन लिया, बहुत अच्छा लगा।
2: जी जी जी।
3: तो सर सोमवार है, आपकी की शुरुआत है, भोले बाबा का दिन है, तो अच्छे गाने भी सुन लिए, आपकी बातें भी सुन ली। और बस कल भी अच्छा दिन था, संडे था। और बताओ तो 10-2-3-4 दिन में अभी वो रथ यात्रा का भी दिन आ रहा है, साड़ी भी आ रही है जगन्नाथ भगवान की। रथ यात्रा भी अहमदाबाद में बहुत जोर से निकलती है, तो कई सारी तैयारियां भी हो रही है अहमदाबाद में, कुछ जगह जगह पे।
2: अच्छा।
3: पुलिस को बंदोबस्त कर दिया है, कोई ऐसी घटना ना बने, कोई अच्छा कोई ऐसा कोई स्वरूप ना बने जैसे कोई अच्छा हुए, तो कई सारी तैयारियां वहाँ हो रही है अहमदाबाद में। बस भगवान का जो दिन होता है तो वो दिन अच्छा ही जाए ऐसा हम चाहते हैं सर। कई कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा दिन होता है तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो पूरा माहौल बिगड़ जाता है। लेकिन हमारे मोदी की सरकार में तो ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा ही चलता है। चलो आज के दिन की बहुत प्रसन्नता। सोमवार है, मन तेरा मंदिर मन तेरी पूजा गाना है, तो गाना जरूर सुना देना सोमवार है।
2: जी
3: ठीक है सर।
2: जी जी जी,
3: हमारे गुरा राम जी को राम राम है, नमस्ते सर।
2: चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और ये हमारे सुरेश जी जिन्होंने अपनी भावनाएं विचार हमारे साथ साझा किया और बहुत ही प्यारी बातें और साथ ही साथ एक अच्छा गीत उन्होंने याद कराया है, तो सुनते हैं उनसे उनका ये गीत मन तेरा मंदिर। तो चलिए बातें कर रहे थे बीना रॉय के बारे में, और यहाँ पर अभिनेत्री इन्होंने काली घटा फिल्म से अपनी जो है अभिनय शुरू किया था, और यहाँ से करियर शुरू करने के बाद विवाह के बाद बीना रॉय ने पति के साथ मिलकर भी पीएन फिल्म्स के बैनर तले शगुफा, गोलकुंडा की कैदी और समंदर जैसे फिल्मों का निर्माण भी किया। साथ ही पति पत्नी की इस जोड़ी ने इन फिल्मों में अभिनय भी किया, और 1968 में बनी फिल्म अपना घर अपनी कहानी बीना रॉय की अंतिम फिल्म थी, जिसके बाद फिल्म उद्योग से नाता तोड़कर वह पूरी तरह गृहस्थी में समा गई। तो 13 जुलाई 1932 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में जन्मी बीना रॉय के पिता रेलवे में अधिकारी थे। उनके घर में सभी को फिल्म देखने का शौक़ था और बीना जी की पसंदीदा हीरोइन खुर्शीद थी। 50 का दशक श्यामा, नंदा, वैजयंतीमाला, नूतन, आशा भोसले, आशा पारेख, माला सिन्हा, मीना कुमारी, वहीदा रहमान और अमिता जैसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों के उदय का गवाह है, और उन्होंने इस दशक में बतौर नायिका करियर की शुरुआत की और अपनी प्रतिभा और सौंदर्य के बल पर ही आगे चलकर लाखों दर्शकों को अपना दीवाना बनाया। इन्हीं अभिनेत्रियों में शामिल थी निर्माता निर्देशक किशोर साहू की फिल्म काली गटा। फिल्म उद्योग में कदम रखने वाली खूबसूरत अभिनेत्री बीना रॉय 18 बरस के अपने करियर में बीना रॉय ने सिर्फ आर्ट्स फिल्म में काम किया और फिर वक्त के बदलते रुख को भांप कर शालीनता के साथ फिल्म उद्योग से किनारा कर लिया और फिर 4 दशकों से भी ज़्यादा समय तक उन्होंने मीडिया और अपने प्रशंसकों की नज़र से खुद को छिपाए रखा। तो बीना रॉय ने शादी के बाद फिल्मों में काम करना जारी रखा और दोनों ही काम करते थे पति पत्नी, और बीना रॉय के मामलों में ऐसी तमाम आशंकाएं झूठी साबित हुई क्योंकि सही मायने में उनके करियर ने गति शादी के बाद ही पकड़ी थी और फिर उसके बाद ही उन्होंने गोहरा, शोले, मीनार, इंसानियत, मदमरे नैन, मरीन ड्राव, सरदार, चंद्रकांता, हमारा वतन, इस तरह के बहुत सारे फिल्मों में उन्होंने काम किया। और फिल्मों में अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, भरत भूषण, किशोर कुमार, प्रदीप कुमार, शम्मी कपूर जैसे अपने समय के सभी जाने माने नायकों के साथ उन्होंने अभिनय किया। फिल्म घूंघट 1960 में आई फिल्म जिसमें अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी उनको मिला। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक और सुंदर गीत आपके नाम।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस गीत के साथ ही मैं बीना राय के बारे में बातें कर रहा था। और अपने समय में उन्होंने काफ़ी अभिनेताओं के साथ काम कर, अभिनेत्रियों के साथ मिलकर, उस समय उनका जो दौर था उस समय भी इन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। और फिल्म घूंघट 1960 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। बीना राय ने जिंदगी के आखिरी बरस दक्षिण मुंबई के मलबार हिल स्थित मशहूर अनीता बिल्डिंग में अपने छोटे बेटे अभिनेता मोंटी के परिवार के साथ रहकर गुजारे। और उनका निधन 6 दिसंबर 2009 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। तो ये थी कुछ खास बातें आप बीना राय की आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है समाचारों का, सीधे दिल्ली चलते हैं और समाचार सुनते हैं। अभी सुनते रहो
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
2: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
3: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने 3 परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
5: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो AI आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री दहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
6: भोपाल में आज MP टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल।

0: आकाशवाणी समाचार भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। AI के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रूपए, राजगीर के लिए 4000 रूपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रूपए और कैमूर के लिए 6000 रूपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
1: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव, आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और UAE को बनाया निशाना। वहीं नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, 1 लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश। मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का SIR ब्यौरा अनिवार्य। दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव अब निर्जन, पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित 2 नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचार हैं। सोच को सकारात्मक और रचनात्मक बनाएं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूँ संगीता। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। नई करण इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप। तो चलिए, 13 जुलाई आज का तारीख है और आज हमने बातें की कुछ खास लोगों का जन्मदिन, उनके बारे में बातें की, बीना रॉय और सुनीता जैन के बारे में। अब बात करते हैं भीष्म नारायण सिंह के बारे में। और भीष्म नारायण सिंह जी भारतीय राजनीतिक थे और 1984 से लेकर 1990 तक आसाम और मेघालय के विशेष राज्यपाल रहे। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। जी मदन जी बोलिए।
1: नमस्कार सर। नमस्कार, वेरी नमस्कार आपको
0: जी।
1: सोमवार है आज।
0: तो
1: आपको, सभी हमारे दोस्त रेडियो मधुबन सुनते हैं, सभी को नमस्कार। नवी किरण को, रमेश जी को, और आज हमारे कोई आए इन सभी को नमस्कार करते हैं
0: जी।
1: पूरी तलेटी को
0: जी।
1: और बस क्या समाचार है? और आज
0: समाचार बढ़िया है, आप बताओ।
1: बस चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बस सबके एक दूसरे को मतलब मन मन विचार करते हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं
0: जी जी, जी।
1: एक की जगह अनेक को शुभकामना देना है, ऐसी बात है। तो ऐसे हम तो चाहते हैं कि भाई हरेक का उम्मीदों का दिया जलता रहे और एक दूसरे को दिया जलाते रहे और खुश रहे, उठते रहे और उड़ाते रहे। आज इस चीज की कमी है, इसलिए कहना पड़ता है कि हम भी यही है। हमने भी ये सीखा है मधुबन से, इसलिए हमें भी बहुत देखते हैं बाजार दुनिया, हमारे भी परिवार है, समाज है। तो हमको आगे वाले दिनों में अभी बहुत और भी सनाया और बहुत दुखी है, मतलब हर बात से मतलब दुखी नहीं होना
0: जी,
1: है
0: जी, जी।
1: और खुशी खुशी जिंदगी गुजारना है और इसके लिए मीठी आवाज नहीं है, इनके लिए गाना गाते

0: कोयल बोली। ये गाना सुन के हमें वो दिन याद आते हैं जो गायक चढ़ाते थे होटल में थे या मेले में थे या परिवार में थे, अच्छा लगता है। और नमस्कार करते रेडियो मधुबन को और इसी तरह सब एक दूसरे को याद करते रहे और खुश रहे।
1: नमस्कार नमस्कार, बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया। और कोयल बोली दुनिया डोली ये गीत आपने सुनाया, थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, 9:34 हो रहे हैं, आप हो मेरे साथ और हम बात कर रहे थे विश्व नारायण जी के बारे में। और विश्व नारायण जी जो है अपने समय के विशेष व्यक्ति रहे हैं। विश्व नारायण सिंह जी का जन्म आज ही के दिन 1933 को पलमू जनपद के उदयगढ़ गांव में एक किसान परिवार में हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई। और 1967 में बिशन नारायण सिंह पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और 1976 में राज्यसभा के लिए चुने गए। और उन्होंने केंद्र में संसदीय कार्य, आवास, श्रम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा संचार मंत्री के रूप में कार्य किया। और 1984 में उन्हें आसाम और मेघालय का राज्यपाल बनाया। बाद में वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे। विश्व नारायण सिंह अंतिम समय तक भी राजनीतिक व सामाजिक सरोकार के कार्यों में जुड़े रहे। नोएडा के कई सामाजिक संस्थाओं में सक्रिय भी रहे हैं। तो ये थी कुछ खास बातें विश्व सहानी के विश्व जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। कोयल बोली दुनिया डोली, ये गीत आप सुन रहे थे और जिसे हमारे मदन जी ने भी याद किया था और बड़ा प्यारा सा गीत था। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत से सजा, आनंद बख्शी साहब का लिखा ये गीत, के विश्वनाथ के डायरेक्शन में फिल्म सरगम के लिए गाया गया था। तो आइए आप आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलता हूँ मैं विशेष आज की कुछ खास बातें। उस्ताद देबू के बारे में बात करते हैं, इनका भी आज विशेष जन्मदिन है। तो ये विश्व प्रसिद्ध भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे। इन्होंने विशेष कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में इन्होंने काम किया और ट्रेनिंग भी दी और ट्रेनिंग लिया भी और भारत में आधुनिक नृत्य के प्रणेता बने। फिर कथक और कथकली में पारंगत उस्ताद देबू दोनों नृत्य विधाओं को मिलाकर अनूठी नृत्य शैली पेश करने के लिए ख्याति बटोरी और अपनी प्रयोग धर्मी शैली में उन्होंने 70 से अधिक देशों में एकल सामूहिक और युगल नृत्य की प्रस्तुति भी दी। हेलो जी, नमस्कार। बुरा राम जी बोलिए, स्वागत है आपका।
1: आपको आप जोड़ के राम राम और सब मधुबन भाइयों को सबको मेरी तरफ से राम राम। और सुबह सुबह तो आपको तो मेरा राम राम करना ही पड़ता है। और दूसरा एक मेरा भजन है, दुनिया में है तेरा नाम, मुझे भी पड़ गया है तेरा काम।
0: तो इनको काम मत दो ज्यादा ना, आप काम करो बोले। जी जी जी जी,
1: ठीक है,
0: बिल्कुल बिल्कुल। बुराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आइए, बुराराम जी ने एक भजन याद किया है और चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि वो भजन आपको सुना पाऊँ। और पुराराम जी का प्यारा भजन सुनाएंगे ही। उस्ताद देबू जी के बारे में बात हो रही थी और इनका जन्म गुजरात के नवसारी में आज ही के दिन 1947 को हुआ था। युवा अवस्था में गुरु प्रसाद दास से कथक सीखा, बाद में उन्होंने गुरु ई के पर्णिकर से कथकली का परीक्षण लिया और अपनी प्रयोग धर्मी शैली में उन्होंने 70 से अधिक देशों में एकल सामूहिक और युगल नृत्य की प्रस्तुतियां दी। और अपने लंबे और शानदार करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न मुख्य कलाकारों जैसे कि पीना बॉश, एलिसन बेचकर, चेंज और पिकन फ्लाइट के साथ काम किया और दुनिया के कई हिस्सों में अपनी प्रस्तुति दी। उस्ताद देबू ने मणिरत्नम, विशाल भरद्वाज जैसे फिल्मकारों की फिल्मों और मशहूर चित्रकार MF हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सीरीज के लिए कोरियोग्राफी भी की थी और उन्हें बहुत ज़्यादा तवज्जो उसके लिए मिला था। हेलो जी नमस्कार।
2: हेलो जी नमस्कार बाबू जी, आज प्रकाश मेहरा का जन्मदिन है।
0: बिल्कुल, प्रकाश मेहरा जी को सलाम।
2: एक जो गाना है ना
0: जी,
2: आजा मेरे बंगले के नीचे, मेरी डोरी के नीचे, गाना भी सुन लो, सुना नहीं करेगा कभी चाहते तो मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार,
0: आजा भाई, आजा। चलिए, बहुत बढ़िया आपने याद किया। और उस्ताद देबू के बारे में बातें हो रही थी और मैं चाहूँगा कि उस्ताद देबू जिस तरह से काम किया है और उन्होंने जिस तरह से नाम कमाया है, तो अपने आप में एक व्यक्ति रहे जिसने बहुत सारे विधाओं

में नृत्य प्रस्तुति दी जिसकी वजह से उन्हें याद किया जाता है। और उषा देबु फाउंडेशन की स्थापना की उन्होंने, जिसमें दिव्यांग समेत कमजोर वर्गों को रचनात्मक ट्रेनिंग प्रदान करने का काम इन्होंने किया। और नृत्य के क्षेत्र में योगदान के उषा देबु को 1995 में संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था और 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किए गए। और आधुनिक नृत्य कला में योगदान के लिए मिले साहित्यिक नाटक अकेडमी पुरस्कार के उदाहरण में लिखा था, देबू के रंगमंच की शैली के नृत्य के लिए याद किया जाएगा और जिसमें भारतीय तथा पश्चिमी शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। मृत्यु, उस्ताद देबू का निधन 30 दिसंबर 2020 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ जब वो 73 वर्ष के थे। तो आइए अभी प्रकाश मेहरा के जन्मदिन पर हमारे विशेष गुड़ीलाल जी ने गीत याद किया है, मैं उस गीत को सुनाना चाहूँगा। और आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। आशा पारिख पर पिक्चराइज किया गया था ये, तो समय का सबसे सुपर डुपर हिट गाना था लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, और समाधि इस एल्बम का ये गीत आप सुन रहे थे। चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, और 1972 का ये खूबसूरत हिट गीत आपने सुना। 13 जुलाई को विशेष रूप से जिन लोगों का जन्मदिन है उनके बारे में बातें करते हैं। अभी 9:47 हो रहे हैं और आप हो मेरे साथ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप भी बताइए आपके आस पड़ोस में जिनका भी जन्मदिन है उनके लिए भी रेडियो मधुबन जो है शुभकामनाएं करती है। 1947 में आज ही के दिन उस्ताद देबू का जन्म हुआ, जो विश्व प्रसिद्ध भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे, जिनकी बातें हमने आपको शेयर किया। राजनीतिक दल के मिजो नेशनल फ्रंट के राजनीतिक जोरा मंथांग, 1944 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। 8वीं लोकसभा की सदस्यती कल्पना देवी, 1941 में इनका जन्म आज ही के दिन हुआ। हिंदी और अंग्रेजी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में याद किया जाता है सुनीता जैन, जिनका जन्मदिन आज है, 1941 में इनका जन्म हुआ। भारत के राजनीतिक और आसाम और मेघालय के राज्यपाल रहे भीष्म नारायण सिंह, 1933 में इनका जन्म हुआ। हिंदी फिल्मों की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री बीना रॉय का जन्मदिन भी आज है, 1932 में इनका जन्म हुआ। और पद्म भूषण से सम्मानित भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी केसरबाई केरकर, 1892 में इनका जन्म आज के दिन हुआ। तो चलिए, जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को रेडियो मधुबन करता है हैप्पी बर्थडे।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ। चलिए आगे बढ़ते हुए आज के दिन विशेष के बारे में अगर बात करें तो 13 जुलाई, जी हाँ 13 जुलाई अपने आप में एक खास दिन है। और 13 शब्द जो है अध्यात्म की जगत में शुभ माना गया है, यानी जो कुछ आपके पास है उसका दिया हुआ है सब कुछ 13 करते हुए अपने जीवन को मेरा मेरा से मुक्त करे और परमात्म प्यार में खो जाए। तो 13 जब सबसे अच्छा दिन है तो 13 नंबर आपके लिए भी शुभ हो और सबके लिए भी शुभ हो, ऐसी शुभ आशा के साथ। शुभ तब होगा जब 13 तेरे को अर्पण कर देंगे, है ना। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे शाम 4 बजे सफर कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए मुकेश और साधना सरगम के 2 गीत बैक टू बैक आपके लिए छोड़े जा रहा, सुनते रहो मस्कराते रहो।

गे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल। सहयोग की ईंटों से सफलता बन

आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। आशियाना में दिन की शुरुआत तो एक सुंदर विचार के साथ करेंगे, फिर घरेलू नुस्खे कैसे भूल सकते हैं, तैयार रहिएगा पेन और डायरी लेकर के, लिख लेना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे नुस्खे देने वाली हूँ। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे सविता जी के साथ, नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, उसके लिए भी पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, और सामान्य जानकारी भी देंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 90.4।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, शिक्षा के साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां। आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। देखिए, पढ़ाई की ऊंची डिग्री होते हुए भी हम जीवन की परीक्षाओं में धोखा खा जाते हैं। डिग्री रूपी कागज का टुकड़ा हमें नौकरी तो दिला सकता है, परंतु आकर्षणों को ना करनी है यह शक्ति नहीं दे पाता है। यही कारण है कि देश का पढ़ा लिखा वर्ग भी मनोबलहीनता का शिकार है, समस्याओं से ग्रसित है। शिक्षा के साथ साथ निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, आत्मनियंत्रण की शक्ति, सामना करने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, पारिवारिक शिष्ट आचरण की शक्ति वगैरह वगैरह, इन सभी का विकास अनिवार्य है। नहीं तो पल भर का मजा और जीवन भर की सजा, इस कहावत को चरितार्थ होते देर नहीं लगती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। तो यह हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा। और शिक्षा तो हम सभी को लेनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक शक्तियों का भी बढ़ाना है, और ये तभी बढ़ेगा जब हम थोड़ा अध्यात्म में ध्यान देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत, उसके बाद और भी आशियाना में आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे सफेद दाग पर। सफेद दाग की समस्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग फोन कॉल्स भी करते हैं कि बहन जी क्या करें, एक दाग से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बताऊंगी। देखिए, पहले तो जो सफ़ेद दाग शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले आप खाने पीने का परहेज रखिए। एक तो क्या आपको चने और चने की रोटी, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए इस स्थिति में, ठीक है ना। चने भी खा सकते हैं, कच्चे चने भी, और आप चने को पीस करके उसकी रोटी बना करके खाइए, लेकिन उसमें नमक न के बराबर लेवे, नमक नहीं लेना है। फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि भाई कब तक हम नमक ना खाएं, तो फिर आपसे नहीं रहा जाता है, तो सेंधा नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। और जैसे कि चने की रोटी खाते खाते बोर हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला सकते हैं। बाकी आप जितने चने की रोटी खाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और इसमें आपको थोड़ा परहेज रखना है, जैसे कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तेल, चावल, गुड़, मिर्च, मसालेदार चीज़ें, इन सभी को कम कर देना है। और चने की रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खानी है थोड़े लंबे समय तक, ताकि आपके सफ़ेद दाग जब शुरुआत में होते हैं तो ठीक हो जाए, और फिर भी फैलते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बता रही हूँ। दवा और दुआ दोनों ही करिएगा। बथुआ, देखिए बथुआ उबाल करके इसको निचोड़ दीजिए, ठीक है, इसके रस को फिर आप पीजिए, इससे भी सफ़ेद दाग में फायदा होता है। इसकी सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं, बथुआ की भाजी आप बना करके, बथुए की भाजी, चने की आटे की रोटी ये आप खाइए, इससे भी काफ़ी फायदा मिलेगा ये, क्योंकि ये चरम रोग के लिए अच्छा है।

धीरे धीरे सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। बथुए के कच्चे पत्ते पीस करके इसको निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके इसका रस निकालिए। फिर 2 कप रस में आप 1/2 कप तिल का तेल मिला दीजिए और मंद मंद आंच पर आप गर्म करिए। जब रस जल करके तेल खाली रह जाए तो छान करके आप कांच की बोतल में भर लीजिए और सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले सफेद दागों पर लगाइए। लंबे समय तक लगाते रहेंगे तो काफी लाभ मिलेगा। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम रिज का और 100 ग्राम ही ककड़ी का रस मिलाकर पीजिए, इससे सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। रिज का जानते हैं आप क्या होता है? रिज का होता है जो हम गायों को खाने के लिए देते हैं, जिसको हम चारा भी कहते हैं, ठीक है ना। रिज का थोड़ा सा मोटा मोटा होता है और चारा जिसको हम घास भी कहते हैं वो थोड़ा पतला होता है। तो रिज का इसी को मैं बता रही हूँ। रिज का 100 ग्राम और ककड़ी का रस 100 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को मिला करके फिर आप सफेद दाग पर लगाइए, इससे दाग ठीक हो जाएंगे। और पीजिए भी, पीना भी है लगाना भी है, ठीक है। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खाने पीने से ही बीमारियों पर असर करती है और बीमारियां ठीक हो जाती है, और कभी कभी उन्हीं चीज़ों को खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है और लगाना भी पड़ता है। तो लगाइए भी और पीजिए भी थोड़े लंबे समय तक, तो सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। जो शुरू शुरू में प्रारंभ होते हैं दाग होना, तो आप इस तरह के नुस्खों को आजमा करके बीमारियों को बीच में ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बहुत बढ़ जाता है उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको सालों साल इलाज करना पड़ता है, लंबे समय तक नुस्खों को भी आजमाना पड़ता है और डॉक्टर को भी बताना पड़ता है। तो बस आप ध्यान रखिए, शुरुआत में जो भी बीमारियां होती है तो थोड़ा सा आप उस बीमारी पर ध्यान दीजिए और उसी समय से आप ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दीजिए। तो ये हुए घरेलू नुस्खे। फिर से समय हो रहा है किस सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 90.4।

0: जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। हमारी सखी सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी, क्या कहना है आप, जिसके कहते हैं ना कि सच्चाई जिसके जीवन में है उसके पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है।
1: जी उषा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और देखिए, सच्चाई की बात आपने की, इतनी बढ़िया जो चंद पंक्तियाँ आपने सुनाई, सच्चाई महकता गुलाब है। गुलाब कहाँ होता है उषा जी? कांटों के बीच में। तो सच बोलना इतना सरल नहीं है दुनिया में, सच रहना भी सरल नहीं है। सत्य बोलने वालों को सदा कांटों की सेज ही मिलती है, लेकिन उसमें भी हमें एक खिलता हुआ और महकता हुआ गुलाब बन के ही रहना चाहिए,
0: क्योंकि परिस्थितियाँ तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन कहते हैं परिस्थितियों को पार करते हुए अपने मन की स्थिति को नहीं हिलाते, अपनी मन की स्थिति को बनाए रखते हैं मजबूत के
1: जी,
0: एकदम कहते हैं फौलाद की तरह, और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वही इंसान है। बाकी परिस्थितियां तो इंसान के अंदर ही आती है
1: जी, लेकिन आज का जो माहौल देख रहे हैं उसमें सत्य परेशान हो रहा है। हालांकि सत्य की कभी हार नहीं होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी हारता नहीं है।
0: तभी तो कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं,
1: और सत्य का सूरज कभी छिपता भी नहीं है। झूठ के काले बादल थोड़े ही दिनों से ढक सकते हैं, फिर वो अपनी रोशनी लेकर के सूरज फिर भी आसमान में जगमगाता है और दुनिया उसको फिर से सलाम करती है। तो कहीं ना कहीं सत्य में जयते कहा गया है, तो सत्य की विजय निश्चित ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
0: बिल्कुल सविता जी, तो चलिए हम सत्यता पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य बोलने में एक तो एक सत्य बोलेंगे तो 100 झूठ से बच जाएंगे, और एक अगर झूठ बोला तो फिर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ, तो कितना हमारा विकर्म बढ़ेगा, कितना पाप के खाते में हमारा पाप बढ़ता जाएगा
1: जी, क्योंकि झूठ को छिपाने के लिए हम दूसरा बोलते हैं, दूसरे से तीसरा बोलते हैं, फिर ये जो
0: बहाने पे बहाने
1: और झूठ पर झूठ, ये संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। तो जो गलत चीजों की जो संख्या होती है, जो आपने पाप का खाता कहा है, तो ईश्वर के हम सब की जो एक फाइल है उसमें हम सब की काउंटिंग होती रहती, कितना हम अच्छा करते हैं कितना खराब करते हैं, तो वो जो संख्या होती गलत चीजों की वो निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो उससे हमारे पाप का खाता या विकर्म का खाता जो कहा गया अकाउंट बढ़ता ही जाता है, फिर समस्याएं हमारे सामने आती चली जाती हैं।
0: बिल्कुल सविता जी, फिर भी आपको पता होगा कि मतलब लोग फिर भी चापलूसी भी करते हैं, और जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपकी और मेरी ज्यादा बनती, ठीक है, फिर आपके किसी के साथ झगड़ा हो गया
1: जी, बिल्कुल,
0: अब आपने मुझे बीच में बुलाया कि देखिए ना उषा जी मेरे साथ ये कर रही है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ कि आपके और उसके बीच क्या हुआ
1: जी,
0: फिर भी मैं आपका ही पक्ष लूंगी, नहीं नहीं सविता जी आप सही हो, और सामने वाले को मैं डांटूंगी, नहीं आप गलत हो
1: जी जी,
0: तो वो भी कहते हैं कि
1: पक्षपात हो गया,
0: वो भी सत्यता नहीं रही।
1: हाँ, क्योंकि हमने सिक्के के दोनों पहलू को नहीं देखा, ना आपने मुझे जाना ना उन्हें जाना
0: जी,
1: क्योंकि आप मेरे मित्र हैं
0: जी,
1: तो इसलिए आप मेरा ही पक्ष लेंगे, और ये भी एक गलत निर्णय होता है, और गलत कहते हैं कि गलत दिशा में हम जा रहे हैं, और इस जगह पे हमें ऐसे करना चाहिए। अगर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी ऐसी बात आए आपस में झगड़े की, तो बेहतर हो कि हम उस पर ध्यान न दे दूसरों के झगड़े पे, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि हमारे सामने कोई बात आती, होता है कई बार व्यक्ति भाई सोचता है कि कोई हमारा सहयोग करे, सच भी सोचता है झूठ भी सोचता है, तो व्यक्ति उसी से सहयोग मांगेगा जो उसके करीब भी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हमें अगर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कहीं भी, कि हमें कोई पूछे कि आप बताइए क्या मैं गलत हूँ सही हूँ, तो उस जगह हमें सहेली नाता या जान पहचान ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक हंस की भांति, जो हंस होता है ना, कंकड़ और मोती को देखे क्या कर देता, अलग कर देता है, और पानी और दूध को भी अलग कर देता है ना, क्षीर और नीर को। कहा गया कि ये शक्ति जो होती, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति एक हंस में होती, इसीलिए देखिए देवी देवताओं को कहा गया हंसानन, हंस का आसन पर विराजमान रहते माता सरस्वती, जो
0: हंसासन गरुड़ासन,
1: हाँ जी, जो दिव्य बुद्धि की दात्री हैं, बुद्धि में दिव्यता भरती है, ज्ञान भरती है, ज्ञान का प्रकाश भरती है, उनका आसन भी हंस होता है। इसीलिए हम मनुष्यों को भी जब भी कोई हमारे जीवन में परिस्थिति आए, चाहे किसी और के लिए या हमारे लिए, हमेशा हमारी बुद्धि में दिव्यता होनी चाहिए और हंस आसन पर विराजमान होकर अगर आप कोई भी निर्णय करेंगे उषा जी, तो मुझे लगता है वो सत्य ही होगा, गलत नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है सविता जी। फिर भी हम दुनिया में देखते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में जो भीड़ लगती जा रही है, तो हम देखते हैं कि बस वो झूठ और सत्य के आधारित पर ही होता है ना ये सारा खेल। तभी जाकर के कहते देखते हैं कि वकीलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, सत्य का साथ लोग बहुत कम देते हैं, झूठ का, जिसने पैसे खिला दिए, अच्छे से पोस्ट पोजीशन पर है और वो पैसे खिला दिया, तो फिर उसके लिए 100 झूठ भी लोग बोल जाएंगे। जैसा भी देखा है सविता जी आंखों से कि
1: हो ही रहा है,
0: हो रहा है, तभी तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इतना।
1: और देखिए कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं, हम भी जीत नहीं पाते हैं कई बार सत्य, हालांकि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, थोड़ा परेशान होता है, थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, लेकिन कई बार हम सबके भी जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि किसी ने हमें मतलब दबा दिया है पैसे देकर, या किसी ने अपना कहीं सोर्स लगाकर, होता है। और इसीलिए आज आप देखेंगे अदालत में इतने मुकदमे हो रहे हैं और कितने पेंडिंग पड़े हैं, आज तक सुलझाए नहीं जा सके। मुझे लगता बरसों बरस बीत जाते हैं, कई बार तो पैरवी करने वाले वकील भी शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं,
0: भी खत्म हो जाते हैं, तो जिन्होंने केस किया वो भी इस दुनिया से चले जाते
1: हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो कई बार रहता है। तो ये सबसे क्या होता है कि खुद के अंदर जब क्षमता नहीं है सत्य को जानने की, परखने की, निर्णय करने की, तब हम अदालत के दरवाजे जाते हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर कई केसेस तो इतने होते हैं कि बड़ी हंसी भी आती है, ऐसा लगता है इसके लिए हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी, पास पड़ोसियों की होती है या परिवार की होती है, हम अदालत का भी समय नष्ट करते हैं, अपना भी नष्ट करते हैं। और इसीलिए पुराने जमाने में उषा जी मुझे लगता है वो एक विधि थी पंचायत वाली, अदालत तक ना जाके घर की बात है या अपना गांव की बात है या मोहल्ले कबीले जो भी बात होती है उसमें वहीं सॉल्व कर दिया जाता, क्योंकि उस समय लोग जो निर्णय करते थे उनको बहुत अच्छा माना जाता, पंच परमेश्वर, तो कई बार बहुत अच्छा फैसला आता था कि दोनों तरफ के लोग संतुष्ट हो जाते थे और बहुत सही निर्णय होता था। लेकिन कई बार उसमें भी फिर धीरे धीरे बाद में जा करके समस्या उत्पन्न होने लगी, उसमें भी वही बात आ गई, पक्षपात हो गया या फिर किसी के साथ लेन देन हो गई, तो सत्य को छिपा दिया जाता, तब अदालतें बनाई गई, तब ये होने लगा भाई जज बैरिस्टर और वकील सब शुरुआत हो गई। लेकिन आज देखेंगे फिर भी हम जहाँ के तहाँ रह गए, बल्कि और आगे ही बढ़ गए, आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब के पीछे हमारी जो सोच है ना वो काम करती है, अगर हमारी सोच सही होगी तो ना हमें किसी अदालत की आवश्यकता है ना किसी पंच की आवश्यकता पड़ती है।
0: इसलिए सबसे पहले तो जरूरत है अपने सोच को बदलने की और सत्य को बोलने की। जब हम सत्य बोल सकेंगे तो अदालत तक नहीं, घर में ही मामला सुलझ जाएगा। और थोड़ी देर के लिए सत्य बोलने पर थोड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन बाद में खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए सविता जी, आपके साथ और भी बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत, सुनते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन 90.4।

0: पांच यूट्यूब वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मीन्स ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: सारा जहां उसी का है जो सत्य बोलना जानता है। सारा जहां उसी का है जो सत्य बोलना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। सविता जी, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। तो कहते हैं कि सत्य बोलने में तकलीफ बहुत पड़ती है, तकलीफ को सहना भी पड़ता है, कष्टों को भी सहना पड़ता है, क्योंकि एक सत्य पर कितने ही प्रहार होते हैं, लोग विरुद्ध भी हो जाते हैं, और उसके साथ क्या होता है वो तो आप जानते ही है।
4: कई बार सत्य को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है। उषा जी, आपने देखा भी होगा, और कई बार हम कई घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं, बड़ा दुख भी होता है कि मतलब किसी को न्याय नहीं मिल पाता है, या किसी को आप देखिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। वो होता नहीं है वैसा, लेकिन कई बार लगता है, तो सुन के बड़ी तकलीफ होती है। फिर हम सोचते हैं अरे दुनिया में तो न्याय है ही नहीं,
3: नहीं। जैसे खत्म हो चुका, जैसे हम देख रहे हैं ना दुनिया में किस तरह के जो रेप कांड हो रहे हैं, उसमें जो बच्ची होती है उनके दबा दिया जाता है, उनको झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है, क्योंकि माता पिता ही वो नहीं चाहते कि उनकी बदनामी हो। इसलिए कह रही हूँ कि सत्य बोलने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ईश्वर उसी के साथ होता है जो सत्य बोलता है।
4: और कई लोग ऐसे भी होते हैं उषा जी, कि जो दुनिया से डरते नहीं, दुनिया की परवाह करे बिगर सच का सामना करते हैं और सत्य बोलते हैं, भले उनकी बदनामी हो या कुछ भी हो, तो वो संसार में एक मिसाल कायम कर जाते हैं। महात्मा गांधी जी को ही देखिए, उन्होंने सदा सत्य बोला, सत्य और अहिंसा का पालन किया। और जितने भी महापुरुष हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है उनके जीवन में सत्य था उषा जी, तभी उनका प्रभाव दुनिया पर या दुनिया के लोगों पर पड़ता है,
3: तभी उनको महापुरुष के नाम से जाना गया, पदवी भी दी गई।
4: महानता का पहला लक्षण ही सत्य बोलना है
3: जी।
4: और आप देखिए, अभी जो आपने जो कविता पढ़ी अभी जो हमारे सेकंड राउंड में, बहुत सुंदर कविता थी, उसमें एक लाइन थी कि क्षमा बनना है, रोशनी करना है, जैसे एक बात है सत्य जो एक रोशनी की भांति है, इसीलिए कहा गया है ईश्वर सत्य है और ईश्वर रोशनी है। गॉड इज लाइट एंड गॉड इज ट्रुथ, दोनों का समन्वय है आपस में। तो सत्य और रोशनी, जो सत्य की जो रोशनी है वो ईश्वर है, और ईश्वर से जब हमारी आत्मा भी कनेक्ट होती है, तो आप देखिए हमारे अंदर भी वही सत्य का प्रकाश आता है और हमारी आत्मा भी एक रोशन होती है।
3: और सविता जी, हम देखते हैं कि जैसे कि घर परिवार में कोई बातें करते हैं तो भी क्या कहते हैं, देखो वो एकदम सही बोलती है, सत्य बोलती है, इसलिए अपने सुख दुख की बातें उनके सामने जाकर शेयर करते हैं, है ना। और जिनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं, इधर की उधर करते हैं, तो उनके पास जाकर के कोई अपने दिल की बात नहीं
4: कभी नहीं कहता। सत्य में शक्ति होती है कि हर एक व्यक्ति को आपके सामने वो सरेंडर करवा देता है। भले शुरू में ऐसा लगता है कि लोग हमारा विरोध करें, लेकिन आप देखिए जो विरोधी भी होते हैं वो भी, उनको भी मालूम है कि सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे,
3: और बाद में वो ही सहयोगी बनते हैं।
4: हाँ, सहयोगी बन जाते हैं कई बार, नहीं तो डरते हैं। और अदालत में भी आप देखिए, अगर वकील समझदार है तो मेरा ये मानना है और विश्वास है 100% संसार की कोई भी समस्या हो, कोई भी केस हो, वकील चाहे तो कितना भी बड़ा मुलजिम हो उससे सत्य निकलवा लेगा, वो कितना भी झूठ क्यों ना बोले सामने वाला, लेकिन अगर वकील समझदार है और सत्य है वकील, तो वो कोई भी केस हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा 100% विश्वास है कि आप सत्य को निकाल लेंगे। क्योंकि बातों की अगर कला है हमारे अंदर
3: बिल्कुल,
4: और सत्य को खंगालने की समझ है और परखने की शक्ति है, तो आप एक हंस की भांति छीर और नीर को अलग कर लेंगे और झूठ भी पता चल जाएगा और सत्य भी पता चल जाएगा। और मुझे लगता है तब शायद जो लोगों का कहना है कि अदालत में न्याय नहीं होता वो होने लगेगा।
3: जी,
4: कई लोगों को मैंने यहाँ तक कहते सुना उषा जी, जो हमारे वकील वगैरह होते हैं या तो उनके कपड़े होते हैं काले रंग के, तो उनको लोग बोलते हैं कि अदालत में सब कुछ काला ही काला,
3: काला ही काला है।
4: और कानून की आंख पे पट्टी बंधी उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बनाया गया है काला ड्रेस बनाया गया है या कानून की आंखों पे, कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधी गई, उसका रहस्य उषा जी है। वास्तव में पट्टी इसलिए बांधी गई है, और एक चीज तो लोग देखते ही नहीं, काली पट्टी तो देख लेते हैं कि कानून की आंख में पट्टी बांधी गई, काला ड्रेस है, लेकिन आपने उसके हाथ में पकड़ा हुआ तराजू नहीं देखा। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होते हैं, और पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े पद वाला हो, मान शान वाला हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म या हमारा पारिवारिक व्यक्ति ही क्यों ना, संबंधी क्यों ना, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। उन चीजों को ना देख के नजरअंदाज करके हमारे लिए दोनों पलड़े समान हैं। और काला ड्रेस इसलिए दिखाया गया, देखिए जो जजेस बैठते हैं उनके भी जो गाउन होते हैं वो भी काले कलर की होती है, और आप देखिए वकीलों के भी कपड़े काले दिखाए गए, कोट पहनते हैं, कि काले कलर में यदि आप कोई भी रंग डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा, होगा क्या?
3: नहीं होगा,
4: नहीं होगा। इसीलिए उसमें बताया गया कि अगर हम अदालत की कुर्सी पर बैठे हैं, जज बनकर बैठे हैं या कोई भी मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हमें कोई भी रंग नहीं लगेगा, ना हमारे संबंधों का रंग लगेगा, ना पैसे का रंग लगेगा, ना बुराई का रंग लगेगा,
3: ना स्वार्थ का,
4: ना स्वार्थ का लगेगा, ना चापलूसी और ना जान पहचान का रंग लगेगा, और ना कपट करने, क्योंकि वहां पे कपट भी होता है। कहा गया है कि कपट करके केस जीत रहे लोग आजकल, तो शकुनी ने भी कपट करके मतलब पांडवों से उनका राज्य हरण कर लिया था। तो जो कपट की जगह बताई गई वो अदालत कहा जाता है कि हो रहा है। हालांकि मैं इस चीज पर इतना विश्वास नहीं करती हूँ कि सत्य वहां भी है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें सत्य की विजय नहीं हो पाती, तो लोगों की जो धारणाएं हैं वो गलत हो जाती हैं। अगर हमारे अंदर सत्यता की शक्ति है और सत्यता का पावर है, तो जो हमारा केस लड़ने वाले वकील है उनको हम, मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हंस की भांति छीर और नीर जैसे अलग हो जाता है, अलग कर देते हैं वो कंकड़ और पत्थर को, उस बुद्धि को आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अदालत की जो गरिमा है वो और अच्छी
3: बनी
4: उसमें बनी रहेगी, और चार चांद लग जाएंगे, और जो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो भी फटाफट निपटेंगे। और मैं तो कहती हूँ घर ही एक अदालत है, अगर हम घर की बात घर में ही, या जो हमारे आस पड़ोस की भी समस्याएं हैं या हमारे समाज की, उनको वहीं समाप्त कर लें, तो
3: आपस में मिल बैठ करके उन समस्याओं का समाधान वहीं कर लिया जाए, आगे न बढ़ाया जाए तो अच्छा है, बाकी तो जिंदगी
4: असत्य की विजय हो जाएगी 100% हो जाएगी,
3: बाकी कोर्ट कचहरी में जिंदगी बीत जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी
4: समय नष्ट होता है, पैसा भी जाता है,
3: समय स्वास्थ्य संकल्प पैसा सब व्यर्थ होता है, और फिर भी कहते हैं कि परिणाम घास का तीन पान की तरह ही होता है।
4: जी, तो हमारे जो दिमाग है उसको ही एक अदालत समझ के हम सदा सत्य की कुर्सी पर जज बन के विराजमान रहे और निर्णय करते रहे, तो बहुत सरल है हर काम करना।
3: बिल्कुल सविता जी, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें की है आपने कि सत्यता पर अड़िग रहना ही मानवता का धर्म है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, लेकिन सत्य हमेशा बोलना चाहिए। सत्य से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा रहता है और सदैव हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो रहा है फिर से एक गीत सुनाने का, तो सविता जी सुना देते हैं गीत।
4: बिल्कुल,
3: सुनते रहिए,
4: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

जी, तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और ये गीत जो मैंने अभी दो पंक्तियां सुनाई है, तो आप समझ रहे होंगे कि उषा दीदी को क्या हो जाता है, बीच बीच में गीत सुनाती रहती है। इसलिए मैंने आप सभी को याद दिलाया जो हमारी माताएं बहनें व्रत उपवास रखती है उनके लिए। इसलिए गीत की लाइन बोली थे, तो क्यों ना आपको फराली सिखाया जाए। तो चलिए, कितनी बहने हमारी असमंजस में होगी कि क्या फराल बनाए क्या नहीं बनाए। तो प्यारी बहनों, बिल्कुल आप टेंशन मत रखिए, मैं बहुत ही सरल सिंपल फराल सिखा रही हूँ, तो आप चाहे फटाफट बना करके खा सकते हैं, परिवार वालों को खिला सकते हैं। तो आज बनाएंगे आशियाना के किचन में सिंगाड़े के आटे के पकौड़े। ठीक है, पकौड़े तो वैसे ही फटाफट बन जाते हैं, 5-10 मिनट में पकौड़े बना करके आराम से आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो पेन और डायरी आप ले लीजिए, और सामग्री मैं आपको लिखवा रही हूँ। सामग्री इस प्रकार है, सिंगाड़े का आटा लीजिएगा 1 कटोरी। ठीक है, अगर सिंगाड़े का आटा मौजूद नहीं है घर में तो फिर आप राजग्रह का भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लीजिए सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी। फिर आप लीजिए मीडियम साइज के आलू 2 ले लीजिए, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। फिर हरी मिर्च लीजिए बारीक कटी हुई 1। बस सामग्री इतनी सी ही है जो आसानी से हमारे घर में मिल जाती है। तो पुनः दोहरा रही हूँ, एक नज़र डाल दीजिएगा, सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी, आलू लीजिए मध्यम आकार के 2, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी स्वाद के अनुसार। फिर आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च लीजिएगा 1। तो ये सिंगाड़े के आटे के पकौड़े की सामग्री हो गई है। अब पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ विधि सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, सिंगाड़े के आटे में पानी मिला करके पकौड़ा बनाने का घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़े से आप अधकटा इसको कूटी है। ठीक है, बिल्कुल बारीक भी नहीं काली मिर्च को, और मोटी पूरी साबुत भी नहीं रखनी है, अध कचरी कूट करके डालिए। सेंधा नमक, हरी मिर्च ये सब डाल दीजिए। आलू को छील करके काट लीजिए और इसके गोल गोल स्लाइस कर लीजिए। और जो हमने खीरा तैयार किया है ना पकोड़े का, उसमें आप आलू के गोल स्लाइस को डुबाइए और उसके सब तरफ उस आटे के घोल को लगा दीजिए और तेल में छोड़ दीजिए। तेल गर्म हो जाए फिर आप आँच मध्यम पर कर दीजिए, और मध्यम गैस पर आप इस तरह पकोड़े सारे तल लीजिए। मध्यम आँच पर जो हम चीज़ों को सेकते हैं वो अंदर से कच्ची नहीं रहती है, अंदर से भी पक जाती है और बाहर से भी पक जाती है। तो भाई कच्ची खाएंगे तो पेट दर्द करेगा ना, इसलिए मध्यम आँच पर ही आप चीज़ बनाइए। पहले आप फास्ट रखिए गैस को ताकि तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद आप मध्यम कर दीजिए ताकि इस तरह चीजें अंदर से भी पक जाए। तो ये सिंगोड़े के आटे के पकोड़े तैयार हो चुके हैं। पुनः दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। सिंगोड़े के आटे में पानी मिला करके पकोड़े का घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें अधकचरी कूटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल दीजिए, और आलू की धुलाई करके इसके छिलके उतार करके गोल गोल इसकी स्लाइस कर लीजिए, अलग रखिए इसको। फिर पकोड़े के घोल में स्लाइस को जब आप पकोड़े तलने जा रहे हैं उस समय स्लाइस को आप घोल में डुबाइए। जब घोल चारों तरफ लग जाए बस आप तेल में छोड़ते जाइए, हल्के ब्राउन कलर के चारों तरफ से हो जाए पकोड़े, उसके बाद आप पकोड़ों को निकालते जाइए। तो इस तरह सिंगोड़े के आटे के पकोड़े तैयार किए जाते हैं। भाई तैयार हो गए हैं, अब इसके साथ आप चाहे तो टमाटर सॉस भी आप ले सकते हैं, या फिर हरी मिर्च की चटनी, या दही ले लीजिए। दही में हल्का सा शक्कर डाल दीजिए और दही के साथ इन पकोड़ों को आप खा सकते हैं। ठीक है, तो लीजिए एक स्वच्छ प्लेट, प्लेट में आप पकोड़े रखिए, दही ताजा हो तो रख दीजिए एक कटोरी में, और कटोरी रखिए प्लेट में, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए, और ऊपर से ढकिए स्वच्छ कपड़ा को, और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा सिंगोड़े के आटे के पकोड़े का, और साथ ही साथ एक गीत तो बनता ही है। तो सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: कोख को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ आती है, थोड़ी सी शारीरिक व्याधि बढ़ती है और गए मेडिकल स्टोर पर दवा लेकर के आए और खा ली, बस एंटीबायोटिक लेकर के आते हैं और खा लेते हैं डॉक्टर के बिना परामर्श के। तो ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर के बिना परामर्श के अगर हम गोलियां लाते हैं तो ये नुकसानदेह होती है। कैसे होती है वो भी आपको बता रही हूँ कि कितने ही शोधों में साबित हो चुका है ये बातें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नुकसान देता है कितनी ही बीमारियों में। ठीक है जैसे कि सर्दी हो रही है, सर्दी में हम दवा लेकर के आए, ठीक है सर्दी जुकाम है जबकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती गोली की, फिर भी हम सर्दी जुकाम की बीमारी में गोलियां लेकर के आए, खा ली, खत्म। लेकिन दूसरे जो आवश्यक तत्व होते हैं ना, सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया लेकिन जो आवश्यक तत्व हमारे अंदर होते हैं वो भी कितनी बार साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी आवे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेवे। कितनी बार देखिए एंटीबायोटिक से संक्रमण भी फैलते हैं, जैसे कि संक्रमण फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होता है ना उनको मारने की संख्या को कम करना या फिर उनसे बढ़ने को, जैसे संक्रमण फैलते उनको बढ़ाने से रोकना। लेकिन जब बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेने लगते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो कोई भी बीमारी आएगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही एंटीबायोटिक का असर भी फिर धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि हमारी आदत पड़ गई ना, गए मेडिकल पर लेकर के आए, खा ली और बात खत्म, तो फिर एंटीबायोटिक गोलियों का असर भी कम हो जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से ये ऐसे अच्छे बैक्टीरियों को भी मारने लगता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं ऐसी गलती मत करिएगा। भले हमें सर्दी जुकाम या सिर दर्द ये सब नॉर्मल दिखते हैं कि इसके लिए क्यों डॉक्टर के पास जावे, क्यों खर्चा करे, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कितना होता है वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप जाइए डॉक्टर से परामर्श करिए। कितनी बार लोगों को लगता है कि क्या करें, डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक तो समय हमारा जाएगा, दूसरा फिर मोटी फीस भरनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हाँ सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा समय लगता है अगर भीड़ है तो प्राइवेट में भी कितनी बार भीड़ रहती है है ना, फिर भी हम प्राइवेट में इंतजार करते हैं, 200 रुपये 300 रुपये की फीस भी भरते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के लिए बिल्कुल नहीं जाते। भाई 200 300 तो वेस्ट खोना है, चलो मेडिकल से डायरेक्ट गोली ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए, परामर्श लीजिए, उसके अनुसार फिर आप दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत सोच समझ कर दवाइयाँ देते हैं, वो फिर आपके दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने से रोकेंगे, नहीं तो जो काम के आवश्यक तत्व है वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि देखो उस दवा ने असर किया और हमारा सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि दूसरी कौन सी बीमारी या दूसरा कौन सा तत्व हमारे अंदर ख़त्म हो गया और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया या फिर दूसरी बीमारी हो गई, वो पता नहीं चलता है। क्योंकि एकदम तो ऐसा होता नहीं है, वो दवा जब असर करती है तो उसका साइड इफेक्ट भी धीरे धीरे असर करता है, और धीरे धीरे असर करता है तो फिर बाद में कुछ समय के बाद पता चलता है कि फिर से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हम समझ ही नहीं पाते कि फिर से ये प्रॉब्लम कैसे हुई, हम तो यही समझते हैं कि चलो पहले सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, चलिए फिर से चलते हैं मेडिकल पर और दूसरी गोली इसकी भी ले आते हैं और फिर जा कर के ले आते हैं। तो इस तरह बड़ा रोग, कितनी बार बड़े बड़े रोग भी हमारे को हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। पुनः आप सभी को कह रही हूँ कि कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी जो बिल्कुल सामान्य दिखती हो, फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से काम करिए, बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट और फिर हम देखते हैं कि इन्फेक्शन की समस्याएँ बढ़ती जा रही है तो ध्यान देंगे, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए फिर से समय हो रहा है किस सुनाने का, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छे आपको घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की सविता जी के साथ अच्छी अच्छी बातें भी हुई है, तो सत्यता पर हमेशा अड़िग रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आवे। और नए नए व्यंजन में जो आपको अभी पकोड़े सिखाए हैं, आप जरूर बना करके खाइएगा, सिंगोड़े के आटे का पकोड़ा। हमारी माताएं बहनें तो व्रत उपवास रखती ही है, तो इस तरह के फराल भी आप बना सकते हैं। और सामान्य जानकारी भी आपको बहुत ही अच्छी दी है कि एंटीबायोटिक से बच के रहना है, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी है, ठीक है। आज के अनमोल वचन भी इस प्रकार है, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाशी पूरी हो जाए। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है सोने का देश बना दे। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे, अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो, अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो, विरह गीत गाने वालों को मिलन गीत गा लेने दो, आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है, आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है, जगा देर से माजी भी अपनी गागर लाया है, ऐसे प्यासे माजी को ज्ञानामृत का पान करा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। तूफा में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं, तूफा में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं, अडिग रहे तरु टूट मध्य से गिर जाया करते हैं, संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे, संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे, सच मानो तो अंधकार के सब बादल फट जाएंगे, जन जन को आओ फिर से पावनता का पाठ पढ़ा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं, बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं, जो आगे बढ़ मुड़कर देखे वो क्या कर सकते हैं, जिसका चलना काम रहा हो, जिसका चलना काम रहा हो वो क्या कभी थका है, जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है, जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है, ऐसे उन्मादी में फिर से सोया पुरुषार्थ जगा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे, आओ हम समझा दे।

0: जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: एक समाचार पत्र ने वृद्ध दिवस पर एक संदेश प्रतियोगिता रखी। हजारों संदेश समाचार पत्र कार्यालय पहुंचे। प्राप्त संदेशों को 3 सदस्यीय एक निर्णायक समिति को सौंप दिया गया। तीनों सदस्य एक कक्ष में बैठकर वाचन करने लगे। संदेश को पढ़ते पढ़ते शर्मा दंपत्ति की आंखों से आंसू छलक उठे। अतीत में खोकर वे भाव विह्वल हो उठे। याद आने लगे वे ढेर सारे संदेश जिन पर आंख बंद करके उनका बेटा स्वीकार कर लेता था। अविश्वास या तर्क कुतर्क की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और कभी कभी तो हमारी साधारण बातचीत में भी संदेश ढूंढ लेता था और स्वेच्छा से अमल भी करता था। उसका मन इतना कोमल था कि दूसरों को अपने माता पिता के प्रति बुरा व्यवहार करते सहन नहीं कर पाता था। गुस्से से भर कर कहता था कि मैं बड़ा होकर इन मतलबी लापरवाह बेटों को समझाऊंगा, इनके लिए एक मिसाल बनूंगा, अपना कर्तव्य निर्वहन करके एक संदेश दूंगा कि संसार में यदि कोई सच्चा शुभचिंतक है तो वो माता पिता ही हैं। इनकी अवहेलना, इनका अपमान अक्षम्य है। तीसरे निर्णायक भल्ला जी, जो कि उन्हीं के साथ वृद्धाश्रम में रहते हैं, उन्होंने पूछा, क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू? शर्मा जी बोले, देखिए भल्ला जी, आज फिर मेरे बेटे ने वही सुंदर और सबसे अच्छा संदेश भेजा है।

पहली बार में जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो एक बार फिर से एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी जब भी अपनी कलम चलाते हैं, कमाल की बात यह है कि रिश्तों में भरी संवेदनाएं इतनी बारीकी से समाज की दोहरी मानसिकताओं को बड़ी होशियारी से वो अपनी कथाओं के माध्यम से उजागर कर देते हैं। ये सच है इस समाज का। कथनी और करनी अलग अलग हो गई है, और कथनी करनी रहनी जिसकी एक समान है ना, उसे जीवन में कोई तनाव नहीं होता। लेकिन अगर अवसाद है, निराशा है, तनाव है, भय है, तो कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र के साथ जीवन जी रहे हैं हम। शर्म भी शायद तभी आती है। दोहरा चरित्र करके एक बड़ी सुंदर कथा देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, ढूंढिएगा। फिलहाल माता पिता और उनसे जुड़ी संवेदनाओं पर क्या ही कहें, जितना बोलूंगा उतना कम होगा। आप भी जितना कहेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे उतना कम होगा। ये लघु कथा पर्याप्त है, मुझे ऐसा लगता है। कैसी लगी आपको लघु कथा कमेंट के जरिए बताइए, और हाँ औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि संवेदनाएं जीवित रहनी चाहिए और कलम की ताकत भी सब तक पहुंचनी चाहिए। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
2: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती है और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहाँ क्या चल रहा है।
3: बीनणी, ए बीनणी, कटे परीगी, मारा पगणा दुख है, थोड़ा दबा तो।
4: माँ जी, मने घना चक्कर आ रहा है माँ जी, मारी तबियत ठीक कोनी, सुबह 4 बजा की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजा तक काम कर रही हूँ, अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
3: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अनी दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 60 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी?
4: माँ जी आपको समय अलग हो।
3: सामने बोल रही तू, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
5: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
4: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रो, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठाई रहा हूँ।
5: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
4: थाने खबर है कि मारो पूरा टाइम चल रो, मारो सु काम कोनी हो रहो, क्या समझाऊं थाने, आ आ मारो पेट दुख रहो। आ
5: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे? माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो?
3: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवाली पीड़ा है। बिंदड़ी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
6: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
3: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
6: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दोई घना कमजोर है, या को ध्यान राख जो, मैं जाऊं। राम राम।
3: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान राखो।
4: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
3: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता दरता मूर्ति, छोरिया ने गणा माथा पर नहीं बिठानी।
4: सो जा।

0: अपनी। संगीत के बारे में क्या कहें, जैसे सब कुछ संगीत में समा जाता है। स से जैसे पूरी सृष्टि ही संगीत है, ग से जैसे हर ग्रह नक्षत्र तक वो म्यूजिक, वो संगीत, वो सुर पहुंच जाते हैं। त की बात करें तो शायद तीनों लोग ही एक साथ झूम उठते हैं जब ऐसा संगीत उत्पन्न होता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गोपियां दौड़ी चली आती थी। क्या जादू है इस संगीत में। कहते हैं तानसेन जब गाते थे तब बादल भी गरज उठते थे, तब दिए भी जगमगा जाते थे। इस संगीत के जादू को जीवित रखते हैं कई ऐसी हस्तियां हैं भारत में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपको मिलाएं उन सितारों से जो कुछ चमक रहे हैं और कुछ जल्द ही संगीत के आसमान में बहुत ऊंचा स्थान पाने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक और गेस्ट, एक और मेहमान को लेकर आए हैं जो कि संगीत के ऐसे ही जगमगाते सितारे हैं, जिनका नाम है सोम जी, जो कि आए हैं नेपाल से। उनसे बातें भी करेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज है, बहुत कमाल का गिटार बजाते हैं। सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आरसी, थैंक यू सो मच।
0: सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने आपका पूरा नाम, आपके घर में कौन कौन है एंड आप क्या करते हैं।
1: अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम सोम गुरुंग है, मैं नेपाल से हूँ। नेपाल की बहुत सुंदर नगरी जिसे पोखरा बोलते हैं, जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उसी जगह से मैं हूँ। और मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन में कुछ नई जिंदगी, नए नए अनुभव करते हैं, तो पहले से ज़्यादा मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा अनुभव करते हैं।
0: ओके, ठीक है। और जैसा आपने बताया समझिए, मेडिटेशन के आप एक्सपीरियंसेस के बारे में तो आपसे बात करेंगे ही, म्यूजिक के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि म्यूजिक का कार्यक्रम है तो चलिए पहले आपका एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे करेंगे संगीत के बारे में खूब सारी बातें। रेडियो मधुबन 90.4 FM पे दोस्तों, आइए अगला गाना आप सुनेंगे सोमची की आवाज में। तो पहला गाना आप जो हमारे दोस्त जो आपको सुन रहे हैं उन्हें कौन सा सुनाना चाहेंगे?
1: So, any songs, आपकी चॉइस में?
0: मेरी चॉइस तो वैसे बहुत सारे गाने पसंद है, सोचना मुश्किल है। क्यों ना अच्युतम केशवम से शुरुआत करें।
1: हाँ, श्योर, बहुत प्यारी गीत है।
0: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अच्युतम केशवम, ये सुंदर सा भजन सोम जी की आवाज में। लौट कर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर लौट कर आ गए हैं हम। संगीत की ये सभा लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं सोम जी, जिनकी आवाज में आपने सुना बहुत सुंदर भजन अच्युतम केशवम। ये गीत सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक अलग ही माहौल बन चुका है और अब बोलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे गीत सुन के सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें और कुछ ना कहें। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सोम जी से और ढेर सारी बातें करनी है, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं। सोम जी, आप जैसा आपने अपने बारे में तो बताया, मैं चाहूंगी आप अपने संगीत की जर्नी के बारे में बताएं। कब से आपको संगीत पसंद था या कब से शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: अच्छा, संगीत के बारे में जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में हम गिटार बजाते थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे स्कूल के एक फ्रेंड बहुत अच्छा गिटार वो प्ले करता था, तो उसके हिसाब से जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार का साउंड मैंने सुना, तो वो गिटार के जो साउंड है वो मेरे दिल को छू गई। तो स्कूल में एक वैकेशन, समर वैकेशन था, उस टाइम पर के एक गिटार खरीद करके तो थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में एक महीने के ट्रेनिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गीत बजाने और दोस्तों के साथ थोड़ा हम करने, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन हो गई। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके, कोई टीचर्स तो नहीं है हमारे, फिर भी दोस्तों के साथ टीचर्स के वीडियोस देख करके, तो ऐसे ऐसे ही हमने बहुत मेहनत की और गिटार से शुरू किया। तो थोड़ा बहुत ड्रम्स भी बजाते हैं, कीबोर्ड थोड़ा बहुत करते हैं, तो स्पेशलिटी मेरा गिटार ही है। तो मैं अभी लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे गिटार बजाए हुए, लेकिन ऑन एंड ऑफ, बीच में छूट भी गए थे कुछ ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी फिर मेडिटेशन के साथ साथ अभी म्यूजिक भी अभी जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं ये भी करना शुरू किया हूँ।
0: क्या बात है। और जब आपने म्यूजिक शुरू किया, आप क्योंकि यूथ की बात करें तो उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है तो करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने भी अपना करियर बनाया म्यूजिक में?
1: जी, करियर जब स्कूल से आउट हुआ तो उसके बाद में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ करते थे, तो फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाते थे। तो बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब मैच्योरिटी लेवल आई, तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन से मिलना हुआ, तो उनके साथ अच्छे अच्छे गाने कंपोज करने लगे। तो कभी कभी ऐसे ही बार में, क्लब में, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ऑफर आते थे, तो उधर जा करके थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमारी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो इंक्रीज होती चली गई। तो बाद में एक एज बैंड बोल करके हमने नेपाल में, क्वाइट पॉपुलर है ये यंगस्टर के बीच, तो उस बैंड में काम करने का मौका मिला। तो हमने जो काम किया तो उसके हिसाब से हम बहुत सेटिस्फाई भी है, लेकिन बीच के कुछ ऐसे ही पढ़ने के सिलसिले में, कुछ ऐसे ही स्टडीज़ के मामले से करके हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी बैंड तो कंटिन्यू है, फिर भी मैं अब्रॉड चला गया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहा। फिर अभी ये मौका मिला है, तो अभी मैं अपने खुद के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कंपोज करता रहता हूँ अभी। तो अभी थोड़ा तीव्र रूप से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ अभी।
0: तो मतलब आपका जो बैंड आपने बताया, तो उस समय आप लोग परफॉर्मेंस करते थे स्टेज पे और सब जगह, तो मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं वो कुछ ऐसा करें बने, तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम एक बैंड की बात करते हैं, क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं वहाँ पे?
1: तो क्या है, म्यूज़िक इसको एक कला बोलते हैं, एक आर्ट बोलते हैं। तो कला के लिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको हम शॉर्टकट में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन तो आप, जैसे कि आपके घर के माहौल, जिस जगह पे आप रहते हो, जो आपके अंग संग के लोग हैं, इसके रंग भी आपको अवश्य लगते हैं। तो इसीलिए म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं उनके गाने सुनने पड़ेंगे। तो कैसे वो कंपोज करते थे, क्यों ये गाने उस जमाने में लिखे थे, बनाए थे 50 साल आगे, फिर भी अभी भी वो उतना ही प्रिय है, बहुत सुंदर है, लोग अभी भी उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कि उन लोगों की जो डिसिप्लिन थी, एक बात से बोलते आध्यात्मिक हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें एक प्योरिटी थी वो कलाकार में, क्योंकि उन दिनों के कलाकार बहुत प्योर रहते थे। तो उन दिनों के कलाकार और आज के कलाकार अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत ये बीच में बहुत दूरी हो गई है, क्योंकि आज के आर्टिस्ट वो भूल गए हैं कि ये जो कला है इसमें अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टाइम स्टेबल रहना है, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है
0: जी।
1: सो आप हमारे टीचर्स, गुरु, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग जो सिखाते हैं, उसको भी आत्मसात करते हुए अपने नेचर को सुधारते हुए अगर ऐसा करते हो तो ज़रूर किसी न किसी दिन ये ज़रूर रंग ले आएगी। ये छुपे नहीं रह सकते, भले देर हो लेकिन ये बहुत अच्छा कर सकती है।
0: जी जी, मतलब कि जो संगीत है उसके प्रति हमारी जो सच्चाई है, जो हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे दिल भी उसी में है तो दिमाग भी उसी में है, तो वो सच्चाई शायद बहुत ज़रूरी है।
1: जी,
0: सिर्फ अच्छा दिखना नहीं स्टेज पे, लेकिन उस फील में होना कि हम अपने लिए गा रहे हैं।
1: जी हाँ, दिल से,
0: दिल से,
1: दिल को छूना बहुत ज़रूरी है। जी,
0: और दिल को छूने के लिए दिल से गाना जरूरी है,
1: जरूरी है।
0: जी, तो बहुत बहुत अच्छी बात है, अपने डेडिकेशन की भी कही समझी। आगे भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक और गीत की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे। तो अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अगला गीत मैं एक बार श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा एज अ मैंने आरुषि जी को भी बोला है कि थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैं उतना प्रिपेयर कर नहीं पाया, फिर भी आज हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो थोड़ी समय में पूरा ट्राई किया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक्स आपको सुनाई दे तो भी इसको आप स्वीकार कर ले, अगर फ्यूचर में कोई मौका मिलता है तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करके, लोग अभ्यास करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो अभी आपके लिए मैं कृष्णानी वाला गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारी सॉन्ग है।
0: चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में, और मैं आपको बता दूं कि वो गा भी रहे हैं और साथ साथ गिटार भी वो खुद ही बजा रहे हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में। रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अपने मुस्कुराने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, और गाने का भी, गुनगुनाने का भी, क्योंकि ये कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं संडे को रात 8 बजे। आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आप भी एक कलाकार हैं, आपको लगता है कि आप आसपास रहते हैं, आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415। साथ ही मैसेज भेज के हमें ये भी बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है। सोमजी, जैसा आपने बताया कि आपका एक बहुत फेमस बैंड जो रहा नेपाल में, जो है अभी भी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम म्यूज़िक हमें पसंद है, आपने कहा डेडिकेशन ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन साथ में काम करने में या हम बहुत जगह परफॉर्म करने जाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, और आप अगर

0: आए तो आपने क्रॉस कैसे किए?
1: बहुत प्यारी क्वेश्चन है ये। जो मैटर है हर एक को फेस करना पड़ता है इससे, तो नॉर्मली सबके लाइफ में तो ये तो स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है। फिर भी अगर बैंड की बात करें तो क्योंकि एक बैंड में नॉर्मली 5-6 से एक बैंड बनता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है, तो 5 लोग होंगे तो 5 हेड होंगे उधर, उनके अपने विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, संस्कार होते हैं, तो इसलिए तो जब ग्रुप में काम करते हैं तो थोड़ा संस्कार की बातें भी आती है, फिर भी
0: नेचर अलग अलग
1: होती है, उनके ग्रोन अप अलग होते हैं, तो फिर भी अगर आर्ट म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को, तो इजीली इस समस्या को हम कोप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। पहले मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में जब मैं बैंड में था, तो फिर भी मेरी नेचर क्या थी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता था, तो दोस्तों के साथ मैं उनके साथ एडजस्ट हो करके उनको भी मनाता था, तो एज अ न्यूट्रल में रहकर, बीच में रहकर मिलाने की ट्राई करता था, तो थोड़ा बहुत ये इस नेचर से उनको भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ। मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी वो भी ट्राई करते थे, हम भी ट्राई करते थे, क्योंकि जो भी हम स्टार्स देखते हैं, ये रॉक स्टार देखते हैं, सेलिब्रिटी देखते हैं, ये लोग ऐसे ही ऊपर नहीं पहुँचते, इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन तो होता है, ज़रूरत होती है। इसीलिए क्या लगता है अभी जो बोला मैंने कि थोड़ा बहुत अनुशासन, क्योंकि ऐसा जो टीवी में देखते हैं, जो वीडियोस में हम देखते हैं, उनका लाइफ ऐसा नहीं रहता है। वो लोग 4 बजे से आगे उठते हैं, उनकी डेली लाइफस्टाइल ऐसी रहती है। एक दो मूवीज़ में, एक दो बार पार्टीज़ में देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग वो अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड करते हैं, ऐसे लोग ही सफल होते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कला से जोड़ेंगे, संगीत से जोड़ेंगे, तो ये बहुत प्रोडक्टिव भी होगी, सेटिस्फाइड भी रहेगा।
0: क्या बात है। और मुझे लगता है आपने एक लंबी जर्नी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से बताया
1: जी।
0: क्योंकि सक्सेस भी है तो उतार चढ़ाव भी है
1: जी।
0: तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में, जिसमें मेडिटेशन जो है बहुत मदद करता है,
1: बहुत मदद करता है,
0: जैसा आपने कहा
1: जी।
0: तो हम आगे भी आपसे कुछ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। सोम जी, अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे आज?
1: अगला कोई तो है जो।
0: ओके, चलिए तो ये गीत सुनते हैं ओम जी की आवाज़ में। और आपको कैसा लगा ये गाना आप हमें ज़रूर बताइए, कि गाना एंड गिटार सोम जी क्योंकि दोनों प्ले कर रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन के स्टूडियो में, तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों हमें मैसेज करके बताइए 9414151415 पर, यानी कि 9414151415 पर।

0: बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. हमारे साथ है सोम जी, जो कि बहुत एक फेमस बैंड के मेंबर भी हैं और साथ साथ वो संगीत में कई लोगों को अब सिखा भी रहे हैं, तो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं, गिटार भी बजाते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, साथ में बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी. तो उनसे आज हम बातें कर रहे हैं. सोम जी, जैसा आपने अपने बैंड के बारे में तो बताया, यहाँ पे म्यूज़िक के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि म्यूज़िक जब आप शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आपको कोई एक माहौल की ज़रूरत होती है या क्या लगता है क्या उस वक्त आपको ज़रूरत होती है?
1: जी, मेरे विचार से जब से मैंने गिटार पकड़ा है, ये गिटार एक मेरे कंपेनियन के जैसा है, एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि लोग होते हैं, दोस्त भी ऑल द टाइम हम साथ नहीं रह सकते, लाइक परिवार भी हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो गिटार है, गिटार माना कला, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हर एक इंसान कुछ ऐसी चीज़ों से है तो निर्जीव है, लेकिन इसमें बहुत सारे ये ब्रह्मांड की चीज़ इसमें समाई हुई है, तो इसको फ्रेंड बनाएंगे तो आप कभी अकेले फील नहीं करोगे. तो बाद में जब मेडिटेशन जब हमने लर्न किया तो लगने लगा कि हाँ, स्टाइल तो एक ही है, ये स्थूल रूप में है और ये जो मेडिटेशन है ये अंदरूनी बात है. तो मुझे लगता है अगर कोई इसी हिसाब से कला में जुड़ जाता है, अगर एक फ्रेंड बना लेते हैं उस चीज़ को, तो वो भी उसी तरह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी. उसके लिए आपके डेडिकेशन और आपके उस प्रति जो रिस्पेक्ट है, भावनाएं हैं, वो बहुत मायने रखती हैं. तो
0: लेकिन सोम जी, अक्सर ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी ये एक एज के बाद ज़रूरी है, यूथ को क्या ज़रूरत है?
1: अभी तो मेरे हिसाब से लगता है कि यूथ को ही ज़्यादा ज़रूरत है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि अभी जो संसार में हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी बन रही है, ये साइंस वाले, अभी ये डिजिटल दुनिया है, जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मन को भड़काती है, डिस्टर्ब करती है, और हमारे जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उसकी पावर को ये घटाता है, तो इसको कोई ना कोई हार्म पहुंचाते रहता है. तो जिस तरह से आज लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीज़ों से, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, अब ये सोशल मीडियाज है, ये बहुत हमारी आत्मा की शक्ति को, मन की शक्ति को ये डिप्लीट करती है. तो मुझे लगता है क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़्यादा डिपेंड रहते हैं स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसके छूटने पर अगर किसी दिन हमारे पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये दिन क्या होता है उनके लिए ख़राब रहती है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर्स अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपना ले, तो एक अंदरूनी शक्ति जो खुद से इंजॉय कर सकते, खुद से बातें कर सके और अपनी एग्जिस्टेंस का वो खुद पता कर सके कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करने हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लक्ष्य उद्देश्य क्या है. तो अगर ज़िंदगी में ये बातें किसी को समझ में आ जाता है, तो वो संसार जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है.
0: बहुत अच्छी आपने बात कही सोम जी. और ये मुझे लगता है क्योंकि करियर हमारा जो हमें बनाना है या हम बना रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने मन को और ताकतवर बनाने के लिए आप मेडिटेशन साथ साथ कर सकते हैं, जैसा कि सोम जी भी प्रैक्टिस करते हैं. तो अगला गीत सोम जी आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अभी हमारे पास ओम जय जगदीश
0: जी
1: गाना है
0: जी.
1: तो मैं श्रोताओं को ये सुनाना चाहता हूँ
0: जी. चलिए तो हम ये गीत, ये आरती सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: घड़ी की आवाज़ तो कह रही है कि इस वक्त आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो चला है, लेकिन दोस्तों मधुबन अनप्लग्ड कार्यक्रम लेकर आते हैं तो सुवादे के साथ आते हैं कि अगले हफ्ते फिर से जरूर आएंगे। आज हमारे साथ सोम जी जुड़े हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर मेलोडियस आवाज में हमें एक दूसरी दुनिया की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज और डेफिनेटली ऐसी आवाज ऐसे गीत हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा दिन भर कुछ और सोच रहे थे लेकिन अब मन फिर से करता है कि एक नई सोच की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मन पॉजिटिव, मन शक्तिशाली तो नया कुछ सोचने का दिल भी करता है ना दोस्तों। तो आइए सोम जी से जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। कई बार जब हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि हम, क्योंकि लेट नाइट भी है, पार्टीज भी हैं, दोस्त भी हैं और पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं
1: जी।
0: कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, छूट जाता है कभी कभी। तो आप क्या कहना चाहेंगे
1: इसके लिए? मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो कोरोना से आगे लगभग 3.5 साल मैं नेपाल के जेल में हमारे ब्रह्म कुमारी के एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ से गवर्नमेंट से हमने स्वीकृत ले करके, तो वहाँ पर जाते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, रोज़ रोज़ उनकी समस्याओं की बातें, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैंने क्या देखा यंगस्टर में, तो ज़्यादातर जितने भी ये गलत कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, ये सब गलत खान पान और गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ों से दिल बहलाना और गलत संगत के कारण बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी वहाँ भी जेल में अपने जीवन बिता रहे हैं। तो देखा तो उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हर एक यंगस्टर के पीछे वो एक अंदर से उनकी चाह तो होती है, फिर भी वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो इसीलिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कोई शराब का, ऐसे जो गलत आदतें हैं इन चीज़ों का सहारा लेने से, क्योंकि उनकी जो खान पान है, खान पान गलत होने के कारण। एक घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ था। 3 दोस्त मिले थे, तो 3 दोस्त की मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के साथ क्योंकि वो गलत चीज़ खान पान करते थे तो होटल में गए, वो होटल में जा कर के गलत चीज़ खाए, शराब पी। वो खाने के बाद क्या हुआ, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में ज़्यादातर लोग गलत चीज़ ही देखते हैं और ये तो यंगस्टर लोगों की आदत जैसी बन गई है अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें जो अंदर गलत चीज़ वो सेवन कर रहे थे और गलत चीज़ देखने से उनके वो जो माइंड पे एक ट्रिगर हो गया, उनको वो चाह अंदर से निकल गया, वो क्या बोलते हैं, वो राक्षसीपन होते ना अंदर से, वो निकलने लगे, तो उनके गलत विचार आने लगे, तो उन्होंने जाके ऐसे गलत व्यवहार किए, तो उसके हिसाब से वो अभी जेल में है बोला। तो मैंने देखा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खान पान को सुधारते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसा आहार वैसा विचार बोलते हैं, तो भगवान भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहते हैं, अगर आपके खान पान अच्छे हो तो आपके दोस्त, आपके संग अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपके खान पान अच्छे नहीं है, जहाँ भी जाओगे गलत चीज़ खाओगे तो गलत ही लोगों को आपको संगत मिलेगी, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले आपको गलत खान पान से बचना होगा। गलत चीज़ जो सेवन करते हैं, जो इस शरीर के लिए गलत है, जो हानिकारक है, ऐसे चीज़ों से बचना है
0: जी।
1: और जो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, जो अच्छे नहीं हैं, जो हम परिवार के साथ देख नहीं सकते, जो अश्लील है, तो ऐसे चीज़ें अगर ना देखें तो ये इसमें ही बहुत लाभ मिलेगा
0: जी।
1: और उसके बाद में संगत, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आपको विचार करना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है करना ना करना, कैसे संग के साथ आप रहना नहीं रहना, ये आपके साथ चॉइस है। इसलिए ये 3 चीज़ों को आप यंगस्टर विचार करेंगे, इसको समझ पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी
0: जी। थैंक यू सो मच सोम जी. और जैसे आपने कहा गलत हैबिट्स नहीं, तो अगर नशे की ओर या गलत और आदतों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में जो सपने हम जीना चाहते हैं वो शायद कहीं जाके ब्रेक लग जाता है वहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए. हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हो. तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा. सोम जी आपने जो बातें कही जीवन की, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विजडम है
1: जी.
0: तो हम ज़रूर इसमें से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. जाते जाते आप हमें आखिरी आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: तो आखिरी गाना ये मूवी का सॉन्ग है, शायद हर एक ने सुना हुआ होगा, ये आसियाना गीत. ये बहुत प्यारी गीत है, आप सभी श्रोताओं के लिए पेश करना चाहता हूँ.
0: चलिए ज़रूर सुनेंगे. बहुत खूबसूरत ये गीत सोम जी की आवाज़ में हम सुनेंगे. गिटार भी उन्होंने बजाया है, गाया भी उन्होंने है. और दोस्तों जाते जाते आपको रेडियो मधुबन का नंबर फिर से बता देते हैं. अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गाँव का नाम लिख कर हमें भेज दीजिए. नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. संगीत को अपने जीवन में हमेशा शामिल रखिए. संगीत उम्र नहीं देखता, पर आप उस संगीत से जुड़े रहेंगे तो जीवन और खुशहाल होगा. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. रेडियो मधुबन

मैं हाकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ माने आवे पिया जी री हिचकी मारो वादी लो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752 9001313752 ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से पसंद किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा खड़ताल ढोलक हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक हाकम खान

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रेमाइने रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोता और स्वागत है। अने अपने मेहमान रणछोड़ जी बारोट है, उन्होंने भी स्वागत है। तो रणछोड़ जी ने मैं पूछो हूँ कि आप बताओ आपकी नौकरी कदे लगी थी।
3: सन 1978 में मारी सर्विस लगी थी।
2: मैं आपने पूछू रणछोड़ जी कि आपकी शादी नौकरी लगवाती पहला हुई या बाद में हुई।
3: मारी शादी नौकरी लगवार बाद में हुई
2: जी। आपने शादी रो साल याद नहीं है।
3: नहीं है याद।
2: तो आप नौकरी लगा था तो वो सन तो याद है आपने।
3: हाँ वो मन याद है।
2: एक साल बाद हुई शादी आपने।
3: हाँ हमारी करीबन हाँ एक डेढ़ साल बाद शादी हुई थी।
2: तो
3: सन यूं हजमो के 78-79
2: जी
3: 80 के आसपास भी शादी से।
2: अच्छा 80 के आसपास शादी हुई है। ठीक है। तो आपने जो धर्म पत्नी है वही बनियोड़ा था कि नहीं था।
3: मारी धर्मपत्नी अनपढ़ है, पढ़ियोली नहीं है, अंगूठा लगा रहे जी भी।
2: यारो नहीं लागो आप तो नौकरी करता छोरी अन भणियोड़ी है तो यारो लागो नहीं कि भाई के मुँह के अनपढ़ थी शादी करूँ।
3: पहला एरो है कि आजकल तो मतलब जो भी शादी वादी करे तो सब अपने दुल्हन ने पसंद करे न करे। पहला वो जमानो नहीं तो पहला जो भी शादी हुई थी वे माँ बाप करता वही सौ पढ़ करना पड़तो। पहले माँ बाप मारी शादी की थी
2: जी।
3: वो मने मतलब एक रीत हो
2: जी। चलो अच्छी बात है। आप रो कहना है भाई के पहला जो शादी हुई थी तो माँ बाप जो पसंद करता इस आज जमाना में तो लड़का खुद पसंद करे लड़का लड़की ने वेरो सिस्टम नहीं तो। ठीक है हमें आप बताओ आपके परिवार में आपके कतरा बच्चे हैं।
3: हमारे बे बच्चा ने एक बच्ची है।
2: बे बच्चा आपने कहा करे और बच्ची कहा करे।
3: एक बच्चो मारे दुकान करे रियो है
2: जी।
3: नहीं एक मारे सीआईटी कॉलेज में लैब असिस्टेंट में काम करे रियो है।
2: दुकान वाला कानों में सीआईटी कॉलेज वाला कानों में।
3: दुकान वाला नाम है शैलेश कुमार ने सीआईटी कॉलेज में करवा हितेश कुमार है।
2: सीआईटी कॉलेज में वे क्या करे है।
3: वो सीआईटी कॉलेज में लैब असिस्टेंट रो काम करे रियो है बटे।
2: चलो अच्छी बात। तो आपने तीन ही बच्चों ने आप बनाया बच्ची ने बनाई थी।
3: हाँ तीनों ने पढ़ाया मैं
2: जी।
3: बे बच्चा तो हमारा मैट्रिक पास है ने बच्ची है वह हमारी नाइन्थ पास है।
2: अच्छा, बच्ची री शादी हुई या गरेज है।
3: नहीं बच्ची री शादी हुई है अहमदाबाद में की दी है उन्नी शादी उनने भी बच्चा है
2: जी।
3: एक बच्चों भी पौ साल करीब ने बीजो है वो अभी बे तीन महीना रो है।
2: तो मैं आपने पूछो बच्ची ने आप धके क्यों नहीं बने। आजकल तो कह भाई कि बेटियों ने खूब पढ़ावनी जो अपने
3: बच्ची ने पढ़ावारी घनी कोशिश की थी। बच्ची रो मन लास्ट में जाए ने भणवारो में थोड़ा ऊस हो तो ने वड़े आगे पढ़ाई करवाती इनका कि तो पसे वह पढ़वास नहीं चाहती तो उससे क्या करे उस।
2: चलो श्रोता बंधुओं अपने रणछोड़ जी अपना जीवन का पढ़ावरे बारे में बात बता रहा है कि ये रेलवे में दसवीं पास करें नौकरी लगा था और आबरूड में इस नौकरी लगा था और 38-32 साल री सर्विस करें एंड रिटायरमेंट हुआ है और आज एक घरीज है और अभी बच्चा है एक बच्ची है। बे बच्चा एक बच्चा और सी आई टी कॉलेज में है और बीजो बच्चों दुकान चला है। तीसरी बच्ची ने भी है

शादी कर दी थी पर बंती पहला पढ़ावारी कोशिश की थी पर बच्ची नहीं बनी, वो अलग बात है, विद्या करनी जीवन में वह करनी वह ठीक है। और अनोर जीवन भी मतलब एक मध्यम वर्गीय बीती, तो यूँ नहीं भाई को खाधो पीधो परिवार वे, गरीब वर्ग तो पांच छः भाई बहन था, तो एरो पालन पोषण भी मध्यम वर्गीय हुआ था ठीक है। श्रोता बंधुओं, अपने रणछोड़ जी बारोट जो अपने मेहमान है वे अपना जीवन रहा अनुभव अपना तजुर्बा अपने बता रहा है, और भी अनोर बारे में आप बात करें पर एक छोटो सो ब्रेक लो, ब्रेक के बाद में फिर अनोरा तजुर्बा जानला। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कराता रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हू वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। जब मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया, तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है, कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे, आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना।
2: बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोता और स्वागत है ना अपने मेहमान रणछोड़ जी बारोड, जो सिंगा कॉलोनी सातपुर में रहे हैं, उन्होंने भी स्वागत हैं। तो मैं अपना जीवन का और भी अनुभव है उन्होंने बारे में जानकारी लो हूँ। रणछोड़ जी, मैं आपने पूछू हूँ कि आप बताओ अपने जीवन रामाय कोई एरो खुशी रो पल बताओ जो आपने खूब खुशी हुई है।
3: खुशी तो मारे नैन को बच्चों ने एक बच्चों हुआ तो वने वक्त पे मुझे ज्यादा खुश हुआ तो, क्योंकि तो एक दादा व्यवहार हो अपन उमंग थी ने उत्साह तो वह खुशी मैंने सबसे ज्यादा जीवन में लगी।
2: नैन का बेटा रहे, बेटा हुआ जरे आपने खूब खुशी हुई थी, बेटी बेटी तो आप खुश नहीं रहता।
3: बेटी बेटी तो भी खुश होता है, वो तो भगवान की मर्जी है। बेटी वे के बेटा वाले पहले मतलब बच्चों कोई भी वेतो तो खुश है। आज भी मारे बे छोरो ने बे छोरी है, अच्छा। तो बड़ो खुश हूँ ने मारो जीवन में बच्चों रमा खेले कूदे ने वन हाथे मारो जीवन पास वे रही हो। आ बड़ बड़ी खुशी है, जीवन एक सबसे बड़ी खुशी है कि वन हाथे मुँह रह रही हूँ ने वे माँ ने दादा दादा करे तो मन बहुत अच्छा लगे।
2: तो दादाजी उन्होंने फेरवा ले जाता भी कड़ी
3: फेरवा ले जाओ बाहर कटे जाना हो तो हाथ हाथ ले जाओ, अपना बच्चा तो नहीं जिद करे नहीं आवे।
2: बच्चा घोड़ा बनाना अपने फेरवे के माते बेन घोड़ा बनाना
3: तो घोड़ा बड़ा तो खैर नहीं बनाता है यार, नौबत आई है घोड़ा बना वाले तो बाकी ठीक है। उन्होंने मनोती प्रेम खूब राखो अपे ने बच्चा भी अपना खूब प्रेम दादा दादा करता दादा दादा आवे अपने पे
2: अच्छी बात है। तो आपरे बेटो और बेटियों भी है तो अच्छी बात है, बेटियों हमेशा मतलब घर की रौनक है बेटियों, और बेटियों मतलब जन घर में वे वन घर में लक्ष्मी रवास वे है, तो बेटियों है तो बहुत खुशी की बात है। पर हमें आपने पूछू हूँ कि आपरे जीवन रमाए खुशी रो पल तो बतायो, हमें आपरे जीवन में एरो कोई पल बताओ जनते आप खूब दुखी हुआ वो।
3: मारा सबसे बड़ा भाई साहब था वे ऑफ हुआ जरे मने खूब ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वे मने ज्यादा शरारता ने प्रेम रखता मारे ऊपर, इले दुख तो वने दार हुआ तो मने ज्यादा कि मारा भाई आज वेता तो आज वनो रे आशीर्वाद ठीक रहे तो
2: बे भाइयों री जोड़ी टूट गई।
3: हाँ टूट गई वे, क्योंकि वे मारे पास रहता वटे जनते ज्यादा प्रेम तो
2: देखो भाई भाई तो बिल्कुल दुख वे से, और परिवार रो एक मेंबर जाए तो हर एक ने दुख हुए तो मोनू आपरी बात हमें आप बताओ आपरे जीवन में आप कड़ी ना आदर्श मोनो।
3: हाँ मुँह मारे माँ बाप ने आदर्श मोने नोने उन्होंने राह ऊपर आले रही हो आज भी वही से अपना रवैयो।
2: जी जी आप अपने माता पिता ने आदर्श मनो रिया हो कि उन्होंने आशीर्वाद जा आज आप फलतो फूलतो परिवार है और आज आप अच्छा मुकाम माते हो। ठीक है, आप बताओ आपरे जीवन रमाए आपरे धर्म पत्नी रो कतरो सहयोग रियो?
3: अपने धर्म पत्नी एरो है कि ओपे पहला नौकरी करता
2: जी।
3: नौकरी करता तो बीबी चिंदार बारे रहता
2: जी।
3: वने वक्त पर अपनी धर्म पत्नी पूरा परिवार ने लेन मारे भी बच्चा था ने बच्ची थी अब वन कने रीते वा राखती वन सहयोग तो मारो खूब ज्यादा है क्योंकि धर्म पत्नी घरे ने मु बीबी चिंदार नौकरी जाता मालगाड़ी हलारता जो टेका है घर धर्म पत्नी से पूरा घर हमारती।
2: आज वे रेडियो पर होबले रही आपने तो आप उनका संदेश देना चाहो उन वास्ते का मैसेज छोड़ना चाहो?
3: मारे पत्नी रो खूब सहयोग रियो ने आज दिन तक भी सहयोग है क्योंकि आने उम्र में पत्नी अपनो सहारो है ने ओपे पत्नी रो सहारो तो एक बिचारो सहारो है ने पहला भी ने बिचारे खूब तकलीफ दी की है। आदर्श ये है कि मतलब मारी पत्नी अगला जन्म में अपनी जोड़ी वाइस मले अत्री मारी उम्मीद है।
2: चलो भगवान ने आप प्रार्थना करो रिया भाई के जो आपकी धर्म पत्नी है वह अगला जन्म में आप रिस बने। ठीक है, मुझे भगवान ने क्यों वही कहना रे जोड़ी पासी मिला अगला जन्म। हमें आप बताओ आप रिटायरमेंट हुआ हमें आप अपना जो वो समय समाज सेवा स्तर आप कतरो योगदान देना चाहता?
3: समाज में जाओ पे ना कोई सहयोग वे तो उन्हें लायक तो पे करो बाकी अपनो आदर जीवन का है कि एक छोटा बच्चा रे दुकान है वड़े में बैठ ने थोड़ा टाइम पास करो ने हो जवार थोड़ो फरवारो काम करो जाके अपना स्वास्थ्य अच्छो रहे।
2: आज आपकी उम्र कितनी हुई है?
3: मारी उम्र 63 रनिंग है जी।
2: 63 साल हुआ आपकी उम्र ने फिर भी एकदम फिट है शरीर अन्नो का राज है?
3: अन्नो राज तो है कि ओपे ज्यादा अपने मतलब चिंता ने दूर भगवान की कोशिश करो चिंता अपने ऊपर आवे तो ओपे अपनो माहौल चेंज करे दो तो चिंता है अपने महसूस नहीं हुई थी बस अरे वो अपना कारण है।
2: ठीक है, और क्या मतलब है कि आप कभी चिंता नहीं करता बिल्कुल फ्री मूड में रहो अन वास्ते आप फिट हो शरीर थी। चलो अच्छी बात है।

0: अब मैं आप बताओ, आज आपने रेडियो पर खूब मना खोबले लिया है, तो आप सबने का संदेश देना चाहो।
1: सबने वो संदेश को कर देखो, जीवन में दुख सुख तो आवतो रहे जी। जीवन है एक दफे तो मतलब इंसान जानो से वो तो सुनिश्चित है, अने करतो उपे हमेशा खुश रहो ने हंसता रहो, बीजों ने हसावो तो वो अपने जीवन में अपने भी मतलब फिटनेस रही ने सामने वाला भी मतलब फिटनेस रही, ओ मतलब मारो संदेश है ने हमेशा आदमी ने खुश रहना चाहिए। देखो उतार चढ़ाव दुख सुख तो दुनिया में आवता रहा ना, आवता रही ने जाता रही, अने थी घबरावारी बात है नहीं है।
0: तो श्रोता बंधुओं, अपने मेहमान रणछोड़ जी एक संदेश देना चाहे बेटियों के बारे में, तो बेटियों का वे है वन बारे में आपने बता रहा है, तो एक जो एक संदेश दे रहा है आप सुनो।
1: देखो बेटो है चाहे बेटी है, बेटी भी अतरो कॉम करे जितना बेटो करे आज रे जमाना में, ने बेटी वे तो बड़ी खुशी की बात वेणी खुश वेणो सी जे। अने आरो एक संदेश दे रियो, आस की एक बूंद सी होती हैं बेटिया, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती हैं बेटिया, रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को, दो दो कुल की लाज होती हैं बेटिया, कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो मोती हैं बेटिया, कांच की राह पर ये खुद ही चलती हैं रहेगी, औरों के लिए फूल बोती हैं बेटियां, बेटी पराया धन होती है यह हम सुनते आए, दर्द विदाई का क्या होता है आज समझ पाए, गम खुशी का रिश्ता कैसा यह अजीब है, भाई हमारी परछाई हमसे ले रही है विदाई।
0: श्रोता बंधु अनोर एक कविता भाव कह रहा है कि बेटियों एक कुलड़ो ने दो दो कुलड़ो नाम रोशन करे है, और बेटी रो दुख का वे वो वापिस जोड़े कि बेटी अर घरती विदाई वे तो ना माँ बाप जोड़े बेटी घरती विदाई हुई अन्नी कैरी कैरी मतलब उन्होंने दुख लागे। अने अलावा बेटियों अपने घर में लक्ष्मी रा अवतार है, तो बेटी वे तो खुशी मनाओ और बेटो वे तो खुशी मनाओ। घनी ठकोने का वे कि बेटी रो जन्म वे जरे हुपड़ो बजावे, अन बेटा रो जन्म वे जरे वे थाली बजावे, तो अपने एरो नहीं करना, बेटी रो जन्म वे तो भी थाली बजावनी है और बेटा रो जन्म वे तो भी थाली बजावनी है। तो अपने मेहमान ने कहो कि आज आप रेडियो मधुबन ऊपर अपना जीवन का पड़ाव बताया है, तो आपने केरो लाग रही है?
1: मने खूब अच्छो लागो है, ने हमेशा मारा एक संदेश है कि बेटियों ती भी अतरो प्यार करना चाहिए जो बेटो ती करो, क्योंकि बेटी आजकल तो मतलब गवर्नमेंट भी बहुत सहायता दे रही है कि बेटियों ने अच्छी पढ़े तो नौकरी भी अच्छी मिले जाए, बेटो को तो पहला बेटियों ने मले है तो पैसे का हर जगह अपने बेटी पैदा करवा में रोवार ने रतन करवा कोई जरूरत नहीं है, मतलब बेटी भी ने आवे जरा उतरो सम्मान देना सही जे।
0: चलो अच्छा संदेश है कि भाई बेटी घर में आवे तो भी वनी ने मान रखो और बेटो जन्म वे तो भी वनो मान रखो, अच्छी बात है। तो श्रोता बंधुओं, हमें अपने मेहमान रणछोड़ जी बारोट जो सिंगा कॉलोनी सातपुर में रह रिया है, रेलवे सर्विस की रिटायरमेंट लीधा है और अपने जीवन का पड़ाव बताया है, उन्होंने खूब खूब धन्यवाद है और रेडियो मधुबन खूब आभार प्रकट करे है अपनो अमूल्य समय रेडियो मधुबन वास्ते आप दीदो है, तो अपनों ने खूब खूब धन्यवाद है। और मुँह केसी जिनगर हमें बातों तो आपको खूब करे है को, पर समय देखता खातर मुँह अपनी वाणी ने विश्राम देव हूँ और अगले हफ्ते फिर एक अलग टॉपिक ऊपर बात कर रही हूँ। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता।

0: नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: है दोस्तों, पता है मैंने तुम सब के लिए एक कविता लिखी है। लो सुनो। कितने प्यारे दोस्त है मेरे, रोज स्कूल में आते, पढ़ते लिखते खेल खेलते पूरे मजे उड़ाते। अच्छी लगती उन्हें सीखनी हर दिन एक नई बात, तभी तो मैं ले आता हूँ मीना को अपने साथ। थी ना बढ़िया मेरी कविता? फिर ठीक है, तो चलो जल्दी से मिलते हैं अपनी प्यारी मीना से।
1: आधी छुट्टी हो गई, आधी छुट्टी हो गई, पकड़ लिया।
2: दीपू, अब रानो और मैं भागेंगे और तुम हमें पकड़ोगे।
3: मीना, पकड़न पकड़ाई नहीं, अब कुछ और खेलते हैं।
4: हम ये कहानियों की किताब पढ़ते हैं।
3: कहानियों की किताब है?
4: दीपू, एक बार देखो तो सही।
3: अरे वाह, इस किताब में तो कहानी के साथ साथ चित्र भी बने हुए हैं। हाँ, यही पढ़ते हैं।
2: रानो, दीपू, चलो वहाँ चल के पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे।
5: पेड़ के नीचे, मैदान के पीछे।
0: रानो, मीना और दीपू को कहानी पढ़ के सुनाने लगी।
4: फिर राजकुमार अपने घोड़े पे सवार होके जंगल की तरफ चला। अरे देखो, घोड़े की दुम कैसी लग रही है।
2: हाँ, जैसे कोई पतली सी रस्सी हो।
4: आगे सुनो। जंगल में पहुँच के राजकुमार को प्यास लगी, वो एक कुएं के पास पहुँचा। हाँ, जंगल में कुआं कहाँ से आया?
3: ओफो, आगे पढ़ो ना रानो।
4: ठीक है। राजकुमार घोड़े से उतरा और कुएं की तरफ बढ़ा, तभी उसने एक पौधा देखा। मीना, जरा ये चित्र तो देखो, ये कैसा पौधा है?
3: क्या रानो, तुम कहानी पढ़ो ना।
4: रुको दीपू। मीना, बताओ ना ये कौन सा पौधा है?
2: लगता तो नीम का पौधा है।
6: हाँ मीना, ये नीम का पौधा ही है।
7: बहन जी, आप?
6: हाँ, मैंने सोचा जाके देखूँ तो, आखिर तुम तीनों आधी छुट्टी में क्या पढ़ रहे हो?
2: बहन जी, रानो ये कहानियों की किताब लाई है।
5: किताब लाई है, कहानी भी सुनाई है।
4: बहन जी, इस कहानी में आगे लिखा है, राजकुमार को पता चल गया कि ये पौधा बड़े काम का है। राजकुमार ने ऐसा क्यों सोचा?
6: रानो, क्योंकि नीम का पौधा सचमुच बड़े काम का होता है।
4: वो कैसे बहन जी?
6: देखो, नीम से दवाइयाँ बनती हैं, नीम का दातून होता है और नीम हमें छाया भी देता है ना? चलो तुम अपनी कहानी पढ़ो, आधी छुट्टी के बाद क्लास में मिलते हैं।
4: मीना, नीम का रस इतना कड़वा क्यों होता है?
3: बस करो रानो, कितने सवाल पूछोगी?
5: कितने सवाल पूछोगी, पूरा हाल पूछोगी।
0: और अगले दिन जब मीना, रानो और दीपू लाला जी की दुकान पे गए।
8: ये लो रानो बिटिया, 1 किलो आटा और 1/2 किलो बेसन।
4: लाला जी, आटे और बेसन में क्या फर्क होता है?
8: आटा गेहूं से बनता है और बेसन चने से।
4: और क्या फर्क होता है?
8: आटे से रोटियां बनती हैं और बेसन से लड्डू और पकोड़े।
5: लड्डू और पकोड़े, मुझे भी दे दो थोड़े।
4: लाला जी, क्या आटे के लड्डू और पकोड़े नहीं बन सकते?
8: अरे रानो बिटिया, कितने सवाल पूछती हो तुम।
3: लाला जी, रानो क्लास में भी बहुत सवाल पूछती है, कई बार तो इसके चक्कर में छुट्टी भी देर से होती है।
5: देर से होती है, पूरी क्लास रोती है।
0: और अगले दिन मीना की क्लास में।
6: बच्चों, ज्वलनशील पदार्थ वो होते हैं जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, घी या फिर कागज।
4: बहन जी, मेरा एक सवाल है।
3: रानो मत पूछ, वरना आज भी छुट्टी देर से होगी।
6: हाँ हाँ रानो, पूछो।
4: अगर कभी आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए?
6: रानो, अगर आग जैसी स्थिति में बच्चे घर में अकेले हों तो उन्हें सबसे पहले किसी बड़े को बुलाना चाहिए।
4: और अगर उस समय कोई बड़ा आसपास ना हो
6: तो तुरंत आग से दूर चले जाना चाहिए।
4: बहन जी, आग बुझाते कैसे हैं?
6: रानो, आग लग जाने पे उस पे दूर से पानी फेंक के बुझाया जाता है। लेकिन हाँ, जो आग बिजली की तारों से लगती है उस पे पानी नहीं डाला जाता।
5: पानी नहीं डाला जाता, दूसरे तरीकों से बुझाया जाता।
0: और फिर कुछ दिनों बाद जब मीना, दीपू और रानो स्कूल में छुपन छुपाई खेल रहे थे,
4: एक दो तीन,
3: मीना मैं तो रसोई करके पीछे छुपने जा रहा हूँ, रानो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगी।
2: ठीक है दीपू, मैं सामने वाले पौधों के पीछे छुप जाती हूँ।
4: 8, 9, 10, मैं आ रही हूँ।
0: रानो मीना और दीपू को ढूंढ रही थी और उधर रसोई घर से उठते धुएं की वजह से दीपू खांसने लगा।
4: दप्पा मीना आ जाओ, दीपू आउट हो गया।
2: क्या हुआ दीपू?
3: मीना रानो रसोई घर में धुआं।
4: अरे रसोई घर में तो आग लग गई है।
1: रामू काका, रामू काका।
0: मीना भागती हुई रामू काका को बुलाने चली गई और उधर रानो ने देखा कि रसोई घर में चूल्हे के पास पड़े अखबार में आग लग गई थी। रानो को दरवाजे के पास एक पानी से भरी बाल्टी दिखाई दी, उसने डब्बे में पानी भरा और उसे दूर से जलते हुए अखबार पे फेंक दिया।
9: क्या हुआ रानो बेटी, कहाँ लगी आग?
4: रामू काका उधर चूल्हे के पास रखे अखबार में लगी थी आग, मैंने पानी डाल के बुझा दी, अगर मैं उसमें पानी नहीं डालती तो आग पूरी रसोई में फैल जाती।
9: शाबाश रानो, लेकिन तुम आग के पास तो नहीं गई थी ना?
4: नहीं काका, मुझे बहन जी की बात अच्छी तरह से याद थी, आग से हमेशा दूर रहना चाहिए और अगर आग बिजली की तारों से नहीं लगी तो उस पे पानी डाल के उसे बुझाना चाहिए।
3: मुझे माफ कर दो रानो।
4: अरे तुम माफी क्यों मांग रहे हो दीपू?
3: क्योंकि मैं तुम्हें बहन जी से सवाल पूछने से रोका करता था, तुम्हारे सवाल पूछने की आदत ने ही आज हमारे स्कूल को आग से बचा लिया। आज के बाद मैं भी तुम्हारी तरह बहन जी से खूब सवाल पूछूंगा और तुम्हें भी कभी नहीं रोकूंगा।
5: कभी नहीं रोकूंगा, सवाल पूछने पे कभी नहीं रोकूंगा।
0: देखा दोस्तों, सवाल पूछने से ही ज्ञान बढ़ता है। अगर तुम्हें भी कभी कोई बात समझ ना आए तो शर्माना मत, अपने टीचर से तुरंत सवाल पूछ लेना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक प्यारी सी कविता।
2: अगर कभी कुछ समझ न आए रखना यही ख्याल,
5: अपने टीचर से पूछो दिल में हो जो भी सवाल,
2: ना घबराना ना शर्माना रखना यही ख्याल,
5: अपने टीचर से पूछो दिल में हो जो भी सवाल।
0: भाई वाह, क्या कविता लिखी है अपनी मीना और मिट्ठू ने, मजा आ गया। चलो अब जरा एक मजेदार गाना भी हो जाए।

0: बस कर छोटू, कितने सवाल करता है तू।
1: पूछने दो ना, पूछो छोटू, जो पूछना है पूछो।

0: गाना सुन के तो मजा आ गया है ना।
1: क्या कहा? अभी और मजे करने हैं? ठीक है फिर, और मजे करने हैं तो चलो खेलने मीना की क्लास में।
2: बच्चों आज हम खेलेंगे कड़ियां जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें तीन कड़ियां बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल।
3: जी।
2: तो सुनो पहली कड़ी। तिनका तिनका जोड़ के बनता, रोज काम में आता, स्कूल हो चाहे घर हो, मैं हर जगह पाया जाता।
4: घोंसला।
2: वो कैसे दीपू?
4: क्योंकि घोंसला तिनका तिनका जोड़ के ही बनता है।
2: अच्छा, और क्या घोंसला रोज हमारे काम आता है?
4: ये तो मैं भूल गया था।
5: दूसरी कड़ी बताइए ना बहन जी।
2: ठीक है कृष्णा। बच्चों अब सुनो दूसरी कड़ी। सुबह शाम हर घर में होता मेरा इस्तेमाल, मुझे लगा के देखो मैं करता हूँ बड़ा कमाल।
6: क्या हो सकता है? ये क्या है? ये कौन सी पहेली है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
7: बहन जी ये पहेली तो बहुत मुश्किल है।
2: रानो जब तुम्हें इसका जवाब पता चलेगा तो तुम कहोगी बहन जी ये तो इतनी आसान पहेली थी। बच्चों अब सुनो तीसरी कड़ी। कूड़े करकट से लड़ता हूँ, मुझ में है वो दम, झ से मेरा नाम शुरू और द पे होता खत्म।
7: मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है झाड़ू।
2: हाँ मीना शाबाश।
7: बहन जी ये तो सचमुच आसान पहेली थी।
2: मैंने कहा था ना रानो।
8: कहा था ना रानो, बहन जी की बात मानो।
2: बच्चों मजा आया ना?
3: जी बहन जी।
0: आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
9: और मेरा पता है मीना की दुनिया यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 1100003।

0: रुक रुक। भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
1: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
0: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: हेलो यश।
4: हाय सनी भैया। हाय शशि भैया,
3: और कैसे हो यश?
4: बिल्कुल ठीक, आप कैसे हो?
3: मैं भी अच्छा हूँ। वैसे आज रेडियो में आके अच्छा लग रहा है ना?
4: हाँ,
3: दृष्टि नहीं आई।
4: हाँ, किसी काम से घर रह गई।
3: घर तो अच्छा लगता पर यहाँ अच्छा लगता है ना?
4: हाँ, रेडियो में कुछ नया एकदम अलग मजा है ना।
3: वैसे तुम्हारी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, बहुत अच्छी है।
4: शुक्रिया, आपकी मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है।
3: अच्छा, थैंक यू। सबसे अच्छा छोटा आदि की रिवाज है ना?
4: वो मस्ती खोर भी उतना ही है।
3: हाँ वो तो है। पंकज कहाँ गया? पंकज नहीं आया आज वो भी।
5: हेलो बच्चों।
6: हाय दीदी।
5: क्या कर रहे हो तुम लोग?
3: हम लोग अपनी ना रेडियो की पुरानी बातों को याद कर रहे हैं।
5: अच्छा, रेडियो की पुरानी बातों को आज याद किया जा रहा है। हाँ, हाँ भाई, तुम लोग को यहाँ आए हुए समय भी तो बहुत हो गया। इन दिनों तुम लोगों ने काफी कुछ सीखा होगा, है ना?
4: हाँ दीदी।
5: तो एक काम करते हैं, चलो आज तुम लोगों की रेडियो से जुड़ी मेमोरीज के बारे में बात करते हैं।
3: ओके दीदी,
5: ठीक है, मजा आएगा ना?
4: हाँ दीदी।
5: चलो ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात बताओ, रेडियो मधुबन में सबसे पहले आना आप में से किसने शुरू किया?
3: मैंने।
5: सैंडी ने? आदि ने?
7: मैंने शुरू किया।
3: अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट हो गया।
5: तो आदि, एक बात बताओ, कब आए थे आप, कितना टाइम हुआ आपको आए हुए?
7: कम से कम एक साल।
5: एक साल? अरे वाह।
7: मैं पहले सताक्षी दीदी के साथ आता था, पर अभी जब सीखना शुरू किया है 5 महीने से पहले।
5: 5 महीने, अरे वाह। और सैंडी, आप कब आए?
3: 5 अप्रैल।
5: अरे वाह, आपको तो डेट भी याद है।
3: हाँ, मैं और पंकज साथ में आए थे।
5: और शशि?
8: मैं तो 2 महीने से आया।
5: 2 महीने। और यश को कितना समय हुआ?
4: 5 महीने।
5: अच्छा, तो इतने टाइम में आप लोगों ने बहुत सारी मस्ती की होगी, मुझे देख के लग रहा है आप लोगों के चेहरे पे इतनी सारी खुशी तो नजर आ रही है।
4: हाँ दीदी।
5: है ना? तो सबसे पहले मुझे कौन बताएगा, सबसे ज्यादा मस्ती रेडियो पे किसने की? बताओ।
4: सबसे ज्यादा मस्ती मैंने की है।
5: सबसे ज्यादा मस्ती यश ने की है? तो बताओ यश, सबसे वाला मस्ती वाला मोमेंट आपका कौन सा था?
4: हमारी रिकॉर्डिंग चल रही थी, कुछ स्क्रिप्ट्स थी, उनमें एक दिन हम लोग शाम के समय आए थे। उस दिन जैसे ही दीदी बाहर गए तो हम सब मस्ती करने लग गए एक दूसरे के साथ साथ। तब मैं सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा था, इधर उधर भाग रहा था, मस्ती कर रहा था, तो वो दिन था।
5: मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती की? और नए नए फ्रेंड्स बनाए कि पहले से जानते थे?
4: नहीं, नए नए फ्रेंड्स थे।
5: चलो, मतलब रेडियो पे नए फ्रेंड्स भी बनते हैं आपके।
4: हाँ जी।
5: है ना? और आदि, आप बताओ।
7: एक दिन जब दीदी कहीं बाहर गई हुई थी, तब थोड़े थोड़े बच्चे आए हुए थे रेडियो मधुबन पे, तो मैं भी आया था, तो मैं नाचने लग गया था।
5: नाचने लगे थे? मतलब आदि को डांस अच्छा लगता है?
7: नहीं दीदी।
5: तो फिर इतनी खुशी हुई कि आप डांस करने लगे? अच्छा, मतलब सारी जो मस्ती है वो दीदी जब जाती है तब होती है क्या?
3: हाँ
4: जी।
5: अच्छा, और सैंडी आप बताओ।
3: मुझे तो जब दीदी गई थी ना बाहर, हमारा ड्रामा चल रहा था, तो मैं उन्हें 3 सब जने थे, तब उस दिन बहुत मस्ती करी थी हम लोगों ने। फिर दीदी ने आने, हम थोड़ा डांटा भी था हम लोगों को।
5: क्या मस्ती की आप लोगों ने?
3: मजाक कर रहे थे सब जने,
5: एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे। और शशि आप बताओ।
8: दीदी एक बार बाहर गई थी, तो हम सिर्फ 4-5 स्टूडेंट थे, हम प्रैक्टिस कर रहे थे संगीत की, तो दीदी ने बताया था खाली सारे गाँव में सीखना है, तो मैं कुछ गाना बजा रहा था उसमें, तो बहुत अच्छा नहीं लगा मेरे को। दीदी ने बोला था खाली सारे गाँव में सीखने के लिए मैं, पर लेकिन गाना मैं बजा रहा था उसके, मेरे को बहुत बुरा लगा था उससे।
5: गाना बजा रहे थे? हाँ। मतलब जो दीदी ने कहा वो आपने नहीं किया, इसलिए आपको बुरा लगा।
3: और उस दिन वो मगन भी हो गया था, दीदी पास में घड़ी हुई बजाए जा रहा। मुझे घर जाके बोलता है, दीदी कब आई थी, मुझे बताना था ना।
4: मुझे भी उस समय यही कह रहे थे कि बताना चाहिए तो बताना चाहिए था।
5: अच्छा, मतलब शशि आपको गाना बहुत अच्छा लगता है?
8: बजाना गाना अच्छा लगता है मतलब।
5: अच्छा, अच्छा ये मस्ती तो सारी जब दीदी गई तब आप लोगों ने की, दीदी के साथ कौन सी मस्ती की वो भी तो बताओ।
4: दीदी के साथ हम लोग पार्क में गए थे, सोलार पार्क में। उस समय बहुत मजे आई थी,
3: जो सब... मेरी किस्मत खराब थी, मैं नहीं गया।
5: सैंडी नहीं
7: मैं भी
4: मतलब रेडियो की टीम, पूरी रेडियो की टीम सब गए थे साथ में। तो हम लोग कोई ना कोई अलग अलग गेम्स खेल रहे थे, संगीत गा रहे थे, कभी इधर दौड़ लगा रहे थे, तो तब बहुत मजे आई थी दीदी के साथ।
5: मतलब बड़ों के साथ भी मस्ती करने में मजा आता है ना।
4: दोनों तरफ अलग अलग मजे हैं, एक अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ बड़ों के साथ।
5: और शशि आप बताओ।
8: मैंने तो मस्ती तो की नहीं, मतलब दीदी के साथ मस्ती तो की नहीं मैंने अभी तक।
5: मतलब मस्ती करनी अभी बाकी है।
8: हाँ, बाकी है।
5: वैसे तो हम दिन भर जब इंजॉय करते हैं शो के टाइम, तो वो भी तो मस्ती होती है।
8: हाँ, वो बात भी सही है, होती
5: है ना। और आदि,
7: जब हमारी बाल सुबह चल रही थी तब हम दोपहर को खाना खाने जाते थे, तो बहुत मस्ती करते थे वहाँ पे।
5: दोपहर में खाना खाने जाते थे, सब लोग साथ में खाना खाते थे।
7: हाँ।
5: और सैंडी।
3: हाँ दीदी।
5: आपने दीदी के साथ सबसे ज्यादा मस्ती कब की?
3: दीदी के साथ क्लास दीदी ने मेरी बहुत ली, पर मस्ती मैंने नहीं की।
5: अच्छा, शो के रिकॉर्डिंग के टाइम तो लेकिन मजा जरूर आया होगा।
3: हाँ, ऐसे दीदी भी अच्छी हैं।
5: बाकी मजा आता है रिकॉर्डिंग में?
3: हाँ।
5: अच्छा, ये तो हुई मस्ती की बात। अब ये बताओ, आप लोगों ने यहाँ आके सीखा बहुत कुछ होगा।
3: हाँ,
5: है ना।
3: हाँ,
5: कुछ तो नया हमें सीखने को मिला ही है।
4: हाँ जी।
5: तो सबसे पहले कौन बताएगा कि आपने नया रेडियो पे आके क्या सीखा?
4: मैं बताऊंगा।
5: अच्छा बताओ।
4: मैं जब फर्स्ट टाइम रेडियो पे आया था तब बहुत सारे लोग थे, जैसे अब हम सभी बैठे हैं, तो उनमें से शशि भैया को छोड़ के बहुत से लोग थे। तब की बात है, दृष्टि और मैं नए नए आए थे। उसके बाद से आना शुरू किया तो पहले भी आया करता था। तब मैंने एडिटिंग सीखी थी, और वो मैंने एडिटिंग नाम तो सुना है लेकिन कभी की नहीं थी और ना कभी देखी थी। तो जब पहली बार किया था तब मेरे को एकदम अलग फीलिंग थी और अलग खुशी थी कुछ नया सीखने में। फिर बाद में आगे बढ़ते बढ़ते एडिटिंग भी करने लगे। फिर बाद में दीदी ने बोला कि दूसरी उन्नति दीदी है, उनके साथ बैठ के एक शो भी करना, बच्चों की शो है वो उड़ान, तो वो उसमें भी कुछ नया किया। तो मतलब कुछ ना कुछ करते करते मैंने कुछ अलग अलग सीखा है।
5: अरे वाह, आपने तो बहुत कुछ सीखा। एडिटिंग भी सीखी, शो करना भी सीखा,
4: और कभी कभी लाइव भी गया हूँ।
5: लाइव भी गए हो आप?
4: हाँ जी।
5: अरे वाह, तो लाइव में आपने क्या सीखा, सबसे अच्छा आपको क्या लगा?
4: लाइव में सबसे अच्छी बात है, मतलब हम कुछ ना कुछ नया बोलते रहते हैं, लेकिन जब कुछ सोचने वाली बात हो तो कुछ सोचो और नया अगर सीखे उसमें से, तो बात ऐसी है कि जो दूसरे लोगों के व्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स जब वो आते हैं, तब उनको सोच समझ के जब हम बोलते हैं, वो नई चीज मेरे को उसमें करने में बहुत अच्छा लगा।
5: सोच समझ के जल्दी जल्दी बोलना।
4: हाँ जी,
5: है ना। और आदि, आपने क्या सीखा अब तक?
7: मैं जब सबसे पहले आया था, मैं अपनी दीदी के साथ आया था, सताक्षी दीदी के साथ, तो मैंने पहले रिकॉर्डिंग करना सीखा था, फिर थोड़े दिनों बाद एडिटिंग करना सीखा था।
5: अच्छा, आपने भी एडिटिंग सीखी। और रिकॉर्डिंग में क्या सीखा आपने, और आप क्या क्या सुनाते थे माइक पे पहले जब आए? तो
7: दीदी के साथ स्टोरी वगैरह सुनाता था।
5: मतलब आपने स्टोरी पढ़ना सीखा, सुनाना सीखा, है ना। और सैंडी, आपने क्या सीखा?
3: दीदी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा, पर सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर सीखने को ये मिला कि मेरी बोलने के तरीके बहुत सुधरे, क्योंकि ना मुझे पहले बोलने में थोड़ा क्या शब्द गलत निकलते थे, कोई शब्द बोलने से पहले मतलब कुछ वर्ड का फंबलिंग होता था, वो काफी सीखा। फिर बाद में ये सब सीखा तो मेरे दोस्तों ने मुझे बोला भी कि तेरे मतलब कि वर्ड्स अच्छे आते हैं, और अब तू मुझे ऐसा लगता है कोई ने बड़ा बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है, तो मुझे ये सीखने को मिला। और यहाँ पर मुझे संगीत अभी चल रही है म्यूजिक, तो उसमें थोड़ा थोड़ा म्यूजिक भी सीखा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ।
5: एक्चुअली कमियाँ तो हम सब में होती हैं।
3: हाँ।
5: लेकिन जब हम उन्हें फेस करते हैं, उन्हें ट्राई करते हैं, तो फिर हम कुछ नया सीखते भी हैं और आगे भी बढ़ते हैं।
3: हाँ।
5: है ना, जैसा सैंडी ने किया। सैंडी तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, तो हम सबको एक बार तालियां बजानी चाहिए सैंडी के लिए।
3: थैंक यू।
4: मैंने एक और चीज सीखी, जब हम शोज करते थे तब कृष्णा दीदी से मैंने ये बात सीखी कि जब हम स्टोरी सुनाते हैं, पोयम गाते हैं, तो उसमें बोलने का ढंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, कहाँ कम हो जाए, कहाँ किस तरह की आवाज निकले, कहाँ फनी वॉइसेस निकले।
3: हाँ, ये तो मैंने भी थोड़ा थोड़ा सीखा।
4: और संगीत प्रैक्टिस से मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं संगीत में थोड़ा अच्छा हो रहा हूँ, तो प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए, मैं और अच्छा हो सकता हूँ।
5: बिल्कुल, प्रैक्टिस ही तो हमें परफेक्ट बनाती है ना। कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
3: हाँ दी,
4: बिल्कुल।
3: हाँ दी।
5: और शशि आपने क्या सीखा?
8: मैंने इस ट्यूब के अंदर पहले सैंडी भैया के द्वारा मैं यहाँ पर आया और दीदी से बहुत बहुत ज्यादा हमने ज्ञान लिया। मैं सबसे पहले दीदी से धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि दीदी ने मेरे को बहुत मतलब कॉमिक्स किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से शब्द को पहचानना और किस तरह से बोलना है और उसकी जो स्पष्ट है उसको प्रकट करना है किस तरह से, ये बहुत अच्छी तरह सीखा। और एडिटिंग करना भी बहुत अच्छी तरह सीखा यहाँ पर रेडियो के अंदर।
5: एडिटिंग सीखी और शब्दों को कैसे बोलना है ये सीखा, क्योंकि पढ़ने और बोलने में तो अंतर होता है
8: और किस तरह फीलिंग के साथ बोलना है वो भी बहुत सीखा।
5: अरे वाह, आप लोगों ने तो काफी सारी चीजें सीखी हैं।
4: रेडियो मधुबन में मेरे पापा भी आया करते थे तो उन्होंने कुछ कोशिश किया अलग अलग तरीके, कुछ कुछ एक्सरसाइज, जैसे सैंडी भैया ने बताया कि उनकी जो वॉइस है तो पापा ने मतलब कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस करवाई थी तो वो एक्सरसाइज के द्वारा भी कुछ ना कुछ नया सीखने मिला। जैसे अब सैंडी भैया, हम लोग कब अपने मन को बिल्कुल एक जगह स्थिर रखना चाहिए, एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए, जैसे अगर हम लाइव जा रहे हैं तो कहाँ हमें न्यूट्रल रहना चाहिए ताकि हम गलत ना बोल दें या फिर हमारे वर्ड्स ओवरलैप ना हो जाए, तो वो प्रैक्टिस किए। तो मैंने जब वो प्रैक्टिस की तो मेरे को भी लगा कि मेरे कभी कभी शब्द ओवरलैप होते थे, वो भी होना कम हुआ है।
5: मतलब आपने फोकस करना भी सीखा।
4: हाँ जी।
5: इससे तो आपको हर फील्ड में बहुत ही हेल्प मिलती है, चाहे पढ़ाई हो चाहे स्पोर्ट्स।
4: हाँ जी,
5: है ना,
4: कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इससे मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं।
5: अरे वाह, रेडियो का फायदा मार्क्स पे। चलो एक बार यश के लिए भी ताली बजा दो भाई। तो मुझे लगता है बहुत सारी मेमोरीज रिफ्रेश हो गई है ना।
3: हाँ दीदी।
5: अच्छा अब ये बताओ, एक कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है या ऐसी प्रॉब्लम है जो आप लोगों ने फेस की, आप लोगों को लगा कि आपको रेडियो में दिक्कत हो सकती है या प्रॉब्लम हो सकती है, या आपने महसूस की कि अरे ये मैं कर पाऊंगा ये मैं नहीं कर पाऊंगा?
4: हाँ, मेरे पास थी कि जब दीदी ने मेरे को पहली पहली बार कहा था कि शो करना है और उन्होंने कहा था कि मतलब हमारे गाँव जा रहे थे, उन्होंने कहा था आने के बाद हमारे स्कूल भी शुरू होने वाले थे और कुछ 10-15 दिन ही थे और दीदी ने हमसे कहा था कि 10-15 दिन में आप पूरे रेडी हो जाओगे। हर समय मेरे मतलब सुबह शाम यही चलता था दिमाग में कि कैसे 10-15 दिन में मैं इतना मतलब पिकअप करके शो करूं, मतलब डर बैठा रहता था कि कैसे होगा। जब आए प्रैक्टिस की लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में कुछ नहीं आता था। अब मेरा दोस्त आकाश साथ में हम दोनों बैठ के कुछ ना कुछ बोलते ही रहते नए नए, मतलब उस समय कुछ ना बोलता था और अभी कुछ ना कुछ नया बोलता हूँ, तो चेंज है। पहले लगता था कि नहीं होगा, अब लगता है कि हाँ और अच्छा हो सकता है।
5: पहले डिफिकल्ट लगता था कि मैं इतना नया नया कैसे करूंगा।
4: हाँ जी।
5: हाँ आदि आप बताओ।
7: पहले मैं जब शो करता था तब मुझे थोड़ा कहानी वगैरह बोलने में थोड़ी डिफिकल्टी होती थी क्योंकि पहली पहली बार आया था ना इसलिए।
5: और अब
7: ठीक हो गया थोड़ा थोड़ा।
5: आपकी प्रैक्टिस हो गई है। तो आदि ने अभी पोएम और कहानी बोलना, जोक्स बोलना सीख लिया है ना। अच्छा और सैंडी आप बताओ।
3: दीदी मुझे तो कोई ना स्क्रिप्ट बोलना हो और कोई वर्ड्स से सौ और शाह मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैं सोचता था कि कब ठीक होगा। फिर पंकज ने मेरी काफी हेल्प की, हाँ ऐसा कर। फिर धीरे धीरे थोड़ा मैंने करा और अभी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर लेता हूँ, कोई भी स्क्रिप्ट हो तो मैं बोल लेता हूँ। पहले मुझे बोलने में बहुत टाइम लगता था, अब कर बोल लेता हूँ मैं।
5: और आप लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा।
4: हाँ जी,
5: है ना। शशि आप बताओ।
8: मैं रेडियो में आया था, मेरे को पहले दीदी ने बोला कि आपको कॉमिक्स करनी पड़ेगी ऐसे, तो मैं कॉमिक्स के लिए बहुत डरता था किस तरह से बोलना है, किस तरह से फीलिंग के साथ बोलना है, लेकिन मैं बोल नहीं पाता था। थोड़ा बहुत सीखा मतलब इनके फ्रेंडों के साथ में, मैंने थोड़ा बहुत सीखा किस तरह से बोलना है किस तरह से नहीं। तो फिर जब भी मेरी जो शब्द थे उसकी स्पष्टता नहीं आ रही थी तो दीदी ने मेरे को सिखाया अच्छी तरह से किस तरह से बोलना है, वो भी मैंने सीखा है और बहुत कुछ रेडियो सीखा मैंने।
5: जो हमारी शब्दों की स्पष्टता है, हमें कैसे बोलना है कैसे रखना है, ये हमें सीखने को मिला। वेरी गुड शशि, ये तो बहुत अच्छी बात है और ये तो हमें जिंदगी में हमेशा काम आएगा, है ना। अच्छा अब एक बात बताओ, आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अपने बारे में थोड़ा सा और बताओ।
3: दीदी मैं फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर।
5: अच्छा सैंडी बीकॉम फर्स्ट ईयर, लेकिन जब रेडियो में आए थे तब
3: 12th में था।
5: अब बड़े हो रहे हैं। और आदि?
7: मैं अभी 6th में हूँ, जब रेडियो मधुबन में आया था तब 5th में था।
5: अच्छा मतलब आदि यहाँ पे सबसे छोटा है ना। और
4: मैं तो 7th में हूँ और जब रेडियो में आया था तब भी 7th में ही था।
5: अच्छा
3: तरक्की नहीं हुई तुम्हारी?
4: होगी ना, जरूर होगी।
5: हाँ अभी यश 8, 9, 10 सब रेडियो में सीखते सीखते आगे बढ़ना है ना।
4: हाँ जी।
5: और शशि?
8: मैं तो बीएससी फाइनल ईयर में था अभी।
5: बीएससी फाइनल ईयर आप कर रहे हो, अरे वाह। तो फिर तो शशि भैया से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना?
3: हाँ, हाँ जी, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी है।
4: इनके पास कोई भी मैथ्स के सम ले आओ ना कर लेंगे।
5: अरे वाह,
4: इसीलिए मैं मदद ले सकता हूँ मुझे लगता है।
5: बिल्कुल, मतलब देखो रेडियो में आने से एक और फायदा।
4: हाँ,
3: अच्छा। कोचिंग।
5: अच्छा मुझे ये बताओ, आप लोगों ने अब तक रेडियो में क्या क्या किया है? आदि, आपने क्या क्या किया है?
7: मैंने कहानियाँ वगैरह की, वो उड़ान में किया, बाल सभा के ड्रामास किए और उड़ान के लिए कॉमिक्स की।
5: और यश, आपने?
4: मैं तो अब शोज करता हूँ, तो उसमें अलग अलग तरीके से कौन सी कहानी सुनाने का ढंग, पोएम्स, जोक्स और लाइव जाते समय किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर रखना है वो सीखा है।
5: और आपने कौन से टॉपिक पे कब लाइव किया आपने?
4: यो जंक्शन में किया है शो मैंने लाइव, तब मेरे को टॉपिक तो याद नहीं है, लेकिन एक कॉल पे मैंने जवाब दिया था। और बाल सभा के 30 ड्रामास किए हैं।
5: अरे वाह,
4: उसमें नए नए कैरेक्टर्स थे अलग अलग तरीके के।
5: और शशि, आपने?
8: मैंने तो उड़ान शो के अंदर कॉमिक्स किया, स्टोरी को बोला उस तरह से किया,
5: कॉमिक सुनाए उड़ान में। और सैंडी, आपने?
3: मैंने बहुत कुछ किया, एडिटिंग किया पर आधा किया छोड़ दिया, समझ में नहीं आया तो एडिटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर हम लोगों ने आपके साथ शो भी किया था, बच्चों के दिन और विकार भी रहे। और फिर हमारे ड्रामास में किया हम लोगों ने 30 एपिसोड, जो कि यश ने बताया, उसमें मुझे ना करेक्टर बहुत अच्छे अच्छे मिले, कभी राजा के कभी नेगेटिव रोल, पर ज़्यादातर मुझे ना अच्छे रोल ही मिले। विनोद भाई के साथ एक दो बार लाइव बैठा हूँ जंक्शन पे। और मुझे अभी तक याद है कि मेरा पहला शो था मदर्स डे पर, जो कि हमने लाइव किया था, वो मेरा पहला शो था और मुझे अभी तक याद है।
5: पहला शो अपना हमेशा याद रहता है ना?
3: हाँ,
5: है ना?
3: वो मेरे सबसे अच्छा शो था, मेरी मेमोरीज मुझे अभी तक याद है।
5: अच्छा चलो, पहला शो सैंडी ने तो बताया, मुझे ये बताओ आप लोगों की फर्स्ट डे, फर्स्ट शो या फर्स्ट रिकॉर्डिंग की मेमोरी कैसी है?
4: जिन पहले दिन मैं रेडियो पे आया, मैंने जब उड़ान की रिकॉर्डिंग की थी, तब दीदी को मेरे ऊपर बहुत, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी थी मेरे मुंह से सिर्फ एक शब्द उगलने के लिए भी। उस समय में बस कोई आइडियाज ही नहीं आते थे, एकदम नया था, ऊपर से थोड़ी शर्म भी आती थी बोलने में, हिचकिचाहट थी।
5: हिचकिचाहट थी, अब तो नहीं है?
4: अब तो पता नहीं कहाँ चली गई।
5: और सैंडी?
3: मैं पहले दिन पंकज के साथ आया था, और फिर दीदी ने बोला फॉर्म भरा, हम लोगों ने फॉर्म भरा, फिर एडिटिंग के ले गए मुझे। एडिटिंग पहले दिन अच्छा लगा, दूसरे दिन अच्छा लगा, तीसरे दिन मैंने बोला अरे क्या एडिटिंग को समझ में ही नहीं आता। फिर हमारी प्रथम गुरु तो आप ही है ना, आपने हमें सिखाया था, मुझे याद है आईटी ऑफिसर, मुझे और पंकज को और भुना को, फिर कैसा किस तरह पढ़ना वो सब। फिर पहला सो तो हमारा जो लाइव ही था मदर्स डे पर, वो मुझे अभी तक याद है।
5: मदर्स डे पे लाइव किया था?
3: हाँ, पहला शो मैंने लाइव किया था।
5: कुछ चीजें हमें पसंद होती हैं, कुछ चीजें हमें पसंद नहीं होती हैं।
3: हाँ।
5: लेकिन हमें दोनों चीजें करनी होती हैं, है ना? और धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता भी जाता है।
3: हाँ।
5: और आदि, आप बताओ पहले दिन जब आप रेडियो में आए।
7: पहले दिन मैं दीदी के साथ वो पवित्र भाई के पास रिकॉर्डिंग सीखने गया था।
5: और आपने क्या सीखा था
7: वहाँ पे? रिकॉर्डिंग्स वगैरह सीखी थी।
5: अच्छा लगा था आपको?
7: थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा था।
5: और अभी थोड़ा थोड़ा लगता है कि बहुत बहुत लगता है?
7: बहुत ज्यादा।
5: अरे वाह, थोड़ा थोड़ा से बहुत ज्यादा। और शशि, आप बताओ।
8: मैं रेडियो में आया था, सबसे पहली बार आया था, तो फिर मैं देखा किस तरह से वो रेडियो में लाइव शो करते हैं, किस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, सीखा था। और एडिटिंग भी देखा किस तरह से सीखा, पंकज से सबसे पहले मैंने एडिटिंग करना सीखा, किस तरह से एडिटिंग की जाती है। और दीदी ने भी बहुत सिखाया था, मतलब किस तरह से बोलना है,
5: मतलब आपने टेक्निकल भी सीखा और बोलना भी सीखा पहले ही दिन?
8: पहले दिन सिखाया था उन्होंने, पंकज भैया
3: ने। शशि ने दीदी से बहुत कुछ सीख लिया।
4: मैंने एक और चीज की है, जब भी हमारे फैमिली मेंबर्स या कोई भी बाहर से आते थे ना, कभी कभी पूरे रेडियो है ना घुमाना, या फिर पूरे शांतिन घुमाने में मेरे को बहुत मजा आती थी, मैं सोचता था कि कब मैं घुमा। तो मेरे एक बार यहाँ पे फैमिली मेंबर्स में से आए थे बॉम्बे से, तो मैं पूरा रेडियो मधुबन से यशवंत भाई से मिलाया था, सबसे मिलाया और लाइव शो दिखाया था, रूम दिखाया था, और यहाँ पे भी स्टूडियो में लेकर आया था, तो उनको मतलब अलग अलग चीजें पता चली थी, तो उनकी इच्छा थी यहाँ आने की, मैंने पूरी की।
5: मतलब उसकी भी आपको बहुत खुशी है ना?
4: हाँ जी जी।
5: हाँ, तो देखो रेडियो से जुड़ी कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं, आज फिर से रिफ्रेश हो गया ना? और सबको कैसा महसूस होता है आज रेडियो में?
3: बहुत अच्छा,
7: बहुत ज्यादा,
4: एकदम मस्त,
5: बहुत अच्छा,
3: तो लगता अपना घर है ये। पहले थोड़ी हिचकिचाहट थी, अब नहीं है,
4: अभी ऐसे जाने का मन ही नहीं करता।
5: और आगे जाके आप लोग रेडियो पे क्या करना चाहते हो?
3: मैं एक बहुत बड़ा आरजे बनना चाहता हूँ।
5: अच्छा, सैंडी आरजे बनना चाहता है। और यश?
4: सेम, बट लेकिन डबल ट्रिपल मेहनत के साथ साथ हर अपने शो को पूरी तरह से अच्छे से सुनना, उसकी गलतियों को देखना कि कहाँ अभी भी मतलब लगे कि कहाँ थोड़ा बोर हो रहा है या फिर कहाँ कुछ गलती हो रही है, तो उसको बार बार चेक करना ताकि मतलब शो एक एक करते करते ऐसा हो जाए कि मतलब स्पेशल हो। रेडियो मधुबन से शो यहाँ से निकला था, हाई लेवल पे पहुँचाना है जो मैं कर रहा हूँ अभी, उड़ान का शो।
5: ये तो बहुत अच्छा है, मैं क्योंकि हमें मेहनत तो करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए, और मेहनत करने कायम रखेंगे तो सफल तो होंगे ही, है ना। और बहुत जल्दी हम जरूर सुनेंगे, सैंडी को भी सुनेंगे और यश को भी सुनेंगे, सुनते ही रहते हैं। और आदि, आप बताओ?
7: मुझे आगे जाके बड़ा आरजे बनना है।
5: शशि?
8: मैं रेडियो के अंदर टेक्निकल एरिया के अंदर जाना चाहता हूँ, मतलब किस तरह से रेडियो विकसित हुआ, किस तरह से रेडियो का विकास हुआ, उस तरह से।
5: आप टेक्निकल पार्ट लर्न करना चाहते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रेडियो जब चलता है तो टेक्निकल और आपका जो ऑन एयर आप बोलते हैं दोनों की इक्वली मेहनत के साथ चलता है। तो बच्चों, आज हमने बहुत सारी बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आपकी मेमोरी शेयर की, और ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हम बनाते रहेंगे, आगे भी जुड़ते रहेंगे और अपने सभी श्रोताओं के साथ भी नई नई मेमोरीज क्रिएट करते रहेंगे, है ना?
6: हाँ दीदी।
5: चलो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और करेंगे ढेर सारी बातें। तब तक के लिए बाय बाय।
6: बाय बाय।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाए थे। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है। ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 5 महापरिनिर्वाण। पृष्ठ संख्या 66 महापरिनिर्वाण। निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। इसी समय लिच्छिवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं, अतः वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वृज्जियों को भाग्यशाली मानता हूं जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राजा प्राप्त हुए हैं। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेतक है, वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छिवी सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर

कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे, अतः अब आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूं, तुम चिंता मत करो, मैं आज से तीसरे मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहां से चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी, सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मरते लोक, दिव्य लोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो, मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूं, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूं। लिच्छवियों पर अनुग्रह। इस प्रकार की हलचल देखकर आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसीलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर चिरंतन निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उसके गुरु थे, स्वजन थे और सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। विलाप करते हुए आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है, शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है। इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा? शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता? हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं। हां, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्द्वंद्व होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे, वे निश्चित ही निर्वाण पद प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे, तभी उनके निर्वाण का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवी

भाइयों से कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूं। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संतप्त होकर यहां आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना और ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षणभंगुर है, इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, इस रम्य नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह गए हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक ना करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। पृष्ठ संख्या 69। इस प्रकार लिच्छवियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी लिच्छवी भी रोते बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा, विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी, क्या भगवान भी अनित्य है। विलाप करते हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी, परंतु जैसे लहर हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती वैसे ही वे घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभाशून्य हो गई। जैसे विद्या के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धान के खेत शोभाहीन लगते हैं, वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई थी। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया, न ही किसी ने जल ग्रहण किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुंह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूं। उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए और कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है और जो विनय में है आप उसी का अनुसरण कीजिए। जिसमें विनय नहीं है वह ना मेरा वचन है और ना धर्म। पवित्र लोगों के वचन वैसे ही ग्रहण करना जैसे कि स्वर्णकार स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है। इसलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र को अनुचित रीति से ग्रहण करता है वह अपने को ही क्षति पहुंचाता है। जैसे तलवार को अनुचित रीति से ग्रहण करने वाला अपने आप को ही काट लेता है। इस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया। पृष्ठ संख्या 70। वहां उन्होंने अपने भक्त चुंद के घर अंतिम भोजन किया।
अपनी शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुंद को उपदेश दिए और फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चुंद के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक सुंदर उपवन में एक सरोवर के तट पर कुछ समय विश्राम किया। तदुपरांत उन्होंने हिरण्यवती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद को आदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत निर्वाण प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तैयार किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, शैया तैयार है। तब वह पुरुष सिंह चिर निद्रा के लिए शांत चित्त से शैया के निकट गए। वे हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर और अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाई करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शांत हो गईं, सभी पक्षी निशब्द हो गए और सभी जीव जंतु मौन, मानो सारा संसार स्तब्ध हो गया हो। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध को निर्वाण लेते हुए दिखाया गया है। आइए अब सुनते हैं पाठ। सूर्यास्त के समय जैसे पथिकों को घर जाने की शीघ्रता होती है, वैसे ही सभी उपस्थित शिष्यों को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होने लगी। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे प्रयाण की सूचना दे दो, वे भी निर्वाण देख लें, जिससे उन्हें बाद में पश्चाताप ना हो। पृष्ठ संख्या 71। आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित किया कि तथागत अब अंतिम शैया पर हैं। यह सुनकर सभी मल्ल अत्यंत व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए निकल पड़े। वे शीघ्र ही महामुनि के पास आए और अपने आंसुओं से भगवान बुद्ध के चरणों को भिगोते हुए उनके सन्मुख मौन होकर खड़े हो गए। सभी मल्लों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है, यह दुर्लभ और काम्य लक्ष्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुखमय पुण्य प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रियातीत, शांत और दिव्य रूप है, जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भौतिक शरीर आज निवृत्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर एक वृद्ध मल ने कहा, सुजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा चित्त दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। जगत के हितैषी के जाने पर भला कौन शोक नहीं करेगा? शोचनीय तो वे हैं जिन्होंने मुनि के दर्शन करके भी सुमार्ग का अनुसरण नहीं किया। सोने की खान में रहकर भी जो दरिद्र ही रहा। वृद्ध मल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्वाण नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है, वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। औषधि के सेवन के बिना मात्र वैद्य के दर्शन से रोग से मुक्ति नहीं होती। इसीलिए श्रेय का आचरण करो। जीवन तेज हवा के बीच दीप शिख की तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनि के दर्शन कर और उनके उपदेश सुनकर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया और आदेशानुसार वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। पृष्ठ संख्या 72। महापरिनिर्वाण।
मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया। वह एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्वाण के अंतिम क्षणों में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूं। आनंद ने सोचा कि कहीं यह सन्यासी बुद्ध से शास्त्रार्थ न करने लगे, इसीलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा, हे आनंद, इस जिज्ञासु मुमुक्षु को रोको मत, आने दो। यह सुनकर सुभद्र सविनय सुगत के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवन, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वह अन्य सभी मार्गों से भिन्न है। कृपा पुंज, वह मार्ग कैसा है, मुझे बताने की कृपा करें। मैं जिज्ञासावश आपके पास आया हूं, विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उसे अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। इसे सुनते ही सुभद्र की ज्ञान दृष्टि सम्यक रूप से खुल गई। वह उसी तरह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंच जाने पर करता है। उसने गदगद होकर कहा, मैं अब तक जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा था वह श्रेयस्कर नहीं था, आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर सुभद्र ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर निवेदन किया, हे पूज्य गुरुवर, आपकी मृत्यु का दर्शन करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, अतः मैं उससे पहले ही अपनी देह त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूं। ऐसा कहकर त्रिदंडी सुभद्र ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, शैल की तरह स्थिर होकर बैठ गया और एक ही क्षण में वायु से बुझे दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त कर गया। संस्कार के ज्ञाता तथागत ने तब सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और कहा, सुभद्र मेरा उत्तम और अंतिम शिष्य था। आधी रात बीतने पर जब चांदनी के प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रातिमोक्ष शील का सार है, बुद्धि का मूल है, इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तथागत ने प्रातिमोक्ष के सारे नियम विस्तार से समझाए और अंत में कहा, मैंने गुरु का कर्तव्य निभाया है, आगे तुम लोग साधना करो, विहार, वन, पर्वत, जहां भी रहो धर्म का आचरण करो। यदि मेरे बताए आर्य सत्यों के विषय में किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तथागत के मुख से अंतिम उपदेश ग्रहण करने के बाद सभी शिष्य मौन और शांत बैठे रहे तो अनिरुद्ध ने तथागत से निवेदन किया, हे सुगत, आप द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है। पृष्ठ संख्या 73। अनिरुद्ध की बात सुनकर तथागत ने कहा, हे अनिरुद्ध, सभी की मृत्यु निश्चित है, अब मेरे जीवित रहने से संसार को कोई लाभ नहीं। स्वर्ग और भूलोक में जो भी दीक्षित होने योग्य थे वे सभी धर्म में दीक्षित हो गए। अब इन्हीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा और उससे संसार में स्थायी शांति स्थापित होगी। तुम सब लोग शोक त्याग कर जागरूक रहो, यही मेरा अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया,
फिर दूसरे ध्यान में, और इस तरह क्रमशः ध्यान के अनेक स्तरों को पार कर पुनः चतुर्थ ध्यान में आ गए और सदा के लिए शांत हो गए। महापरिनिर्वाण के बाद, भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश। पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो, यह सारा संसार नश्वर है, जहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु। जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। किसी मुनि श्रेष्ठ ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह संसार असार है, यहां सभी कुछ नश्वर है। जो सारे लोक का गुरु था वह भी आज काल कवलित हो गया। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया। जैसे बुद्धि के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही शाक्य मुनि के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है। भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार जैसे ही मल्लों ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दौड़े चले आए और विलाप करने लगे। फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्णमय सुंदर शिविका में स्थापित किया। विविध प्रकार की सुगंधित फूल मालाओं से भक्तिपूर्वक पूजा की, शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और चंवर डुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। पृष्ठ संख्या 74। भक्तिपूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए। फिर वे नगर के नाग द्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरु तथा वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया। दीपक जलाकर मल्लों ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था, उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आए, उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चिता में स्वतः ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया, परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रहीं। उन्हें चिता की अग्नि न जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा। उसे अपने नगर के मध्य ले गए। लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, इस घट में वे धातु यानी अस्थियां स्थापित हैं जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकी। किसी ने कहा, ये अस्थियां मंगलमय हैं, अमूल्य हैं, हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। यहां एक चित्र है जिसमें बुद्ध के महानिर्वाण को दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 75। किसी अन्य ने कहा, अहो, काल कितना निष्ठुर है,
इसने महामुनि को भी नहीं छोड़ा, जिसके धर्म और यश से सारा चराचर जगत चमत्कृत है। बाद में मल्लों ने अस्थि कलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थि कलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की विधिवत पूजा अर्चना की, परंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे। एक दिन 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए और उन्होंने अस्थियां मांगी, परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। दूत लौट गए। उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही। दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए। उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। वे अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने कुशपुर यानी कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे। पुरवासी मल्ल भी संगठित होने लगे। उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए। वीरों की पत्नियों ने सैनिकों को तिलक लगाए और रणगीत गाए। सभी सैनिक सिंहों की तरह गरजने लगे और शंख बजाने लगे। यहां एक चित्र है जहां हम सेना को प्रस्थान करते हुए देख सकते हैं। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 76। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने 7 पड़ोसी राजाओं के पास जाकर निवेदन किया, राजन, बाहर के शत्रुओं को शस्त्रों से जीतना सरल है, परंतु परकोटे में बैठे शत्रु को जीतना सरल नहीं। यदि नगर को घेर कर अंदर के शत्रुओं को जीत भी लिया तो भी वह धर्म युद्ध नहीं होगा। इसे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए। शस्त्र से जीते गए मनुष्यों का मन फिर से कुपित हो सकता है, परंतु शांति के उपायों से जीते गए मनुष्यों का मन सदा के लिए शांत हो जाता है। आप लोग जिस शाक्य मुनि का सम्मान करना चाहते हैं उसी की आज्ञा से, उसी के उपदेशों के अनुसार शांति का उपाय कीजिए। द्रोण की बातें सुनकर 7 राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं। हम लोगों की धर्म में प्रेम में पूरी आस्था है, परंतु हमें अपने बल पर भी पूरा विश्वास है। हमने शाक्य मुनि में अतिशय भक्ति के कारण ही शस्त्र ग्रहण किया है। हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं। यदि यह कार्य बिना युद्ध हो जाए तो हमें कोई विरोध नहीं है। आप हमारे दूत बनकर जाइए और मल्लों को समझाइए। हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। हम तो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। इस प्रकार पड़ोसी राजाओं से बात करके ब्राह्मण द्रोण कुशीनगर गए और उन्होंने मल्लों को समझाया। हे मल्लों, नगर के बाहर जो 7 राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं उनके पास अमोघ आयुध हैं और उनका बल अजेय है, परंतु वे शाक्य मुनि के धर्म के कारण ही डरे हुए हैं। वे यहां राज्य प्राप्ति के लोभ से नहीं आए और न ही अहंकारवश आए हैं। भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं वैसे ही वे हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी। इसीलिए ये राजा भी शाक्य मुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं। शाक्य मुनि का उपदेश है कि धन की कृपणता उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा धर्म की कृपणता है। राजाओं का संदेश है कि यदि आप भगवान बुद्ध की धातु यानी अस्थियां नहीं देना चाहते तो
नगर के द्वार से बाहर आइए और वीर अतिथियों का स्वागत कीजिए। पृष्ठ संख्या 77। द्रोण ने आगे कहा, यह राजाओं का संदेश है जो सद्भावना और साहस से भरा है। मैंने इनकी बातों पर धैर्यपूर्वक विचार किया है, अतः मेरी भी बात सुनिए। कलह से न किसी को सुख मिलता है और न ही धर्म होता है। शाक्य मुनि ने सदा क्षमा का उपदेश दिया है। जिस महामुनि ने क्षमा से स्वयं शांति प्राप्त की और हजारों लोगों की शांति प्रदान की, उस दयालु के निमित्त व्यर्थ रक्तपात उचित नहीं है। इसीलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए, यही आपका धर्म है। इससे आपको यश मिलेगा, ये सभी राजा आपके मित्र हो जाएंगे और सारी जनता को शांति मिलेगी। यहां एक चित्र है जिसमें ब्राह्मण द्रोण सैनिकों से या मल्लों से शांति वार्ता कर रहे हैं। द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, आपके वचन बड़े कल्याणकारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले आए हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं को 8 भागों में बांटा। एक एक भाग प्रत्येक राजा को दिया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर सातों राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण ने भी अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए वह घट लिया जिसमें पहले सभी अस्थियां रखी थी। पिसल जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली। पृष्ठ संख्या 78। इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थीं। द्रोण के घट वाला नवा स्तूप बना और 10वां स्तूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्तूपों के निर्माण के बाद राजा सामंत तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे। स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया। आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मोपदेश सुने थे। इसीलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से निवेदन किया कि संसार के कल्याण के लिए वे सभी धर्मोपदेशों को दोहराएं। आनंद ने एवं मे सुतम, यानी मैंने ऐसा सुना है, इस तरह कहते हुए जैसा भगवान बुद्ध से सुना था वैसे ही क्रमशः प्रसंग, समय, ध्यान आदि के साथ सभी धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्मशास्त्र का स्वरूप निश्चित किया। कालांतर में देवानाम प्रियदर्शी का जन्म हुआ। उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके कारण वह चंड अशोक या धर्मराज अशोक कहलाने लगा। उसने धातु गर्भित स्तूपों से धातु लेकर अनेक भाग किए और उन्हें सैकड़ों स्तूपों में स्थापित किया। यह एक चित्र है जहां पर हम चंड अशोक को स्तूपों की स्थापना करते हुए देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 79। जब तक जन्म है तब तक दुख है, इसीलिए पुनर्जन्म से मुक्ति के समान कोई सुख नहीं है। इसीलिए और कौन उतना पूज्य हो सकता है जितना कि वह जिन्होंने जन्म, जरा, व्याधि
और मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। प्रश्न एक, मार ने बुद्ध को क्या याद दिलाया? उत्तर में बुद्ध ने क्या कहा? दो, आनंद कौन था? उसे क्या जानकर आघात लगा? तीन, तथागत ने परिनिर्वाण से पूर्व मल्लों को क्या समझाया? चार, अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा? पांच, मल्लों और पड़ोसी राजाओं के बीच युद्ध की संभावना क्यों उत्पन्न हो गई और यह संघर्ष कैसे टल गया? छह, भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रह करने का भार किसे सौंपा गया और क्यों? यहां अध्याय पांच समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और 13 जुलाई की बातें आपसे शेयर करूंगा। आज विशेष असद देबू, बीना रॉय, बिशन राय सिंह, केशरबाई केरकर, सुनीता जैन, इन सभी का जन्मदिन है और इसके साथ ही आशा पूर्णा देवी, यशपाल शर्मा, इन सभी का पुण्य दिवस है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज शाम का समय है और शाम में चाय और शरबत का जो भी आपकी चॉइस हो बिल्कुल पीजिए और कुछ नहीं तो आराम से आप नॉर्मल पानी पीजिए। नॉर्मल पानी को अगर पीते हैं तो थोड़ा सा 2 ग्लास लीजिए, खाली एक भरा हुआ, और थोड़ा सा ऊपर नीचे उनको जो है अदली बदली पानी करते हुए फिर उसमें जो है जैसे ही मॉलिक्यूल्स की तरह जो है बूंदे ऊपर नीचे हो जाती है और फिर आप पी के देखिए, उसका पीने में आपको एक अलग फील आएगा। तो कभी कभी मस्ती से पानी भी पीजिए। पानी पीना भी अपने आप में एक आनंददायक होना चाहिए क्योंकि हर कर्म आप बड़े खुशी के साथ आनंद के साथ करके देखिए। आप हर एक्शन को अगर अलग तरीके से करते हैं तो आप अलग गिने जाएंगे, है ना। कहते हैं सफल लोग अलग कुछ नहीं करते लेकिन वो हर कार्य को अलग अंदाज में करते हैं, तो ये आपका स्लोगन बन जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: चलती हुई गाड़ी में बिना किसी उचित कारण के चैन खींचना कानूनी अपराध है। कृपया उचित कारण के बगैर चैन ना खींचे। रेल यात्रा के दौरान किसी भी मदद के लिए रेलवे कर्मचारी या पुलिस की सहायता लें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आइए बात करते हैं असद देबू के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही पॉपुलर भारतीय समकालीन नर्तक और कोरियोग्राफर थे। कथक के साथ साथ कथकली के भारतीय शास्त्रीय नृत्य रूपों का प्रशिक्षण लिया और फिर वे भारत में आधुनिक नृत्य के प्रणेता बने। कथक और कथकली में पारंगत असद देबू ने दोनों नृत्य विधाओं को मिलाकर अनूठी नृत्य शैली पेश करने के लिए ख्याति बटोरी। अपनी प्रयोगधर्मी शैली में उन्होंने 70 से ज़्यादा देशों में एकल सामूहिक और युगल नृत्य की प्रस्तुति दी है, तो है ना कमाल की बात। तो आइए ऐसे नृत्य डांसर के बारे में बात करेंगे। असद देबू का जन्म गुजरात के नवसारी में 13 जुलाई 1947 को हुआ। युवावस्था में गुरु प्रहलाद दास से कथक सीखा, बाद में उन्होंने गुरु ई के पनिकर के साथ कथकली का ट्रेनिंग लिया। अपनी प्रयोगधर्मी शैली में उन्होंने 70 से अधिक देशों में एकल सामूहिक जो नृत्य प्रस्तुतियाँ दी और इसमें शानदार करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न मुख्य कलाकारों जैसे कि पीना बॉश, एलिसन बेकर चेंज और पिंक पालोर के साथ काम किया और दुनिया के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी किया। असद देबू ने मणिरत्नम, विशाल भारद्वाज जैसे फिल्मकारों की फिल्मों को और मशहूर चित्रकार एम एफ हुसैन की फिल्म मीनाक्षी ए टेल ऑफ थ्री सिटीज के लिए कोरियोग्राफी की थी। साल 2002 में उस्ताद देबू फाउंडेशन की स्थापना की जो दिव्यांग समेत कमजोर वर्गों के रचनात्मक ट्रेनिंग प्रदान करती है। नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए असद देबू को 1995 में संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किए गए। आधुनिक नृत्य कला में योगदान के लिए मिले साहित्य नाट्य अकेडमी पुरस्कार के उदाहरण में लिखा था, देबू के रंगमंच की शैली के नृत्य के लिए शायद याद किया जाएगा जिसमें भारतीय कथा पश्चिम शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। तो असद देबू का निधन 10 दिसंबर 2020 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ जब वो 73 साल के थे। तो ये थी कुछ खास बातें असद देबू के बारे में, एक नृत्यक के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके भीतर संतोष का बीज बोता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए एक और शख्सियत के बारे में बात करते हैं। सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और शाम का समय है और मैं चाहूँगा कि इस शाम के समय को बिल्कुल यादगार बनाइए। अपने मानस पटल को देखिए और अपने विचारों को देखिए एक बार। क्या विचार चल रहा है आपके मानस पटल पर? किसी की कहानी सुनकर यानि देबू को सुनकर भी आपको कुछ लगा होगा कि एक व्यक्ति हो के किस तरह से नृत्य में अपनी पारंगत हासिल करके विश्व मानस पटल पर एक नया प्रयोग करके अपने आप को जो है एक नया पहचान दिया। तो हम भी ऐसा कुछ यूनिक चीज़ें कर सकते हैं, इसीलिए आपको ऐसे दिग्गजों की कहानी सुनाते हैं ताकि आप अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। तो आइए विश्व नारायण सिंह के बारे में बात करते हैं। भारतीय राजनीतिक थे जो 1984 से लेकर 1990 तक आसाम और मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार राज्यपाल रहे। इसके साथ 1991 से लेकर 1993 तक ये तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे और पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अतिरिक्त प्रभार भी इनके मौके मिले संभालने का और ये संभालते रहे। और इनका जन्म आज के दिन 1933 को पालुम जनपद के उदयगढ़ गांव में एक किसान परिवार में पैदा हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुआ और 1967 में विश्व नारायण सिंह पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए और 1976 में राज्यसभा के लिए चुने गए। केंद्र में संसदीय कार्य, आवास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति तक इन्होंने काम किया। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर, जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत गीत आपके लिए, अभी आपके मूड को रिफ्रेश करने के लिए सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आइए अब एक और ख़ास व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं जिनका जन्म आज ही के दिन है और भारत की बहुत ही पॉपुलर शास्त्रीय गायिका थी। जयपुर घराने के संस्थापक उस्ताद आला दिया खां की शिष्या थी। ये भी हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में ही केसर भाई केरकर ने संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया था और गाना भी शुरू कर दिया था। केसर भाई केरकर को कला क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा उनके कार्य को देखते हुए 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और एक और बहुत बड़ी उपलब्धि केसर भाई केरकर के नाम है, उनका गीत जिसका शीर्षक है जात कहा हो को अंतर्राष्ट्रीय यान वाइजर 1 और वाइजर 2 की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये एक ख़ास बात थी इनकी। और आइए इनके बारे में जानते हैं। पुर्तगाली के आधीन गोवा के केरी गांव में केसरबाई का जन्म आज ही के दिन 13 जुलाई 1892 को हुआ। आधुनिक शैली के संस्थापक कलाकारों में से एक इनको माना जाता है। गोवा के छोटे से तालुका पोंडा के गांव केरी से निकलकर केसरीबाई केलकर केरकर अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र के कोल्हापुर

आ गई। यहाँ से उन्होंने उस्ताद करीम खां की शागिर्दगी में सुरों को पहचान कर उनकी बारीकियाँ और अपनी पकड़ बनानी शुरू की। कुछ समय बाद वो वापस अपने गृहनगर में स्थित लमगांव वापस गई और गायक रामकृष्ण बुआ वाजे से संगीत के आगे की पढ़ाई पूरी की। इस तरह से ये वो दौर था जब भारत के दूर दराज से लोग बॉम्बे प्रेसिडेंटी पहुँचते थे। उस वक्त बॉम्बे एक व्यापारिक केंद्र के रूप में खुद को स्थापित भी कर चुका था और यहाँ पर सुविधाएं भी थी और अपनी कला को दूसरों तक पहुँचाने का ये एक अहम जरिया भी बना। 16 वर्ष की उम्र में केसरबाई केरकर अपने अंकल और माँ के साथ दोबारा बॉम्बे वापस आई। उनके गायन शैली से प्रभावित होकर बॉम्बे के एक स्थानीय व्यापारी सेठ विठलदास द्वारकादास ने उनके आगे पढ़ाई में मदद की। इस मदद से उन्होंने उस्ताद बरकतुल्ला खान से आगे की शिक्षा हासिल की। उन्होंने खान से गायन की दूसरी बारीकियाँ भी सीखी और पटियाला रियासत के बड़े संगीतकार थे बरकतुल्ला और सितार वादक भी थे। इस तरह से इनकी प्रोफेशनल जो है शुरुआत हो गई गायकी का। बरकतुल्ला खान ने लगातार 2 वर्षों तक केसरबाई केरकर को संगीत के विभिन्न आयाम सिखाए। इसके बाद उनके गुरु मैसूर रियासत के सबसे बड़े संगीतज्ञ बन गए थे। केसरबाई ने भास्कर बुआ बाखले से भी संगीत की शिक्षा हासिल की। केसरबाई ने करीब 11 वर्षों तक उस्ताद अलादीन खान से संगीत की शिक्षा हासिल की। कई आयाम स्थापित किए। केसरीबाई ने अपने पीढ़ी में वाली कई नए जो है किशोर अवस्था में विशेष रूप से उन्होंने शुरू किया था, तो आगे चल के इनको अच्छी जो है प्रगति मिली। किशोरी अमोनकर, गंगूबाई हंगल और हीराबाई बरोडकर ने अपनी गायन शैली को आगे बढ़ाया और केशरबाई केरकर ने उस वक्त विश्वविख्यात HMV के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। खुद ख्याल गायकी के तौर पर स्थापित किया उन्होंने और फिर नासा के दी साउंड ऑफ अर्थ में केसरीबाई की आवाज़ हुई। भारतीय संगीत को एक अलग पहचान दिलाने का कारण ही उस साल 1977 में नासा की तरफ से भेजे गए वॉइस ओवर एक अंतरिक्ष यान में 12 इंच की सोने की परत चढ़ी तांबे की डिस्क है, जिसमें बीथोवेन से लेकर बाख से लेकर मोजर्ट तक के गाने हैं, जिसे विश्व सांस्कृतिक विविधता की झलक मिलती है। इन गानों को अमेरिकी खगोल शास्त्री काल संगन के जरिए काफ़ी गहनता के साथ चुना गया था, जिसे दी साउंड ऑफ अर्थ एल्बम का नाम दिया गया, जिसमें भारतीय आवाज़ के तौर पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी गायिका सुश्री केसरबाई केलकर की आवाज़ भी है। इन्हें संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 1935 में मिला और 1969 में पद्म भूषण और फिर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा सुश्री की उपाधि इनको मिली। तो ये 16 सितंबर 1977 को इस दुनिया को अलविदा कही केशरबाई केरकर। तो ये थी कुछ कहानी केशरबाई केरकर की आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन पर जी हाँ सफर, इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं ममता शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं और अच्छा लगता है जब आप लोगों के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है। और चलिए अब जाते जाते बीना रॉय की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। भारतीय फिल्मों की बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री, इनका वास्तविक नाम कृष्णा सरीन था। 50 के दशक की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से वह एक थी। इन्होंने सन 1951 में फिल्म काली गठा से अपने करियर की शुरुआत की। विवाह के बाद बीना रॉय ने पति के साथ मिलकर पीएन फिल्म्स के बैनर में शगुफा, गोलकंडा का कैदी, समुंदर जैसे फिल्मों का निर्माण किया। साथ ही पति पत्नी की इस जोड़ी ने इस फिल्म में अभिनय भी किया और 1968 में बनी अपना घर अपनी कहानी बीना रॉय की अंतिम प्रदर्शित फिल्म थी, जिसके बाद फिल्म उद्योग से नाता उनका तोड़कर वह पूरी तरह घर गृहस्थी में रम गई। तो वही इनके बारे में जानते हैं कुछ खास बातें आपके लिए। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आप, तो आइए बीना रॉय की म्यूजिकल जर्नी के साथ साथ डायलॉग और फिल्मों के बारे में जानकारी सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
2: किसी ने कहा अनारकली, तो किसी ने कहा कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। नाम है अभिनेत्री का बीना रॉय।
3: मासूम बच्चों के मुंह से रोटी छीनते हो और तो और बुरों को अपनी ताकत का जोर दिखाते हो, क्या यही तुम्हारे और तुम्हारे बादशाह जुंगुरा की बहादुरी है?
2: बीना रॉय का जन्म हुआ 13 जुलाई सन 1931 में। अनारकली और ताजमहल जैसी यादगार फिल्मों में इन्होंने काम किया और फिल्म घूंघट के लिए तो इन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया।
3: आप मुझसे नफरत कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। मैं प्यार नहीं मांगती, खुशी नहीं मांगती, पर सेवा करना तो मेरा हक है। सिर्फ ये हक मांगती हूँ, इसे मुझसे मत छीनिए।
2: दरअसल बीना रॉय की शुरुआत हुई थी लाहौर से। लाहौर से ही ये ताल्लुक रखती थीं। इनका नाम था कृष्णा सरीन, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में आके हो गया बीना रॉय। बीना रॉय दरअसल इजाबेल थॉबन कॉलेज ऑफ लखनऊ में पढ़ाई कर रही थीं। उसी वक्त एक एडवर्टाइजमेंट आया। फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर किशोर साहू ने अपनी फिल्म काली घटा के लिए एक नई हीरोइन की डिमांड रखी। बिना किसी को बताए बीना रॉय ने अप्लाई कर दिया।

इनके पिता रेलवेज में थे और उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी। एड में अप्लाई तो कर दिया था इन्होंने, पर जाना था इन्हें बम्बई। बम्बई ये जा नहीं सकती थी क्योंकि इनके इंटरमीडिएट के एग्जाम थे। इत्तफाकन एक कजन की शादी निकली बम्बई में और अपने परिवार के साथ ये पहुंच गई बम्बई। ऑडिशन दिया और ऑडिशन देते ही ये कामयाब हो गई। कामयाबी क्या छुई इन्होंने कि मिल गए इन्हें 25,000 रुपए। 25,000 रुपए उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी।

0: वीना राय शुरू से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी और 25,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति फिल्म की फीस हुई इनकी। इन्होंने अपने परिवार से कभी नहीं कहा था कि ये अभिनेत्री बनना चाहती हैं, और जब इनके माता पिता को पता चला तो बड़ी मुखालफत हुई, लेकिन इन्होंने भी भूख हड़ताल कर डाली। माँ बाप को मानना ही पड़ा और किशोर साहू की फिल्म में इन्हें मौका मिला और इस तरह से कृष्णा सरीन हो गई बीना राय।
1: क्या गलत है क्या ठीक है ये मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना पूछती हूँ मेरा दोष क्या है जिसके लिए मुझसे इतनी नफरत करते।
0: एक बात और गौर करने लायक है, वो ये तारीख 13 जुलाई इनकी जिंदगी में एक खास महत्व रखती है। इन्होंने जो अपना पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो भी 13 जुलाई सन 1950 में ही किया था। इनकी एंगेजमेंट हुई वो भी 13 जुलाई को ही। हालांकि इनके पति प्रेमनाथ, जो कि खुद एक बड़े जबरदस्त एक्टर रहे, वो उस वक्त मधुबाला जी से प्यार करते थे। बात शादी तक पहुँच भी गई थी, लेकिन चूंकि ये अलग अलग परिवारों से अलग अलग परवरिश से आ रहे थे इसलिए इन दोनों की शादी ना हो पाई।
1: उन्होंने मुझ पे तरस खाकर मुझसे शादी की है, पर प्यार किसी और से करते हैं सरोज, मैं उनके प्यार के रास्ते में आ गई, मैं क्या करूं सरोज, नहीं भाभी।
0: लेकिन बीना राय के साथ किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। बीना राय और प्रेमनाथ मिले, एक नया रोमांस शुरू हुआ और बस इन दोनों की शादी हो गई। इसी बीच इनके बच्चे हुए। ऐसा लग रहा था कि बीना राय अब फिल्मों से दूर हो जाएंगी, पर वो हुआ नहीं। वो फिल्मों में काम तो करती रहीं, पर धीरे धीरे प्रेमनाथ अपने करियर में बहुत बिजी हो गए। अब बीना राय का करियर थोड़ा सा धीमे चल रहा था, लिहाजा बीना राय ने फैसला किया कि अब वो घर पे रहकर बच्चों को संभालेंगी।
2: अगर भालू से तुम्हारी यही शिकायत है और इसीलिए तुम उसका खून करना चाहते हो तो मेरा खून करो मंगल, मेरा खून करो।
3: दुर्गा,
2: हाँ, भानु को दोष क्यों देते हो? प्यार मैंने किया है, अगर प्यार की कोई सजा है तो मुझे दो मंगल।
0: हालांकि बतौर प्रोड्यूसर्स भी मियां बीवी ने बड़ी कोशिश की एक अलग किस्म का सिनेमा बनाए, पर वो कोशिश बड़ी नाकामयाब साबित हुई। इनके बड़े बेटे प्रेम कृष्ण एक एक्टर बने, फिल्म दुल्हन रही जो पिया मन भाई में ये नजर आए थे, उसके बाद वो प्रोड्यूसर बने और कुछ टीवी सीरियल्स उन्होंने प्रोड्यूस किए। इनकी पोती आकांक्षा मल्होत्रा को लॉन्च किया गया था सन 2002 में बतौर एक्ट्रेस। बीना राय के पोते सिद्धार्थ मल्होत्रा आगे जाकर एक डायरेक्टर बने और उन्होंने टीवी सीरीज डायरेक्ट की जिसका नाम रखा संजीवनी। बीना राय का करियर बड़ा जबरदस्त रहा, फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक रही और प्रेमनाथ के साथ इनकी शादी बहुत से उतार चढ़ावों से घिरी रही, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।
2: मैं तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ूंगी, तुम्हारी ढाल बनकर तुम पर होने वाले हर वार को मैं रोकूंगी, मुझे अपने साथ ले चलो भानू।
0: इनके पति का देहांत हो गया 3 नवंबर 1992 में। उसके बाद बीना राय बहुत अकेली हो गई और फिर 6 दिसंबर 2009 वो तारीख बन के सामने आई जब दिल का दौरा पड़ने की वजह से बीना राय का निधन हो गया। यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में बीना राय का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा।
4: तो ये थी कहानी बीना राय के बारे में, और आपने उनको पुराने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों में जरूर देखा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक और गीत आपके नाम, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, सुनते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है? ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज़, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। चलिए आज विशेष अदाकारा बीना रॉय और विशेष मैंने बात की केशर भाई केरकर के बारे में, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुनीता जैन के बारे में कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और उसके बाद हम कार्यक्रम को पूरा करते हैं और फिर मिलेंगे कल। हिंदी और अंग्रेजी के आधुनिक कहानीकार उपन्यासकार थी वे, कवयित्री के रूप में भी बहुत ही पॉपुलरिटी हासिल की थी। अंबाला में जन्मी सुनीता जैन ने स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और फिर इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का से पीएचडी की और इसके बाद शिक्षा और साहित्य का पद्मश्री अलंकार प्राप्त करने वाली सुनीता जैन अंग्रेजी और हिंदी में बेहतरीन कविताएं लिखती रही। उनके उपन्यास, लघु कथाएं, रचनात्मक अनुवाद और आलोचनात्मक विश्लेषण पाठकों की भूमि पाठकों को जो है भरपूर सराहना अर्जित कर चुकी हैं और कई पुरस्कार और फेलोशिप इनके नाम दर्ज हैं। तो चलिए इनके बारे में अगर बात करें तो ये 70 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 20 कविता संग्रह के अलावा हिंदी के अनेक 5 उपन्यास और 4 कहानियां बाजार में इनकी आ चुकी हैं। तो ये थी कुछ खास बातें सुनीता जैन के बारे में। और आज ही के दिन 1941 को इनका जन्म अंबाला पंजाब में हुआ था और 11 दिसंबर 2017 को इनका देवासन हुआ दिल्ली में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो चलिए जाते जाते आपके लिए एक और खूबसूरत विचार के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं। इंतजार करना बंद करो क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, इसलिए आज ही से अपना अच्छा कार्य शुरू कीजिए। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफर, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप, कार्यक्रम है युवा मंच। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर हफ्ते की शुरुआत करते हैं हम किसी नई जानकारी के साथ, और वो नई जानकारी होती है उस दुनिया के बारे में जहां हम सब रहते हैं। वैसे तो हर एक का गांव अलग अलग है, कोई किसी गांव में रहता है, कोई किसी शहर में रहता है, कोई किसी स्टेट में रहता है, कोई किसी देश में रहता है, लेकिन एक दुनिया है जहां हम सब रहते हैं, और वो है इंटरनेट की दुनिया। जी हाँ, हम सभी डिजिटल सिटीजन बन चुके हैं, और जहां हम रहते हैं वहां की सारी जानकारी यानी कि अधिकार से लेकर हमारी ड्यूटीज क्या हैं वो भी पता होनी चाहिए। और दोस्तों, आपको पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सही जानकारी आप तक पहुंचाता है। आप रेडियो मधुबन पर सुनते हैं हर हफ्ते कोई नई जानकारी, और आज हम लिए चल रहे हैं आपको साइबर दोस्त की ओर। जैसा कि आपको पता है नाम ही है साइबर दोस्त, तो ये आपका दोस्त है जो आपको पहले से बता देता है कि भाई क्या क्या चल रहा है। और आज का जो विषय है वो ये है कि कैसे जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो विक्टिम्स को, यानी जिनको शिकार बनाते हैं, जिनके साथ स्कैम करते हैं, उनको कैसे मैनिपुलेट करते हैं या बेवकूफ़ बनाते हैं या फिर उनको ट्रिक करते हैं कुछ हासिल करने के लिए। वो उनकी जानकारी भी हो सकती है, वो पैसे भी हो सकते हैं। तो क्या वो कैसे करते हैं, ये सेशन आपको हम सुनाएंगे सीधा। दोस्तों, साइबर सेफ लाइफ यानी साइबर दोस्त को आप फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पर। बहुत ही सुंदर ये पहल है, होम मिनिस्ट्री के माध्यम से की गई, और आपको सही सही जानकारियां, नए नए स्कैम्स कैसे हो रहे हैं, कैसे उनसे बचना है, उसकी जानकारी आपको बिल्कुल मिलती रहेगी। और हमें अप टू डेट रहना भी चाहिए, पता चलेगा आपको सब कुछ। लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आएंगे, कार्यक्रम युवा मंच जारी रहेगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: हमारे इमोशंस, ट्रस्ट और फियर का फायदा उठाकर लोगों को टारगेट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन फ्रॉड, इन्वेस्टमेंट स्कैम्स और साइबर हरासमेंट जैसे केसेस में क्रिमिनल सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही नहीं बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर नेहा अग्रवाल। शी इज अ कंसल्टेंट एंड साइकाइट्रिस्ट एट अदायु माइंडफुलनेस एंड फोर्टिस हॉस्पिटल। मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।
2: Thank you for having me.
1: Ma'am, to start with the first, cyber criminals अक्सर victims को manipulate करने के लिए fear, urgency और trust जैसे emotions का use करते हैं। ऐसे situations में आम citizens usually कैसे react करते हैं?
2: जो इसके लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हमारा brain function कैसे करता है। ब्रेन का एक लॉजिकल पार्ट होता है जिसे हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। वो लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता है और हम तय करते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। एक होता है इमोशनल पार्ट। जब कोई हमें ट्रस्ट, फियर या अर्जेंसी क्रिएट करता है तो ब्रेन को एक डर की भावना महसूस होती है या अर्जेंसी की भावना महसूस होती है और ब्रेन को लगता है कि इंसान खतरे में है, तो वो बिना रैशनल डिसीजन लिए एक तरह से साइकोलॉजी को हैक करके इमोशनल डिसीजन लेता है और उसके तहत जो भी हमें साइबर क्रिमिनल्स कहते हैं वो हम करने लग जाते हैं ताकि हम उस थ्रेट से जल्दी निकल पाए।
1: मैम, अक्सर देखा गया है डिजिटल स्कैम्स में साइबर क्रिमिनल्स अथॉरिटी और फियर का यूज करके विक्टिम्स को टारगेट करते हैं। ऐसे केसेस में लोग बिना सोचे समझे उनकी बात क्यों मान लेते हैं?
2: इसके अंदर दो तरह के हम बायस की बात करते हैं। एक होता है अथॉरिटी बायस, एक होता है कंफर्मेशन बायस। जैसे अभी आपके पीछे लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो जब कोई इसको देखता है तो उसको पता चलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट हुए हैं कि उनके अंदर पीछे पुलिस वाले बैठे हैं, पुलिस यूनिफॉर्म में बैठे हैं, पीछे गांधी जी की फोटो लगी हुई है। तो इस तरीके से जब कोई अथॉरिटी फिगर हमारे सामने होती है प्लस वो जो डेटा देते हैं जो कि बहुत इजीली आजकल अवेलेबल है और कंफर्म करते हैं, अच्छा आपका नाम ये है, आप यहाँ रहते हैं, तो हमें हमारे ब्रेन को लगता है कि ये सारी चीजें हमारी सही बता रहा है। तो वो हमें कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, जो ये आगे भी बोलेंगे वो सही बोलेंगे और हमारा ब्रेन इस चीज को बिलीव करने लग जाता है। इसीलिए हम कई बार साइबर क्रिमिनल्स के इस बायस के कारण फंस जाते हैं।
1: मैम, कई बार विक्टिम्स को फ्रॉड होने के बाद गिल्ट या एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो साइबर क्राइम रिपोर्ट करने से हेजिटेट करते हैं। ऐसा इमोशनल रिस्पॉन्स क्यों होता है और इससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है?
2: इसमें हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि साइबर क्राइम किसी के साथ भी हो सकता है। इसमें इंटेलिजेंस, एजुकेशन का रोल बहुत कम है क्योंकि ये एक तरह का साइकोलॉजिकल हैक है। कई बार हम बिकॉज ऑफ बीइंग एजुकेटेड या बिकॉज ऑफ बीइंग यंग एडल्ट्स हमें लगता है कि हमारे साथ ये धोखा नहीं हो सकता, ये तो बड़े बूढ़ों के साथ होता है या बच्चों के साथ होता है या जिनको नॉलेज नहीं है उनके साथ होता है, तो ये एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस हमें डाल देता है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि पहली बात, ये किसी के साथ भी हो सकता है। अब मान लीजिए किसी के साथ जब ये हो जाता है तो इंसान को लगता है, एक चीज होती है हाइंडसाइट बायस, यानी कि बाद में सब समझदार हो जाते हैं कि हमें होने के बाद रियलाइज होता है कि हाँ, इस चीज पे तो मैं ऐसे रिएक्ट कर सकती थी, तो वो चीज हमें लगता है कि ये सब मेरे साथ कैसा हुआ, कैसे हो गया, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ या मैं बहुत समझदार हूँ और मेरे साथ कैसे हो गया। सो दैट गिव्स अ गिल्ट एंड शेम की फीलिंग और इसके तहत काफी लोग रिपोर्ट करने से डरते हैं। कई हाई पोजिशंस पे हम देखते हैं कि लोग हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। जब वो रिपोर्ट करने का सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि लोगों के सामने हमारे को शेम ना महसूस करनी पड़े, सो दे टेंड टू नॉट रिपोर्ट दीज केसेस।
1: मैम, बिल्कुल जैसे आपने बताया, बहुत बार बहुत एजुकेटेड लोग भी ऐसे ट्रैप्स में फंस जाते हैं क्योंकि क्रिमिनल्स एक्चुअली में साइकोलॉजिकली उनके साथ प्ले करते हैं। और हम बस यही बताना चाहेंगे सारे व्यूअर्स को कि ऐसे सिचुएशन में ना घबराएं, ना एम्बैरेस्ड फील करें, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है। बहुत बार इस तरीके का धोखा समझ ही नहीं आता है, जब मतलब बहुत सालों तक, बहुत महीनों तक भी लोगों को इस तरीके से ट्रस्ट गेन करके क्योंकि स्कैमर्स का तो पूरा मोडस ऑपरेंडी ही है कि आपका ट्रस्ट गेन करें आपके साथ, जैसे फियर बेस्ड तरीके से पैसे एक्सट्रॉट करें। तो हम सबको यही सजेस्ट करेंगे कि अवेयर रहें साइबर क्राइम के अगेंस्ट, और अगर कभी फंसे तो जरूर उस पर एक्शन लें, उस पर रिपोर्ट करें। मैम, ऑनलाइन हरासमेंट, साइबर स्टॉकिंग और प्राइवेट कंटेंट का मिसयूज जैसे इंसिडेंट्स किसी भी व्यक्ति स्पेशली वुमेन की मेंटल हेल्थ पर कितना इम्पैक्ट डालते हैं, और ऐसे केस में उन्हें किस तरीके का सपोर्ट चाहिए होता है?
2: हमारे यहाँ पे कई बार मान्यता है कि अगर फिजिकल अब्यूज नहीं है तो वो अब्यूज नहीं है। ऑनलाइन अब्यूज भी उतना ही माइंड को ट्रबल करने वाला है जितना कि फिजिकल अब्यूज है।

0: साइबर क्रिमिनल्स आइडेंटिटीज, फेक रिलेशनशिप्स और अट्रैक्टिव ऑफर्स के थ्रू पहले विक्टिम्स का ट्रस्ट जीतते हैं और फिर उन्हें ग्रेजुअली ट्रैप में फंसाते हैं। तो लोग ऐसे ट्रैप से कैसे बच सकते हैं?
1: इसमें दो तरह की चीजें हैं। जैसे एक होता है इमोशनल अवेयरनेस, यानी हम अपने इमोशंस को पहचाने, उनकी तरफ जागरूक रहें। एक है डिजिटल अवेयरनेस। डिजिटल अवेयरनेस जैसे कि आप लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, जगह जगह कैंपेन्स कर रहे हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दैट इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल अवेयरनेस। इमोशनल अवेयरनेस हमें खुद के अंदर खुद लानी है कि किस तरह का इमोशन हमें अराउजल देता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जल्दी डर जाता है, कोई ऑनलाइन लव फ्रॉड के अंदर फंस जाते हैं और ट्रस्ट गेन हो जाता है और फिर उसके बाद लोग मनी एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है तो हमारा कैसा रिएक्शन जा रहा है। क्या हम उसको उसी वक्त कोई पैसे ट्रांसफर करने वाले हैं? क्या हम रुक कर अगर सोच कर करेंगे तो क्या ये डिसीजन हमारा चेंज हो सकता है? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है ड्यू टू यू नो अदर देन फाइनेंशियल क्राइम्स भी जो क्राइम्स हैं, तो उसके अंदर भी हमें सोचना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए और उसके बाद एक्ट करना चाहिए। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए किसी भी एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेल को।
0: हम आपने बहुत ही सही तरीके से समझाया कि पहले अपने बारे में समझ, तो हमें ये भी समझ आया कि अगर हम कोई ट्रबलसम सिचुएशन में फंस रहे हैं तो हम यूजुअली कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि पहले रुकिए, सोचिए, फिर कोई कदम उठाइए। आई थिंक वो बहुत नेसेसरी हो जाता है सिचुएशंस में। हम अगर कोई साइबर क्राइम का विक्टिम है तो उन्हें सबसे पहले क्या स्टेप्स लेने चाहिए?
1: सबसे पहले कई बार जैसे डिजिटल सिक्योरिटी वाले में ही है, डिजिटल स्कैम जो हैं उनके अंदर इंसान को कई बार होते होते पता चल जाता है कि हाँ हमें से स्कैम हो रहा है, और कई बार बहुत देर बाद पता चलता है। तो सबसे पहले तो है कि पैनिक ना करें। पैनिक होना लाजमी है, कॉमन है, दिस हैज टू हैपन। बट जैसे ही हमारा पैनिक स्टेट आता है, मान लो हमारी धड़कन तेज हो गई या हम बहुत टेंशन में आ गए हैं, सबसे पहले डिस्कनेक्ट द कॉल। कुछ नहीं बिगड़ेगा, जस्ट डिस्कनेक्ट फ्रॉम, क्योंकि वो लोग आइसोलेशन की एक टेक्निक यूज करते हैं, आपको किसी से बात नहीं करने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपकी साइकोलॉजी हैक की हुई है, किसी और थर्ड पर्सन की नहीं। तो वो एक काम स्टेट ऑफ माइंड में होगा और जो विक्टिम है वो पैनिक स्टेट में होगा। तो बेस्ट है जस्ट स्टॉप इट, कुछ नहीं बिगड़ेगा, थिंक अबाउट इट, टॉक टू अनदर पर्सन, 1 मिनट का रेस्ट, 1 मिनट की डीप ब्रीदिंग भी आपको इमोशनल डिसीजन मेकिंग से लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की तरफ शिफ्ट कर देती है। सो ऑलवेज टेक अ पॉज बिफोर मेकिंग एनी सच ट्रांजेक्शन जो बड़ी हैं या जिसमें आपको लग रहा है अर्जेंसी क्रिएट हो रही है।
0: हम अक्सर फैमिली मेंबर्स विक्टिम को ब्लेम करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसे टाइम पर विक्टिम को क्या करना चाहिए और फैमिली कैसे कब सपोर्ट कर सकती है?
1: पहला ट्रॉमा तो है स्कैम हो जाना, एंड आई वुड से सेकेंड ट्रॉमा है विक्टिम ब्लेम। तो विक्टिम ब्लेम से बचना चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा सोसाइटी का रोल ये है कि वो विक्टिम के साथ खड़ी हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुमने ऐसा कैसा कर दिया, दे शुड से कि ये किसी के साथ भी हो सकता है एंड लेट अस सी कि हम आगे क्या कर सकते हैं। फॉर द विक्टिम दो तरह की चीजें हैं, एक लीगल चीजें हैं जिसमें आपके 1930 पे कॉल कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पे रिपोर्ट उसी वक्त कर सकते हैं। तो ये हमारे लीगल राइट्स क्या हैं और क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इसके बारे में अवेयरनेस जरूरी है। सेकेंडली पैनिक को सबसे पहले कम करना है एंड आगे का सोचना है, अपने आप को गिल्ट में नहीं लाना कि ये मेरे साथ कैसे हो गया।
0: हम आई थिंक फैमिली मेंबर्स सबसे ज्यादा यही सपोर्ट कर सकते हैं कि उनको इनकरेज करें, क्योंकि बहुत लोग, जैसे हमने डिस्कस किया, एम्बैरेस्ड फील करते हैं, तो उनको इनकरेज करना कि वो टाइमली रिपोर्ट करें ताकि अथॉरिटीज एक्शन ले सके एंड बाकी अपने इन्वेस्टिगेशन टाइम कोऑपरेट करें ताकि एक्चुअली में फ्रॉडर को पकड़ा जाए एंड उनके जो भी मनी रिकवरी है या फिर जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन है वो लिया जाए।
1: यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जब हमारा माइंड काम होता है तो हमें उस चीज की बेटर याददाश्त भी बनती है जो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में फर्दर काम आ सकती है। पैनिक में और ऊपर से और कोई विक्टिम ब्लेम कर दे तो जो चीज हमें डेटा पता भी है विक्टिम के सॉरी क्रिमिनल के बारे में वो भी हम लूज कर देते हैं। तो दैट इज अ कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
0: मैम, आखिर में आप अपने हिसाब से ये बता सकती हैं, हमारे व्यूअर्स को गाइड कर सकती हैं कि सिटीजन्स को साइबर क्राइम से बचने के लिए कौन सी मेंटल हैबिट्स और अवेयरनेस डेवलप करनी चाहिए?
1: इमोशनल अवेयरनेस डेवलप करनी

0: चाहिए आजकल की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में। वी आर ऑलवेज प्री ऑक्यूपाइड, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो ऐसे में जब भी कोई लिंक आए, जब भी कोई आपसे अर्जेंसी क्रिएट करे, तो टेक अ पॉज, मल्टीपल टास्किंग करने से बचें। तो ये एक हैबिट बनाए कि जब भी कोई कॉल आए या कोई व्हाट्सएप आए, तुरंत माइंडलेसली क्लिक नहीं करें कोई भी लिंक, और इमोशनली अवेयर रहें। कुछ रेड फ्लैग साइंस होते हैं, जैसे कोई आपको फियर क्रिएट कर रहा है, कोई अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, कोई आपको ग्रीड दे रहा है। रिमेंबर देयर इज नो फ्री लंच, तो कोई भी आपको फ्री में कुछ भी नहीं देगा। सो ये रेड फ्लैग साइंस अपने पहचानिए, इमोशनली अवेयर रहें। एंड वेन एवर सच अ सिचुएशन अकर्स, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट।
1: मैम, साइबर क्राइम्स के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स और साइबर क्रिमिनल्स के मैनिपुलेशन टेक्निक्स पर आपकी गाइडेंस हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस ड्रिवन रही। आज के डिजिटल वर्ल्ड में साइबर सेफ्टी के साथ साथ अपने इमोशंस और डिसीजन मेकिंग को समझना भी बहुत जरूरी है, जैसे कि आपने हमें आज बताया। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीक सेम टाइम एक और इम्पॉर्टेंट साइबर सेफ्टी टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।
0: थैंक यू।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
1: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
2: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का कैबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जाँच की गयी। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर।
4: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन।
5: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
4: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मेरे पास पैसे भी आ जाए, मैं नहीं फंसू, और दूसरा जिससे जो विक्टिम है, विक्टिम आसानी से उसका शिकार हो जाए। कहने का मतलब मेरे को ज्यादा एफर्ट भी नहीं डालना पड़ा और विक्टिम जो है अपने आप फंसता चला जाए। तो इसी के लिए देखिए, मतलब ये ब्रॉड टॉपिक जिसको हम लोग सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स का ये लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल मैं दूंगा, बिकॉज ये लगभग आप मान के चलिए 1 महीने पहले ही ये केस का डिटेक्शन हुआ है। तो एक डॉक्टर साहब यहीं पे धनबाद के थे, तो उनके साथ तकरीबन 1,15,000 का साइबर फ्रॉड हो गया। नाउ व्हेन वी ये एग्जैक्टली आपका मार्च 28 या 29 का घटना था, जब आपका ये था रामनवमी थी, उसी दिन की मतलब ये घटना हुआ। अब इशू इसमें ये हो गया कि अब देखिए, डॉक्टर साहब को अपना पीएनबी में केवाईसी अपडेट कराना था या कुछ कराना था, तो इन्होंने किया क्या कि भाई गूगल पे गए, गूगल पे पीएनबी कॉन्टैक्ट इन्फो करके इन्होंने वो डाला, गूगल सर्च किया अपना, तो जो एड लैंडिंग पेज था, तो लैंडिंग पेज पे एड आया कि भाई ये है कस्टमर केयर पीएनबी का, इन्होंने उस पर क्या कॉल किया, एंड देन एंटायर मतलब द इंसिडेंट स्टार्टेड। तो हुआ क्या कि व्हाट्सएप पे इसने कॉल किया कि सर मैं यहाँ पे कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ, आपको हमारा जो ऑफिशियल ऐप है, ऑफिशियल ऐप पे आपको अपने डिटेल्स वगैरह सबमिट करने होंगे और उससे आपका जो केवाईसी अपडेट वाला चीज है वो हो जाएगा। इन्होंने वही किया, उस बंदे ने मतलब एपीके भेजा इनको व्हाट्सएप के माध्यम से, इन्होंने इंस्टॉल किया, और देखते ही देखते बिलीव मी और नॉट 3:50 की ये घटना थी। लगभग 3:30 के आसपास कॉल वॉल हुआ, 3:50 पे व्हाट्सएप ये लोग कनेक्ट किए, और विद इन अ मैटर ऑफ अ फ्यू मिनट्स 4:10 तक द एंटायर ट्रांजैक्शन वाज डन इन 2 और 3 स्टेजेस, राइट। 1,15,000 रुपए लगभग ऐसे ही आपके वो निकल गए। तो अब देखिए, फेक एड्स, फेक एप्स और ये जो एड्स वगैरह है, ये क्यों बढ़ते आ रहा है, क्योंकि ये सीधा सीधा है, मतलब एनी अनसस्पेक्टिंग कस्टमर, एनी अनसस्पेक्टिंग विक्टिम जो है यहाँ पे, भाई हम लोग आसानी से जो भी काम हो जाए उसी के पीछे दौड़ते हैं या भागते हैं। यहाँ पे मान लीजिए घर बैठे बिठाए मेरे को कुछ काम कराना है, कोई एपीके मिल गया मेरे को, उसी के माध्यम से मैं काम कराऊंगा, तो मैं इसका शिकार हो जा रहा हूँ। और जो बंदा उस साइड बैठा हुआ है, जो फ्रॉडस्टर है, जो स्कैमस्टर है, उसके लिए तो आसान है कि भाई कुछ कराना ही नहीं है, यहाँ बैठे बैठे इसके पूरे फोन का एक्सेस मेरे पास मिल जा रहा है, जो भी ओटीपी वगैरह देता है वो मेरे पास आ जा रहा है। तो मे बी दैट इज द रीजन वाई एपीकेज हैव इंक्रीज। और दूसरा चीज है कि देखिए, जो एपीकेज होते हैं उनका एनालिसिस थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, और इट्स नॉट वेरी इजी। कहने का मतलब, एक तो आप जो पैसे के फ्लो जहाँ पे हो रहा है, पैसे का फंड्स जहाँ पे मतलब ट्रांसफर हो रहा है, जिस भी बैंक अकाउंट वगैरह में, आप उसका एनालिसिस करेंगे, है ना। लेकिन एपीके डेवलपर कौन है, तो उसके लिए हम लोग को एक दो और लेयर में अंदर घुसना पड़ता है। तो इवन फ्रॉम एन इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज केसेस आर अ बिट डिफिकल्ट टू ट्रैक।
1: सर, फिर साइबर क्रिमिनल सोशल मीडिया पर दिखने वाले एड्स को जेन्युइन कैसे बना देते हैं कि लोग उन पर आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं?
0: देखिए, इसके तो बहुत सारे टेक्निक्स वगैरह है ना। अब मोटा मोटी फिर जो मैं पहले प्रश्न पे जो आया था कि यू नो इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ दैट सोशल इंजीनियरिंग का पूरा जो टूल किट हम बोलेंगे। देखिए, सबसे पहले मतलब द अदर पर्सन हु सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो मेरे सामने बैठा हुआ है या जिससे मैं चैट कर रहा हूँ, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, उसको मेरा ट्रस्ट जीतना है, ठीक है। तो ट्रस्ट कैसे, अब मान लीजिए जब भी मैं, क्या होता है, इफ इफ आई एम अ विक्टिम, इफ आई एम अ कंज्यूमर, इफ आई एम अ कस्टमर, मेरे को कोई ना कोई चीज की दरकार होगी, आई विल बी इन द नीड ऑफ समथिंग, राइट। इन द सेंस, जैसे मान लीजिए क्या होता है, अगर किसी के साथ चेन स्नैचिंग हो जाता है तो वो पुलिस के पास आता है। अब किसी को मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे कोई क्या होता है उसका वो हुआ, लेट्स से इफ इफ दैट पर्सन्स ये गॉट मिसप्लेस्ड, द कुरियर गॉट मिसप्लेस्ड फॉर एग्जाम्पल, या फिर मान लीजिए कोई आरटीओ चलान वगैरह मतलब आया, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेरा नीड है, पहला मेरा नीड हुआ, नीड क्या है भाई कि समथिंग हैज हैपेंड विद मी, एक या तो चलिए डिलीवरी में इशू हुआ है, या दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि भाई गाड़ी में ओवर स्पीडिंग कर रहा था, या गाड़ी का नंबर प्लेट या जो भी है रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वगैरह, दे आर नॉट अप टू द मार्क, दे आर नॉट अप टू डेट वगैरह, मेरे को वही अपडेट करना है, तो मैं उसका करूंगा। अगेन आई एम इन नीड, है ना, पहले मैं डिलीवरी में, दूसरे में इंफॉर्मेशन वगैरह से रिलेटेड, है ना, कि मेरे विरुद्ध कोई चलान वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तीसरा, जैसे मैंने ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिया कि भाई कोई भी ये ऐप वगैरह जो है जिसपे फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग एप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये जो नीड है मेरा, इसी को ये लोग वो कर रहे हैं। और देखिए, इन लोग के लिए इतना आसान ये हो गया है कि इसके लिए तो कोई ट्रेनिंग चाहिए नहीं। मान लीजिए कभी भी बैंक वगैरह जाती हैं, खुद भी आप अगर बैंक मतलब जब भी जाती होंगी, तो वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट रहती हैं, या फिर रिसेप्शनिस्ट रहता है, जो भी वहां पे प्योन वगैरह रहता है, प्योन वगैरह मतलब बहुत ज्यादा तो ये नहीं होता है कि दे आर एक्सट्रीमली मतलब दे हैव स्टडीड रॉकेट साइंस वगैरह, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। वो सिंपल मेरे और आपके जैसे लोग हैं कि भाई वो सीधा प्यार से 2 शब्द बात करेंगे और उसी में हम लोग मतलब समझ जाएंगे कि ठीक है। और दूसरा चीज है देखिए, ट्रस्ट जीतना। तो ट्रस्ट कैसे जीत रहा है, एक गूगल के थ्रू। अब गूगल पे हर एक लिंक सही है कि नहीं वो तो मेरे को नहीं पता है ना, वो ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्मल जो विक्टिम है, जो नॉर्मल कस्टमर है, उसको भी नहीं पता होगा। तो भाई पहले पहले अगर मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं यहाँ पे, आप अगर गूगल गूगल के थ्रू आपको मेरा नंबर मिला है, तो आप यही यकीन करेंगे कि भाई ये तो नंबर सही होगा? ये कभी किसी के जहन में आएगा ही नहीं कि भाई ये नंबर फर्जी हो सकता है। तो सीधा सीधा मतलब ये जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है थ्रू गूगल, या फिर आप जैसे बात कर रही हैं कि क्या थ्रू फेसबुक एड्स वगैरह, तो वी हैव सीन सर्टेन केसेस वगैरह जहाँ पे मान लीजिए किसी सर्टेन आइटम की डिलीवरी, फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू अनदर केस, यहाँ पे हुआ क्या कि ये बंदा जो था ये फर्नीचर वगैरह का काम करता था, फेसबुक वगैरह में इसने एक होलसेलर का ऐड देखा कि, और ये जो होलसेलर था आपका, जहां तक मेरे को याद है फर्नीचर वगैरह का काम था, इसने होलसेलर का ऐड देखा, इसने भाई उसको मतलब वो किया कि भाई मेरे को इस आइटम की जरूरत है और इतने क्वांटिटीज वगैरह, उसमें बोला हाँ भाई ठीक हो जाएगा, और भाई वो बकायदा मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसको दिखाया कि ये देखो ये मेरा गोडाउन रहा, ये मेरा शोरूम रहा, और यहाँ पे ये पीसेस पड़े हुए हैं। उससे आपका ट्रस्ट भी सीधा सीधा बिल्ड हो गया है ना, एक तो पहले मतलब फेसबुक या जिस भी माध्यम से आपका नंबर मेरे को है, दूसरा आप मतलब वीडियो के माध्यम से वो भी दिखा रहे हैं कि भाई देखो मतलब है, कोई फ्रॉड वॉड नहीं हो, मेरे पास हर एक चीज सामान पड़ा हुआ है। और जैसे ही ट्रस्ट एस्टेब्लिश हुआ, मतलब इमीडिएटली द साइबर फ्रॉड बिगिंस टू हैपन राइट देन एंड राइट देयर।
1: तो आई थिंक लोग इतने डिपेंडेंट है दैट इमीडिएटली जो अगर सर्च इंजन पे डिपेंडेंट है तो वो ट्रस्ट भी करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को. व्हेनेवर दे सर्चिंग फॉर समथिंग दे वो ट्रस्ट कि जो दिख रहा है वो सही है, जैसे आपने बोला.
0: बिल्कुल
1: तो द इमीडिएट उनका वेरिफिकेशन के टुवर्ड्स तो जाता ही नहीं है थॉट प्रोसेस. उनको लगता है जो इन्फॉर्मेशन को दिख रही है वो सही ही होगी.
0: इसमें मैं एक और मतलब चलिए एक पर्सनल एक्सपीरियंस ही ऐड करूंगा। तो दिस वाज बिफोर व्हेन आई जॉइंड आईटीएस है ना, तो मैं 2021 में ज्वाइन किया हूँ, तो 2020 मतलब कोविड के जस्ट बाद की बात ही है। तो मैं उस समय बाहर रह रहा था, आई वॉज एट माई हाउस, और मेरे घर पे कुछ सामान होना चाहिए था। तो मैंने वही सर्च किया कि भाई क्या घर पे डिलीवरी करानी थी सामान की मेरे को, मतलब तो ग्रोसरी वगैरह ही था, नॉर्मल ग्रोसरी वगैरह था। मैंने सर्च किया अपने होम टाउन की क्या होता है ये, उस समय ब्लिंकिट वगैरह का जमाना नहीं था, नाउ दैट वी हैव ब्लिंकिट एंड अदर सर्विसेज वगैरह, 2020 वगैरह का था, तो उस समय ब्लिंकिट वगैरह नहीं था। मैंने सर्च किया कि भाई मतलब देयर इज समवन कोई डिलीवरी वगैरह, और आप मानिए चाहे नहीं मानिए, द वेरी फर्स्ट मतलब जो गूगल पे आता है, द वेरी फर्स्ट जो लिंक वगैरह था, एक बिजनेस का नाम था, बकायदे से उसने एड्रेस दिया हुआ था कि सेक्टर 1, सेक्टर 1 में मतलब नियर दिस दिस दिस पर्टिकुलर प्लेस, और उसका वो नंबर था। अब भाई ना कोई पर्टिकुलर जा रहा है वहां पे, है ना, मतलब कि ये पर्टिकुलर जगह है ना, एंड दैट प्लेस एग्जिस्ट, है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई कोई फर्जी हवा में नाम था, वो जगह थी वहां पे। मैंने कॉल किया और भाई मतलब ठीक है, मैं खुद भी इसका शिकार हो चुका हूँ, तो 4,500 ज्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन 4,500-5,000 रुपए का उस समय हुआ था। तो दैट इज द टाइम व्हेन आई बिकेम अवेयर कि अरे यार मतलब नॉट एवरी नंबर व्हिच यू सी हैज टू बी ट्रस्टेड। उसके बाद ऑब्वियसली बात है मैं पुलिस वगैरह में गया, तो फिर पता चला कि जो बंदा था मतलब ही वॉज नोवेयर रिलेटेड टू माई होम टाउन, आस पास भी नहीं था, उसको पता भी नहीं था उस बंदे को। वो बंदा बैठा था आपका वहां पे अलवर वगैरह के पास कोई जगह था, भरतपुर अलवर के बीच में, दैट प्लेस वाज देयर, है ना। तो बताइए मतलब यू नो स्पाइट ऑफ थेट
1: तो फेक मोबाइल एप्स लोगों के फोन्स और बैंक अकाउंट्स के लिए कितने डेंजरस हो सकते हैं?
0: देखिए बिलीव मी व्हेन आई से दिस, मतलब ये जो यू नो वी कैन नॉट रियली क्वांटिफाई दिस कितने डेंजरस हो सकते हैं। बिलीव मी व्हेन आई से कि क्या कोई भी एपीके व्हिच यू आर रिसीविंग आइदर थ्रू गूगल या फिर थ्रू व्हाट्सएप या थ्रू टेलीग्राम, इट शुड नेवर बी इंस्टॉल्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंस व्हाट्सएवर। मैं आपको थोड़ा सा मतलब आई गो थ्रू द हिस्ट्री एज वेल हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो देखिए जो एपीके से जो फ्रॉड वगैरह था ये 2022-23 के आसपास से चालू हुआ, तो शुरू में फर्स्ट वेव जब आया, फर्स्ट वेव मतलब जब ये फ्रॉड होना चालू हुआ था, तो जो एपीके होते थे वो बहुत बेसिक होते थे। बेसिक मतलब क्या कि आपको भाई मतलब व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से ये एपीके आया है, आपने इंस्टॉल किया और वो करेगा क्या, आपका मात्र दो परमिशन लेगा, रीड एंड राइट एसएमएस, और दूसरा फोन का बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह। इसलिए होता क्या है कि आपके फोन पे जो भी एसएमएस वगैरह गिर रहे हैं, दे गेट फॉरवर्डेड टू कमांड एंड कंट्रोल सर्वर, जिसको हम सी2 सर्वर बोलता है। वहां से जैसे ही ये एसएमएस वगैरह जो है वो द अटैकर द हैकर कैन सी इट लाइव ऑन स्क्रीन ऑन इस पैनल, ठीक है, उसके थ्रू आपके यूपीआई क्या होता है वो बाईपास कर लेगा पहला। दूसरा आपका जो भी क्या होता है ये बैंक एप्स है, फॉर एग्जाम्पल SBI हो गया या फिर दूसरे मतलब बैंकिंग एप्स हो गए, उनका भी पासवर्ड वगैरह रीसेट कर लेगा, एंड दैट इज वेयर द गेम बिगिंस राइट। यूपीआई बाइंडिंग जो है और जो बैंकिंग एप्स का बाईपास जो है वो आसानी से लोग कर ले रहे हैं। मैं एग्जांपल दूंगा मतलब, तो एक एक पिछले साल एक और यू नो अ स्लू ऑफ फ्रॉड्स हैड स्टार्टेड टू अकर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अब मैं धनबाद में हूँ, तो धनबाद इफ यू लुक ऑन द मैप इट्स जस्ट नेक्स्ट टू जामताड़ा, हम लोग का जो बॉर्डरिंग मतलब वो है डिस्ट्रिक्ट है दैट इज जामताड़ा, जामताड़ा के देवघर और इस साइड गिरिडीह आता है। ये पूरा एक जैसे आप जो साइबर फ्रॉड ट्रायंगल बोलते हैं, तो देयर टू ट्रायंगल्स, एक आपका अलवर भरतपुर वाला एरिया हो गया और दूसरा मतलब आपका ये वाला एरिया है। तो ये जो भी एपीकेज वगैरह रहते हैं, मतलब पिछले साल हुआ क्या कि मान लीजिए आपका कोई भी फोन है ना, आप जो भी फोन इस्तेमाल कर रही हैं वो मान लीजिए इफ यू गॉन टू अ लोकल हाट, कोई भी आप बाजार वगैरह गई हुई है, वहां पे आप अपना फोन लेके गई, कोई आपका फोन चोरी कर लिया, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपका फोन चोरी हुआ है तो इसका आपका बैंकिंग एप्स वगैरह सेफ है, बिकॉज ऑब्वियसली योर फोन इज प्रोटेक्टेड बाय वी आई योर पासवर्ड, कहने का आपका या तो फिंगरप्रिंट होगा या फेस आईडी होगा, जो भी हो, है ना। अब हो क्या रहा था पिछले साल कि ये फोन वगैरह चोरी हो रहे थे और विद इन 24 आवर्स, 48 आवर्स हम लोग के पास आ रहा है कि भाई मेरे बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए मतलब निकाल लिए गए, 3 लाख रुपए निकाल लिए गए, एंड वी वर परप्लेक्स्ड कि भाई ये कैसे संभव है, तो संभव ही नहीं है। बिकॉज इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू योर फोन या इन ऑर्डर टू गेन एक्सेस टू योर बैंकिंग एप्स, बैंकिंग अकाउंट, यूपीआई वगैरह, आई नीड टू गेट इन टू योर फोन। पहला तो मैं भाई आपके फोन के अंदर जाऊंगा तभी ना मैं आपके ऐप्स मतलब यूज करूंगा। नाउ बिलीव मी और नॉट, यू नो व्हेन वी स्टार्टेड डिगिंग इनटू इट, मतलब द थिंग इज एक्सट्रीमली सिंपल। आपका मोबाइल मैंने चोरी किया, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपका जो सिम है सिम को निकालूंगा, एक दूसरा फर्जी फोन मेरे पास रहेगा मैं डालूंगा, एंड देर आर टेक्निक्स थ्रू विच आई कैन यू नो रीसेट योर पासवर्ड ऑफ यूपीआई, एज सिंपल एज दैट। व्हेन दिस केम इनटू लाइट वी ब्रॉट इट इन फ्रंट ऑफ I4C एंड द अदर NPCI वगैरह, तो देर आर सर्टेन सेफगार्ड्स व्हिच हैव नाउ कम इनटू प्लेस। बट बिलीव मी इवन नाउ इस टाइप के मतलब फ्रॉड हो रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द सेफगार्ड्स व्हिच हैव बीन पुट इन प्लेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं जानबूझ के उन मतलब टेक्निक को नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मान लीजिए अगर कोई और भी देख रहा होगा तो वो लोग भी समझ जाएगा कि यार मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो यस यस
1: So alongside I'd like to add, अगर कोई स्कैम
2: जी
1: शिकार होते होते बढ़ जाता है, फॉर इंस्टेंस एपी के फाइल जैसे ही स्कैम से, सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नोटिफाई द पुलिस इमीडिएटली। सो वी रिक्वेस्ट द व्यूअर्स कि अगर कभी भी उनको लगता है कि कोई स्कैम कॉल आया बट दे वर अवेयर, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू इट, इट इज इम्पोर्टेंट टू गो ऑन द NCRP विच इज cybercrime.gov.in, एंड वहां पे एक रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट का सेक्शन में लेकिन फाइल फॉर दैट कंप्लेंट, लेकिन फाइल द APK फाइल का नंबर बता सकते हैं जो स्कैम का नंबर है, सो दैट एटलीस्ट अदर पीपल डोंट गेट स्कैम्ड इफ दे आल्सो गॉट सेव।
0: राइट राइट। और दूसरी चीज जो है कि क्या होते हैं APK वाले फाइल में, इफ इफ लेट्स से समवन हैज बीन स्कैम्ड, अगर कोई भी APK फाइल इंस्टॉल किया है अपने फोन में, तो इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल उसका जो वो है आपका मतलब यू पुट इट इन एयरप्लेन मोड एंड रश टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन वगैरह, क्योंकि वंस पुट दैट मतलब बेसिकली दी एंटायर जो स्कैम है वो डिपेंड कर रहा है कि भाई आपके जो SMS दे रहे हैं आपके फोन पे इन ट्रांसमिटेड टू सर्टेन डिफरेंट प्लेस वगैरह, है ना, टू अ कमांड एंड कंट्रोल सर्वर। तो आप एज सून एज यू पुट योर फोन इन फ्लाइट मोड वगैरह, आपका जो SMS है वो गिरना बंद हो जाएगा, तो यू कैन बी सेफ, और इन दैट टाइम मे बी यू कैन रश टू अ पुलिस स्टेशन, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में चले जाइए और वहां उस पुलिस स्टेशन वगैरह में आपके क्या होते हैं APK फाइल को रिमूव करने की वो होगी, मतलब जितनी प्रक्रिया होती है वो की जाएगी।
1: सर अक्सर अक्सर फ्रॉडस्टर्स ट्रस्टेड कंपनीज, बैंक्स या गवर्नमेंट स्कीम्स का नाम का मिस यूज करते हैं, सिटीजन
0: बिल्कुल।
1: फेक प्रमोशंस को कैसे पहचान सकते हैं?
0: देखिए इसको पहचानने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम वगैरह हो गया, या फिर कोई भी आपका क्या होता है जो कंपनी वगैरह होगी, जैसे SBI हो गई या फिर कोई भी, मतलब आई विल नॉट टेक नेम्स ओवर हियर, वो आपको कोई भी APK वगैरह जो है वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कोई इस टाइप के माध्यम से कभी नहीं भेजेंगे, ठीक है। दे विल ऑलवेज मतलब आइदर उनका जो वेबसाइट होगा वेबसाइट पे वो लोग होस्ट करेंगे, या फिर उनका जो APK वगैरह होगा मतलब जो भी उनका ऐप होगा वो प्ले स्टोर पे होगा या फिर ऐप स्टोर पे होगा, अगर एप्पल के केस में। कोई भी अपना मतलब जो ऑफिशियल ऐप है वो कभी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू नहीं भेजेगा सबसे पहला, नो मैटर वॉट एवर इंस्टीट्यूशन इट इज, क्योंकि आप अगर आप प्ले स्टोर पे अपने ऐप को वो कर रहे हैं होस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप अपना मतलब यहाँ पे कर रहे हैं ऐप स्टोर पे कर रहे हैं, तो होता ये है कि देर आर एन नंबर ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, बोलता कि भाई ये मेलवेयर तो नहीं है, इसमें कहीं बैकडोर तो नहीं है, है ना। तो गूगल और एप्पल दोनों चेक करते हैं, जबकि यही जो भी फ्रॉडस्टर वगैरह होता है, जैसे मेरे को मान लीजिए आप ही को टारगेट करना है, तो मैं करूंगा क्या, मतलब फर्स्ट सबसे पहला वो जो ट्रस्ट रिलेशनशिप है, आई विल एस्टैब्लिश अ ट्रस्ट रिलेशनशिप विद यू, यू स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, उसके बाद आई गेट दैट APK इंस्टॉल्ड ऑन योर फोन। और इसी में मैं एक और चीज ऐड करूंगा, तो देखिए जब पहला जो ये वेव था देन द APKs वर वेरी सिंपल इन नेचर कि बस ये भाई SMS वगैरह को फॉरवर्ड करते थे। ऑफ लेट एंड मोर वरिंगली दिक्कत ये आ गई है कि जो APKs अब हम लोग देख रहे हैं व्हिच आर आउट देयर इन द वाइल्ड, या फिर जो अब हम लोग मतलब यू नो व्हिच वी आर डीलिंग विद ऑन अ डेली बेसिस नाउ, यू नो दे आर एटलीस्ट वन और टू स्टेप्स अहेड ऑफ व्हाट मतलब एक एक एक एक बोला जाता है ना कि भाई मतलब ठीक है इस चीज को, ये प्रॉब्लम है तो इसको मैं टैकल कर सकता हूँ, बट ये प्रॉब्लम है और इसको देख के आपका खुद हालत खराब हो रहा है कि अरे यार ये लोग मतलब किस लेवल पे चल रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल आपको देता हूँ, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगी बीटी मॉब करके, बीटी मॉब रैट रिमोट एक्सेस ट्रोजन कैंपेन है, विच फर्स्ट इमर्ज समवेयर अराउंड अर्ली लास्ट ईयर 2025 के शुरुआत में ये इमर्ज हुआ था, कहाँ, साउथ लैटिन अमेरिका और साउथ अमेरिका और पोर्टुगल, मतलब वो सदर्न यूरोप वाले एरिया में, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर ऐप था रैट, मतलब रिमोट एक्सेस ट्रोजन हम लोग बोलते हैं, तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया था टू एक्सफिल्ट्रेट पासवर्ड्स एंड यूजर आईडीज फॉर बैंकिंग एप्स वगैरह, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इस साल की शुरुआत से ये सेम मैलवेयर रूप, मतलब देखिए तो मैलवेयर को आप आइडेंटिफाई करने का भी अलग अलग तरीका होता है, उनके सिग्नेचर्स होते हैं, एंड्रॉइड सिग्नेचर्स होते हैं, या फिर मान लीजिए आप अगर उनका सोर्स कोड अगर आप देख सकती हैं तो यू विल गेट टू नो कि किस तरह के पैकेजेस वगैरह है उसमें। दिस सेम मैलवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय आर गाइज एज वेल। आर गाइज मतलब यहाँ पे एक दो बहुत बड़े केसेस हुए हैं, है ना, जिसमें जो फ्रॉड की अमाउंट है दैट हैज गॉन इनटू नियरली 100 CR, राइट, एंड द नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिफ्रॉडेड आर इन थाउजेंड्स। ये लोग इस ऐप को क्या होता है वो कर रहे हैं। अब यही चीज जब मैं पहली बार देखा तो हम लोग को भी, अब देखिए वी आर सीइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो महीना डेढ़ महीना लगता है इसको पूरा क्रैक करने में कि हो क्या रहा है। नाउ व्हेन यू स्टार्ट सीइंग सिग्नेचर्स आपका खुद एकदम हालत खराब हो जा रहा है कि भाई क्या चल रहा है ये, है ना। तो ऑल ऑफ दिस इज देयर, या
1: सब कौन से वार्निंग साइंस या रेड फ्लैग्स हैं जो किसी फेक ऐप, फेक वेबसाइट या सस्पिशियस एडवर्टाइजमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं?
0: देखिए सबसे पहला कोई भी फर्जी वेबसाइट को आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है कि उसका आप मतलब व्हेन यू गो टू द यूआरएल, उसके सबसे पहले वाले जो हेडर रहता है यूआरएल का उसमें एचटीटीपी या एचटीटीपीएस को देख लिया जाए, वेबसाइट सिक्योर है कि नहीं, ठीक। मान लीजिए एचटीटीपी है मतलब नॉर्मल हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर जो भी हम लोग बोलते हैं, इट्स नॉट सिक्योर, कहने का मतलब द कम्युनिकेशंस आर नॉट इनक्रिप्टेड, मतलब वो नहीं हो रहा है, मतलब उनको सिक्योर नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पहला वार्निंग फ्लैग है कि भाई जो भी क्या होता है यूआरएल वगैरह है वो आपका फर्जी हो सकता है क्योंकि ये एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चलिए मैं आपको एक

0: साथ तुम्हारा प्रभु कितना है लगता ये प्यारा, परमात्मा का साथ जीवन में रहे तो जीवन सहज और सुगम होता है। चलिए इस खूबसूरत जीवन को शुक्रिया अदा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते। रेडियो मधुबन 107.8 एफएम में आप जुड़ चुके हैं आपके फेवरेट कार्यक्रम उड़ान के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त मोना। आप दोस्तों के बीच प्यार के साथ, मस्ती के साथ गुनगुनाते खूबसूरत शाम बिताने आई हूं और आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ जरूर रहने वाली हूं। तो सबसे पहले आपके लिए सवाल लेकर आऊंगी, अमेजिंग जानकारी के साथ साथ कविता भी जरूर होगी, कहानियां होंगी और होमवर्क आपके लिए जरूर होगा। सवाल का जवाब आप दोस्त देंगे 9414151415 पर। आप सुन रहे उड़ान, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sancharsathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

शंकरा महाकाल, इस प्यारे से गीत को आप तक पेश करने के बाद मैं मोना आपके बीच लौट आई हूँ। आप सुन रहे उड़ान रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज है शतरंज के बिसात की कुछ बात अमेजिंग जानकारी इसी के साथ जुड़ी। शतरंज की खोज एक्चुअली भारत में हुई और पहले इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। दूसरी चीज, 6वीं शताब्दी के दौरान ये खेल भारत से फारस पहुंचा, जहां इसे शतरंज नाम दिया गया। इस खेल में हर खिलाड़ी के पास 16 मोहरें होती हैं। इनमें से एक राजा, एक रानी, दो हाथी, दो ऊंट, दो घोड़े और 8 प्यादे होते हैं। सबसे छोटा शतरंज मैच सिर्फ 2 चालों में खत्म हो सकता है। इसे फूल्स मेट कहा जाता है। शतरंज में समय मापने के लिए विशेष घड़ी होती है, जिसे चेक क्लॉक कहा जाता है, चेस क्लॉक, एक्चुअली चेक ने चेस क्लॉक, और ताकि खिलाड़ियों को बार बराबर समय मिले। और इसके साथ आज का सवाल भी आपके लिए विशेष है। आज का सवाल आप दोस्तों के बीच न शतरंज से जुड़ा है, न मेरे से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये हमारे आसपास मौजूद पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ है। सवाल है, पौधों के किस भाग से हमें किस भाग को भोजन का कारखाना कहा जाता है? पौधे के किस भाग को भोजन का कारखाना या फूड फैक्ट्री कहा जाता है? ए, फूलों को, बी, शाखाओं को, ब्रांचेस को, या फिर सी, पत्तियों को। सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

वेलकम बैक दोस्तों, प्यारी सी कविता आपके लिए विशेष। बिछ गई शतरंज की बिसात, बिछ गई शतरंज की बिसात, चलो आज खेले नई ये मात। सफेद और काले खानों में छिपी जिंदगी की अनगिनत है बात। प्यादा चलता है सीधे कदम, प्यादा चलता है सीधे कदम, आगे बढ़कर मिटाता है सारे भ्रम। वजीर और हाथी की चालें अनोखी, रक्षा करते राजा की डटकर हरदम। बढ़ते हैं आगे ये घोड़े की चाल, बढ़ते हैं आगे ये घोड़े की चाल, कभी सीधी कभी तिरछी इनकी ढाल। हार जीत का खेल है ये बड़ा निराला, आगे वही बड़े जिसने हिम्मत से हिम्मत को पाला। सचमुच हिम्मत की आवश्यकता होती है, शतरंज का खेल कुछ आसान नहीं बल्कि अनोखा जरूर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, पुनः सवाल दोहरा कर हम सीधे चलते हैं किसकी तरफ, गीत की तरफ। पौधे के किस भाग को भोजन का कारखाना कहा जाता है? भाई कौन सा फूड फैक्ट्री है? जी हाँ, पौधों को भी तो खाना पीना चाहिए, तो वो उनके लिए खाना कौन उगाता है, कौन उनकी हेल्प करता है, कौन सा कारखाना है? क्या फूल उनका कारखाना है, या शाखाएं जिसे ब्रांचेस कहते हैं वो कारखाना है, या पत्तियां कारखाना है? सही जवाब झटपट देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है हमारे हमारे बीच साथी है
1: जी।
0: नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हैं आप?
1: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुशी से चार्ज से प्रोग्राम सुन रहा हूँ। और देखो दीदी, कभी कभी आवाज एकदम बिल्कुल कम हो जाते, अभी आवाज बहुत ही कम हो गया है
0: ऐसा।
1: और हाँ, कम हो गया ये। अच्छा। जब चालू हुआ पहले एकदम अच्छा था।
0: अच्छा।
1: पर ये हिंदी गीत चालू होते ही आवाज कम हो गया।
0: ओहो ओहो,
1: ऐसा बहुत कल ये बारिश के कारण होता होगा। ऐसा बीच में कम, बीच में ठीक, ऐसा दो तीन दिन से हो रहा।
0: अच्छा,
1: दो तीन दिन से।
0: ओके ओके ओके,
1: बारिश के कारण होता,
0: बारिश के कारण भी होता होगा।
1: और दूसरी बात, सभी को नमस्कार। शिवाज भाई का प्रोग्राम बहुत शतरंज के बारे में जानकारी अच्छी लगी, और सवाल का जवाब तो शाखाए है,
0: शाखाए। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू, नमस्कार।
1: शुक्रिया दीदी,
0: नमस्कार।

0: ये है नशे की कहानी।
1: पहला नशा, पहला खुमार,
0: कभी किसी वजह से और कभी यूं ही बेवजह।
1: किसी की याद सताए, शराब पी लेना।
0: कड़वे घूंट पीकर भी आने लगा अगर जिंदगी का मजा, तो लगता है

0: बुला सकता है। और हमारे बीच एक और श्रोतागण है, बात कर लेते हैं। नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है, कौन बोल रहे हैं सर?
1: ओम शांति देवी, ज्ञानेंद्र यादव अलीगढ़ यूपी से बोल रहा हूँ
0: जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बीच आने के लिए और कॉल करने के लिए। बताइए सर, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप तो बढ़िया हैं।
0: बहुत अच्छे। और आज के सवाल का क्या जवाब देंगे?
1: हेलो, सवाल का जवाब है पत्तियां।
0: शुक्रिया, थैंक यू। नमस्कार, थैंक यू। चलिए दोस्तों, अलीगढ़ से भी हमें कॉल आ चुका है, जिसके विषय पर आपको जानकारी, जिनसे रूबरू बात भी हुई और शुक्रिया हमने अदा किया। और एक और कविता इसी विषय से जुड़ी हुई, जो सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल पुनः दोहरा देते हैं। सवाल है, पौधों के किस भाग को भोजन का कारखाना कहा जाता है, फूड फैक्ट्री कहा जाता है? ए फूल, बी शाखाएं, सी पत्तियां। झटपट जवाब देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। तो चलिए, जब कविता की बात आई है, हरी डाल पर खिले हैं पत्ते, हवा संग झूमे ये मस्त मस्त, धूप को पीते छांव को देते, पेड़ की शोभा सदा बढ़ाते, पतझड़ आते तो रंग बदलते, पीले होकर नीचे गिरते, मिट्टी में मिल फिर खाद बन जाते, नए पत्तों को जन्म दे देते, जीवन का यह चक्र निराला, पत्ता पत्ता संदेश निराला, खुद खुश रहकर बस अपना कर्म करो, सुख दुख में कभी न डरो, पतझड़ में तेजी से गिरते पत्तों का जीवन गहरा है। जी हाँ, पतझड़ में तेजी से गिरते पत्तों का जीवन गहरा है। पौधों के किस भाग से भोजन का किस भाग को भोजन का कारखाना कहा जाता है? ए फूलों को, बी शाखाओं को, सी पत्तियों को। झटपट दवा जवाब देना 9414151415 पर देना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। आप कौन बोल रहे हैं सर?
1: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
0: जी शुक्रिया फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो मधुबन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सवाल को भी आपने विशेष सुन लिया होगा, तो क्या जवाब है?
1: आज का सवाल का जवाब है जड़, जो नीचे शाखाएं होती, शाखाएं।
0: ओके,
1: चलिए इसका जवाब है,
0: जवाब सुन के जाना, सब जवाब सुन के जाइएगा, ठीक है? टाइम लगेगा, बता देंगे, पर जवाब सुनना जरूर। और कल जब आप आएंगे दोबारा, तो उस समय बताइएगा कि आपने कौन सा जवाब चुना था और क्या वो सही था या गलत था, जरूर जानिएगा, कल बताइएगा जरूर, ठीक है? थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।
0: रक्तदान कर्म महान है, ऐसे ही जीते जी नेत्रदान है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि रक्तदान जैसी चीजें जरूर करनी है और दूसरों का जीवन यानी सेव रखना है, सेव करना है। आगे बढ़ते हैं और आज का होमवर्क आप तक पहुंचाते हैं। आज का होमवर्क पांचवी कक्षा का चैप्टर है और ये है नई कक्षा का सफ़र। स्कूल खुलते एक हफ्ते हो चुका था, लेकिन दक्ष अपनी छुट्टियों के मूड में पूरी तरह बाहर नहीं आया था। एक दिन लंच ब्रेक में दक्ष ने अपने दोस्तों से बोला, छुट्टियां कितनी जल्दी ख़त्म हो गई। हाँ, लेकिन स्कूल खुलने के बाद भी तो मज़ा आ रहा है ना, उसकी दोस्त सिया ने वो कहा। कैसे मजा? दक्ष ने पूछा। अरे, नई क्लास, नए चैप्टर, नए प्रोजेक्ट और दोस्तों से रोज मिलना, ये सब छुट्टियों में कहाँ हो पाता है? सिया ने जवाब दिया। दक्ष सोच में पड़ गया। अगले पीरियड में टीचर ने एक एक्टिविटी करवाई। उन्होंने बोर्ड में लिखा, मेरी सबसे यादगार गर्मी की छुट्टी, और सभी बच्चों को अपनी छुट्टियों का एक मज़ेदार अनुभव सुनाने के लिए कहा। किसी ने दादी के घर की कहानी सुनाई, किसी ने तैराकी सीखने के किसका किस्सा सुनाया, तो किसी ने पहली बार साइकिल से लंबी यात्रा का अनुभव साझा किया। और कुल मिलाकर मेरे बचपन में भी सब यही चीज़ें शामिल थी। खास तौर पर स्विमिंग पूल तो अपनी गर्मी की छुट्टियों में मैं कभी नहीं करना भूलती थी। अप्रैल मंथ से लेकर सीधे जुलाई तक स्विमिंग पूल रोज जाना मेरे लिए अनिवार्य था। वहीं पर साइकिल से यहाँ वहाँ पूरी कॉलोनी में घूमना, ये भी हम करते ही थे। और कहानियाँ सुनाना, मेरी दादी और दादाजी, दादी से भी दादाजी ज़बरदस्त कहानियाँ सुनाया करते थे, और उनके बाजू में सोना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब दक्ष की बारी आई, तो उसने बताया कि कैसे उसने छुट्टियों में अपने पापा से कई तारे और नक्षत्र पहचानना सीखा। जब पूरी कक्षा ने तालियां बजाई, तब दक्ष को एहसास हुआ कि स्कूल खुलने का मतलब सिर्फ पढ़ाई शुरू होना नहीं, ये छुट्टियों में मिले अनुभवों को दोस्तों के साथ बांटने का मौका भी मिला। कुछ दिनों बाद स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा हुई। बच्चों ने अपनी अपनी टीम बनाकर मॉडल तैयार करना चाहा, तो चलो हम सौरमंडल का मॉडल बनाते, दक्ष ने उत्साह से कहा। दोस्त तुरंत तैयार हो गए। अब हर दिन स्कूल में नया हो रहा था। एक शाम घर लौटते समय दक्ष मुस्कुराया। उसे अचानक याद आया कि स्कूल खुलने के पहले दिन वो कितना उदास था, लेकिन अब वही स्कूल उसके जीवन का, उसके दिन का सबसे मज़ेदार हिस्सा बन गया। उसे समझ में आ गया कि छुट्टियां अपनी जगह खास होती हैं, लेकिन स्कूल की रौनक भी तो कुछ कम नहीं होती। दोस्तों की हंसी, शिक्षकों की नई सीख, रोज़ मिलने के वाले छोटे छोटे अनुभव, तो स्कूल कितना खास होता है। नई कक्षा का सफ़र शुरू हो चुका था, उसके साथ साथ शुरू हो चुका था ढेर सारी रोमांचकारी बातें भी। तो चले आगे बढ़ते हैं और गीत लेकर आते हैं, स्कूल चले हम। तो चलिए दोस्तों स्कूल चले, हम खास ये गीत आप तक पहुंचाते हैं रेडियो मधुबन में।
2: सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।

0: go to school?
1: I go to school.
0: To learn.
1: To learn.
0: Learning.
1: Learning.
0: Gives.
1: Gives.
0: Creativity.
1: Creativity.
0: Creativity.
1: Creativity.
0: Leads.
1: Leads.
0: To.
1: To.
0: Thinking.
1: Thinking.
0: Thinking.
1: Thinking.
0: Provides.
1: Provides.
0: Knowledge.
1: Knowledge.
0: Knowledge.
1: Knowledge.
0: Makes me.
1: Makes me.
0: Great.
2: Iske darwaze se dun.
3: राम बाबू, राम बाबू, अरे ओ राम बाबू, उठो। सुबह सुबह ड्यूटी करने आए हो या नाक में तेल डालकर सोने आए हो?
4: जी सर, जी सर। क्या हुआ, क्या हुआ?
3: राम बाबू, सुबह हो गई, अब तो उठ जाओ। अजय का लॉकअप खोल दो, उसकी सजा खत्म हो गई।
4: जी सर, जी सर, अभी खोल देता हूँ।
3: अरे भाई अजय, अब तो जरा सुधर जाओ। अब लोगों के घर जाकर उनके मेहमान बनकर महीनों तक उनकी सेवा लेना बंद कर दो भाई। कुल मिलाकर 3 बार एक ही कारण से तुम्हें जेल हुई है। अब जरा सच्चाई की राह पर अच्छे काम करो। फिर से अगर झूठे मेहमान बनकर पकड़े गए तो फिर तुम्हें पूरी जिंदगी के लिए अंदर कर दूंगा, समझ गए?
5: नहीं नहीं बड़े बाबू, अब ऐसा नहीं करूंगा। अब से मैं सच्चाई की राह पर चलकर रोजगार करूंगा। बिल्कुल, मुझे अच्छी सबक मिल चुकी है। तो फिर मैं अब चलूं? हाँ, मैं वो भी काम करके रोजगार करूं, फिर तो हो गया। अरे बाबा, लोगों के घर में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठकर खाने का मजा ही अलग है। बाघ जैसे मांस का स्वाद नहीं भूलता, ये अजय वैसे ही आराम से बैठकर खाने का स्वाद नहीं भूल सकता। चलो अब एक नया मुर्गा मतलब नया घर ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद उनके घर जाकर दूर का रिश्तेदार बताकर कुछ और महीने बिता दूंगा। जीरे वाला चावल खाकर पेट की हालत खराब हो गई है। अरे वाह, ये घर तो काफी बड़ा है और देखकर ऐसा लग रहा है कि इस घर में इस छोटे लड़के के अलावा और कोई नहीं है। अच्छा बेवकूफ बनाया जा सकता है। कहते हैं शुभ काम में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ कुछ दिन बहुत मजे से बढ़िया खाना खा पाऊंगा। उफ, अभी से ही नर्म बकरे की मटन की खुशबू मेरी नाक में आने लगी है।
4: था लेकिन मेरा नाम तो मुन्ना नहीं है, मेरा नाम अभी है।
5: पता है, मैं तुझे प्यार से मुन्ना कहकर बुलाता था। वो तो तेरे बचपन की बात है। वो छोड़ो, ये बताओ मुझे पहचान पा रहे हो या नहीं? अरे मैं तुम्हारे पिताजी के मंझले मामा के छोटे बेटे की संजली बुआ के बड़े भाई के काका का मंझला भाई हूँ। हाँ, पर तुझे ये सब कैसे याद होगा?

0: अभी तूने पहले खबर क्यों नहीं दी बेटा? अरे वाह, यहाँ तो बिना मांगे ही बहुत कुछ मिल गया। शाबाश, माँ बाप नहीं है और घर में ये लड़का अकेला है। शुक्रिया ऊपर वाले ऐसा घर मेरी किस्मत में लिखने के लिए। अब तो अपना चाचा बनकर महीनों तक बैठकर खाऊंगा झींगा लाला।
1: अच्छा हुआ आप आ गए चाचा, इतने बड़े घर में मुझे अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है।
0: इस चाचा के रहते तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अभी आज से मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जा जाओ बेटा, जरा चाय बना कर ले आओ तो, एक साथ चाय पीने से थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। अब रो मत, मैं तुझे तेरे पिताजी की तरह ही पालूंगा।

सच में रो रो कर और ना खा कर तूने अपना ये क्या हाल बना लिया है बेटा। नहीं नहीं, अब तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा मैं, अब से तुझे पेट भर कर खाना होगा, समझा। जा, हम दोनों के लिए नूडल्स बना ले।

0: बाप रे, ये किस रिश्ते के चाचा हैं क्या पता, इनके पीछे चलते चलते तो मेरी खुद की ही जान निकल जा रही है।
1: उन्हें कुछ कहा क्या?
0: नहीं नहीं, लगता है कि आपने कोई सपना देखा है चाचा।
1: अच्छा चलो, शाम को कुछ खाने को मिल ही गया, पर डिनर का क्या प्लान है?
0: आप ही बताइए क्या खाना चाहते हैं आप?
1: मैं बहुत उल्टा पुल्टा तो खाता नहीं, थोड़ा नरम बकरे का मटन और गर्मा गर्म चावल बना जाए तो कैसा रहेगा?
0: लेकिन चाचा, मतलब वो घर में जितने भी रुपए पैसे थे वो तो सब शाम को नाश्ते में ही खत्म हो गए चाचा, लेकिन आप तो मेहमान हैं और आपको भूखे पेट रखना भी तो पाप है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं टीवी और एसी को बेच देता हूँ, ठीक है? तो कुछ रुपए हाथ में आ जाएंगे।
1: इतना बेवकूफ लड़का है, इसे तो काफी दिनों तक बेवकूफ बनाकर खाया जा सकता है। घर की चीजें बेचेगा, ठीक है तो तू वही कर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये एसी और टीवी खोलने में मेरी थोड़ी हेल्प करेंगे?
1: क्यों नहीं करूंगा, चलो चलो चलो।
0: लेकिन चाचा, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैं बाजार जा ही रहा हूँ तो एक डेढ़ महीने का सामान इकट्ठा ही ले आता हूँ, लेकिन इस टीवी और एसी से तो इतना सामान नहीं आ पाएगा। तो फिर आप एक काम करिए ना, हैं, ये पंखा, फ्रिज, अलमारी, फर्नीचर, फूलदान, शोपीस सब बाहर निकाल कर रखिए, मैं एक गाड़ी बुला कर ले आता हूँ। हाँ
1: ये क्या कह रहे हैं, एक महीने का सामान? ठीक है ठीक है ठीक है, तू जा, इस चाचा के रहते तू बिल्कुल भी परेशान मत होना, जा।

0: बाप रे, शाम को जो कुछ भी खाया था सब पच गया, पर इन सबको बेचकर ही तो अगले एक महीने तक पेट भरा रहेगा।
1: हाथ लगाइए चाचा, सारा माल गाड़ी में भरना पड़ेगा ना।
0: क्या फिर से? हाँ रुक जा, आता हूँ।

0: आज आपको बहुत काम करना पड़ा ना चाचा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ, मैं ये सब सामान बेचकर बाजार से आ जाता हूँ।
1: मैं कहाँ बैठकर आराम करूँगा, चलो फर्श पर ही सो जाता हूँ।

0: भूत।
1: कौन भूत? हम इस घर के मालिक हैं। आप कौन हैं? घर में कैसे घुसे?
0: आप लोग तो गंगा नदी के अंदर चले गए थे ना, मतलब
2: हाँ गए थे। हम गंगा नदी के नीचे जो मेट्रो बनी है ना, उसे देखने गए थे, समझे? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला?
0: आपके बेटे ने ही बताया।
1: बेटा, हमारी शादी को 20 साल हो गए पर अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है। ये जरूर कोई चोर है।
2: हाय हाय हाय हाय, सही कहा। वो देखिए देखिए जरा, पूरा घर साफ कर डाला।
1: चोर चोर, घर में चोर घुस आया है। यहाँ पर कोई है क्या? पुलिस को खबर पहुँचाओ। चोर चोर।
0: मर गया अजय, जल्दी भाग भाग अजय।

0: अच्छा तुम फिर से जानते हो, ये जाना माना मुजरिम अजय है। लोगों के घर जाकर झूठा मेहमान बनकर महीनों महीनों बिता देता है, उसके बाद चोरी करके भाग जाता है। 3 बार जेल जा चुका है।
1: है सर, जिसने मुझे बेवकूफ बनाकर सारा माल लेकर भाग गया।
0: क्या? ये तो डबल धमाका हो गया। चल चल अब तू चल, पहले तुझे जेल में डालूंगा, उसके बाद इसे देखता हूँ। और इसे ही कहते हैं नहले पे।

0: फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, समय इशारा कर रहा है, आप सभी से विदाई लूं। गीत बेहतरीन से कुछ सुनाए, कहानियां भी खूबसूरत सी थी, लेकिन पौधों के किस भाग को भोजन का कारखाना कहा जाता है? वो फूल भी नहीं है और शाखाएं भी नहीं है, वो है पत्तियां। जी हाँ, पत्तियों में फोटोसिंथेसिस होते हैं और जिसकी वजह से पेड़ पौधों को भोजन बनाने में आसानी होती है और इसीलिए पत्तियों को भोजन का कारखाना कहा जाता है। हमारे कुछ साथियों ने एक्चुअली ब्रांचेस को, मैंने शाखाओं को कहा है, पर सही जवाब पत्तियां हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलने का वादा है ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए उड़ान से कहूंगी गुड बाय। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: कोटिल पंडित, आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: अभी बजे हैं शाम के 7। अगले इस 1 मिनट में मन को रखिए प्रभु के साथ।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल यानी माय विलेज माय एरिया, और अपना लोक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। सही में कार्यक्रम का नाम ही अपना गाँव और अपना अंचल। जिस गाँव और जिस अंचल में रहते हैं पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, वो गांव और अंचल कभी नहीं भूल पाते। तो सरकार का जो मंशा है, जो रेडियो स्टेशन दिया है, आसपास में जो गतिविधि हो रही सब तक पहुंचाने के लिए एक मंच आज राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला में, और बच्चों का बारी बारी हुनर और प्रतिभा सुनने को मिलेगा। पहला प्रस्तुति हम सुनने जा रहे हैं एक प्रार्थना के रूप में, और इस कार्यक्रम को साधने के लिए हमारे साथ 6 छात्राएं हैं, तो वो भी अपना बात को रखेंगे नाम का साथ, अपना नाम और वो कौन सा गांव से आते हैं और कौन सा क्लास।
1: मेरा नाम सुपना कुमारी है, मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ, मैं अंबावेरी से आती हूँ।
2: मेरा
1: नाम अंजू कुमारी है, मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ, मैं बगेरी से आती हूँ। मेरी स्कूल का नाम भारतीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीला।
0: तो चलिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए हम आज आपका पास बात कर रहे हैं, खासकर ईश्वरीय विश्वविद्यालय और राजकीय विद्यालय का सहयोग से। तो जैसे बच्चे अपना प्रस्तुतियाँ देंगे, सुगना रेडी?

हूँ मैं प्रभु तेरे लिए, मेरे

0: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। कार्यक्रम का पहला गीत में ही बच्चे अपने के अपने अपना देश का अपना भाव और भावना को माँ सरस्वती तक पहुँचा दिए और इस तरह कार्यक्रम का बहुत होता है, बच्चे पढ़कर भाग लेते हैं और अपना भाव और भावना को देते हैं, अर्पण करते हैं, तो समर्पित रूप में अपना जीवन को जब त्याग करते हैं तब भगवान भी खुश हो जाते हैं। बच्चों का गीत को देखकर उनका सुर ताल का साथ लय का साथ भावना भी है, भाव भी है, जैसे घर में अगरबत्ती करते हैं, नमस्ते करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारा छह छात्रा जो सुकुना एंड अंजू सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पहला प्रस्तुति के लिए। और छोटे बच्चे भी हमारे साथ इस कार्यक्रम को जोड़ेंगे, लेकिन और कोई विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। तो खास कर अंजू बड़े होकर क्या बनेगी?
1: टीचर।
0: क्यों टीचर? क्यों? क्योंकि पढ़ाते हैं,
1: पढ़ाते हैं।
0: तो बच्चा मिट्टी को जैसे रूप देंगे उस तरह बनता है। जैसे कारीगर क्या करता है, कारीगर अच्छा से सुंदर देते हैं, लकड़ी हो चाहे मिट्टी हो उसको सुंदर रूप दे देते हैं। तो शिक्षक भी बच्चों को सुंदर रूप में रूप देकर डॉक्टर इंजीनियर टीचर बना देते हैं। तो इसलिए टीचर शिक्षक का महत्व ज़्यादा है, सैनिक टीचर और किसान ये तीनों देश का ज़्यादा और पूरा मेन रोल करते हैं, पूरा पिलर है, उनका बिना हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। सैनिक जो कि बॉर्डर में सैनिक काम क्या करता है, जो फौजी में देश को रक्षा करते हैं, हाँ, और किसान हमको अन्न देते हैं और शिक्षक हमें अच्छा शिक्षित कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद लेते हैं छोटा सा।

हैं तेरे, जितने भी हैं ये सितारे, ऐ रात इस वक्त आंचल में तेरे, जितने भी हैं ये सितारे, जो दे दे तू मुझको तो फिर मैं लुटा दूं किसी के नजर पे ये सारे। कहोगे ये रंगीन सपने।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
1: चले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अपना बड़ी में बस आवाज सुनिए देखा पहले और अच्छा गीत सुने प्रार्थना के रूप में और हमारे रेडियो मधुबन तरफ से भी गीत सुने। तत्पश्चात और एक प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गोड्डा गुडिया दोनों आए हैं, तो सुनते उनका आवाज से क्या बोलना चाहेंगे। अपना नाम बताएंगे। हेलो, नाम बताइए। और कौन सा क्लास? पहले का प्रस्तुत सुनेंगे। सभी बच्चे साथ दे रहे हैं हमारा कार्यक्रम को सुनकर अपने को कंट्रोल करके बैठे हैं चुपचाप। और हमारा तीन छात्र और छात्रा दोनों मिलकर गीत गाएंगे। सुना
2: चंडीगढ़ से जयपुर से

0: Instagram e vídeo. Essa de um será a sua.
1: फिर नहीं गए, सब घूम कर आकर अपना घर में पहुंच गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला कार्यक्रम के लिए हम और छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी स्वागत कर रही है कि बच्चे सच्चे होते हैं, मन के सच्चे, दिल के सच्चे, प्यारे प्यारे लगते हैं। और ये तो बच्चे भी आए, हम भी कभी बच्चे थे लेकिन आप तो बड़े हो गए, हमारा बच्चे कम नहीं है। आपने अपना नाम बताएंगे प्लीज, अपना नाम बताओ। हेलो जी, हाँ यशोदा, चेतना, आत्मा तो चेतना है कि नहीं। अरे यशोदा बिना हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। मधु वाह, मधुबन, रेडियो मधुबन से हम आए और मधु हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे। और एक गुड़िया किंजल, बस सभी के लिए ताली बजा दो भाई, ये तीनों बच्चे के लिए। सुना कौन सा गीत सुनाएंगे? कविता हाथी राजा। वाह, हाथी तो राजा है, जंगल का राजा हाथी है, जंगल का राजा हाथी है। हाथी कभी देखा है चित्र में? नहीं, फोटो में नहीं। हाथी देखा है? कितना पैर है उसके हाथी का? चार। कितना पैर है? सभी बच्चे हाथी देखें? असली असली असली देखें? कब? जंगल में ना गांव में? गांव में हाथी आता है। अरे वाह, क्योंकि जंगल का बाजू में तो बड़ा बड़ा पहाड़ है, जंगल है, हो सकता आ सकता है, लेकिन कोई भी पालतू हाथी भी आता है। चलिए हाथी राजा के बारे में सुनेंगे, सभी सुनेंगे बच्चे? चलिए सुनते हैं हाथी राजा।

0: वाह, तुम्हारा नाम बताओ।
1: राजकुमार।
0: अरे वाह राजकुमार, राजकुमार हमारा होबनहार बच्चा है और राजा बनेगा। बड़े होकर क्या बनेगा? राजा बनेगा ना, डॉक्टर बनेगा, क्या बनेगा?
1: डॉक्टर।
0: हाँ हाँ, राजकुमार हमारा राजा बनेगा और डॉक्टर भी बनेगा। डॉक्टर का काम क्या होती है?
1: सुई लगाता।
0: अरे बाप रे, सुई। बहुत होशियार बच्चा है मेरा राजकुमार। अरे बैठ जाता है, सिर्फ राजा तो बैठता नहीं है, राजा तो पूरा शासन करता है ना। तुम्हारा अच्छा मैम कौन है?
1: ममता मैडम।
0: अच्छा, क्या बात है, ममता मैम उनका अच्छा मैम है। क्या ममता मैम क्या सिखाते हैं?
1: गिनती।
0: गिनती सिखाते हैं और राजा बनने के लिए तरीका बताते, डॉक्टर बनने के लिए तरीका बताते है ना। बहुत अच्छा है। राजकुमार के लिए क्या करेंगे, जोर से ताली बजाएंगे। राजकुमार हमारा खुशी खुशी लग रहा है, तुमको सब ताली बजा कर खुशी करा दिए। ताली बजाने से कोई पैसा नहीं लगता है, एक्सरसाइज हो जाता है और चेहरा में गोला फूल जैसे खिलता है। सबका चेहरा देखो कितना खिलखिला रहा है ना, जैसे कमल फूल खिलता है ना। कमल फूल कैसे खिलता है देखो बच्चे, ऐसे करो हाथ। अरे वाह, कमल फूल दो दो हाथ अंगुली से इशारा से करो, देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। कमल फूल ऐसे खिलता है, कमल फूल जैसे हमको भी बनना है। कैसे बनना है? कमल फूल जैसे
1: बनना है।
0: हाँ देखो बच्चे आज कितना खुशी से बोले, कमल फूल जैसे सब सहन करता है, कीचड़ पानी सब उनके साथ रहकर पूरा उपराम, सबसे अलग। तो हमारा राजकुमार भी सबसे अलग है, सभी मैम उनको याद करते, सभी सर उनको याद करते ना
1: जी।
0: क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुण है, विशेषता है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा इस कार्यक्रम को सजाने के लिए और दो बच्चे है, तीन बच्चे वो भी सुनाएंगे, लेकिन आओ और बच्चे सुनाएंगे कुछ।
2: हसीना
0: सुनाएंगे कुछ इस कार्यक्रम को। अगला कड़ी में सुनाएंगे हसीना। हमारा साथ कौन सा क्लास में हसीना है?
3: फाइव,
0: फिफ्थ क्लास। तो सुनाओ।

0: क्या बात, प्यार प्यार मतलब कितने खुशी का बात, ताली बजा प्यार के लिए। प्यार में सब कुछ समय होता है, जब प्यार से कोई काम करेंगे, प्यार से याद करेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, प्यार से बुलाएंगे, चुटकी में सब काम हो जाता है। और हमारा गुड़िया, हमारा परी आज प्यार सबको लुटा रहा है, गीता माध्यम से, कविता का माध्यम से। कौन सा फलिपा, कौन सा गांव से आती गुड़िया, तुम कहाँ से आती?
1: गिरवर बोर्ड से।
0: अरे बाप रे, गिरवर बोर्ड से आती, इतने दूर से आती है, वाह, गिरवर बोर्ड से। और बड़े होकर क्या बनेगी गुड़िया तुम?
1: डॉक्टर।
0: हाँ डॉक्टर, डॉक्टर का काम सुई लगाना होता है, इंजेक्शन देना होता है। और इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाए, और प्यार प्यार भरा, दिल भरा कविता का माध्यम सबका मन मुग्ध कर दिया। हमारा श्रोता सुन रहे इस कार्यक्रम को, और ये तो चंडला का आवाज, विद्यालय के भुवनहार बच्चे ममता मैम और एक मैम हमारा साथ इस कार्यक्रम में आए हैं, तो उनको भी हालो करेंगे। मैम आप अपना परिचय देंगे?
2: मेरा नाम संगीता शर्मा है और मैं इसी विद्यालय में अध्यापिका हूँ, पहले से पांचों को हिंदी पढ़ाती हूँ। और ये बच्चे अच्छे अच्छे कविता बोल रहे हैं, इनको सिखाई है मैंने, और मुझे पढ़ाने का बहुत ही शौक है। मुझे पढ़ाना बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चों से पढ़ाना है, इनको नॉलेज देना, और इनको मैं से सांस्कृतिक प्रभारी भी हूँ, तो नाच गाने वगैरह करवाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद भी गायिका हूँ, गाती हूँ गाना।
0: बच्चों का आवाज को सुनकर मैम भी अपने आवाज को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है, क्योंकि बच्चे सच्चे होते हैं और बड़े भी तो सच्चे बना देते हैं। और इस कविता का माध्यम से प्यार कितना सीमेंट का काम करता है, जोड़ना है प्यार, जैसे ईंट और रेती को सीमेंट दे देंगे तो दोनों को पूरा बराबर जोड़ देता है, कभी टूटता। तो इस कविता का माध्यम से सभी बच्चे भाग लिए, और मैम इस कविता का माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। मैम एक जो कविता सुनाई बच्ची, प्यार वाला कविता, वो कविता का महत्व थोड़ा बताइए, आपका आप तो बच्चों को सिखाते हैं।
2: ये कक्षा 5 का पहला ही पाठ है, तो मैं इनको मैंने पढ़ाया, और रोज ही प्रार्थना के जस्ट बाद ये कविता मैं बुलवाती हूँ। तो ये बच्चे क्या है, इन कविताओं को बोलते हैं और इनको सबको करीब करीब याद हो चुकी है। तो इसमें नानी का जो प्यार वो बताया है, नानी दादी हमें पहले कैसे कहानी सुनाती थी, प्यार करती थी, है ना, तो उससे बच्चों का क्या होता था, संस्कार के विकास होते थे, है ना। जैसे उन्होंने, नानी हमें प्यार से बताती थी कि ये संसार पूरा किसने बनाया, ईश्वर ने, ईश्वर ने बनाया ना, और ईश्वर तो ईश्वर को हमको ध्यान रख करना चाहिए, ईश्वर ही हमको सबसे जुड़ने का और इस संसार से जुड़ने का प्रेम सिखाता है, है ना। तो इसलिए नानी का और दादी का बच्चों के संस्कार निर्माण में बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। और इसी में दो लाइन मैं बच्चों के ऊपर गाना गा देती हूँ, क्योंकि बच्चे मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं बच्चों के लिए ही गाना गा रही हूँ।

0: के सच्चे धन्यवाद।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चा का शुरुआत कर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम को भी धन्यवाद और हमारा ममता मैम को भी धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए। ममता बहन का आवाज भी लेंगे अंतिम समय में।
2: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे सुनकर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गाँव में रहते हैं बच्चे, इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको

0: कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मध्य ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी बुढ़िए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
1: अंजू
2: शुभना।
0: चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके।

0: वाह वाह बोल रहे हैं सर बच्चे, बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति को धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं आगे आकर अपना बात करते हैं, कोई बड़े अपना लक्ष्य भी रखते हैं, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कॉलेज बनेंगे सभी बड़े होकर,
0: लेकिन लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है।
1: इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
0: मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: सड़क पर से रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय दोनों तरफ पहले देखें, फिर अपना वाहन रेलवे क्रॉसिंग से पार करें। रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय उचित नियमों का पालन करें, इसमें आपकी व रेलवे की सुरक्षा है।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अंतिम प्रस्तुति की ओर हम चल रहे और आप सब सुन पा रहे रेडियो मधुबन पर राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडला का आवाज अंतिम प्रस्तुति में उन्होंने उनको स्वागत करते हैं। शुरू करेंगे
1: चंडा पड़ा अंबर।

सुनूंगा सुंदर वस्तु जी के लिए, और आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। बहुत खुशी लगा सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं। सभी बच्चे बोलो रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की श्रृंखला जीना इसी का नाम है, इसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई बार हम जब कोई व्यक्ति की या किसी का भी हम जीवन देखते हैं और उनके जीवन को गहराइयों से जानते हैं, ऐसा लगता है कि क्या जिया है इन्होंने, काश हम भी ऐसे जी पाते हैं। तो ऐसे ही कुछ ऐसी प्रेरणादायी अनुभवों के साथ आज हमारे साथ हैं बाला साहेब अप्पा घोरपाड़े भाई जी। आप शांतिवन ब्रह्मा कुमारीज की जो हेडक्वार्टर्स है उस परिसर में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक योगी जीवन जीते हुए कार्य करना, क्या सन्यासी कोई कार्य कर सकता है? अगर कार्य करने वाले हैं या कोई प्रोफेशनल वर्क अगर संभालते हैं, क्या वो सन्यासी बन सकते हैं? आखिर सन्यास का मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं हमारे मन में, तो इन सारे सवालों की उलझनों को आज हम सुलझेंगे और कई सारी नई जानकारियां आज हम जानेंगे आज की इस बातचीत में। चलिए स्वागत करते हैं बाला साहेब भाई जी को। भाई साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जीना इसी का नाम है। नमस्कार।
1: थैंक यू। नमस्कार
0: जी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका लौकिक जो परिवार है, आपका लौकिक जो जन्म है, वो कहाँ पे हुआ और वो शुरुआत जीवन की कहाँ से हुई, और संक्षिप्त में आपके परिवार और ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे।
1: तो बहुत अच्छा आपने पहला क्वेश्चन किया। वैसे हमारा जो लौकिक गांव है वो महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा फेमस है
0: जी,
1: सारे विश्व के अंदर जाए एयरपोर्ट भी है। वहाँ से ही 10-12 किलोमीटर शिरडी शिंगनापुर हाईवे, वहाँ एक छोटा सा गांव है, वह हमारा जन्म हुआ 1970 में, और उसी गांव में हमारी पढ़ाई भी हुई प्राइमरी और हाई स्कूल 10वीं तक। उसके बाद वहाँ से 8 किलोमीटर हमारा कॉलेज था, वहाँ हम उस समय साइकिल पर ही जाते थे, 7 किलोमीटर था। तो हमने बीए कॉमर्स करने के बाद EMA में एडमिशन लिया, 1 पार्ट किया, और उसके बाद हम इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर समर्पित हो गए।
0: भाई साहब, उससे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लौकिक परिवार की अपनी अपनी पढ़ाई तो कही आपने, आपके माता पिता क्या करते थे और आप धार्मिक परिवार से थे?
1: हाँ जी, हमारे माता पिता खेती करते हैं, आज भी हमारे घर में खेती है। और धार्मिकता कहेंगे तो बचपन से ही हमारे मम्मी पापा भी धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले थे, इसलिए हमें भी ईश्वर के प्रति आस्था थी
0: जी। तो वो कौन सा मोमेंट रहा आपको इस ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की जो राजयोग मेडिटेशन है इसका परिचय हुआ, और आपके परिवार में सिर्फ आप ही इस राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं या अन्य सदस्य भी करते हैं?
1: तो सबसे पहला ये मोमेंट रहा कि जब मैं 10वीं में था, तब मुझे शिव के मंदिर में हम हर सोमवार को दर्शन करने के लिए जाते थे, शिव की हम पूजा करते थे। और आज भी हमारे गांव के अंदर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं शिव को मानने वाले हैं, तो हम भी सोमवार के दिन जाते थे मंदिर में, बेलपत्र चढ़ाते थे। और एक था कि ईश्वर के प्रति मुझे कि मन में बचपन से था, जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में था, तो ईश्वर एक होना चाहिए, भले साईं बाबा शिरडी साईं बाबा नज़दीक है, फिर भी मन में कभी ये नहीं आया कि ईश्वर है, क्योंकि वो भी कहते सबका मालिक एक है। और मैं हमारे टीचरों को भी पूछता था कि घर में जैसे चित्र होते हैं, देवियों को 8-8 हाथ दिखाते हैं, या जैसे हम देखते हैं कि त्रिमुख दिखाते हैं, ब्रह्मा को 3 मुख दिखाते हैं, तो मन में क्वेश्चन होता था कि ये ऐसा कैसा हो सकता है कि इंसान को तो एक ही मुख है, किसी को भी 8-8 हाथ नहीं, तो ये कैसा हो सकता है, ऐसे कोई देवता हो सकते हैं? मन में क्वेश्चन होते थे। तो मैं टीचरों को भी पूछता था कि ईश्वर आखिर का है, ये मेरे मन में एक बचपन से ही क्वेश्चन था। देहधारी कोई भी ईश्वर नहीं हो सकता है, वो एक ही होना चाहिए, ये मेरी बचपन से ही मन में एक संकल्प था
0: जी।
1: और जब हम शिव के मंदिर में गए तो वहाँ प्रदर्शनी लगी हुई थी, अपनी जो 7 दिन की यहाँ प्रदर्शनी होती है इस विद्यालय के अंदर, तो उसके अंदर मैंने पहले ही आत्मा का चित्र देखा, उसके बाद में परमात्मा का देखा, और एक एक जैसे मैं चित्र पढ़ता गया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये कोई अलग चीज़ है, ये जो नॉलेज है ये कोई अलग है। आत्मा के बारे में हम गीता में भी सुनते थे, क्योंकि मैंने ग्रंथ भी पढ़ा था, ज्ञानेश्वरी भी पढ़ी थी, तो सेकंड जो अध्याय है भगवद गीता का उसमें आत्मा के बारे में पूरी नॉलेज दी हुई है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। लेकिन एक होता है कि उसकी आत्मा की जानकारी रहना, और दूसरा होता है कि उसकी महसूसता होके उसका अनुभव होना। और ये अनुभव नहीं था कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन जैसे मैंने ये प्रदर्शनी पढ़ी तो मुझे क्लिक हुआ कि ये कोई सत्य है। परमात्मा के जब गुण मैंने पढ़े तो ये जो गुण है इस विश्व में किसी भी मनुष्य आत्मा में नहीं हो सकते, तब मुझे परफेक्ट निश्चय हुआ कि इसको हम भगवान कह सकते हैं, सुप्रीम सोल, जिसको अन्य धर्मों के अंदर डिवाइनिटी, सुप्रीम सोल ऐसे भिन्न भिन्न नाम दे देते हैं, चाहे मुस्लिम लोग उसको अल्लाह कहेंगे, या जैसे क्रिश्चियन लोग मोमबत्ती जलाते हैं, जापानीज लोग देखेंगे तो लाइट को मानते हैं, मतलब इस विश्व को चलाने वाली कोई लाइट है, सत्ता है, ये हमारा निश्चय हो गया। और मुझे किसी ने बताया नहीं, बस मैंने पूरी प्रदर्शनी पढ़ लिया और मैंने कहा कि ये ज्ञान एकदम परफेक्ट है, क्योंकि अभी तक हमने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर सब तरह के सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाई की थी, लेकिन उससे हटकर ये था, क्योंकि आज तक किसी ने भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज नहीं बताया। वह मैथमेटिक्स, साइंस, जैसे और भी सब्जेक्ट होते, अलग अलग सब्जेक्ट होते, साइकोलॉजी होता है, फिलासफी, मुझे फिलासफी भी था, इसका जो आंसर है ना कहीं भी नहीं मिलता था, इस बात का कि ईश्वर कहाँ रहता है
0: जी,
1: या आप कौन है वास्तविक, इसका भी कोई भी परिचय नहीं देता था। हर एक अपने आप को यही समझता है कि मैं फलाना हूँ, फलानी कास्ट का हूँ, फलाने धर्म का हूँ, फलाने घर में मेरा जन्म हुआ है, मेरा ये स्टेटस है, मैं ये सर्विस कर, तो हर एक ऐसा परिचय देता है। तो वास्तविक ये जो मैं आत्मा हूँ, बस ये जो परिचय है बहुत अच्छा लगा कि मैं और कोई नहीं है, शरीर भिन्न है और मैं आत्मा भिन्न हूँ और परमात्मा एक है। ये दो चीज़ें मुझे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर परफेक्ट और सत्य मालूम हुई। बाकी जो भी परमात्मा बताएगा वो सत्य ही होगा, ये मेरा पूरा पूरा निश्चय हो गया
0: जी। सो आपके परिवार में आप अकेले ही इस ज्ञान को समझा है, या फिर आपकी आपके भाई बहनें, माता पिता, उनको भी इस तो, बात पे निश्चय हुआ?
1: अभी तो माता पिता नहीं है, लेकिन जब मैं ज्ञान में आया तो उन लोगों को मैंने बताया, तो वो लोग भी बड़े, उनको अजीब लगता था, उनका कहना था कि इतने संत होके गए, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर माउली, साई बाबा, ईश्वर के लिए उन्होंने इतनी तपस्या किया है, उनको भगवान नहीं मिला। और आप कहते हैं कि शिव बाबा, उनके कन्फ्यूजन में ये भी था कि ये कौन सा बाबा है, क्योंकि शिव बाबा तो दिखाई देता नहीं, बाकी बाबा दिखाई देते हैं, तो ये भी एक कन्फ्यूजन था कि बाबा को दिखाए कैसे। तो फिर मैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझाता था कि फूल का सुगंध तो दिखाई देता नहीं है, हवा दिखाई देती नहीं, ऐसी एक सूक्ष्म शक्ति है इस संसार में कि जो इन आँखों से नहीं दिखाई देती लेकिन है, ये तो मानना पड़ेगा, हवा है मानना पड़ेगा, फूल में सुगंध आता है आपको तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब व्यक्ति चला जाता है तो इसमें कोई चैतन्यता थी, इसलिए तो आप गए थे ना, वो चला गया, कौन चला गया मैं बताता था तो वो चुप रह जाते थे, उनको इसके आंसर नहीं आते थे। तो मुझे ये ज्ञान इतना परफेक्ट हुआ था कि 7 डेज मेरा किया नहीं किसी ने, लेकिन कल पहले जैसे क्लिक हुआ होगा कि मैं इस ज्ञान को दूसरों को बताने में मैं इतना मतलब ये करता था कि ये सत्य है और आप मानते क्यों नहीं। उस समय हमारे यहाँ स्वाध्याय का चलता था, पांडुरंग शास्त्री आठवले फेमस था उस समय, 87-88 की बात है, वो लोग भी गीता को मानते हैं। तो मैं उनको क्वेश्चन करता था कि आप गीता को मानते हैं, गीता को हाथ में लेते हैं, लेकिन गीता में जो कहा हुआ है गीता की कहाँ तक मानते हैं, उसमें कहाँ तक आप चलते हैं, कहते तो सभी है लेकिन उन बातों को आप लोग कहाँ तक मानते हैं। तो ये मैं उनको क्वेश्चन करता था लेकिन किसी से भी मुझे आंसर नहीं मिलते थे। तो मुझे बहुत बड़ा एक नशा चढ़ जाता था कि अरे ये ज्ञान इतना सत्य है, किसी भी एंगल से कोई मुझे कुछ भी क्वेश्चन करे तो मैं उसको प्रूव करके देता था, तो ये बड़ा एक नशा था। फिर हमारे माता पिता मधुबन तो आके गए, 2-4 बार पिताजी आके गए, लेकिन जैसे ज्ञान योग की धारणा जैसे हमारी रेगुलरिटी हो वो नहीं करते थे, लेकिन बाद में सभी सपोर्ट हो गए, हमारी भाभी हो भाई हो सब मधुबन आके गए, लौकिक जो संबंधी है बहुत बड़ा परिवार है, कुछ आके भी गए, लेकिन जैसे रेगुलर है वो मैं ही इतने बड़े परिवार से निकला हूँ।
0: जी आपके कितने भाई बहने हैं?
1: मेरे से बड़ा एक भाई है और छोटी बहन है, मैं बीच वाला हूँ।
0: अच्छा।
1: और उनकी शादियाँ हो गई है, वो अपने अपने संसार में सेटल है और हम बीच में शेप रह गए।
0: तो उनको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरा भाई कुछ अलग जीवन जी रहा है, मुझे भी इस बात को समझना है?
1: नहीं, उनको पूरा सपोर्ट है उन लोगों का और बहुत गौरव है उनको। हमारे पिताजी भी 3 साल पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, और उनको भी मेरे जीवन के प्रति बहुत एक सम्मान था, एक रिगार्ड भी उनको बहुत था ज्ञान के प्रति। और हमारे वैसे लौकिक घर में जैसे सेंटर जैसे माहौल होता था बहनों का आना जाना, और आज भी 2012 में हमारे वहाँ घर में 6 जोन इंचार्ज आए थे, सिल्वर जुबली थी हमारी, तो बड़ी बड़ी बहनें आई थी, तो भाभी भी हमारी बहुत वो बचपन से उनको आध्यात्मिकता है, भाभी को ग्रंथ पढ़ना अभी स्वामी समर्थ का वो करते हैं, तो पूरा ऐसा मतलब जैसे उनका रोल नहीं हुआ होगा लेकिन पूरा सपोर्ट है, मानते भी है बाबा को, पूरा बाबा का कमरा भी घर में बना हुआ है, पूरा जैसे ऐसे नहीं कहेंगे लेकिन जैसे ये धाराओं में चलने के लिए कोई ऐसी बात बन जाएगी तो इस पर भी वो चलेंगे।
0: भाई साहब ये बताइए कि वो कौन सा पल था जब आपको लगा कि हाँ मुझे समर्पित होना है, क्योंकि 10वीं कक्षा में आपने इस ईश्वरीय ज्ञान का परिचय तो लिया, आपको निश्चय भी हो गया ये सत्य ज्ञान है जो आप जीवन में ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप जब एमए इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अचानक से ये क्या हो गया कि आप अपने सब कुछ छोड़ के मत बना गए हैं जीवन समर्पित करने?
1: वो जो मोमेंट है वो बहुत बड़ा विचित्र था
0: जी।
1: पता नहीं मुझे क्या हुआ कि जब मैंने ये एग्जाम ही नहीं दिया तो हमारे क्लास में जो आज भी याद करते जो क्लासमेट है हमारी लड़कियाँ थी ज़्यादा, तो उनको बड़ा शौक लगा कि ये किसने क्या किया, एग्ज़ाम भी नहीं दिया और ये माउंट आबू निकल गया, तो उनको बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि तुम इसमें तो है शुरू से, क्योंकि मैं सोमवार के दिन कॉलेज में लास्ट ईयर में मौन रखता था पूरे साल, और उसका प्रभाव इतना हुआ कि एक दिन लास्ट में सोमवार के दिन ओरल एग्ज़ाम आई, यूनिवर्सिटी से जो टीचर आए मैडम ने कहा इसको अगर मौन तोड़ेंगे तो हमको पाप लगेगा, तो सभी की एग्ज़ाम हो गई, तो वो मेरे लिए खास रुक गया। और मंगलवार के दिन उन्होंने सुबह मुझे बुलाया तो उन्होंने यही क्वेश्चन किया, जैसे आपने कहा कि भाई इस एज में आपको ये कोई उम्र है का आपकी करने की आध्यात्म, ये जो है सारे 60 साल के बाद 50 साल के बाद करना चाहिए ये सारा, तो वो यही क्वेश्चन करते रहा। लेकिन मुझे ज्ञान का इतना कूट कूट कर भरा हुआ था कि मुझे कोई भी क्वेश्चन करे तो मैं हार नहीं मानता था कि नहीं इसको प्रूव करके ही देना है, चाहे कोई कितना भी बुद्धिमान हो उसको ये नॉलेज नहीं है, दुनिया का नॉलेज है लेकिन परमात्मा नॉलेज उसके पास नहीं है, मुझे बढ़ाना चाहता तो सर भी सुनते रहते थे। और पता नहीं अचानक मुझे जब ये हुआ कि थोड़े से बचपन में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव या जो क्रांतिकारी होके गए देश के लिए, क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में ये भी बताया कि 3-4 जन्म जो देश के लिए आपके बलिदान हुए ब्राह्मण ने जन्म कुंडली में बताया था, तो मुझे एक 4 दीवार के अंदर बंधना या किसी देवदारी से बंधना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ऐसा सोशल वर्क करें या देश के लिए हम सेवा करें। लोग मिलिट्री में जाते हैं अपनी जान की परवाह न करते हुए बलिदान करते हैं, तो वो संस्कार मेरे अंदर था कि हम क्यों नहीं विश्व के लिए सेवा करें। और जब इस ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर हमने विश्वव्यापी संगठन को देखा कि इसकी जो शाखा है पूरे विश्व के अंदर 140 कंट्रीज में है, ये कोई हद नहीं, ये बेहद में है, और इसको चलाने वाला भी स्वयं निराकर सुप्रीम सोल है कि जिसने ये संस्था स्थापन की है, इसका कोई गुरु नहीं है। तो ये जब ध्यान में आया कि ये स्वयं, आज भी कई लोग हमें पूछते हैं कि या यहाँ आते हैं तो ये चलता कैसे, लोगों को घर के अंदर 4 लोग होते हैं तो उनको उस फैमिली को चलाने के लिए टेंशन आता है, खर्चा चलाने के लिए इकोनॉमी करेंगे ये करेंगे, या कई लोग आके हमको पूछते हैं कि भाई ये चलता कैसा है, तो वास्तविक उन लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि एक परमात्मा के लाखों बच्चे, जिस परमात्मा के लाखों बच्चे हो जैसे लौकिक में बच्चे कमाने वाले होते हैं, तो यहाँ जो भी अपनी कमाई है उन कमाइयों को इकोनॉमी करके इतना बड़ा जो यज्ञ है वो चलता है। और इसमें विशेष हम यही लोगों को सुनाते हैं कि जो भी अपने जीवन के अंदर की जो बुराई थी पहले जीवन में, वो सारा खर्चा आपका बच गया है। और हम लोगों का खर्चा है क्या है, उनको हम ये बताते कुछ भी खर्चा नहीं, खान पान शुद्धि है, न कोई होटल में जाना है, न कोई घूमना है, न फिरना है, तो ये इकोनॉमी से ये इतना चलता है। तो सब बातें जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर बहुत यूनिक लगी, बहुत अच्छी लगी। और ये ज्ञान जो है एक व्यक्तित्व या एक देवता बनाने वाला ज्ञान है, ये पक्का निश्चय हुआ, इसलिए हम सेवा में लग गए
0: जी। तो जब आप मधुबन में आ गए हैं, वो कौन सा साल था समर्पित हुए जब आप?
1: समर्पित जब मैं हुआ तो 91 में मैं एम ए इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया, 6 महीना हुआ था। वैसे ज्ञान में आने के बाद मैं 2-3 बार हर साल छुट्टियों में हम सेवा में आए, पांडव भवन में सेवा किया, हिस्ट्री हॉल में जो वहाँ पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है उसमें सेवा किया, दादी के पास भी सेवा किया। 2-3 साल कॉलेज लाइफ में सेवा करते थे, लेकिन 91 में यहाँ शांतिवन में ये बनना खेती थी सारी यहाँ, तो यहाँ एक भाई थे भोपाल भाई के साथ में, महादेव भाई करके, उन्होंने 94 में शरीर छोड़ा। तो उन्होंने शांतामणि दादी को कहा ऊपर, तब शांतामणि जो हमारी दादी थी वो सेवादारी संभालती थी, इंचार्ज थी, तो उनको कहा कि इसको घर में खेती इसको अनुभव है, या गाय भी थी, जाटोली डिपार्टमेंट है वहाँ गाय का गोठा था और पूरी खेती थी। और बाबू भाई उस समय खेती में थे, जो आज टेलीफोन एक्सचेंज में, वो भी खेती में थे। तो जब हमको कहा कि आप नीचे आ जाओ या ज़रूरत है, तो हम आ गए। उन्होंने कहा कि आप छोड़ दो पढ़ाई, तो एग्ज़ाम देना था, उन्होंने बोले छोड़ दो अभी, तुम समर्पित हो जाओ। तो पता नहीं हमें भी क्या हुआ कि चलो जीवन बलिहार करना, एक धक से करना, कोई सोचना नहीं, तो हम समर्पित हो गए, मतलब रह गए सेवा में। 3-4 साल खेती किया और फिर उसके बाद किचन में आए, तो तब से लेके अभी हम किचन में ही।
0: जैसे आपने इतनी पढ़ाई की है और अभी जब किचन में सेवा कर रहे हैं, या आपको जब शुरुआत में जो बुलाया गया पढ़ाई छोड़ के खेती करने के लिए, आपको एक पल के लिए ऐसा नहीं लगा कि मैं तो पढ़ाई करके अच्छा ऑफिसर बन सकता था, पढ़ाई करते तो मैं हो सकता है संस्था में भी एक अच्छे पोजीशन में रह सकता था, मुझे जाके खेती बाड़ी करने के लिए मैं पढ़ाई छोड़ दूँ?
1: नहीं, मुझे एक था कि यहाँ जैसे हमारे टोली किचन में आत्म प्रकाश भाई है, सूरज भाई, ये सारे ग्रेजुएट हैं लोग, जैसे हमारे साथ भी जितने भी हैं, मैं ये बताना चाहूँगा किचन में जितने भी लोग हैं सब पढ़े लिखे हुए, ऐसा कोई नहीं कि जो अनपढ़ है जिसको आता नहीं, तो ये तो भगवान ने विशेषता दी है कि हम लोगों को किचन में रखा है। एनीवन जितने भी डिपार्टमेंट इंचार्ज या है किचन में, सब ग्रेजुएट, सब पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे घर के, ये भी है कि सबके घर में अच्छा है, मैं काफ़ी लोगों के वहाँ गया हुई हूँ, तो ऐसा कोई नहीं कि जिसको कुछ कमी थी और वो यहाँ आ गया, ऐसा कोई भी नहीं, सब लौकिक परिवार में संपन्न थे। हाँ, ये बुद्धि में था कि जो हमारे बड़े हैं वो भी इतने पढ़े लिखे हुए हैं, और वो जब किचन में सेवा कर रहे हैं। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सबसे बेस्ट जो सेवा है, मैं समझता हूँ कि भाग्य बनाने की, किचन डिपार्टमेंट है, जहाँ भगवान की मुरली के अंदर भी आता है कि रोटी पकाना भी आना चाहिए, बर्तन मांजना भी आना चाहिए, भोजन बनाना भी आना चाहिए। तो बाद में ये तो मीडिया वगैरह इलेक्ट्रॉनिक जब चीज़ें निकली तभी ये सेवा बढ़ गई, नहीं तो यज्ञ के स्थापना में शुरू में अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो जो हमारी दादियाँ बन गई उन्होंने हर प्रकार की सेवा की, जो
0: कर्मणा सेवा,
1: सब कर्मणा सेवा सब की हुई है। तो इसमें कोई बॉडी कॉन्शियस की बात नहीं थी, हमें तो नशा था कि चलो खेती का काम है, तो हम यहाँ खेती कर रहे, घर में भी खेती अनुभव था, गाय का दूध निकालते थे, खेती करते थे। और जैसे कहते कि एक बार प्रण ले लिया, व्रत ले लिया, ले लिया, उसको वापस क्यों लेना है, तो ये पक्का निश्चय था।
0: बहुत सुंदर भाई साहब, जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं 91 से आप यहाँ पे मधुबन में हैं, और 91 में तो काफ़ी वो संस्थापक जो प्रजापिता ब्रह्मा है उनके साथ जो कराची से आए हुए जो दादियाँ हैं, काफ़ी लोग तो दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी को तो जानते हैं, लेकिन आप तो और भी बहुत सारी दादियों के साथ पालना लिए हैं, एक आध्यात्मिक जीवन की आपकी एक लंबी यात्रा रही है, तो जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस जर्नी में आपने सीखा और आप आपकी व्यक्तित्व को ऐसे गढ़ा है, जो हो सकता है अगर आप लौकिक दुनिया में होते तो आप इन चीज़ों को कभी सीख नहीं पाते हैं, तो फिर वो क्या चढ़ती कला थी आपकी?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा था कि जो हमारे साथी है जो लौकिक पढ़ाई करके आज प्रोफेसर है, टीचर है, 2-3 महीने पहले ही मुझे बुलाया था, जो हमारे क्लासमेट थे, हमारे क्लास में ज़्यादा कन्याएं थी, और वो अभी भी हंसती है कि तुम इतना पक्का था, हमने बहुत कोशिश किया तुम्हारा मौन तोड़ने का, और वो आज भी उन पलों को याद करती आपस में कि ये ब्रह्म कुमारी में पता नहीं इसके बुद्धि में इतना, कि हम उसी समय समझते थे कि ये लौकिक दुनिया में रहेगा नहीं, ये इस जीवन में समर्पित हो जाएगा, लेकिन वो आज भी कहते कि जो आज हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे पास है वो हमारे पास नहीं। तो उनको सब कुछ होने के बाद भी आध्यात्मिकता के बिना जीवन अधूरा है, ये आज भी वो लोग हमें स्वीकार करते हैं कि निजी संपत्ति आध्यात्मिकता है और इसी से ही आप सुख शांति का अनुभव कर सकते। जैसे आपने ये जो क्वेश्चन किया, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर सबसे पहले हमारे अंदर जो चेंजेस आया, उस पढ़ाई और इस पढ़ाई के अंदर हमने जो फर्क महसूस किया कि वहाँ हम एक डिग्री के लिए या कुछ अपना बिजनेस या कुछ पदवी ले लेते हैं कि कुछ हमारी इनकम बड़ी हो, उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये जो पढ़ाई है वास्तविक जब जीवन में इसको हमने फॉलो किया, तो सबसे पहले हमारे अंदर जो एक इंडिविजुअल, मुझे भी गुस्सा जल्दी आ जाता था, कोई अगर गलत करता था, असत्य कोई बोलता था, झूठ बोलता था, तो मुझे कंट्रोल नहीं होता था, तो ये मेरे स्वयं के जीवन के अंदर, जैसे कई लोगों को भी अभी भी होता होगा कि तुरंत गुस्सा आ जाता है, कई रॉन्ग चीज़ देखते हैं, सहन नहीं होता है, तो सबसे पहले मेरा ये चेंजेस आया कि मैंने शांत रखना सीख लिया कि हर एक व्यक्ति यूनिक है और वह अपना अपना पार्ट बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है। जैसे फिल्म आप देखते हैं 3 घंटे की स्टोरी होती है, तो हर एक का जो पार्ट, जिसको जो रोल दिया है, वो रोल निभा रहा है, तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं उत्पन्न करते हैं। इसी तरह इस ज्ञान के आधार से एक समझ मिल गई कि हर एक का रोल है और वो बहुत अच्छी तरह से प्ले कर रहा है, इसलिए मुझे क्वेश्चन करके परेशान नहीं होना है, तनाव उत्पन्न नहीं करना है, व्यर्थ संकल्प नहीं चलाना है, तो ये मेरे स्टॉप हो गए। दूसरी एक प्राप्ति की, जैसे इस ज्ञान के आधार से मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 12वीं में था, तो एक उसमें इकोनॉमिक्स के 4 पेपर थे, तो उसमें मुझे 100 में से 100 मार्क्स मिले थे एक पेपर में, तो मेरा पेपर टीचर ने सब स्टूडेंट को दिखाया था, कोई भी मिस्टेक नहीं थी। तो मैं क्या करता था कि ये जो पढ़ाई है, विशेष सुबह अमृत वेले के बाद स्टडी करता था, और कॉलेज जाने के पहले उसको पढ़ के जाता था मैं, तो वो पूरा बुद्धि में फिट बैठ जाता था, कॉलेज में भी टीचर पढ़ाते थे और पहले स्टडी करके जाता था, तो ये एक महीने फायदा देखा कि हमारे जीवन के अंदर इस ज्ञान का ये फायदा है कि मन की एकाग्रता एक बढ़ती है, और मन की एकाग्रता के साथ साथ जो हमारा अचीवमेंट है, चाहे कोई भी टारगेट हम रखते हैं, तो उसको बहुत ईजी हम प्राप्त करते कम समय में। अगर मेडिटेशन जीवन में न हो तो वहाँ लंबा काल लगता है और मेहनत लगती है, लेकिन मेडिटेशन का ये फायदा मैंने देखा मेरे पढ़ाई में, जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, जबकि मेरा लास्ट ईयर में भी 2nd नंबर था कॉलेज।

0: शास्त्र या फिर ग्रंथों को आप जो पढ़ते थे उसकी आध्यात्मिक रहस्य, क्योंकि आपने आध्यात्मिक ज्ञान को समझा है, तो उसके द्वारा वो क्या कहना चाहते हैं, वो जीवन में किस प्रकार से प्रभाव करते हैं और जीवन को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। जिस सुख शांति की तलाश है हर एक इंसान को आज के समय में, वो ज्ञान कहाँ से कैसे मिलता है, आप उसको बहुत ही सरल शब्दों में मीडिया के माध्यम से सभी तक पहुँचाते हैं। ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे भाई जी, आज आप हमारे बीच में आई हैं और हमारे रेडियो मधुबन के श्रोताओं को लौकिक पढ़ाई के साथ साथ जब आध्यात्मिक पढ़ाई हमारे जीवन में आती है तो जीवन कैसे निखरता है और आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें एक्सेलेंस से कैसे आती है, ये बहुत सुंदर तरीके से आपने हमें बताया। और ना सिर्फ हम प्रोफेशनल लाइफ जीते हैं लेकिन एक परिवार भी, आपस में मिलजुल करके रहना, बड़ों को आदर करना, उनसे हमेशा सीखने की भावना रखना, बहुत सुंदर बातें हैं भाई जी। थैंक यू सो मच आप आज हमारे बीच में आए हैं, आपकी जीवन के उन चंद पलों को जो बहुत ही प्रेरणादायी है उन पलों को हमारे साथ शेयर किया, शुक्रिया आपको।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम जीना इसी का नाम है, और इस कार्यक्रम में आप उनके अनुभव सुन रहे थे, बालू भाई जी का। आप शांतिवन में किचन है, स्पेशल फूड बनाते हैं, आप उस किचन का देखभाल करते हैं और अनेक आत्माओं के स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने में आपका अपना एक योगदान रहता है। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ और एक नए व्यक्तित्व और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन सुनने वालों को सुरेश ओबेरॉय का नमस्कार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी के बीच में एक नया कार्यक्रम लेके आए हैं, जीना इसी का नाम है। कई बार हम सुनते हैं और ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए हम कहेंगे कि जीना इसी का नाम है। हमारे जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारी परिस्थितियां, कुछ अच्छे कुछ बुरे, अलग अलग प्रकार के लम्हे होते हैं, अलग अलग प्रकार के पल होते हैं। ये सब चीजों को मिला करके क्या हम कह सकते जीना इसी का नाम है। चलिए आज की हमारी विशेष अतिथि से जानते हैं कि उनके जीवन में ये चीजें कैसे हैं और जीना इसी का नाम है, वो अपने जीवन को कैसे देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं, इस श्रृंखला में हम कुछ ऐसी व्यक्तित्व से मिलेंगे या व्यक्तियों से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में आध्यात्मिकता को प्रैक्टिकल रूप में धारण किया है और उस आध्यात्मिकता से उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार की बदलाव को देखा है और किस प्रकार से अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुआ है, आध्यात्मिकता उन्हें कैसे मदद की है, ऐसी भी पहलुओं को हम जानेंगे। आज है हमारे बीच में प्रदीप कुमार जी। आप पेशे से एक वकील हैं लेकिन रहते हैं शांतिवन में, तो देर किस बात की है दोस्तों। स्वागत करते हैं प्रदीप जी का आज के इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है। नमस्कार प्रदीप जी।
2: नमस्कार कृष्णा जी, नमस्कार।
1: सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन का परिचय है, आपने कहाँ पे जन्म लिया और आपकी पढ़ाई क्या रही, आपकी माता पिता क्या करते थे, आपने जो वकील वर्तमान समय में आप एक पेशे में हैं, तो इस तक की जो यात्रा है उसको थोड़ा सा हमारी श्रोताओं के लिए संक्षिप्त में रखें।
2: कृष्णा जी, वैसे मैं रहने वाला प्रॉपर हरियाणा से हूँ। हरियाणा में रोहतक डिस्ट्रिक्ट है और महम तहसील है, उसमें एक छोटा सा गांव है भैणी सुरजन। भैणी सुरजन का भी ऐसा एक इतिहास है कि ये पांच भैणी गांव जो हैं महम के अंदर एक जगह पे हैं, जो कि पांच भाइयों ने बसाए हैं। तो सुरजन सिंह जो थे वो बड़े थे, उन्होंने सुरजन नाम से, भैणी सुरजन नाम से गांव बसाया, तो उस गांव का नाम भैणी सुरजन हो गया और हम वहां के रहने वाले हैं। और प्रॉपर एक जो है, हम किसान फैमिली से हैं और सोल्जर और फार्मर फैमिली।
1: अच्छा,
2: से
1: दोनों?
2: हाँ जी, क्योंकि दादाजी जो थे वो तो किसान थे, पिताजी आर्मी में, थल सेना में थे, मिलिट्री में थे, तो दोनों का ही हमने जीवन का जो है अनुभव प्राप्त किया है। खेती का इतना अनुभव नहीं रहा, लेकिन यहाँ पिताजी जहाँ जैसे ट्रांसफर होते थे तो उनके साथ हम अलग अलग स्थानों पर रहे और हमारी शिक्षा भी कई जगह हुई, कि एक जगह नहीं हुई, अलग अलग जैसे ट्रांसफर होता था तो अलग जगह हम भी चले, वहाँ ही पिताजी के साथ रहते थे। जैसे हमारे पिताजी का की पोस्टिंग थी शिमला में
1: जी।
2: शिमला में जब थे तो मैं 6 महीने का था, तो उन वो जिस हॉस्पिटल में थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आर्मी के में, तो ब्रह्मा कुमारी की बहनें जो हैं वहाँ गई थी तो आध्यात्मिकता के बारे में बताने के लिए, तो तब से वो उनका जुड़ाव आध्यात्मिकता की तरफ से हो गया। हम भी बचपन से ही एक आध्यात्मिक जीवन के का आनंद लेते आ रहे हैं, अनुभव लेते आ रहे हैं। तो भक्ति वाला जो कार्यक्रम रहा है उसमें कम रहा है, लेकिन आध्यात्मिकता की तरफ हमारा इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। जैसे जैसे हम बड़े हुए, पिताजी का ट्रांसफ़र अलग जगह हुआ, पठानकोट में, शिलोंग में, शिलोंग से हमारी जो स्कूली शिक्षा शुरू हुई, पहली क्लास से जो हमारा पढ़ना शुरू हुआ वो शिलोंग में हुआ। तो वो पिताजी जहाँ भी जाते थे तो आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए थे, तो इस संस्था का जो भी की जो ब्रांच थी वो उसको ढूंढ लेते थे, हम भी उनके साथ ही जाते रहते थे
1: जी। आपकी परिवार में एक मिट्टी के लिए और मिट्टी के साथ
2: जी,
1: दोनों मिट्टी से जुड़े हुए परंपरा से या परिवार से आप आए हैं। आपने कहा कि बचपन में ही आपको इस आध्यात्मिक जगत की या आध्यात्मिकता की परिचय हुई, तो वो कौन सी आकर्षण था, कैसे आपने इस चीज़ को समझा है, कैसे आकर्षित हुआ आध्यात्मिकता के प्रति आपका?
2: सबसे पहले तो हम लोग जब शिलोंग में हमारी स्कूली शिक्षा शुरू हुई तो वहाँ पर जहाँ भी संस्था में जाते थे तो बहनों का जो प्रेम है और वो निस्वार्थ भाव वाला प्रेम, हमने दादियों का भी प्रेम देखा, पठानकोट में एक गोपी दादी होती थी उनका भी प्रेम देखा, हम लोगों की गलतियों को भी वो बड़े प्यार से समझाती थी। हम बचपन में जो शरारतें करने का एक सिलसिला चलता है बचपन में, भाई कुछ बल्ब फोड़ दिया, कहीं कुछ चीज़ें तोड़ फोड़ दी, लेकिन वो डांटते नहीं थे तो भी प्रेम प्यार से ही समझाते थे। तो ये जो प्रेम निस्वार्थ भाव वाला प्रेम था ना, इसने हमें बहुत प्रभावित किया।
1: जी प्रदीप जी, जैसे बचपन में तो आपको उन साध्वियों की या उन दादियों की प्यार आपको आकर्षित किया है, लेकिन जैसे आप थोड़ा जीवन में आगे बढ़े होंगे उस समय आपके अपनी कुछ रोल मॉडल्स बने होंगे, क्योंकि बढ़ती उम्र में हम दुनिया को जानते हैं, समझते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मुझे ये जीवन में बनना है तो ये मेरे लिए रोल मॉडल है। तो ऐसे कौन थे आपके रोल मॉडल?
2: ऐसे रोल मॉडल तो हमारे आने के बाद, यहाँ आने के बाद ही हमने देखा, कई वरिष्ठ जो हमारे बड़े भाई थे उनको देखा, उनके जीवन से एक हमने प्रेरणा ली, हम कहेंगे भोपाल भाई जी से, उन्होंने ये प्रेरणा ली कि एक किसी भी कार्य के लिए हिम्मत का कदम बढ़ाना है, साहस रखना है, तो वो चीज़ उनमें सबसे ज़्यादा थी। कोई भी कर्म करो उसके लिए पहला कदम बढ़ाओ, और वो कदम बढ़ाने से ये देखा है कि अपने सफलता अपने आप मिलती है और लोगों का साथ अपने आप मिलता है।
1: जी
2: जैसे कि मैंने बताया, आप मेरी फैमिली में हमारे पिताजी वगैरह पांच भाई थे, जिनमें से तीन तो आर्मी में थे और दो किसान थे, दादाजी हमारे किसान थे। हम लोग जब छुट्टियों में, स्कूल की छुट्टियों में जाते थे, आर्मी से छुट्टियाँ होती थी तो हम गांव में जाते थे तो खेती किसानी का भी अनुभव करते थे, कभी कपास इकट्ठा करवाना है, कभी गेहूं कटाई करवाना है, इस तरह के बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं लेकिन छोटे मोटे अनुभव हैं। लेकिन ये देखा कि किसान की का जीवन आसान नहीं है, वो बहुत मेहनत का काम होता है। सर्दी में ये भरी सर्दी जब होती थी तो हम देखते थे हमारे ताऊ जी वगैरह कैसे पानी देने जाना है, सिंचाई करने के लिए जाते थे। भरी गर्मी में जब तो पहले संसाधन इतने नहीं होते थे तो फसल कटाई के और निकालने का जो प्रोसेस होता था वो थोड़ा कड़ा होता था, वो हमने अपनी आँखों से देखा हुआ समय है। और ताऊ जी वगैरह ने गुड़ का वो लगाया हुआ था, क्रेशर बोलते हैं हमारी तरफ तो कोहलू लगाते हैं, कोहलू लगाया हुआ था तो कोहलू से ताज़ा ताज़ा गुड़ भी हमने खाया है, ताज़ा ताज़ा गुड़ बनते हुए भी देखा हमने। परिवार में हम वैसे चार ही सदस्य थे, जिसमें पिताजी, माताजी, मैं और बड़ा भाई। बड़े भाई हमारे 2009 में एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए जब वो लगभग 32-33 साल के थे, तो यहाँ पालनपुर जाते समय बाइक से एक्सीडेंट हुआ, रॉन्ग साइड से जीप आई, उससे एक्सीडेंट होकर वो एक्सपायर हुए। लेकिन ये भी एक अच्छी घटना रही है, माता पिता हमारे आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण उन्होंने दिया। एक युवा, एक यंग बच्चा जब शरीर छोड़ गया, एक्सपायर हो गया, तो भी उन्होंने आंसू नहीं बहाए, लोगों को सांत्वना दी कि भाई जो उस आत्मा का हमारे साथ इतना ही पार्ट था, अब वो जहाँ भी जाए खुशी से जाए, जहाँ जाए अच्छे परिवार में जाए, इस तरह की शुभ भावना दो सबको, इस ऐसी शिक्षाएं दी,
1: दुआएं दी उन्होंने,
2: ऐसी शिक्षाएं दूसरों को भी दी। जो परिवार के जब रोते हुए आते थे तो उनको सांत्वना हमारे माता पिता ने दी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी एक लोगों में, गांव में ही पूरी चर्चा की बात रही है कि ये एक आध्यात्मिक संस्था से
1: जुड़ने का
2: को जो प्रभाव है वो उन्होंने अपने जीवन में दिखाया।
1: जी
2: शायद ये परीक्षा का समय था और उस परीक्षा में ये हम सब पास रहे।
1: जी बहुत सुंदर। जैसे बचपन से आप आध्यात्मिकता से तो जुड़े थे, जैसे आपने कहा कि आप जब छोटे बच्चे थे तो आपके माता पिता ने ब्रह्म कुमारी संस्था के परिचय में आ गया और तब से वो ब्रह्म कुमारी इसको फॉलो करते आध्यात्मिकता की, लेकिन कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कभी कोई पूजा पाठ या कोई और अन्य चीज़ें की या फिर आप जब दूसरे आपके स्कूल की फ्रेंड्स या नेबर्स ये करते थे तो आपको भी लगा कि मेरा जीवन ऐसा क्यों है और उनका ऐसा क्यों है और ये मुझे करना है या नहीं करना है, ऐसी कुछ द्वंद्व होता था या आपको लगता था कि मुझे भी करना चाहिए?
2: नहीं, द्वंद्व तो नहीं हुआ इस तरह का, लेकिन हाँ ये है कि जैसे हमारे स्कूल परिसर में ही मंदिर होता था तो वहाँ पूजा पाठ चलती थी, हम जाते थे। ऐसा नहीं है कि उस वातावरण को का आनंद हमने नहीं लिया, उस वातावरण का भी हमने अच्छा आनंद लिया कि वो भी एक अच्छे पल थे। जैसे मंदिर में वो पूजा पाठ चल रही है तो हम हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे, अच्छा लगता था ये भी। और मेरी स्कूली पढ़ाई सातवीं कक्षा की जो थी गुरु नानक हाई स्कूल में हुई थी, तो हम गुरुद्वारे में भी जाते थे, गुरुद्वारे में भी हम सिर पे रुमाल बांध के वहाँ बैठते थे। एक सुकून तो मिलता था, शांति तो वहाँ भी थी कि भाई भक्ति का और इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का अंतर तो था, लेकिन एक ये है कि शांति तो वहाँ भी थी, सुकून वहाँ भी था। तो हमने उस चीज़ का विरोध नहीं किया कि हम बिल्कुल एक तरफ ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं था। इसलिए हमने उनका भी अनुभव लेते हुए चले साथ साथ और जाके बैठ जाते थे। इस तरह का भाव नहीं था कि हम बहुत ज़्यादा भक्ति वाले हैं, लेकिन एक आनंद अनुभूति जो करनी
1: थी, एक रेस्पेक्ट थी उनके प्रति और वो भी अच्छा लगता था। लेकिन जीवन में ऐसा कौन सा मोड या कब पल आया है या कब आपको लगा कि ये जो ज्ञान आप सुन रहे हैं यह सत्य ज्ञान है या यही मैं जीवन मेरे जीवन में इस चीज़ की तलाश थी, मुझे यही चाहिए था या मैं इस चीज़ को और अनुभव करूं, वो कौन सा पल था?
2: वो पल तो बचपन से ही रहा है, क्योंकि मुझे ये जीवन पहले से आकर्षित करती थी। जब हम दीदियों को दादियों को देखते थे, बाद में यहाँ आने के बाद पहली बार हम 95 में आए थे, माउंट आबू के ज्ञान सरोवर में रुके थे, तब तो एक संकल्प यहाँ हमने छोड़ा था कि परमात्मा।
1: क्या उम्र रहा होगा अब जब पहली बार माउंट आबू आए?
2: करीब करीब 17-18 के आसपास उम्र रही।
1: 17-18 साल के थे आप?
2: जी
1: जी।
2: वहाँ आने के 95 में हम संकल्प छोड़ के गए थे कि हमें इस तरह का ही जीवन जीना है, आध्यात्मिक जीवन ही जीना है।
1: तो वो क्या प्रेरणा थी, क्या प्रेरित किया आपको कि मुझे यही जीवन जीना है? भले आप बचपन से फॉलो कर रहे थे, लेकिन मधुबन आने के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे यही जीवन जीना है।
2: जहाँ यहाँ के जो भाई थे, समर्पित भाइयों के चेहरे पे जो रूहानियत, जो चमक हमने देखी, वो बाकी की दुनिया में नहीं थी। और ये चीज़ छोटी उम्र में हमें महसूस हुई कि उसी टाइम महसूस हुई कि भाई ये जीवन और वो बाहर का जीवन बहुत अलग है। और यही हमें प्रेरणा दी। हमारे कई समर्पित भाइयों से तब वार्ता भी हुई, बातें हुई कि भाई ये जीवन जीने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा।
1: मतलब तो, मधुबन में जो लोग रहते थे।
2: हाँ जी, तो उनसे हमने अपने उनका अनुभव पूछा कि भाई यहाँ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। और आप लोग जैसे भी वो मेडिटेशन में बैठते थे, बिल्कुल एकाग्र हो के, शरीर भी नहीं हिलता था, सिर्फ पलकें हिलती थी, तो वो चीज़ भी हमें आकर्षित करती थी, प्रेरणा देती थी। हाँ, क्योंकि बचपन होता है तो थोड़ी चंचलता होती है, पहले हमें इतना बैठ नहीं पाते थे, लेकिन अब तो बैठ जाते हैं, पहले इतना नहीं बैठ पाते थे, चंचलता रहती है, शरीर हिलना उलना। लेकिन धीरे धीरे आध्यात्मिक बल जब आता है, पता चला है कि आध्यात्मिक बल जब जुड़ता है तो स्थिर भी मन भी स्थिर होता है और शरीर भी स्थिर होता है। तो ये हमारे भाई यहाँ के भाइयों ने प्रेरणा दी कि भाई तुम कैसे यहाँ रह सकते हो, और उनके जीवन से हमने प्रेरणा ली कि हमें यही रहना है।
1: तो उस कारण से आपने ये निर्णय लिया कि मुझे ऐसा जीवन जीना है। हाँ। और यहीं पे आना है।
2: तो 95 में हम संकल्प करके गए थे मधुबन की इस धरती पर, और 96 में परमात्मा ने हमें यहाँ बुला लिया कि आप को यहाँ रहने के लिए, जैसे शांतिवन ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा था उस समय और यहाँ सेवा में जरूरत थी,
1: तो मधुबन से आपको निमंत्रण मिला।
2: ये समझो परमात्मा का एक निमंत्रण ही था।
1: जी।
2: वैसे हमारे पिताजी जो है आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद ऊपर ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे थे नर्सिंग स्टाफ के रूप में, तो उन्होंने फोन किया था कि भाई तुम इधर आ जाओ। तो पता नहीं है, जैसे हमने जो संकल्प करके गए थे वो वाला संकल्प पूरा करने के लिए परमात्मा ने बुलाया था,
1: जो ऊपर वाला सुन लिया आपकी बात को।
2: हाँ जी, सुन लिया।
1: जी, तो जब आप आए यहाँ पर बहुत ही यंग थे और आपका जैसा संकल्प था वैसे आप आ भी गए हैं, जब आप आए और आप अभी के जीवन में किस प्रकार की बदलाव या फिर ग्रोथ परिवर्तन आपको क्या लगता है कि आप कहाँ तक आपके जीवन में पहुँचे हैं? आपका जो लक्ष्य था, जो स्थिर मुद्रा में बैठना, जो चेहरे के नूर जो आपको इंस्पायर किया है, क्या आपने सीखा है
2: यहाँ? कदम कदम पे सीख ही मिली है। शुरू में तो मैंने यहाँ सिक्योरिटी में सेवाएं दी थी, सिक्योरिटी की सेवाएं देते हुए फिर मैंने टाइपराइटर लाके अपने कमरे में टाइपिंग सीखी, फिर उसके बाद हमारे बड़े भाई साहब के लिए कंप्यूटर लिया गया था, तो कंप्यूटर, मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा कि हमारा जो परिवार, पिताजी ने 96 में यहाँ मकान भी बना दिया था तलहटी में ही, तो माताजी पिताजी भी 97 में यहाँ आ गए, माताजी और भाई, पिताजी और मैं तो यहाँ थे ही, माताजी और भाई जो है वो भी आ गए थे, तो भाई के लिए कंप्यूटर लिया गया था। मैं अपनी सिक्योरिटी की सेवाएं देखते हुए फिर वहाँ अपने घर पे जाता था और भाई के साथ बैठ के कंप्यूटर सीखता था, तो वो सीख के फिर अपने आप ही एक दिन हमारे जो इंचार्ज थे भोपाल भाई जी, उन्होंने कहा कि तुमको ये ऑफिस की सेवाएं दे दूं, तो ऑफिस की से मैंने कहा जैसा आप चाहो, तो मैंने उस 2001 से ऑफिस में आया मैं, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ऑफिस है जो लोकल प्रशासन के साथ संस्था के कारोबार होते हैं वो देखते, वो वाला कारोबार 2001 से बड़ों ने हमें ऑफिस की जिम्मेदारी दी और फिर ये सेवाएं हमने शुरू कर दी हैं ऑफिस वाली।
1: जब से आप आए हैं, जो 30 साल की ये जो जर्नी रही है, आप 29-30 साल की, इस लंबी सफर में आपने क्या सीखा है यहाँ पर?
2: जीवन में उस तरह के कोई उतराव चढ़ाव तो बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, लेकिन ये एक बात तो सबसे ज़्यादा सीखी कि अपने को अगर आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करते हैं तो मार्ग अपने आप खुलते जाते हैं। यहाँ रहने के बाद ही फिर मैंने बीए की, फिर एलएलबी की, और एलएलबी करने के बाद, एलएलएम करने के बाद फिर मुझे जो बड़ों ने सेवाएं दी बुला के, हमारे जो इंचार्ज थे उन्होंने कहा कि अब यह जो है छोटी मोटी जो बातें आती हैं कोर्ट संबंधी वो आपको देखनी है, तो ये बात देखी है कि परमात्मा ने एक बात कही थी कि तुम योग्य बनो, सेवाएं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, तो ये प्रेरणा रही, हमने अपना एक कदम बढ़ाया और परमात्मा ने हमें वही सेवाएं देती चले गए। और जीवन में दो बातें ये हैं कि अपने आप को मन से शक्तिशाली बना के चलना, किसी भी तरह की परिस्थिति आए उसके लिए निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना, परमात्मा के ऊपर विश्वास करके चलना, ये दो बात, अपने ऊपर विश्वास और परमात्मा पे विश्वास।
1: एक है कि एक लक्ष्य रखे और उसमें हम आगे बढ़े।
2: हाँ जी।
1: ताकि हमारे अंदर जब वो इम्प्रूवमेंट होगी तो हम हमेशा सेवा के लायक बनेंगे।
2: हाँ जी, वो एक पिक्चर भी थी 3 इडियट, उसमें कहते हैं कि योग्य बनो तुम, तो वही वाली बात हमने आत्मसात की कि भाई अपने आप को योग्य बनाने के लिए प्रयास करते रहना है।
1: जी प्रदीप जी, जैसे कार्यक्रम के अंत में
2: जी,
1: हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बचपन से लेकर के अभी तक की अपनी जीवन का जो सफर अपने आप को देखा है, आप क्या कहना चाहेंगे आपकी अपनी जीवन से कि जीना इसी का नाम है?
2: हाँ कृष्णा जी, मैं यही कहना चाहूँगा, जीना इसी का नाम है कि आध्यात्मिकता से जुड़ के जो जीवन का आनंद ले सकते हैं वो अन्य रास्ते मार्ग पर चलकर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे साथ नेगेटिव एनर्जी वाले भी जो संपर्क में आते हैं, जो हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, हम उनको प्रेरणा दे सकें अपने जीवन से। और मैं

0: हैं कि जीवन में आगे बढ़ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ने की तरफ ध्यान देना है। बीती बातों को भूलते चलो, बीती बातों को दिमाग में ज़्यादा न रखो और जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा लक्ष्य रखो, तो इसमें परमात्मा की हमें मदद मिलती रहती है। सकारात्मक ऊर्जा हमारी हमेशा बनी रहे, आध्यात्मिकता से ही संभव है, ये चीज़ मैंने अनुभव की है।
1: बहुत अच्छी बात है। सो अंत में आप हमारे श्रोताओं के लिए कोई गीत डेडिकेट करना चाहते हैं या आपकी जीवन से जुड़ा हुआ कोई गीत जो आपको लगता है कि हाँ ये गीत मेरे लिए बहुत खास है और ये मेरी गीत मेरे जीवन से मिलता जुलता है?
0: मैं यही कहना चाहूँगा श्रोताओं के लिए रेडियो मधुबन के कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है।
1: वाह बहुत खूब, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। आज आप हमारी इस कार्यक्रम जीना इसी का नाम है आप आए हैं और हमारे श्रोताओं को आपकी बहुत ही सरल और सिंपल सादगी जीवन से कैसे अपने आप को एक ऊंचा और मूल्यवान बना सकते हैं, एक प्रेरणादायी अपने जीवन की कहानी सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू रेडियो मधुबन के सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। दोस्तों यहीं पे हम विराम लेते हैं आप सभी से और फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। दोस्तों, जब भी हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले यही चीज समझ में आती है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। कभी कभार हम ये जरूर कह देते हैं कि मौसम की वजह से ऐसा हुआ, या फिर हमारे घर में ये बीमारी परंपरा से चली आ रही है कि भाई हमारे घर के सदस्यों को थी, पूर्वजों को थी, इसलिए हमें भी है। ये चीजें कभी कभार तो समझ में आती हैं, मगर जो रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी चीजें जो हम देखते हैं, गड़बड़ियां होती हुई नजर आती हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हम स्वयं को ही जिम्मेदार ठहराते हैं। कभी कभार लोग ये बात भी कह देते हैं, अरे शायद ये चीज पहले पता होती तो मैं ये गलती करता ही नहीं। ये भी चीज सुनने को मिलती है। अब रेडियो मधुबन पर यही कोशिश की जा रही है कि ऐसी गलतियां जो प्रायः हम करते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को बीमार करते हैं, उनसे तो कम से कम बचने के लिए हम अपने प्रयास करते रहें और उसके बारे में सही जानकारी हासिल करें। सहज स्वास्थ्य में स्वास्थ्य जगत से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स हमें इस विषय पर राय देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर मोदी पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं और साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार के अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और आज भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये कहते हैं कि सही जानकारी के अभाव में मनुष्य गलतियां कर लेता है और जब उन गलतियों का दंड उसे भुगतना पड़ता है या उसका फल जब उसे खाना पड़ता है, तब वो व्यक्ति समझता है, अरे मुझे अगर इस बात की सही पहचान होती है, सही समझ होती, तो शायद मैं ये गलती करता ही नहीं। अब ऐसे में स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों के बारे में सही जानकारी लेने की जब बात कही जाती है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही मुश्किल सी बात है, इन सब चीजों के बारे में हमें तो पता ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने के बाद ही होती है, ऐसे भी कई लोग कहते हैं। और वही कुछ लोग ये भी बात कहते हैं कि पारंपरिक रूप से हम पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को लेते आए हैं और सिर्फ अभी ऐसा हुआ है कि पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में यूं कहें कि लोग उस जानकारी को दरकिनार करते आए हैं और इसकी वजह से भी स्वास्थ्य में गड़बड़ियां हो रही हैं और ज्यादा गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, ऐसा कहा जाता है। आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं?
1: जानकारी जीवन में बहुत जरूरी है, सही जानकारी और भी जरूरी है, मगर सबसे जरूरी बात जो है कि जो जानकारी आपको मिली है उस जानकारी का प्रयोग आप अपने जीवन में कर पाएं। जैसे बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि छोटे बच्चे को कहा जाता है ना, प्लग में उंगली मत डालो, करंट लग जाएगा। तो ये जानकारी उस बच्चे के पास है कि अगर हम प्लग में उंगली डालेंगे तो करंट लग जाएगा, मगर तब भी कुछ बदमाश बच्चे उंगली जरूर डालते हैं और तेजी से करंट लगता है। या माता पिता अपने छोटे बच्चे कहते हैं, अरे आग से दूर रहो, जल जाओगे, मगर अब मानने को तो कहते नहीं है, बाल मन है, माने का तो है नहीं। तो एक इंग्लिश में कहा जाता है, नॉलेज इज पावर। तो उस पावर का सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। भैया, जो चीज परंपरागत तरीके से परिवारों में चली आ रही है वो आरोग्य की कुंजी है। जो आपकी दादी नानी जो आपके चौके में भोजन बना रही थी, जो आपके दादा नाना आपको खिला रहे थे, वो बहुत ही जरूरी था। खासकर भारतीय परिवेश में मैं ये कहूंगा, विदेशी परिवेश में हो सकता है जो वो खा रहे थे और जिस चीज का उन्होंने बहुत प्रचार प्रसार किया वो आगे चल के मालूम चला कि बहुत हानिकारक है, मगर आप अगर भारतीय परिवेश में देखिए तो जो भी हमारे पूर्वजों ने खाया पिया, हिले डुले, व्यायाम किया, वह उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला। अभी बड़ा एक अजीब सा वाक्य मेरे सामने हुआ कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जिम में मुझे बुलाया गया और जब मैं वहां प्रवेश कर रहा था तो मेरे पीछे से एक करीब 65 साल के एक बुजुर्ग आए और उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या यहाँ पे मिट्टी है जिसमें हम कुश्ती लड़ सकते हैं? तो जिम वाले का, नहीं नहीं नहीं यहाँ कुश्ती नहीं है, यहाँ मशीन से आप अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं। तो उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया, क्या लकड़े का बल्लम है? अच्छा मुझे भी इस बात का ये नहीं था। बोला अरे उससे उठा के वर्जिश की जाती है। और उस 60 साल का बच्चा, मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि उस 60 साल के व्यक्ति ने जो जिम में जो जानकारी दे रहे थे, उसने कहा जरा चलो आओ हमारे साथ दंड मार के दिखाओ। और जो जिम के ट्रेनर साहब थे वो उतना दंड नहीं मार पाए जितना उस 55-60 साल की उस व्यक्ति ने दंड मार दी। आज लोग बॉडी बनाने की बात करते हैं, भोजन बनाने की बात करते हैं। मैं सबको कहता हूं कि आप जो काम कर रहे हैं या जो मजदूर आपके अगल बगल काम कर रहे हैं या जो फिजिकल लेबर कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी देख लीजिए, एकदम सिक्स पैक, वेरी गुड एब्स, वेरी गुड शोल्डर देख लीजिए। आप उनका भोजन देखिए भैया, वो रोटी के साथ या तो चना या गुड़ या वो सब्जी जो खा रहे हैं उसके बाद वो स्वीट्स मिठाई की जगह गुड़ खाते हुए दिखेंगे। वो जब अपने काम का ब्रेक लेते हैं तो थोड़ा सा गुड़ खा के पानी पी ले। आज हम और आप बोल रहे हैं कि अंकुरित चना खाना चाहिए, वो एक अपने कहते हैं पोटली में चना बांध कर मूंगफली बांध के लाते हैं। और कहते ना लोग महंगा महंगा प्रोटीन खरीद रहे हैं, महंगा महंगा वो खा रहे हैं, वो बेसिक न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोटीन जो है वो मूंगफली से और चने से ले रहे हैं, और एक्सरसाइज उनका काम है उसकी वजह से ले रहे हैं, और वो बहुत अच्छे फिट हैं भैया, बहुत अच्छे फिट हैं। तो आपको जो जानकारी मिली है अपने घर में वो जान, और स्पेशली भारतीय परिवेश में फिर बोलूंगा, वो जानकारी बहुत अच्छी है, आपके लिए बड़ी अच्छी है, और उसका प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर करिए।
0: जब इन बातों को सुनते हैं तो बहुत सारे लोग जो अपने घर में जो पारंपरिक रूप से जो जानकारी वो सुनते आए हैं, जिन चीजों का उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लिए जो ज्ञान मिला है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। और आज जब हम इन सारी चीजों को दरकिनार कर देते हैं और अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो बीमार पड़ना और आसान होता जा रहा है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे थे और आप ये कह रहे थे कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो सिर से लेकर पैर के नोक तक हर एक अंग को प्रभावित करता है। आपने आंखों का उदाहरण दिया था कि आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जिसकी वजह से व्यक्ति आंखों से अंधा हो सकता है अगर वो डायबिटीज की सही जांच न करवाए और इसका इलाज न करवाए। वैसे ही आपने ये कहा था कि किडनी और अलग अलग अंगों पर इसका असर होता है, वैसा आपने बताया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या ये हमारे शरीर के दूसरे दूसरे अंगों पर प्रभाव डालने के लिए इसको कोई लंबा समय चाहिए या कभी भी हो सकता है, और शरीर के अंगों पर प्रभाव डालता है तो ये कब डालता है, ये भी लोगों के मन में प्रश्न उठ सकता है।
1: श्री भैया, मैं अपने श्रोताओं को एक और बात बोलना चाहूंगा आज की, हम जो जानकारी आपको दे रहे हैं वो आपको सजग बनाने के लिए दे रहे हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं। और अगर आप सजग रहेंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, और यदि आपको कोई बीमारी हो गई है तो आप उसको कैसे बढ़ने न दिया जाए और कैसे आपके परिवार के लोग उससे बच पाएं, इसकी जानकारी देना चाह रहे हैं। डायबिटीज की जो हमने बात की, उसमें जिन चार अंगों के बारे में कल हमने बात की कि आंख के बारे में हृदय, मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी मतलब हृदय पर, और डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब नसों पर। और महिलाओं में एक चीज और बोलना चाहूंगा या पुरुषों में भी, कि एक कंधा जाम हो जाता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था अपने पुराने लेक्चर में कि डायबिटीज कुछ करता नहीं है, वो चोरों के जो झुंड है उसका सबसे छोटा चोर है जो सिर्फ ताला तोड़ना जानता है, और वो ताला तोड़ के आपके शरीर में, अगर वो ताला तोड़ता है तो जैसे कोई चोर ने दुकान का ताला तोड़ दिया है और जो चाहे उसके अंदर घुस जाए, इसी तरीके से डायबिटीज वो चोर है जो आपके शरीर का जो है वो ताला तोड़ देता है और जो बीमारी चाहे उसके अंदर घुस जाए, वो इस तरह से आपके शरीर को नुकसान करता है। कब हुई ये अगर हमको नहीं मालूम चला तो थोड़े दिनों बाद जब वो किसी न किसी अंग को परेशान करने लगता है, तब उस अंग के डॉक्टर के पास या उस बीमारी को हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को मालूम चलता, अरे हमको डायबिटीज हो गई होगी। तीन जो सबसे तो कॉमन लक्षण है या जो सबसे साधारण लक्षण है वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। ये तीन चीज जो तीन सिम्टम सबसे ज्यादा कॉमनली मरीज को मिलते हैं, पहला कि उसको पेशाब बहुत होने लगती है, उसको बार बार जो है वो पेशाब करने या यूरिनेशन करने के लिए जाना पड़ता है, और उसकी रात की नींद भी है वो भी डिस्टर्ब होती है और उसको रात में भी पेशाब करने जाना पड़ता है। कभी कभार उसको सडन जो है वो मतलब वो कहीं बैठा होता है तो सडनली एक बड़ी तेज पेशाब आती है, वो जैसे कहता है भागो नहीं तो पैंट में हो जाएगी, इस तरह की अर्जेंसी उसको होने लगती है। दूसरा कि जब आपको बहुत पेशाब होगी तो आपको बहुत ज्यादा पानी की जो है वो जरूरत महसूस होगी, तो आप हद से ज्यादा पानी पीने लगेंगे, आप बहुत ही पिएंगे और आप बहुत ज्यादा पेशाब करेंगे। और तीसरा जो आप परेशान होंगे वो होगा कि आप इतना पेशाब कर रहे हैं, इतना पानी पी रहे हैं और वो जो चीनी है वो आपके कोशिकाओं के अंदर नहीं जा पा रही है, तो आपकी जो कोशिकाएं हैं उनको थकान लगेगी, तो वो बार बार कि उनको भोजन नहीं मिल रहा है तो बार बार वो ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे कि भाई हमको तो भोजन ही नहीं मिल रहा है, भोजन ही नहीं मिल रहा है, तो व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लगता है। और एक लक्षण और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं खा बहुत रहा हूं पर मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है और मुझे बहुत पेशाब आ रही है और मुझे बहुत ज्यादा पानी पीने का मन कर रहा है। तो यदि ऐसा कोई भी लक्षण जिसमें बहुत ज्यादा पानी पी रहे हो, आप बहुत ज्यादा पेशाब कर रहे हो, आपका बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही हो, बहुत ज्यादा भोजन करने के बाद भी आपका वजन नहीं बढ़ रहा हो, आपके चश्मे का नंबर बार बार बढ़ रहा हो, आपके कंधे जाम होते चले जा रहे हो, बहुत दर्द हो रहा हो, तो कृपा करके हो सकता है कि ये डायबिटीज हो, तुरंत आपको जाकर एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपना जो रक्त की जांच होती है शुगर के लिए, चीनी के लिए, उसको तुरंत कराना चाहिए। जहां तक हम लोग ने चार बीमारियों की कल बात की और उसके पहले के एपिसोड में बोला था कि ये सर से लेके पैर तक सब चीज को असर अपना दिखा सकता है, तो ये आपको सर के ऊपर आपको भयंकर डैंड्रफ आपके बालों में कर सकता है, आपको ब्रेन का स्ट्रोक हो सकता है, आप बेहोश हो सकते हैं। अच्छा, बेहोश क्यों होंगे? क्योंकि हमारा दिमाग है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज से चलता है, हमारे दिमाग को कोई और भोजन नहीं चाहिए, वो सिर्फ ग्लूकोज को ही अपना भोजन मानता है, और जब हमारे को इंसुलिन कम होने लगता है तो हमारे जो दिमाग की कोशिकाएं हैं उसके अंदर ये ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है, और जब वो ग्लूकोज पहुंच नहीं पाता है तो जो व्यक्ति है उसके दिमाग की जो कोशिकाएं हैं वो भी मरने लगती हैं, और क्योंकि वो हमारे दिमाग को भैया दो चीजें हमेशा चाहिए, एक ऑक्सीजन और दूसरा ग्लूकोज, तो ये दोनों चीजें में से अगर कोई भी चीज ऑक्सीजन या ग्लूकोज हमारे दिमाग को नहीं मिलेगा तो ये तुरंत अपना असर दिखाने लगेगा। आप देखिए कि अगर आदमी सांस पानी के अंदर नहीं ले पाता है और जैसे ही वो अगर स्विमिंग पूल या समुन्द्र में जाता है और उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो छटपटाने लगता है, तुरंत बाहर आता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग को जैसे ही ऑक्सीजन नहीं मिलती है वो परेशान हो जाता है और सिग्नल देता है भाई तुरंत बाहर निकलो, सांस लो। तो आप नोटिस भी किए होंगे भैया कि हम लोग जब तरन ताल में या स्विमिंग पूल में तैर रहे होते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक बार बड़ी गहरी सी सांस लेते हैं करके, क्योंकि वो जो हवा है वो तुरंत हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन देती है और हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन

0: व्यंजन के बाद जो चीज चाहिए वो शुगर है, और जहां शुगर हमारे बॉडी में गड़बड़ाता है तो हमारे ब्रेन की कोशिकाएं मरने लगती हैं और हमारे ब्रेन में स्ट्रोक भी हो सकता है। मैंने बताया बहुत प्यास लग सकती है, आंख की आपको बड़ी समस्याएं हो सकती हैं, आपकी जो पसीना है वो भी महकने लगता है और वो एक अलग सा महक आपको महसूस होती है, और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपके अगल बगल वाले बोलते हैं अरे तुम कुछ अलग तरह से महक रहे हो, एक अजीब सी महक आ रही है तुम्हारे में। तो सोचिए वो शुगर जो शरीर में नहीं जा पा रहा है वो भी हमारे शरीर में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, और हमारी इवन हमारा जो स्वेट है पसीना है वो भी अलग तरह से महकने लगता है। हमारा हृदय की मैंने बात की कि हमारे हार्ट डिजीजेस के हमारे चांसेस बढ़ सकते हैं, हमें त्वचा रोग हो सकता है, हमें बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, हमारी शरीर में कोई जिस इन्फेक्शन का नाम लीजिए वो हमें हो सकता है, क्योंकि खूब सारा भोजन है बैक्टीरिया वायरस फंगस के लिए, तो वो खूब अच्छे से घूम टहल रहे होते हैं। हमको बहुत थकान लग सकती है। अब लोग पूछेंगे भाई चीनी तो है ही, तब थकान क्यों लग रही है? क्योंकि वो चीनी या जो शुगर हमारे रक्त संचार में चल रहा है वो कोशिकाएं इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं। तो हाई ब्लड शुगर एंड लो इंट्रा सेलुलर शुगर हो जाता है, मतलब खून में चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, कोशिकाओं में चीनी की मात्रा कम हो जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा थकान होने लगती है।
1: डॉक्टर जब आप इस बात को बताते हैं कि खून के अंदर तो चीनी की मात्रा है मगर कोशिकाएं उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं, या वो कोशिकाओं के अंदर वो चीज जा नहीं रही है, तो प्रश्न उठता है कि जब चीनी है और वो खून के अंदर है और वो कोशिका के अंदर नहीं जा रही है तो फिर उस चीनी का होता क्या है? क्योंकि वो चीनी इस्तेमाल नहीं हो रही है, कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं कर रही है, तो वो चीनी होगा क्या उसका?
0: वो चीनी हमारे शरीर में किसी काम की नहीं रहती है। और आप ये व्यथा समझ लीजिए कि आप समुन्द्र में आपकी नाव चल रही है और आप पानी से घिरे हुए हैं मगर आप उस पानी को पी नहीं सकते, तो जो कोशिकाएं हैं वो चीनी से घिरी हुई हैं मगर इंसुलिन नहीं है तो वो कोशिका के अंदर नहीं जा पा रहा है। अब अंदर नहीं जा पा रहा है तो वो रक्त में बढ़ता चला जाएगा, जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो जगह जगह से बाहर निकलना शुरू करेगा, और सबसे कॉमनली वो हमारे पेशाब के रास्ते वो बाहर निकलता है। ये करीब 30-35-40 साल पहले जब ब्लड शुगर की जांचें बहुत कॉमन नहीं थी और बहुत जगह पे जब मेडिकल फैसिलिटी पहुंची नहीं थी, तो डायबिटीज की डायग्नोसिस करने के लिए एक ये बात बोली जाती थी कि जहां आप पेशाब करते हैं वहां पे चींटी या कीड़े तो नहीं आ जाते हैं, इतना शुगर हमारी बॉडी के बाहर निकलने लगता है। और जब ये शुगर बाहर निकलता है, सोचिए कि वो इतना ज्यादा हो गया है कि वो यूरिन के रास्ते आपके बाहर निकल रहा है और वो बाहर जो कीड़े मकोड़े चींटियां हैं उनको बुला रहा है, तो आपके शरीर के अंदर जो होंगे कितने बैक्टीरिया कितने वायरस कितने फंगस घूम रहे हैं उनको कितना अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड देगा जिससे वो भयंकर मल्टीप्लाई करके आपको बीमार कर दे। तो शुगर की बीमारी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये अकेली ऐसी बीमारी है जो सारे के सारे अंगों को असर करती है। एक और बड़ी बात है कि इसको कहा जाता था कि जब मेडिकल में पढ़ाई कराई जाती थी पहले तो दो तरह की बीमारियों में सारी बीमारी बांटी गई थी, एक कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, मतलब जो एक छुआछूत से होगी और दूसरी जो आप छू भी दीजिए तो नहीं होगी। आप सोचिए कि पहले जो अगर मेरे श्रोतागण सुन रहे होंगे कि पुरानी पिक्चरों में दिखाया जाता अरे इसको कोढ़ है इससे दूर रहो, या इसको टीबी हो गई है इसको बाहर दूर भेजना है। अब आप ये देखिए कि कहीं कोई कोढ़ या लेप्रोसी उसकी बात ही नहीं कर रहा है, इवन ट्यूबरकुलोसिस या टीबी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, या वो मेडिकल लोग बात कर रहे हैं मगर आप कॉमनली आम जनमानस में इसकी बात नहीं हो रही है। हम बात क्या कर रहे हैं? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड और अस्थमा, चारों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, चारों जो आपको हो सकती हैं और चारों जो आपके शरीर को खराब कर सकती। और पहले हम सारा यही दिमाग, कोविड सबको याद होगा कि कितनी बड़ी कम्युनिकेबल डिजीज आई थी, एक से दूसरे को हो सकता है, चलो सबको बंद कर दो, कोई नहीं बाहर निकलेगा, कोई कुछ नहीं होगा। भैया कोविड ने लोगों को बहुत बीमार किया, मगर उस समय लोगों ने अच्छा खाया, क्योंकि ऋतु के अनुसार आप ट्रांसपोर्टेशन बंद था तो लोकली फ्रूट वेजिटेबल मिल रहे थे, गाड़ियां नहीं चल रही थी, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा तो पॉल्यूशन कम हो गया था, और आदमी घर पे बैठा हुआ था, खाली था तो एक्सरसाइज कर रहा था, वर्जिश कर रहा था, ठीक कर रहा था, अपने आप को ज्यादा अच्छा ठीक रख रहा था, और टेंशन बहुत कम हो गया था क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद हो गए थे, आदमी लोग के ऑफिस बंद हो गए थे, तो लोग अपने घर में थे, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जो समस्याएं थी वो कम होने लग गई थी। तो अगर हम अच्छा भोजन करेंगे, अच्छे से रहेंगे और अच्छा एक्सरसाइज करेंगे तो हो हमारी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें भी हमको आराम मिल जाएगा।
1: ये बहुत ही सुंदर सी बात समझ में आ रही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी जो छुआछूत से नहीं फैलने वाली बीमारियां हैं, इसके बारे में अगर हम थोड़ी जागरूकता रखते हैं तो भी हम स्वस्थ रह सकते हैं। आज आवश्यकता है कि हम सजग बने अपने स्वास्थ्य के प्रति, और जो बीमारियां हो रही हैं उसके कारण को समझें और उसके लिए स्वास्थ्य के तरफ कदम बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए कुछ करें। आज समय को देखते हैं रुकना होगा, मगर आज डायबिटीज के विषय में बहुत ही पुख्ता जानकारी आज हासिल हुई है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी भी डायबिटीज के चिन्हों के ऊपर ध्यान देंगे। अगर आप अधिक मात्रा में पानी पी रहे हैं या बार बार पेशाब के लिए जा रहे हैं, जहां पेशाब करते हैं वहां पर अगर चींटियां या मकोड़े आते हैं, जो ये बताता है कि आपके पेशाब के रास्ते बहुत सारी चीनी निकल रही है अपने शरीर से, तो आप डायबिटीज के मरीज हो सकते हैं और आपको तुरंत इलाज के लिए या डायबिटीज के इस बीमारी का पता करने के लिए खून पेशाब की जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। आज के सेहत स्वास्थ्य में यही रुकते हैं। आज आप सभी श्रोता मित्रों को इतनी नई जानकारियां डॉक्टर मोदी जी ने दी, इसके लिए आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों आज के सहज स्वास्थ्य में इतना ही। जो जानकारी सुनी है उस पर अमल करना जरूरी है। ध्यान देना शुरू करें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, स्वस्थ रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। रेडियो मधुबन 107.8 FM।

करते हैं तब जब उसकी रहमत हो। उससे मिलने की तरकीब कहूँ गर तुम सहमत हो। तुम फूल ही हो इसमें नहीं कोई शक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। तुम्हें तोड़ लूं डाली से नहीं अब हक मुझको। नहीं अब हक मुझको।

अब है वही ये कैसे समझाऊं मैं, मेरी नजरों में अब है वही ये कैसे समझाऊं मैं, बस गया इनमें अब बसने वाला कोई और कैसे समाऊं मैं, बस गया इनमें अब बसने वाला कोई और कैसे समाऊं मैं, कोई और कैसे समाऊं मैं।

0: नमस्कार, मैं हूँ माया कालसी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए।
1: हेलो बच्चों, आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी रेडियो के पास। शुरू हो गया है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है सपनों की सैर।
2: बच्चों पता है ना, आजकल बातें हो रही है आपकी प्रॉब्लम्स की, और हम माना की परी और मनीगिरी आपको नुस्खे, आपको टिप्स दे रहे हैं और उसको आप अप्लाई भी कर रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
1: हाँ, और तभी तो रोज नए नए प्रश्न भी आ रहे हैं, तो और अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बच्चों, आपके यदि कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें बेझिझक भेज सकते हैं।
2: प्रश्न तो मनी दीदी खूब सारे आते हैं, लेकिन हर एक का एक साथ जवाब देना तो मुश्किल है बच्चों।
1: हाँ, तो एक एक करके कभी ना कभी बच्चों का भी प्रश्नों का नंबर तो आ ही जाएगा।
2: हाँ, तो देखो, जैसे ये सोमिल ने पूछा है कि अगर मुझसे गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए।
1: ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है सोमिल। वैसे परी, मुझे तो लगता है वो ये बच्चों से सीखना चाहिए। देखो बच्चों ने कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं, बड़ों के हिसाब से भी।
2: बिल्कुल मनी दीदी, तो सोमिल आपके प्रश्न का यही जवाब है कि गलती को पहले तो स्वीकार करो और उससे सीखो और अटेंशन दो कि दोबारा ना हो।
1: हाँ बच्चों, गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे ना सीखना बुरा है।
2: हाँ, और बच्चों पता है ना, पेंसिल के पीछे भी तो इरेजर लगा होता है।
1: हाँ, जिससे रबर से आप पेंसिल से की हुई मिस्टेक को मिटा भी सकते हो और सुधार भी सकते हो।
2: हाँ, तो इसीलिए कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मिस्टेक तो सबसे होती है। गलती से मिस्टेक हो जाती है।
1: हाँ, तो उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। चलो बच्चों, अब समय हो रहा है कहानी का भी, तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
2: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर
1: सपनों की सैर को।

0: मैं जानकी हिमलानी, मैं अध्यापिका हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। लेफ्ट साइड में ही हमें चलना चाहिए और हमेशा तेज आते वाहनों से स्वयं को बचाना चाहिए। जो कार चलाते हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि जब भी आप कार चलाएं तो बेल्ट दे रखी है, सीट बेल्ट का उपयोग करें, इससे सुरक्षा बनी रहेगी। जान है तो जहान है।
1: रेडियो मधुबन।
2: बच्चों आ जाओ रेडियो के पास, परी कहानी सुनाने को शुरू कर रही है। तो चलो सुनते हैं आज की कहानी। एक दिन दो लड़के सड़क के किनारे किनारे जा रहे थे, तभी उन्हें जमीन पर गिरा हुआ एक बादाम दिखाई दिया। दोनों उस बादाम को लेने के लिए दौड़ पड़े। बादाम उनमें से एक लड़के को हाथ में लग गई। दूसरे लड़के ने कहा, ये बादाम मेरा है क्योंकि सबसे पहले मैंने इसे देखा था। बादाम लेने वाले लड़के ने कहा, ये मेरा है क्योंकि मैंने उसे पहले उठाया है। इतने में वहाँ एक चालाक लंबा सा लड़का आ पहुँचा। उसने दोनों लड़कों से कहा, बादाम मुझे दे दो, मैं तुम दोनों का झगड़ा निपटा देता हूँ। लंबे लड़के ने बादाम ले लिया। उसने बादाम को फोड़ डाला, उसके कठोर छिलके के दो टुकड़े कर दिए। छिलके का आधा हिस्सा एक लड़के को देकर उसने कहा, लो ये आधा भाग तुम्हारा। और दूसरा भाग दूसरे लड़के के हाथ में थमाकर बोला, ये भाग तुम्हारा। फिर लंबे लड़के ने बादाम की गिरी मुंह में डालते हुए कहा, ये बाकी बचा हिस्सा मैं खा लेता हूँ क्योंकि तुम्हारा झगड़ा निपटाने में मैंने तुम्हारी मदद की है। तो देखा बच्चों, कैसे चालाकी से उस लंबे लड़के ने बादाम खा ली। दोनों लड़कों को तो बादाम हासिल ही नहीं हुई, क्या मिला, केवल छिलका। तो ये कहानी हमें बताती है ना कि दो के झगड़े में तीसरे का फायदा हो जाता है। इसलिए बच्चों आपस में कभी लड़ना झगड़ना नहीं, हमेशा समझदारी से समझौता कर लेना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, आप तो अच्छे बच्चे हैं। तो चलो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की सैर को।

बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। मनी दीदी आ गई है लेकर किताब तेनाली रामा की अनोखी दुनिया। और इस किताब में हम पढ़ रहे हैं मित्र की पहचान नाम की कहानी, जिसमें महाराज की रुचि कम हो गई है। लेकिन एक बार तेनाली राम ने महाराज को ये बतलाने की कोशिश की तो तेनाली राम ने महाराज से कहा कि यदि हवा बहना बंद कर दे, बादल बरसना बंद कर दे, सूर्य चमकना बंद कर दे तो प्रकृति का विनाश तो जरूर हो जाएगा। तो इस तरह ये बादल, हवा, सूरज अपने कर्तव्य में जिस तरह हमेशा लगे रहते हैं, उसी तरह प्रजापालक राजा को भी अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। तो वैसे तेनाली राम ने तो महाराज को कह दिया और महाराज कृष्णदेव राय चौंके और इस दृष्टि से देखा जिसका अर्थ था अवश्यंभावी दंड। मगर तेनाली राम बिल्कुल डरा नहीं और महाराज ने फिर से पूछा उनसे कि तुम्हारा आशय क्या है तेनाली राम। तो तेनाली राम ने कहा, महाराज आप अन्नदाता हैं, मेरी विनती है कि आप मेरे और विजयनगर वासियों के अन्नदाता बने रहें। महाराज कृष्णदेव राय की तनी भ्रुकुटियों का तनाव तेनाली राम का उत्तर सुनकर थोड़ा कम हुआ, लेकिन तेनाली राम के कथन के निहित अर्थ को समझते हुए उनको भी थोड़ा फील तो हो ही गया था। फिर उन्होंने आवेश भरे स्वर में पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर रहा? राजकाज में व्यस्त रहना मात्र ही मेरी दिनचर्या होनी चाहिए? मेरे तो अभिन्न मित्र वर्षों बाद मिले हैं, मेरा उनके प्रति भी तो कुछ कर्तव्य है। तेनाली राम ने उनकी ओर विस्मय भरी दृष्टि से देखा और अनायास उसके मुंह से निकला, अभिन्न मित्र? तो महाराज ने पूछा, क्या तुम्हें कोई संदेह है? तेनाली राम मौन उनकी ओर देखता रहा। बोलो तेनाली राम, बोलते क्यों नहीं? बताओ कि ये दोनों मेरे मित्र है या नहीं? फिर इनके प्रति मेरा कोई दायित्व है या नहीं? तेनाली राम ने फिर महाराज की ओर फिर से प्रश्नात्मक दृष्टि डाली, मित्र? और फिर तेनाली राम की इस दृष्टि से महाराज भी विचलित हो गए और संशय युक्त वाणी में तेनाली राम से पूछने लगे, बताओ तेनाली राम, क्या ये दोनों मेरे मित्र नहीं हैं? क्या तुम्हें इनकी मित्रता पर संदेह है? क्या बात है, बिना डर के बोलो, तुम्हारे मन में इनके प्रति क्या धारणा है? तो बच्चों, अब तेनाली राम को तो चांस मिल गया जो वह महाराज को उनके मित्रों के बारे में सही पहचान करा सके। तो क्या तेनाली राम निसंकोच अपने दिल की बात कह पाएगा और क्या महाराज उस पर बिना कुपित हुए उसकी बात मान लेंगे? तो क्या होगा वो तो हम जानेंगे अगली कड़ी में। तो चलो सुनते हैं तब तक के प्यारा सा गाना। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: नमस्ते, ओम शांति। मैं हूँ हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: बच्चों, हम कार्यक्रम के अंतिम मोड़ पर पहुंच गए हैं और याद है ना, हमने पिछली कड़ी में आपको कौन सी पहेली पूछी थी। आज मनी दीदी उसका जवाब बताने वाली है। हमने पूछा था, ऊंचाई में सबको हराए, बर्फ की चादर ओढ़े आए, पर्वतों का राजा कहलाए, बताओ वो कौन सा शिखर कहलाए।
2: तो बच्चों, इसका सही जवाब है माउंट एवरेस्ट, है ना। ऊंचाई में सबको हराए और बर्फ की चादर ओढ़े आए, उसे ही तो पर्वतों का राजा कहते हैं ना। तो सही जवाब है माउंट एवरेस्ट। और हमारे ढेर सारे प्यारे प्यारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, और जिन बच्चों ने भी सही जवाब दिया है उनके लिए ढेर सारी
1: वाह। बच्चों, आप लोग तो बहुत ही एक्टिव हैं। तो फिर नोट कर लो आज की पहेली। पंख नहीं पर दौड़ता तेज, रेगिस्तान में करता खेल, उड़ नहीं सकता आसमान, बताओ उसका नाम।
2: बच्चों, इसका तो जवाब आपको पता ही होगा। तो चलो चलो, जल्दी से अपना फोन उठाओ और 94-14-15-14-15 पर वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
1: बिल्कुल बच्चों, और याद है ना, आपको अभी नेक्स्ट होमवर्क कौन सा करना है।
2: कौन सा करना है परी?
1: भगवान जी को सॉरी और थैंक यू तो लिखना पड़ेगा ना।
2: हाँ हाँ, ये तो रोज ही करना है बच्चों। तो चलो चलो, जल्दी से भगवान जी को सॉरी और थैंक यू करो और भगवान जी की गोद में सो जाओ।
1: और हम करते हैं गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट, गुड बाय।
1: सुनते रहो,
2: मुस्कुराते रहो,
1: रेडियो मधुबन
2: 107.8 FM पर।
1: सपनों

होंगे हम तो विघ्न हार जाएंगे, विघ्न हार जाएंगे। शिक्षा बनेगी बल, स्वस्थ होगा कल, सहयोग की ईंटों से सफलता बन...

आबू की वादियों से आप सुनने जा रहे हो कार्यक्रम आशियाना, आपकी अपनी उषा के साथ। आशियाना सुनने वाले सभी श्रोता बंधुओं को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। आशियाना में दिन की शुरुआत तो एक सुंदर विचार के साथ करेंगे, फिर घरेलू नुस्खे कैसे भूल सकते हैं, तैयार रहिएगा पेन और डायरी लेकर के, लिख लेना अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे नुस्खे देने वाली हूँ। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें करेंगे सविता जी के साथ, नए नए व्यंजन जरूर सिखाएंगे, उसके लिए भी पेन और डायरी लेकर के तैयार रहिएगा, और सामान्य जानकारी भी देंगे, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन।

0: क्या आप जानते हैं साइबर फ्रॉडस्टर्स फिशिंग ईमेल को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि वे वास्तविक दिखते हैं, लेकिन अगर आप उन ईमेल में दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो स्कैमर्स धोखाधड़ी कर सकते हैं। कभी भी असत्यापित लिंक पर क्लिक ना करें।
1: आशियाना में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक सुंदर विचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और आज का विचार इस प्रकार है, शिक्षा के साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां। आज के विचार का विश्लेषण इस प्रकार करेंगे। देखिए, पढ़ाई की ऊंची डिग्री होते हुए भी हम जीवन की परीक्षाओं में धोखा खा जाते हैं। डिग्री रूपी कागज का टुकड़ा हमें नौकरी तो दिला सकता है, परंतु आकर्षणों को ना करनी है यह शक्ति नहीं दे पाता है। यही कारण है कि देश का पढ़ा लिखा वर्ग भी मनोबलहीनता का शिकार है, समस्याओं से ग्रसित है। शिक्षा के साथ साथ निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, आत्मनियंत्रण की शक्ति, सामना करने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, पारिवारिक शिष्ट आचरण की शक्ति वगैरह वगैरह, इन सभी का विकास अनिवार्य है। नहीं तो पल भर का मजा और जीवन भर की सजा, इस कहावत को चरितार्थ होते देर नहीं लगती है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ चाहिए आंतरिक शक्तियां भी। तो ये हुआ आज का विचार, जिस पर जरूर गौर करिएगा। और शिक्षा तो हम सभी को लेनी ही है, लेकिन इसके साथ साथ आंतरिक शक्तियों का भी बढ़ाना है, और ये तभी बढ़ेगा जब हम थोड़ा अध्यात्म में ध्यान देंगे। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो आपको सुनाएंगे एक प्यारा सा गीत, उसके बाद और भी आशियाना में आगे बढ़ेंगे। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते

आप सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं घरेलू नुस्खे सफेद दाग पर। सफेद दाग की समस्या ज्यादातर बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग फोन कॉल्स भी करते हैं कि बहन जी क्या करें, एक दाग से शुरुआत होती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे शरीर में फैल जाता है, फिर उस पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके ऊपर मैं आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बताऊंगी। देखिए, पहले तो जो सफ़ेद दाग शुरू होते हैं ना, तो सबसे पहले आप खाने पीने का परहेज रखिए। एक तो क्या आपको चने और चने की रोटी ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए इस स्थिति में, ठीक है ना। चने भी खा सकते हैं, कच्चे चने भी, और आप चने को पीस करके उसकी रोटी बना करके खाइए, लेकिन उसमें नमक न के बराबर ले वे, नमक नहीं लेना है। फिर भी कितनी बार ऐसा होता है कि भाई कब तक हम नमक ना खाएं, तो फिर आपसे नहीं रहा जाता है, तो सेंधा नमक डाल दीजिए थोड़ा सा। और जैसे कि चने की रोटी खाते खाते बोर हो जाए तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला सकते हैं। बाकी आप जितने चने की रोटी खाएंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और इसमें आपको थोड़ा परहेज रखना है, जैसे कि खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, तेल, चावल, गुड़, मिर्च, मसालेदार चीज़ें, इन सभी को कम कर देना है। और चने की रोटी ज़्यादा से ज़्यादा खानी है थोड़े लंबे समय तक, ताकि आपके सफ़ेद दाग जब शुरुआत में होते हैं तो ठीक हो जाए, और फिर भी फैलते हैं तो इसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छे नुस्खे बता रही हूँ। दवा और दुआ दोनों ही करिएगा। बथुआ, देखिए बथुआ उबाल करके इसको निचोड़ दीजिए, ठीक है। इसके रस को फिर आप पीजिए, इससे भी सफ़ेद दाग में फायदा होता है। इसकी सब्जी बना करके भी आप खा सकते हैं, बथुआ की भाजी आप बना करके, बथुआ की भाजी, चने की आटे की रोटी ये आप खाइए, इससे भी काफ़ी फायदा मिलेगा ये, क्योंकि ये चरम रोग के लिए अच्छा है। और बथुए के उबले पानी को आप जहाँ पर सफ़ेद दाग होते हैं ना, वहाँ पर आप लगा भी सकते हैं, ठीक है। फिर अगला नुस्खा आप ध्यान से सुनेंगे। बथुए के कच्चे पत्ते को पीस लीजिए, पीस करके निचोड़ कर इसका रस निकालिए। फिर 2 कप रस में 1/2 कप तिल का तेल मिला करके मंद मंद आंच पर आपको गर्म करना है। जब रस जल करके तेल ही रह जाए तो छान करके आप शीशी में भर लीजिए और रोज सफेद दागों पर लगाइए, सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले, ठीक है। थोड़े लंबे समय तक लगाते रहिए, इससे धीरे धीरे सफेद दाग ठीक हो जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे, पुनः दोहरा रही हूँ इस नुस्खे को। बथुए के कच्चे पत्ते पीस करके इसको निचोड़ लीजिए, निचोड़ करके इसका रस निकालिए। फिर 2 कप रस में आप 1/2 कप तिल का तेल मिला दीजिए और मंद मंद आंच पर आप गर्म करिए। जब रस जल करके तेल खाली रह जाए तो छान करके आप कांच की बोतल में भर लीजिए और सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले सफ़ेद दागों पर लगाइए। लंबे समय तक लगाते रहेंगे तो काफ़ी लाभ मिलेगा। और लास्ट नुस्खा भी आप ध्यान से सुन लीजिए। 100 ग्राम रिच का और 100 ग्राम ही ककड़ी का रस मिलाकर पीजिए, इससे सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। रिचका जानते हैं आप क्या होता है? रिचका होता है जो हम गायों को खाने के लिए देते हैं, जिसको हम चारा भी कहते हैं, ठीक है ना। रिचका थोड़ा सा मोटा मोटा होता है और चारा, जिसको हम घास भी कहते हैं, वो थोड़ा पतला होता है। तो रिचका, इसी को मैं बता रही हूँ, रिचका 100 ग्राम और ककड़ी का रस 100 ग्राम, ठीक है। इन दोनों को मिला करके फिर आप सफ़ेद दाग पर लगाइए, इससे दाग ठीक हो जाएंगे। और पीजिए भी, पीना भी है लगाना भी है, ठीक है। कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खाने पीने से ही बीमारियों पर असर करती है और बीमारियां ठीक हो जाती है, और कभी कभी उन्हीं चीज़ों को खाना भी पड़ता है, पीना भी पड़ता है और लगाना भी पड़ता है। तो लगाइए भी और पीजिए भी थोड़े लंबे समय तक, तो सफ़ेद दाग ठीक हो जाएंगे। जो शुरू शुरू में प्रारंभ होते हैं दाग होना, तो आप इस तरह के नुस्खों को आजमा करके बीमारियों को बीच में ही कंट्रोल कर सकते हैं। फिर बहुत बढ़ जाता है उसके बाद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको सालों साल इलाज करना पड़ता है, लंबे समय तक नुस्खों को भी आजमाना पड़ता है और डॉक्टर को भी बताना पड़ता है। तो बस आप ध्यान रखिए, शुरुआत में जो भी बीमारियां होती है तो थोड़ा सा आप उस बीमारी पर ध्यान दीजिए और उसी समय से आप ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दीजिए। तो ये हुए घरेलू नुस्खे। फिर से समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसकी सोच में आत्मविश्वास की महक है, जिसके इरादों में हौसले की मिठास है और जिसकी नीयत में सच्चाई का स्वाद है, उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। उसकी पूरी जिंदगी महकता हुआ गुलाब है। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में आइए अब खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। हमारी सखी सविता जी हमारे साथ बने हुए हैं। सविता जी, क्या कहना है आप, जिसके कहते हैं ना कि सच्चाई जिसके जीवन में है, उसके पूरी जिंदगी ही महकता हुआ गुलाब है।
2: जी उषा जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और देखिए, सच्चाई की बात आपने की, इतनी बढ़िया जो चंद पंक्तियाँ आपने सुनाई, सच्चाई महकता गुलाब है। गुलाब कहाँ होता है उषा जी? कांटों के बीच में। तो सच बोलना इतना सरल नहीं है दुनिया में, सच रहना भी सरल नहीं है। सत्य बोलने वालों को सदा कांटों की सेज ही मिलती है, लेकिन उसमें भी हमें एक खिलता हुआ और महकता हुआ गुलाब बन के ही रहना चाहिए,
1: क्योंकि परिस्थितियां तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन कहते हैं परिस्थितियों को पार करते हुए अपने मन की स्थिति को नहीं हिलाते, अपनी मन की स्थिति को बनाए रखते हैं मजबूत के
2: जी,
1: एकदम कहते हैं फौलाद की तरह, और निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वही इंसान है। बाकी परिस्थितियां तो इंसान के अंदर ही आती है
2: जी, लेकिन आज का जो माहौल देख रहे हैं उसमें सत्य परेशान हो रहा है। हालांकि सत्य की कभी हार नहीं होती है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी भी हारता नहीं है।
1: तभी तो कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं,
2: और सत्य का सूरज कभी छिपता भी नहीं है। झूठ के काले बादल थोड़े ही दिनों से ढक सकते हैं, फिर वो अपनी रोशनी लेकर के सूरज फिर भी आसमान में जगमगाता है और दुनिया उसको फिर से सलाम करती है। तो कहीं ना कहीं सत्य में वो जयते चुका कहा गया है, तो सत्य की विजय निश्चित ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों।
1: बिल्कुल सविता जी, तो चलिए हम सत्यता पर ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य बोलने में एक तो एक सत्य बोलेंगे तो 100 झूठ से बच जाएंगे, और एक अगर झूठ बोला तो फिर 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। हाँ, तो कितना हमारा विकर्म बढ़ेगा, कितना पाप के खाते में हमारा पाप बढ़ता जाएगा
2: जी, क्योंकि झूठ को छिपाने के लिए हम दूसरा बोलते हैं, दूसरे से तीसरा बोलते हैं, फिर ये जो
1: बहानों पर बहाने
2: हाँ, बहाने पे बहाने और झूठ पर झूठ, ये संख्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। तो जो गलत चीजों की जो संख्या होती है, जो आपने पाप का खाता कहा है, तो ईश्वर के हम सब की जो एक फाइल है उसमें हम सब की काउंटिंग होती रहती, कितना हम अच्छा करते हैं कितना खराब करते हैं, तो वो जो संख्या होती गलत चीजों की वो निरंतर बढ़ती ही जाती है। तो उससे हमारे पाप का खाता या विकर्म का खाता जो कहा गया अकाउंट बढ़ता ही जाता है, फिर समस्याएं हमारे सामने आती चली जाती हैं।
1: बिल्कुल सविता जी, फिर भी आपको पता होगा कि मतलब लोग फिर भी चापलूसी भी करते हैं, और जैसे कि उदाहरण के तौर पे

0: इस जगह पे हमें ऐसे करना चाहिए, अगर पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी ऐसी बात आए आपस में झगड़े की, तो बेहतर हो कि हम उस पर ध्यान न दें, दूसरों के झगड़े पे, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी यदि हमारे सामने कोई बात आती, होता है कई बार,
1: होता
0: व्यक्ति भाई सोचता है कि कोई हमारा सहयोग करे, सच भी सोचता है झूठ भी सोचता है, तो व्यक्ति उसी से सहयोग मांगेगा जो उसके करीबी होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन हमें अगर ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े कहीं भी, कि हमें कोई पूछे कि आप बताइए क्या मैं गलत हूँ सही हूँ, तो उस जगह हमें सहेली नाता या जान पहचान ये नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक हंस की भांति, जो हंस होता है ना, कंकड़ और मोती को देखिए क्या कर देता, अलग कर देता है, और पानी और दूध को भी अलग कर देता है ना, क्षीर और नीर को। कहा गया कि ये शक्ति जो होती, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति, एक हंस में होती। इसीलिए देखिए देवी देवताओं को कहा गया हंसानन, हंस का आसन पर विराजमान रहते माता सरस्वती, जो
1: हंसासन गरुड़ासन,
0: हाँ जी, जो दिव्य बुद्धि की दात्री हैं, बुद्धि में दिव्यता भरती है, ज्ञान भरती है, ज्ञान का प्रकाश भरती है, उनका आसन भी हंस होता है। इसीलिए हम मनुष्यों को भी, जब भी कोई हमारे जीवन में परिस्थिति आए, चाहे किसी और के लिए या हमारे लिए, हमेशा हमारी बुद्धि में दिव्यता होनी चाहिए, और हंस आसन पर विराजमान होकर अगर आप कोई भी निर्णय करेंगे उषा जी, तो मुझे लगता है वो सत्य ही होगा, गलत नहीं हो सकता।
1: बिल्कुल आपने सही कहा है सविता जी। फिर भी हम दुनिया में देखते हैं कि ये जो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में जो भीड़ लगती जा रही है, तो हम देखते हैं कि बस वो झूठ और सत्य के आधारित पर ही होता है ना ये सारा खेल। तभी जा करके कहते देखते हैं कि वकीलों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, सत्य का साथ लोग बहुत कम देते हैं, झूठ का, जिसने पैसे खिला दिए, अच्छे से पोस्ट पोजीशन पर है और वो पैसे खिला दिया, तो फिर उसके लिए 100 झूठ भी लोग बोल जाएंगे। जैसा भी देखा है सविता जी आंखों से कि
0: हो ही रहा है,
1: हो रहा है, तभी तो क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इतना।
0: और देखिए कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं, हम भी जीत नहीं पाते हैं कई बार सत्य, हालांकि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, थोड़ा परेशान होता है, थोड़ी देर के लिए छिप जाता है, लेकिन कई बार हम सबके भी जीवन में ऐसा समय आता है कि हमें लगता है कि किसी ने हमें मतलब दबा दिया है पैसे देकर, या किसी ने अपना कहीं सोर्स लगाकर, होता है। और इसीलिए आज आप देखेंगे अदालत में इतने मुकदमे हो रहे हैं और कितने पेंडिंग पड़े हैं, आज तक सुलझाए नहीं जा सके। मुझे लगता है बरसों बरस बीत जाते हैं, कई बार तो पैरवी करने वाले वकील भी शरीर छोड़ देते हैं, मर जाते हैं,
1: वकील भी खत्म हो जाते हैं, तो जिन्होंने केस किया
0: वो भी
1: इस दुनिया से चले जाते हैं,
0: पीढ़ी दर पीढ़ी वो कई बार ट्रांसफर होता रहता है। तो ये सबसे क्या होता है कि खुद के अंदर जब क्षमता नहीं है सत्य को जानने की, परखने की, निर्णय करने की, तब हम अदालत के दरवाजे जाते हैं। और छोटी छोटी बातों को लेकर कई केसेस तो इतने होते हैं कि बड़ी हंसी भी आती है, ऐसा लगता है इसके लिए हमें अदालत जाने की जरूरत नहीं थी, बहुत छोटी सी बात थी, पास पड़ोसियों की होती है या परिवार की होती है, हम अदालत का भी समय नष्ट करते हैं, अपना भी नष्ट करते हैं। और इसीलिए पुराने जमाने में उषा जी, मुझे लगता है वो एक विधि थी पंचायत वाली,
1: जी,
0: अदालत तक ना जाके घर की बात है या अपना गांव की बात है या मोहल्ले कबीले जो भी बात होती है उसमें वहीं सॉल्व कर दिया जाता, क्योंकि उस समय लोग जो निर्णय करते थे उनको बहुत अच्छा माना जाता, पंच परमेश्वर, तो कई बार बहुत अच्छा फैसला आता था कि दोनों तरफ के लोग संतुष्ट हो जाते थे और बहुत सही निर्णय होता था। लेकिन कई बार उसमें भी फिर धीरे धीरे बाद में जा करके समस्या उत्पन्न होने लगी, उसमें भी वही बात आ गई, पक्षपात हो गया या फिर किसी के साथ लेन देन हो गई, तो सत्य को छिपा दिया जाता, तब अदालतें बनाई गई, तब ये होने लगा भाई जज बैरिस्टर और वकील सब शुरुआत हो गई। लेकिन आज देखेंगे फिर भी हम जहाँ के तहाँ रह गए, बल्कि और आगे ही बढ़ गए, आप समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब के पीछे हमारी जो सोच है ना वो काम करती है, अगर हमारी सोच सही होगी तो ना हमें किसी अदालत की आवश्यकता है ना किसी पंच की आवश्यकता पड़ती है।
1: इसलिए सबसे पहले तो जरूरत है अपने सोच को बदलने की और सत्य को बोलने की। जब हम सत्य बोल सकेंगे तो अदालत तक नहीं, घर में ही मामला सुलझ जाएगा। और थोड़ी देर के लिए सत्य बोलने पर थोड़े कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन बाद में खुशियां बनी रहेगी। तो चलिए सविता जी, आपके साथ और भी बातचीत करेंगे इसी टॉपिक पर, लेकिन अभी समय हो रहा है एक गीत सुनाने का, तो सुना देते हैं एक गीत। सुनते रहिए,
0: मुस्कुराते रहिए
1: रेडियो मधुबन

0: पांच YouTube वीडियो को लाइक करके पांच लोगों को स्क्रीनशॉट भेजने से पर वीडियो 500 रुपए अर्न करे।
1: क्या बात कर रहा है?
0: हाँ देख,
1: तुझे क्या लगता है ये जेन्यून है?
0: अरे हमें कहाँ पैसे देने हैं, ट्राई करके देखते हैं ना। ला देख। अरे हाँ यार, मुझे 500 रुपए मिल गए, इट मींस ये जेन्यून है।
1: अरे अब तो मुझे भी ये करना है।
0: 20,000 रुपए में प्राइम मेंबरशिप लेने से 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। क्या बात है यार।
2: अरे ठहरो, ये क्या करने जा रहे हो?
0: ऑनलाइन टास्क से पैसे कमा रहे हैं।
2: अननोन लिंक पर क्लिक करके पैसे देकर ऐसा नहीं करना चाहिए। SMS, WhatsApp, ईमेल या टेलीग्राम पर आने वाले किसी भी अननोन लिंक को क्लिक ना करें। ऑनलाइन टास्क के जरिए ज्यादा पैसा कमाने के लालच देने वाले विज्ञापनों से दूर रहें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में।
3: सारा जहां उसी का है जो सत्य बोलना जानता है। सारा जहां उसी का है जो सत्य बोलना जानता है। रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। सविता जी, रोशनी भी उसी की है जो क्षमा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, लेकिन ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। ईश्वर तो उसी का है जो सर झुकाना जानता है। तो कहते हैं कि सत्य बोलने में तकलीफ बहुत पड़ती है, तकलीफ को सहना भी पड़ता है, कष्टों को भी सहना पड़ता है, क्योंकि एक सत्य पर कितने ही प्रहार होते हैं, लोग विरुद्ध भी हो जाते हैं और उसके साथ क्या होता है वो तो आप जानते ही है।
4: कई बार सत्य को बहुत बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है। उषा जी, आपने देखा भी होगा और कई बार हम कई घटनाएं अखबारों में पढ़ते हैं, बड़ा दुख भी होता है कि मतलब किसी को न्याय नहीं मिल पाता है या किसी को, आप देखिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। वो होता नहीं है वैसा, लेकिन कई बार लगता है तो सुन के बड़ी तकलीफ होती है। फिर हम सोचते हैं अरे दुनिया में तो न्याय है ही नहीं,
3: नहीं। जैसे खत्म हो चुका जैसे है। हम देख रहे हैं ना दुनिया में किस तरह के जो रेप कांड हो रहे हैं उसमें जो बच्चियां होती हैं उनके दबा दिया जाता है, उनको झूठ बोलने पर मजबूर किया जाता है क्योंकि माता पिता ही वो नहीं चाहते कि उनकी बदनामी हो। इसलिए कह रही हूँ कि सत्य बोलने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ईश्वर उसी के साथ होता है जो सत्य बोलता है।
4: और कई लोग ऐसे भी होते हैं उषा जी कि जो दुनिया से डरते नहीं, दुनिया की परवाह करे बिगर सच का सामना करते हैं और सत्य बोलते हैं, भले उनकी बदनामी हो या कुछ भी हो, तो वो संसार में एक मिसाल कायम कर जाते हैं। महात्मा गांधी जी को ही देखिए, उन्होंने सदा सत्य बोला, सत्य और अहिंसा का पालन किया। और जितने भी महापुरुष हुए हैं मुझे ऐसा लगता है उनके जीवन में सत्य था उषा जी, तभी उनका प्रभाव दुनिया पर या दुनिया के लोगों पर
3: और
4: पड़ता,
3: तभी
4: है।
3: उनको महापुरुष के नाम से जाना गया, पदवी भी दी गई।
4: महानता का पहला लक्षण ही सत्य बोलना है
3: जी।
4: और आप देखिए अभी जो आपने जो कविता पढ़ी अभी जो हमारे सेकंड राउंड में, बहुत सुंदर कविता थी, उसमें एक लाइन थी कि क्षमा बनना है, रोशनी करना है, जैसे एक बात है सत्य जो एक रोशनी की भांति है, इसीलिए कहा गया है ईश्वर सत्य है और ईश्वर रोशनी है। गॉड इज लाइट एंड गॉड इज ट्रुथ, दोनों का समन्वय है आपस में। तो सत्य और रोशनी, जो सत्य की जो रोशनी है वो ईश्वर है, और ईश्वर से जब हमारी आत्मा भी कनेक्ट होती है तो आप देखिए हमारे अंदर भी वही सत्य का प्रकाश आता है और हमारी आत्मा भी एक रोशन होती है।
3: और सविता जी, हम देखते हैं कि जैसे कि घर परिवार में कोई बातें करते हैं तो भी क्या कहते हैं, देखो वो एकदम सही बोलती है, सत्य बोलती है, इसलिए अपने सुख दुख की बातें उनके सामने जाकर शेयर करते हैं, है ना। और जिनको पता है कि वो झूठ बोलते हैं, इधर की उधर करते हैं, तो उनके पास जाकर के कोई अपने दिल की बात नहीं
4: कभी
3: करता,
4: नहीं कहता। सत्य में वो शक्ति होती है कि हर एक व्यक्ति को आपके सामने वो सरेंडर करवा देता है। भले शुरू में ऐसा लगता है कि लोग हमारा विरोध करें, लेकिन आप देखिए जो विरोधी भी होते हैं वो भी, उनको भी मालूम है कि सच बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे,
3: और बाद में वो ही सहयोगी बनते हैं।
4: हां सहयोगी बन जाते हैं कई बार, नहीं तो डरते हैं। और अदालत में भी आप देखिए, अगर वकील समझदार है तो मेरा ये मानना है और विश्वास है 100% संसार की कोई भी समस्या हो, कोई भी केस हो, वकील चाहे तो कितना भी बड़ा मुलजिम हो उससे सत्य निकलवा लेगा, वो कितना भी झूठ क्यों ना बोले सामने वाला, लेकिन अगर वकील समझदार है और सत्य है वकील तो वो कोई भी केस हो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा 100% विश्वास है कि आप सत्य को निकाल लेंगे। क्योंकि बातों की अगर कला है हमारे अंदर
3: बिल्कुल,
4: और सत्य को खंगालने की समझ है और परखने की शक्ति है, तो आप एक हंस की भांति छीर और नीर को अलग कर लेंगे और झूठ भी पता चल जाएगा और सत्य भी पता चल जाएगा। और मुझे लगता है तब शायद जो लोगों का कहना है कि अदालत में न्याय नहीं होता वो होने लगेगा।
3: जी,
4: कई लोगों को मैंने यहाँ तक कहते सुना उषा जी, जो हमारे वकील वगैरह होते हैं या तो उनके कपड़े होते हैं काले रंग के, तो उनको लोग बोलते हैं कि अदालत में सब कुछ काला ही काला,
3: काला ही काला है।
4: और कानून की आंख पे पट्टी बंधी उसे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बनाया गया है काला ड्रेस बनाया गया है या कानून की आंखों पे, कानून की देवी की आंखों में पट्टी बांधी गई, उसका रहस्य उषा जी है। वास्तव में पट्टी इसलिए बांधी गई है, और एक चीज तो लोग देखते ही नहीं, काली पट्टी तो देख लेते हैं कि कानून की आंख में पट्टी बांधी गई, काला ड्रेस है, लेकिन आपने उसके हाथ में पकड़ा हुआ तराजू नहीं देखा। तराजू के जो दोनों पलड़े हैं वो बराबर होते हैं, और पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो बड़े पद वाला हो, मान शान वाला हो, पैसे वाला हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति धर्म या हमारा पारिवारिक व्यक्ति ही क्यों ना, संबंधी क्यों ना, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। उन चीजों को ना देख के नजरअंदाज करके हमारे लिए दोनों पलड़े समान हैं। और काला ड्रेस इसलिए दिखाया गया, देखिए जो जजेस बैठते हैं उनके भी जो गाउन होते हैं वो भी काले कलर की होती है, और आप देखिए वकीलों के भी कपड़े काले दिखाए गए, कोट पहनते, कि काले कलर में यदि आप कोई भी रंग डालेंगे तो उसका असर नहीं होगा, होगा क्या?
3: नहीं होगा,
4: नहीं होगा। इसीलिए उसमें बताया गया कि अगर हम अदालत की कुर्सी पर बैठे हैं, जज बनकर बैठे हैं या कोई भी मुकदमा लड़ रहे हैं, तो हमें कोई भी रंग नहीं लगेगा, ना हमारे संबंधों का रंग लगेगा, ना पैसे का रंग लगेगा, ना बुराई का रंग लगेगा,
3: ना स्वार्थ का लगेगा,
4: ना स्वार्थ का लगेगा, ना चापलूसी और ना जान पहचान का रंग लगेगा, और ना कपट करने, क्योंकि वहां पे कपट भी होता है। कहा गया है कि कपट करके केस जीत रहे लोग आजकल, तो शकुनी ने भी कपट करके मतलब पांडवों से उनका राज्य हरण कर लिया था। तो जो कपट की जगह बताई गई वो अदालत कहा जाता है कि हो रहा है, हालांकि मैं इस चीज पर इतना विश्वास नहीं करती हूँ कि सत्य वहां भी है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें सत्य की विजय नहीं हो पाती, तो लोगों की जो धारणाएं हैं वो गलत हो जाती हैं। अगर हमारे अंदर सत्यता की शक्ति है और सत्यता का पावर है, तो जो हमारा केस लड़ने वाले वकील है उनको हम, मैं ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल हंस की भांति छीर और नीर जैसे अलग हो जाता है, अलग कर देते हैं वो कंकड़ और पत्थर को, उस बुद्धि को आप यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है अदालत की जो गरिमा है वो और अच्छी
3: बनी
4: रहेगी, उसमें बनी रहेगी और चार चांद लग जाएंगे, और जो इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं वो भी फटाफट निपटेंगे। और मैं तो कहती हूँ घर ही एक अदालत है, अगर हम घर की बात घर में ही, या जो हमारे आस पड़ोस की भी समस्याएं हैं या हमारे समाज की, उनको वहीं समाप्त कर लें तो हमारे
3: उन समस्याओं का समाधान वहीं कर लिया जाए, आगे न बढ़ाया जाए तो अच्छा है, बाकी तो जिंदगी
4: सत्य की विजय हो जाएगी 100% हो जाएगी,
3: बाकी कोर्ट कचहरी में जिंदगी बीत जाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी
4: समय नष्ट होता है, पैसे भी जाते हैं,
3: समय स्वास्थ्य संकल्प पैसा सब व्यर्थ होता है, और फिर भी कहते हैं कि परिणाम घास का तीन पान की तरह ही होता है।
4: जी, तो हमारे जो दिमाग है उसको ही एक अदालत समझ के हम सदा सत्य की कुर्सी पर जज बन के विराजमान रहे और निर्णय करते रहे, तो बहुत सरल है हर काम करना।
3: बिल्कुल सविता जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातें की है आपने कि सत्यता पर अड़िग रहना ही मानवता का धर्म है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन सत्य हमेशा बोलना चाहिए। सत्य से थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन उसका परिणाम बहुत अच्छा रहता है और सदैव हमारे जीवन में खुशियाँ बनी रहती है। तो चलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो रहा है फिर से एक गीत सुनाने का, तो सविता जी सुना देते हैं गीत।
4: बिल्कुल,
3: सुनते रहिए,
4: मुस्कुराते रहिए,
3: रेडियो मधुबन

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

आशियाना जी। तो आप सुन रहे हो आशियाना, और आशियाना में समय हो चला है आप सभी को नए नए व्यंजन सिखाने का। और ये गीत जो मैंने अभी दो पंक्तियां सुनाई है, तो आप समझ रहे होंगे कि उषा दीदी को क्या हो जाता है, बीच बीच में गीत सुनाती रहती है। इसलिए मैंने आप सभी को याद दिलाया जो हमारी माताएं बहनें व्रत उपवास रखती है उनके लिए, इसलिए गीत की लाइन बोली थे, तो क्यों ना आपको फराली सिखाया जाए। तो चलिए, कितनी बहनें हमारी असमंजस में होगी कि क्या फराल बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो प्यारी बहनों, बिल्कुल आप टेंशन मत रखिए, मैं बहुत ही सरल सिंपल फराल सिखा रही हूं, तो आप चाहे फटाफट बना करके खा सकते हैं, परिवार वालों को खिला सकते हैं। तो आज बनाएंगे आशियाना के किचन में सिंगाड़े के आटे के पकौड़े। ठीक है, पकौड़े तो वैसे ही फटाफट बन जाते हैं, 5-10 मिनट में पकौड़े बना करके आराम से आप खा सकते हैं, खिला सकते हैं। तो पेन और डायरी आप ले लीजिए, और सामग्री मैं आपको लिखवा रही हूँ। सामग्री इस प्रकार है, सिंगाड़े का आटा लीजिएगा 1 कटोरी। ठीक है, अगर सिंगाड़े का आटा मौजूद नहीं है घर में तो फिर आप राजग्रह का भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लीजिए सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी। फिर आप लीजिए मीडियम साइज के आलू 2 ले लीजिए, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। फिर हरी मिर्च लीजिए बारीक कटी हुई 1। बस सामग्री इतनी सी ही है जो आसानी से हमारे घर में मिल जाती है। तो पुनः दोहरा रही हूँ, एक नज़र डाल दीजिएगा, सिंगाड़े का आटा 1 कटोरी, आलू लीजिए मध्यम आकार के 2, काली मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, और सेंधा नमक भी स्वाद के अनुसार। फिर आप बारीक कटी हुई हरी मिर्च लीजिएगा 1। तो ये सिंगाड़े के आटे के पकौड़े की सामग्री हो गई है। अब पकौड़े कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैं आपको साथ ही साथ विधि सिखा रही हूँ। आप क्या करेंगे, सिंगाड़े के आटे में पानी मिला करके पकौड़ा बनाने का घोल तैयार कर लीजिए। ठीक है, फिर इसमें काली मिर्च पाउडर थोड़े से आप अधकटा इसको कूटिए। ठीक है, बिल्कुल बारीक भी नहीं काली मिर्च को, और मोटी पूरी साबुत भी नहीं रखनी है, अध कचरी कूट करके डालिए। सेंधा नमक, हरी मिर्च ये सब डाल दीजिए। आलू को छील करके काट लीजिए और इसके गोल गोल स्लाइस कर लीजिए। और जो हमने खीरा तैयार किया है ना पकोड़े का, उसमें आप आलू के गोल स्लाइस को डुबाइए और उसके सब तरफ उस आटे के घोल को लगा दीजिए और तेल में छोड़ दीजिए। तेल गर्म हो जाए फिर आप आँच मध्यम पर कर दीजिए, और मध्यम गैस पर आप इस तरह पकोड़े सारे तल लीजिए। मध्यम आँच पर जो हम चीज़ों को सेकते हैं वो अंदर से कच्ची नहीं रहती है, अंदर से भी पक जाती है और बाहर से भी पक जाती है। तो भाई कच्ची खाएंगे तो पेट दर्द करेगा ना, इसलिए मध्यम आँच पर ही आप चीज़ बनाइए। पहले आप फास्ट रखिए गैस को,

ताकि तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए, उसके बाद आप मध्यम कर दीजिए ताकि इस तरह चीज़ें अंदर से भी पक जाए। तो ये सिंगोड़े के आटे के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। पुनः दोहरा रही हूँ विधि को, ध्यान से सुनिएगा। सिंगोड़े के आटे में पानी मिला करके पकौड़े का घोल तैयार कर लीजिए, ठीक है। फिर इसमें अधकचरी, कूटी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च डाल दीजिए और आलू की धुलाई करके इसके छिलके उतार करके गोल गोल इसकी स्लाइस कर लीजिए, अलग रखिए इसको। फिर पकोड़े के घोल में स्लाइस को जब आप पकोड़े तलने जा रहे हैं उस समय स्लाइस को आप घोल में डुबाइए। जब घोल चारों तरफ लग जाए बस आप तेल में छोड़ते जाइए, हल्के ब्राउन कलर के चारों तरफ से हो जाए पकोड़े, उसके बाद आप पकोड़ों को निकालते जाइए। तो इस तरह सिंगोड़े के आटे के पकोड़े तैयार किए जाते हैं। भाई तैयार हो गए हैं, अब इसके साथ आप चाहे तो टमाटर सॉस भी आप ले सकते हैं या फिर हरी मिर्च की चटनी या दही, दही ले लीजिए। दही में हल्का सा शक्कर डाल दीजिए और दही के साथ इन पकौड़ों को आप खा सकते हैं, ठीक है। तो लीजिए एक स्वच्छ प्लेट, प्लेट में आप पकौड़े रखिए, दही ताजा हो तो रख दीजिए एक कटोरी में और कटोरी रखिए प्लेट में, तुलसी पत्र जल की स्वच्छ ग्लास भर के भी रखिए और ऊपर से ढकिए स्वच्छ कपड़ा को और आप अपने इष्ट देव को भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार सहित आनंद लीजिएगा सिंगोड़े के आटे के पकौड़े का। और साथ ही साथ एक गीत तो बनता ही है, तो सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्नी परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: सुन रहे हो आशियाना और आशियाना में आइए अब आपको देते हैं सामान्य जानकारी। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी शारीरिक तकलीफ आती है, थोड़ी सी शारीरिक व्याधि बढ़ती है और गए मेडिकल स्टोर पर दवा लेकर के आए और खा ली, बस एंटीबायोटिक लेकर के आते हैं और खा लेते हैं डॉक्टर के बिना परामर्श के। तो ऐसा नहीं करना है, डॉक्टर के बिना परामर्श के अगर हम गोलियां लाते हैं तो ये नुकसानदेह होती है। कैसे होती है वो भी आपको बता रही हूँ कि कितने ही शोधों में साबित हो चुका है ये बातें कि एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नुकसान देता है कितनी ही बीमारियों में। ठीक है जैसे कि सर्दी हो रही है, सर्दी में हम दवा लेकर के आए, ठीक है सर्दी जुकाम है जबकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती गोली की, फिर भी हम सर्दी जुकाम की बीमारी में गोलियां लेकर के आए, खा ली, खत्म। लेकिन दूसरे जो आवश्यक तत्व होते हैं ना, सर्दी जुकाम तो ठीक हो गया लेकिन जो आवश्यक तत्व हमारे अंदर होते हैं वो भी कितनी बार साथ ही साथ नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी बीमारी आवे तो डॉक्टर से सलाह जरूर लेवे। कितनी बार देखिए एंटीबायोटिक से संक्रमण भी फैलते हैं, जैसे कि संक्रमण फैलाने वाले जो बैक्टीरिया होता है ना उनको मारने की संख्या को कम करना या फिर उनसे बढ़ने को, जैसे संक्रमण फैलते उनको बढ़ाने से रोकना। लेकिन जब बिना डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक लेने लगते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो कोई भी बीमारी आएगी तो हम सहन नहीं कर पाएंगे। साथ ही एंटीबायोटिक का असर भी फिर धीरे धीरे कम होने लगता है क्योंकि हमारी आदत पड़ गई ना, गए मेडिकल पर लेकर के आए, खा ली और बात खत्म, तो फिर एंटीबायोटिक गोलियों का असर भी कम हो जाता है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारता है लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल से ये ऐसे अच्छे बैक्टीरियों को भी मारने लगता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं ऐसी गलती मत करिएगा। भले हमें सर्दी जुकाम या सिर दर्द ये सब नॉर्मल दिखते हैं कि इसके लिए क्यों डॉक्टर के पास जावे, क्यों खर्चा करे, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कितना होता है वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए आप जाइए डॉक्टर से परामर्श करिए। कितनी बार लोगों को लगता है कि क्या करें, डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक तो समय हमारा जाएगा, दूसरा फिर मोटी फीस भरनी पड़ेगी। तो ज़रूरी नहीं आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए, आप सरकारी हॉस्पिटल में जा करके डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हाँ सरकारी हॉस्पिटल में थोड़ा समय लगता है अगर भीड़ है तो प्राइवेट में भी कितनी बार भीड़ रहती है ना, फिर भी हम प्राइवेट में इंतज़ार करते हैं, 200-300 रुपये की फीस भी भरते हैं और छोटी मोटी बीमारियों के लिए बिल्कुल नहीं जाते, भाई 200-300 तो वेस्ट खोना है, चलो मेडिकल से डायरेक्ट गोली ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आप सरकारी हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर से मिलिए, परामर्श लीजिए, उसके अनुसार फिर आप दवाइयाँ लीजिए, क्योंकि डॉक्टर बहुत सोच समझ कर दवाइयाँ देते हैं, वो फिर आपके दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करने से रोकेंगे, नहीं तो जो काम के आवश्यकता तो है वो अगर ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरी व्याधि उत्पन्न हो जाएगी। फिर हम कहते हैं कि देखो उस दवा ने असर किया और हमारा सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, लेकिन हमें पता ही नहीं चला कि दूसरी कौन सी बीमारी या दूसरा कौन सा तत्व हमारे अंदर ख़त्म हो गया और उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया या फिर दूसरी बीमारी हो गई, वो पता नहीं चलता है। क्योंकि एकदम तो ऐसा होता नहीं है, वो दवा जब असर करती है तो उसका साइड इफेक्ट भी धीरे धीरे असर करता है, और धीरे धीरे असर करता है तो फिर बाद में कुछ समय के बाद पता चलता है कि फिर से ये प्रॉब्लम हो गई है। तो हम समझ ही नहीं पाते कि फिर से ये प्रॉब्लम कैसे हुई, हम तो यही समझते हैं कि चलो पहले सर्दी जुकाम सिर दर्द ठीक हो गया, चलिए फिर से चलते हैं मेडिकल पर और दूसरी गोली इसकी भी ले आते हैं और फिर जा कर के ले आते हैं। तो इस तरह बड़ा रोग, कितनी बार बड़े बड़े रोग भी हमारे को हो जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। पुनः आप सभी को कह रही हूँ कि कोई भी बीमारी हो, छोटी से छोटी जो बिल्कुल सामान्य दिखती हो, फिर भी आप डॉक्टर की सलाह से काम करिए, बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट और फिर हम देखते हैं कि इन्फेक्शन की समस्याएँ बढ़ती जा रही है, तो ध्यान देंगे, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, समझदारी की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए फिर से समय हो रहा है किस सुनाने का, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 90.4।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आज के कार्यक्रम तो आपने सुने ही है, आज के कार्यक्रम काफी अच्छे रहे हैं, बहुत ही अच्छे आपको घरेलू नुस्खे दिए हैं, जरूर आप ध्यान दीजिएगा। और खुशनुमा जीवन की सविता जी के साथ अच्छी अच्छी बातें भी हुई है, तो सत्यता पर हमेशा अड़िग रहना है, झूठ नहीं बोलना है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आवे। और नए नए व्यंजन में जो आपको अभी पकोड़े सिखाए हैं, आप जरूर बना करके खाइएगा, सिंगोड़े के आटे का पकोड़ा। हमारी माताएं बहने तो व्रत उपवास रखती ही है, तो इस तरह के फराल भी आप बना सकते हैं। और सामान्य जानकारी भी आपको बहुत ही अच्छी दी है कि एंटीबायोटिक से बच के रहना है, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा नहीं लेनी है, ठीक है। आज के अनमोल वचन भी इस प्रकार है, जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, आपसे मिलकर शायद किसी की तलाशी पूरी हो जाए। अब मैं आपको एक प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है सोने का देश बना दे। आप लेंगे कविता का आनंद और मुझे देंगे अनुमति। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खमा सा, खुदा हाफिज। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन। आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे, अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो, अरसे से मुरझाए सुमनों को फिर से खिल जाने दो, विरह गीत गाने वालों को मिलन गीत गा लेने दो, आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है, आज कोई तो सूखे अधरों तक सागर लाया है, जगा देर से माजी भी अपनी गागर लाया है, ऐसे प्यासे माजी को ज्ञानामृत का पान करा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। तूफा में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं, तूफा में घासों के झुरमुट नम जाया करते हैं, अड़िग रहे तरु टूट मध्य से गिर जाया करते हैं, संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे, संकल्पों के दीप जलाओ कोहरे छट जाएंगे, सच मानो तो अंधकार के सब बादल फट जाएंगे, जन जन को आओ फिर से पावनता का पाठ पढ़ा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे। बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं, बीते अंधियारों में अब हम लौट नहीं सकते हैं, जो आगे बढ़ मुड़कर देखे वो क्या कर सकते हैं, जिसका चलना काम रहा हो, जिसका चलना काम रहा हो वो क्या कभी थका है, जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है, जब से दुनिया तब से देखो दिन कर कभी रुका है, ऐसे उन्मादी में फिर से सोया पुरुषार्थ जगा दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, आओ फिर से भारत को सोने का देश बना दे, ओम शांति का मतलब सबको आओ हम समझा दे, आओ हम समझा दे।

0: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप sanchar-saathi.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।
1: एक समाचार पत्र ने वृद्ध दिवस पर एक संदेश प्रतियोगिता रखी। हजारों संदेश समाचार पत्र कार्यालय पहुंचे। प्राप्त संदेशों को 3 सदस्यीय एक निर्णायक समिति को सौंप दिया गया। तीनों सदस्य एक कक्ष में बैठकर वाचन करने लगे। संदेश को पढ़ते पढ़ते शर्मा दंपत्ति की आंखों से आंसू छलक उठे। अतीत में खोकर वे भाव विह्वल हो उठे। याद आने लगे वे ढेर सारे संदेश जिन पर आंख बंद करके उनका बेटा स्वीकार कर लेता था। अविश्वास या तर्क कुतर्क की तो कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं थी, और कभी कभी तो हमारी साधारण बातचीत में भी संदेश ढूंढ लेता था और स्वेच्छा से अमल भी करता था। उसका मन इतना कोमल था कि दूसरों को अपने माता पिता के प्रति बुरा व्यवहार करते सहन नहीं कर पाता था। गुस्से से भरकर कहता था कि मैं बड़ा होकर इन मतलबी लापरवाह बेटों को समझाऊंगा, इनके लिए एक मिसाल बनूंगा, अपना कर्तव्य निर्वहन करके एक संदेश दूंगा कि संसार में यदि कोई सच्चा शुभचिंतक है तो वो माता पिता ही हैं। इनकी अवहेलना, इनका अपमान अक्षम्य है। तीसरे निर्णायक भल्ला जी, जो कि उन्हीं के साथ वृद्धाश्रम में रहते हैं, उन्होंने पूछा, क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू? शर्मा जी बोले, देखिए भल्ला जी, आज फिर मेरे बेटे ने वही सुंदर और सबसे अच्छा संदेश भेजा है।

पहली बार में जब मैंने ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे लगा ये क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो एक बार फिर से एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी जब भी अपनी कलम चलाते हैं, कमाल की बात यह है कि रिश्तों में भरी संवेदनाएं इतनी बारीकी से समाज की दोहरी मानसिकताओं को बड़ी होशियारी से वो अपनी कथाओं के माध्यम से उजागर कर देते हैं। ये सच है, ये सच है इस समाज का। कथनी और करनी अलग अलग हो गई है, और कथनी करनी रहनी जिसकी एक समान है ना, उसे जीवन में कोई तनाव नहीं होता। लेकिन अगर अवसाद है, निराशा है, तनाव है, भय है, तो कहीं ना कहीं दोहरे चरित्र के साथ जीवन जी रहे हैं हम। शर्म भी शायद तभी आती है। दोहरा चरित्र करके एक बड़ी सुंदर कथा देवेंद्र सिंह सिसोदिया जी की आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी, ढूंढिएगा। फिलहाल माता पिता और उनसे जुड़ी संवेदनाओं पर क्या ही कहें, जितना बोलूंगा उतना कम होगा, आप भी जितना कहेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे उतना कम होगा। ये लघु कथा पर्याप्त है, मुझे ऐसा लगता है। कैसी लगी आपको लघु कथा, कमेंट के जरिए बताइए, और हाँ, औरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि संवेदनाएं जीवित रहनी चाहिए और कलम की ताकत भी सब तक पहुंचनी चाहिए। अगले पड़ाव पर एक नई कहानी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। अमित का बहुत बहुत

0: अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, जिसे आप जानते भी नहीं उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और अब वीडियो कॉल रिसीव करने जा रहे थे। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ना करें। आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा प्राइवेट या लॉक्ड रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल कभी ना उठाएं। कोई भी व्यक्ति आपके प्राइवेट फोटोग्राफ्स या वीडियोस को लीक करने की धमकी दे या ब्लैकमेल करे तो बिना किसी डर या संकोच के तुरंत पुलिस का संपर्क करें। आपकी सुरक्षा आपके हाथ।
1: नमस्कार दोस्तों, आपके अपने सामुदायिक रेडियो केंद्र रेडियो मधुबन 107.8 FM द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। एक महिला अपने जीवन में बचपन से लेकर वृद्धावस्था के बीच किसी न किसी प्रकार की हिंसा का शिकार बनती है। साथियों, महिलाओं के प्रति होने वाले हिंसा के अलग अलग कारण होते हैं, जैसे कि बेटे की चाहत में गर्भपात करवा देते हैं, बेटी के स्कूल जाते वक्त लड़के ने सीटी बजाई तो लड़की का स्कूल छूट गया, तुम पराए घर से आई हो तो जायदाद में तुम्हारा नाम नहीं आ सकता, थोड़ी पढ़ाई क्या कर ली, घूंघट निकालना ही छोड़ दिया। तो इस तरह बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है। आज के इस नाटक के द्वारा हम जानेंगे कि महिलाएं किन किन कारणों से हिंसा का शिकार बनती है।
2: आज आपको ले चलते हैं राजस्थान सिरोही जिले के एक ऐसे गांव में जहां रहता है जगदीश। जगदीश के परिवार में उनकी माँ रमा, पिता सीताराम के साथ कुल 10 सदस्य रहते हैं। जगदीश अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा है और उसका विवाह पड़ोस के जिले की पुष्पा से हुआ है। बहू पुष्पा पहली बार गर्भवती हुई है और उसका 9वां महीना चल रहा है। पुष्पा की माँ बीमार होने के कारण पुष्पा को डिलीवरी के लिए पियर लेकर नहीं जा पाती है। इस वजह से सास रमा बहू को ताने कसती।

0: और साथ साथ बार बार पुष्पा को पोता चाहिए कहकर परेशान करती रहती है। चलिए चलते हैं पुष्पा के घर और देखते हैं अभी वहां क्या चल रहा है।
1: बीनणी, ए बीनणी, कटे परीगी, मारा पगणा दुख है, थोड़ा दबा तो।
2: माँ जी, मने घना चक्कर आ रहा है। माँ जी, मारी तबियत ठीक कोनी। सुबह 4 बजे की उठोड़ी हूँ, रात की 10 बजे तक काम कर रही हूँ। अबे मारी ताकत कोनी, मैं सोवा जा रही हूँ।
1: चक्कर आ रहा तो काई करूँ मैं, अनि दुनिया में तू ही एकली महिला कोनी जो माँ बनवा जा रही। अरे मैं तो 7 टाबरा ने जन्म दी दो पर घर रो सारो काम करती, समझी।
2: माँ जी, आपको समय अलग हो।
1: सामने बोल रही हूँ, ए जग्या थारी लुगाई ने समझा दे, गणिया में बोले।
3: थारी ही हिम्मत क्या न हुई मारी माँ के सामने बोलवा की।
2: थाने खबर है मैं गर्भवती हूँ, पूरा टाइम चल रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा मैं हाथ उठाई रहा हूँ।
3: देख पुष्पा, तू मने मारवा पे मजबूर मत करया कर, घर का काम तो थाने ही करना पड़ी।
2: थाने खबर है कि मारो पूरा टाइम चल रहा, मारो सो काम कोनी हो रहे हो, क्या समझाऊं थाने। आ आ मारो पेट दुख रहे हो। आ
3: पुष्पा, पुष्पा कई होयो थारे। माँ माँ जल्दी आ, थारी बिंदड़ी ने कई होयो।
1: अरे कई नहीं होयो, जा दाईमा ने बुला ला, बालक ने जन्म दिवाली पीड़ा है। बिनणी सुन, मारे तो पोतो ही चाहिए।
4: बधाई हो काकी सा, जलेबी खावा वो लक्ष्मी जी आया है।
1: बाटो आयो, मारे तो छोरा रो खर्चो बढ़ गयो।
4: काकी सा, छोरा छोरी अपना हाथ में कोनी, बीनणी और बालक दोई घना कमजोर है, या को ध्यान राख जो, मैं जाऊं। राम राम।
1: पोतो तो दीदो कोनी और ध्यान रखो।
2: सुनो पिंकी रा पापा, अपनी पिंकी रा मालिश करानी है, घनी कमजोर है, ताकि माँ ने कौन
1: काई जरूरत कोनी मालिश वालिश करवा की, वेजा ही पड़ता धरता मूर्ति, छोरिया ने घने माथा पर नहीं बिठानी।
2: सो जाए।

0: रे।
1: पियर तो थाने देख गया कोनी और नाना नानी ने याद करी, ज्यादा लाड लड़ावा की जरूरत कोनी, वेजाई मोटी।
2: तो सुना आपने, बेटा नहीं होने पर कैसे बहू पुष्पा को तंग किया गया। अब चलते हैं पुष्पा के पीहर में, जहां पुष्पा के माता पिता हैं। जैसे ही पुष्पा के माता पिता को पता चला कि उनकी इकलौती संतान पुष्पा के बेटी हुई है, तो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। और पुष्पा के पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल जाते हैं। आइए जानते हैं आगे क्या होता है।
3: पुष्पा की माँ, बधाई हो थाने, आपने पुष्पा का घरे बेटी को जन्म हुए।
4: पुष्पा का बापू, आपने भी खूब खूब बधाई, नाना जी बन गया थे तो मिठाई और कपड़ा लेन थे मलवा जाओ पुष्पा का सासरे, और पुष्पा ने के जो जब थारी माँ की तबीयत अच्छी हो जाए पछे घरे ना आवा।
3: राम राम वे जी सा, राम राम वेण जी सा, खूब बधाई आपने दादा दादी बन गया इन वास्ते।
5: नाना जी ने भी खूब खूब बधाई।
6: राम राम व्याई जी सा, भोजन रोगो सा।
3: व्याण जी सा, पुष्पा और मारी द्वैती सु मने मिलवा दो, पछे मैं मारा घरे जाऊं। आप ही जानो अपनो रिवाज, बेटी का घर को कौन नहीं खावा।
6: देखो व्याई जी, मारे माता जी की मानता है, इन वास्ते बिनणी सु सवा महीना पहला को नहीं मिल सको नी बालकी सु।
3: एड़ी मानता कि एक बाप बेटी सु मल को नहीं सके।
6: हाँ एड़ी मानता है।
3: ठीक है व्याई जी सा, जेड़ी आपकी मर्जी, मैं चालू। राम राम।
6: राम राम। ए जग्या अटे आओ, थारा उराजी आया या बाथू बिनणी ने मत बताई जे, और कपड़ा लगता मिठाई जो भी लाया काई मत कही जे, समझो।
7: पर विन ठा पड़ गई तो मैं कही क्यों।
6: कीजे, मारा उनसे बात करे।
7: ठीक है माँ।
8: पिंकी रा पापा, मने ढा पड़ी के मारा बापू आया हा मलबा का वास्ते।
7: हाँ तो?
8: तो मने मलबा क्यों नहीं दीदी?
7: मने ठा को नहीं, मारी माँ ने पूछे।
2: बेटी को जन्म देने के कारण पुष्पा के पिता को पुष्पा से मिलने नहीं दिया गया।
4: पुष्पा रा बापू आ गया थे, आपने पुष्पा और द्वैती क्या ने थे उदास क्यों लाग रहा, काई बात सब ठीक है ना?
3: पुष्पा और बच्ची सु तो मन्ने कोई मलवा ही नहीं दीदा।
4: केड़ी बात करो, बेटी सु कोनी मलवा दीदा?
3: हाँ, पुष्पा री माँ व्याण जी सा केवे के मारे तो मानता है माता जी री।
4: एड़ी मानता तो मैं कदी भी कोनी सुनी के बेटी बाप सु कोनी मल सके। ब्याई जी ब्याण जी रो व्यवहार क्या लाग्यो?
3: मने तो लाग्यो छोरी होबा सु वे दोई खुश कोनी।
4: पुष्पा रा बापू, थे मारी छोरी ने कटे खाड़ा में नाग दीदी।
3: पुष्पा री माँ, पुष्पा अपने एका एक औलाद है, मैं तो यो ही चाहू तो के मारी छोरी खूब सुखी रहे। जब मैं संबंध नक्की करवा गयो तो सारी बात मैंने बताई के पुष्पा मारी एका एक छोरी है और पुष्पा की माँ बीमार रहे, तो वे बोलिया कि पुष्पा आपकी नहीं आज सु मानी है, आप काई चिंता मत करो, मैं बेटी की न्यान रखा। पर लोग एड़ा दोगला वे मने खबर को नहीं।
2: पुष्पा का जीवन ऐसे ही चुनौतियों के साथ आगे बढ़ता जाता है, और समय के साथ उसने और एक बेटी और दो बेटों को जन्म दिया। पुष्पा के माता पिता पिंकी की अच्छी पालना और बेहतर शिक्षा के लिए पिंकी को अपने पास ले जाते हैं। वहीं पुष्पा के पति और सास नहीं चाहते हैं कि पिंकी आगे बढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, इसलिए बार बार पुष्पा के साथ झगड़ा करते हैं। लेकिन पुष्पा अब स्ट्रांग बन चुकी है और पिंकी को नाना नानी के पास ही रुककर पढ़ाई जारी रखने की पूरी छूट देती है। समय के साथ पिंकी बड़ी हो जाती है और फिर उसके 12वीं का रिजल्ट आता है। आइए सुनते हैं इस नाटिका में आगे क्या होता है।
3: अरे पुष्पा की माँ, पिंकी कटे होते हैं सब। अरे भाई, पिंकी को रिजल्ट आ गयो।
4: अरे काई व्यू पुष्पा का बापू, थे तो घना खुश लाग रहा।
3: बात ही एड़ी है, पिंकी कटे
9: काई वो नाना जी मैं यारी।
3: अरे अपनी पिंकी को रिजल्ट आ गयो और पिंकी को मेरिट लिस्ट में नाम आयो। गांव वाला सब ढोल बजान पिंकी को स्वागत करवा रहा है, नाश्ता पानी की तैयारी करो।
4: अरे वाह वाह वाह, या तो घनी खुशी री बात है, मारी लाडो तो मारो नाम कर दी दो।
2: देखा आपने, पुष्पा ने परिवार के विरोध के बावजूद पिंकी को अच्छी शिक्षा दिलवाई। पिंकी ने भी मेहनत कर पढ़ाई की और आगे चलकर नामी वकील बन गई। पिंकी ने अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दिलवाई है। अब वह अपने परिवार के साथ साथ समाज की अन्य बालिकाओं और महिलाओं के साथ खड़ी होती है। इस बात से पिंकी के दादा दादी, परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं और पुष्पा की तारीफ करते कहते हैं कि बहू हो तो ऐसी जिसने बेटी को इतना काबिल बनाया।
0: श्रोताओं, सुना आपने कैसे हमारे समाज में एक महिला को जन्म से लेकर हर पड़ाव में आगे बढ़ने के लिए न सिर्फ समाज बल्कि अपने परिवार के अंदर भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अगर इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो छोटी बातें बड़ा रूप धारण कर देती है। महिलाओं के व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, वो आने वाली पीढ़ी को भी शिक्षित नहीं कर पाती है। कभी कभी महिला सुसाइड भी कर लेती है या फिर तलाक ले लेती है। फिर भी अगर हम हिंसा को बढ़ावा देते हैं तो उसका समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आज आप सभी देखते व सुनते भी होंगे कि अधिकांश समाज में बेटों की संख्या ज्यादा है और बेटियों की कम। दलालों को पैसे दे करके दूसरे समाज की बेटियों को बहू बना रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जब नारी ठान लेती है तो हम यही कह सकते हैं, नारी तू ना हारी। पुष्पा ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर अपने पति सास ससुर के विरोध के बावजूद भी अपनी बेटी पिंकी को उच्च शिक्षा दिलाई। इस नाटक से हमने ये जाना कि महिलाएं किस किस प्रकार से हिंसा का शिकार बनती है। हम भी अगर अपने आसपास देखें तो हमारे परिवार तथा समाज के अंदर जाने अनजाने में महिलाओं को इस प्रकार के हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आज की इस नाटक से आपने जो सुना इसे अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे और आप किसी महिला के जीवन में होने वाली हिंसा का कारण नहीं बनेंगे तथा अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक सुरक्षित माहौल देने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यक्रमों के लिए सुनते रहिए रेडियो मधुबन और कहिए सुनो समझो चुप्पी तोड़ो और कहो हिंसा को नो। आइए आरजे उषा के द्वारा सुनते हैं इस एपिसोड के मर्म को प्रस्तुत करता हुआ एक दिल को छू लेने वाला गीत।

टूटी पड़ी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आवाज जी दुनिया रा हमसफर दोस्तों अपनो समाज कार्यक्रम रमाइने रेडियो मधुबन ने सुनवा वाला सगला श्रोताओं ने केसी जिनगर रा गणा गणा राम राम गणी खम्मा ने जय माता दी। आप सुन रहे हो ब्रह्मा कुमारी रो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कुराता रहो। श्रोता बंधु अन कार्यक्रम रे मायने आपो समाज रे माय फैली कुरुतियों वे है वन्ने बारा में समाज रे लोगों की बात करो और उन्होंने कम कर वास्ते रेडियो मधुबन रो एक प्रयास है। अने अलावा अपने भारत देश में कई जातियों में है उनका कार्य रिवाज वे है वे भी अन कार्यक्रम रे मायने आपो समाज रे लोगों की बात कर आप तक पहुंचावारी कोशिश करो हो। अने अलावा अपने समाज में कई बुजुर्ग मानस वे है उनका तजुर्बा वे है वन्ने बारा में भी आपो समाज रे लोगों की बात करो हो और उनका जीवन रखा पड़ाव है उन्होंने केरो जीवन रो सफर गुजरी है उन्हें बारे में आपको बात करो हो। तो हमें आज एक बारोट समाज रा बंधु है उन्होंने नाम है रणछोड़ लाल जी बारोट जो सातपुर गांव में रह रिया है सिंगा कॉलोनी में। तो आज उन्होंने आप उन्होंने जीवन रा पड़ाव रा बारे में बात करी हो। तो सबसे पहला उन्होंने परिचय लेवाते पहला उन्होंने रेडियो मधुबन में स्वागत करो हो। तो रणछोड़ जी आप रेडियो मधुबन में स्वागत है।
1: सब भाइयों ने मारा रोम रोम।
0: रणछोड़ जी सब ने रोम रोम किया है तो अपने तरफ से भी जितना भी श्रोता बंधु है उन्होंने तरफ से भी रोम रोम है
1: रोम रोम।
0: तो श्रोता बंधुओं अपने मेहमान रणछोड़ जी बारोट है वे सब ने रोम रोम किया है और अपने तरफ से उन्होंने रोम रोम किया है स्वीकार किया है। मैं उन्होंने परिचय लो। रणछोड़ जी मैं आपने पूछू हूँ कि आप सिंगा कॉलोनी सातपुर में कतरा साल थी टे हो रिया।
1: मैं सिंगा कॉलोनी सातपुर में जन्मती रह रही हूँ अटे। मारा पिताजी भी अटेच था ने वे रेलवे की नौकरी करता था ने मैं भी रेलवे की नौकरी करे ने मैं रिटायर्ड हुए लोग।
0: चलो अच्छी बात है। अपन ने रणछोड़ जी बताया है कि और पिताजी भी अटे रेलवे नौकरी कर रिटायर हुआ था और बचपन भी अटेच बीती हो और ये भी रेलवे की सर्विस थी अटे रिटायरमेंट हुआ है और हमें गरीब है और घर परिवार चला रहा है और समाज सेवा का कुछ कार्य कर रहे है तो अच्छी बात है। तो हमें रणछोड़ जी ने पूछो हाँ रणछोड़ जी आप बताओ आप कतरा भाई बहन था।
1: मैं कुल मिलावे छह भाई बहन था वने में एक बहन ने पोस्ट पाई था।
0: तो रणछोड़ जी मैं आपने पूछू छह भाई बहन पढ़ाई लिखाई की दी या नहीं।
1: छह भाई बहनों में मैं दसवीं पास की दी है बाकी बीजा है उन्होंने आठवीं हुई सबने आठवीं हाथी हुई पढ़ाई करी सबने।
0: अपने मोटा भाई का करता है।
1: मारा मोटा भाई पोस्ट ऑफिस में था ने पोस्ट ऑफिस में डाक पोट वाला काम करता।
0: तो वे आज अटे है अरे से बाहर गया अटे
1: ना वे एक्सपायर्ड हुए गए उन्होंने मौत हुई गई है ने वे आज 20 साल विवाही है उन्होंने।
0: तो आप रे बहनों कतरी थी।
1: मारे बहन एक अती वह आने वक्त पर विधवा है ने वन्ने भी छोरा है जो एक रेलवे में नौकरी करे ने एक मॉडल इंसुलेटर में।
0: चलो अच्छी बात कानों में बचा रहो।
1: एक रो मनोज है ने बीजा नाम राजेंद्र है।
0: चलो आप क्योंकि आप एक बहन भी थी तो उन्होंने पढ़ाई नहीं कराई थी।
1: उन्होंने की स्थिति मतलब एरी कंडीक्शन थी तो बाप एक कमावारा ने छह भाई बहनों थी एटले वो पढ़ाई बराबर करावे हकिया नहीं ने वो पे जरा ठीक था तो पे दसवीं उदी करी क्योंकि मुझे बस में लो तीसरो चौथो नंबर तो मारो ले मैं पढ़ाई की थी तो दसवीं पास की दी थी मैं।
0: चलो आप पढ़ाई कर दसवीं पास की थी तो आपने नौकरी की गन लागी विषय।
1: नौकरी मारी लागी थी मारे पिताजी वोटे रेलवे में था तो पहला एरो नियम तो के बाप नौकरी करे तो उन्हें बेटा ने मतलब नौकरी में प्रिविलेज देता है उन्हें हिसाब से मारी नौकरी लागी थी।
0: पहला रा सिस्टम तो कि कने पिताजी रेलवे में नौकरी है तो उन्हें बेटा ने भी नौकरी माते ले लेता ठीक है वन कारण आपने नौकरी लागी। तो दसवीं पास कारण लागी है कोई आईटीआई वेटे की दी थी।
1: मुँह डायरेक्ट दसवीं पास की थी मैं कोई आईटीआई वाईटीआई नहीं की थी। अच्छा। ने डायरेक्ट मारी नौकरी लगी थी।
0: हमें बताओ कि आप बचपन क्या रहा बीती हो।
1: मारो बचपन तो ये गरीबी में गुजरी लो है क्योंकि बाप एक माँ और छह भाई बहनों खाओ वाला था उन्हें हिसाब से ठीक ठीक जिंदगी निकली है अथवा एकदम वो भी नहीं तो ने वो महंगवारी का एक माँ वाला तो पालन पोषण करो जरा मुश्किल है तो फिर थोड़ा बड़े में निकली है अपने हिसाब।
0: आपने पिताजी रेलवे में नौकरी था तो पूरी जिंदगी आबूड में नौकरी की दी या बारह भी कटे की दी।
1: हमारे पिताजी आबूरोड में नौकरी की दी ली है ने मैं भी नौकरी की दी तो आबूरोड में की दी ली है।
0: पूरा टाइम अटेस काढ़ियो
1: 34 साल सर्विस की दी 24 साल में अटेस काढ़िया।
0: चलो अच्छी बात है। तो आप बताओ कि आपके बचपन आप मीडियम टाइप बीती है, मतलब गरीबी स्थिति थी घर में और ठीक ठीक मतलब बीती हो, अच्छी बात है। आप शरारतों कुछ करता हो तो एरा अनुभव बताओ, बचपन में आप खूब शरारतों की दी हुए, एरा कोई अनुभव बताओ आप जो आपने बचपन से तो याद आ जाए सब बताओ।
1: शरारतों खेल पहला बच्चोरी हर एक वही से बस, पर पढ़ाई में भी वो अपना ध्यान जरा ठीक है तो ने शरारत भी करता है, ऐसी बात नहीं है कि शरारत नहीं की थी, पर बहुत
0: ऐसी शरारत बताओ जो याद है आप।
1: ऐसी शरारत तो अब कौन सी बताओ कि भाई एक वक्त मोर का है मोर समाज ने माए एरो तो के बारा जो लोग आता है दादागिरी करता तो उन्होंने विपक्ष में मैं भी दादागिरी करता, अतरी बात तो अतरी याद है, बाकी कोई एरो का विशेष अपने जीवन में माए एरो कोई किदो नहीं है। अपने
0: स्कूल में खूब धमाल की थी भाई?
1: स्कूल में तो ओपे धमाल करता नहीं था क्योंकि मार साहब मारता पहला तो धमाल करता, तो धमाल बमाल स्कूल में तो अनुशासन थी श्रेणों पर तो कभी कोई धारा वो नहीं करता था, बाकी ठीक है शरारत तो बचपन में थोड़ी थोड़ी तो सभी
0: गुंडागर्दी की थी, मतलब धमाल है
1: समाज में दादागिरी नहीं पर बीजा अपने समाज में बचाव रहा और बीजो थी दादागिरी तो थोड़ी घनी तो वो करनी पड़े, कोई अपने समाज में ऊपर कोई चढ़े ना आवे तो थोड़ा करना ही पड़े, वह तो है ही नहीं है।
0: मम्मी पापा ने खूब परेशान किया या नहीं किया?
1: मम्मी पापा ने तो आप बिल्कुल परेशान नहीं किया, उल्टी मम्मी पापा की सहायता की दी आप ठीक है, ये कमा वाला था पता मैं कमावा ही किया तो नौकरी तो बाद में लगी थी, पहला अटे एक आटा पीसवारी घंटी लारता ने पसे वने में पापा ने मम्मी की सहायता करता अने थी पर धीरे धीरे धीरे मोड़ी प्रोग्रेस हुई थी कि नहीं एक समय आई हो के ऊपर आज मतलब ठीक हो।
0: चलो अच्छी बात है आपके भाई के पापा मम्मी खूब सहायता की दी आप तो, कभी कभी तो पापा आपने मारिया से कोई ना कोई गलती की दी भाई?
1: मारिया तो वही यार तो कोई याद आता नहीं है, मतलब शायद मन लागे कदे मारो पापा कदे मारो ऊपर हाथ नहीं उठाइयो क्योंकि ओपे ऐसी शरारत करता ही नहीं था कि हाथ उठावारी नौ बतावे।
0: चलो आपरे स्कूल में जब मनवा जाता कतराक दोस्त आपरा ने आज तक कौन आपरो दोस्त बनियोड़ो आज भी है?
1: पहला मारे एक खेमचंद करीने एक मास्टर ते रिटायर्ड हुआ वो मारा दोस्त तो वो होतप्रे में रहे ने वो भी रिटायर्ड हो चुको है।
0: अच्छा,
1: वो मारो मन्ना आते जीवन मारो जाता भी चलो तो
0: बस आप एक ही दोस्त और भी दोस्त था
1: एक
0: दोस्त। स्कूल में बनता एक दोस्त
1: राखियो एक दोस्त ओपे ज्यादा वने में नहीं रही गरीबी स्थिति में दोस्ती ज्यादा नहीं ओपे बड़े मेस था का ओपे पढ़ाई करो ने थोड़ा उन्नति करो तो मतलब माँ बाप रो सारा बने हको बस अपनी उम्मीद थी।
0: चलो आप बताओ आप बोलिया कि भाई मारा एक ही दोस्त तो स्कूल में बनता जरे मास्टर आपने क्या रखता स्कूल में मार साहब?
1: हाँ स्कूल में बनता जरे मास्टर तो व्यवहार अच्छो तो क्योंकि ओपे कोई शरारत अतरी करता नहीं था जो अतरी नौबत आवे स्कूल में के ऊपर मास्टर अपने ऊपर हाथ उठा को अपने मारे के एरो कोई एरो संजोग बनियो नहीं ने ओपे सीधा था, यूं तो देखा जाए तो सीधा था
0: जी।
1: कोई द्वारा ओपे उद्यम करता नहीं था इतना मास्टर तो व्यवहार अच्छो तो।
0: चलो अच्छी बात है, मतलब हर मार साहब आपने सहायता करता तो क्या मार साहब आपने अच्छा लगता?
1: अच्छा तो टीकरे ने मास्टर था वे बहुत बढ़िया था ने गणित बढ़ाता वे ने बहुत अच्छा उन्होंने व्यवहार था
0: जी। आज भी आपने मले के तो आप नमस्ते मस्ते करो कि नहीं करो उन्होंने?
1: हाँ मले ये वे वक्त आप सब्जी वब्जी लेवा जाओ सब्जी मार्केट में मले तो उन्होंने रोम रोम करो चरण स्पर्श करे उन्होंने आशीर्वाद लो
0: जी। आप बताओ कि पहला पढ़ाई में और आज की पढ़ाई में कतरा अंतर है?
1: हाँ आज की पढ़ाई में ने पहला री पढ़ाई में खूब काफ़ी अंतर है। पहला री पढ़ाई ए रीति के मतलब जो भी सवाल जो के गणित रहा के कोई जोड़ बाकी रहा तो वह मूड़े थी करे न बतावता ना, आजकल का है कि वे बतावा में आज रहा छोरा जरा कमजोर है।
0: अच्छा तो मतलब पढ़ाई में आजकल का बच्चा कमजोर रही हूँ?
1: पहला जो उंगलियों ऊपर हिसाब जो पे मुख जबोनी करे ने गुणा भाग करे ने जो करता वो नहीं है आजकल उन्होंने सोचा मैं या तो मोबाइल रो सहारा लिए तो के कोई मतलब लिखा पढ़ी रहो उन्होंने मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं करेक्टता है।
0: मतलब आपने पहला पाड़ा अच्छा याद था?
1: हाँ पहला पाड़ा घना याद था, पाड़ा वाड़ा है गिनतियों बिनतियों आरी याद थी।
0: मतलब पहला बच्चा मतलब कोई भी सवाल हल करना था तो उंगली माते हिसाब करता और आज मतलब कोई चीज रो सहारा उन्होंने लेना पड़े।
2: श्रोता बंधुओं, अपने मेहमान रणछोड़ जी बारोट जो है अपने अपना जीवन रा अनुभव बता रहा है और भी अनोर अनुभव है जीवन रा वन बारे में जानकारी लियो अनोर का जिंदगी रा पड़ाव था वन बारे में जानकारी लियो। हमें आपको एक छोटो सो ब्रेक लेना चाहो। ब्रेक ती पहले एक अपील है आपती कि आप रमायती भी कोई आप रे समाज रा रीति रिवाज अपना तजुर्बा और कोई समाज री कुरुति माते बात करना चाहे तो रेडियो रे नंबर माते जरूर मैसेज कर जो। रेडियो रे नंबर है 94 14 15 14 15। आप सुन रहा हो रेडियो मधुबन, हम सुनता रहो मुस्कुराता रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माइसेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माय चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रिमाइंडर रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोता और स्वागत है। अने अपने मेहमान रणछोड़ जी बारोट है, उन्होंने भी स्वागत है। तो रणछोड़ जी ने मैं पूछो हूँ कि आप बताओ आपकी नौकरी कदे लगी थी।
3: सन 1978 में मारी सर्विस लगी थी।
2: मैं आपने पूछू रणछोड़ जी कि आपकी शादी नौकरी लगवा थी पहला हुई या बाद में हुई।
3: मारी शादी नौकरी लगवा बाद में हुई जी।
2: आपने शादी का साल याद नहीं है?
3: नहीं है याद।
2: तो आप नौकरी लगा था तो वो सन तो याद है आपने?
3: हाँ वो मन याद है।
2: एक साल बाद हुई शादी आपनी?
3: हाँ हमारी करीबन हाँ एक डेढ़ साल बाद शादी हुई थी। सन यू हजमो के 78-79 जी 80 आसपास भी शादी शायद।
2: अच्छा 80 आसपास शादी हुई है, ठीक है। तो आपने जो धर्मपत्नी है भाई भनियोड़ा ताक नहीं था?
3: हमारी धर्मपत्नी अनपढ़ है, पढ़ियोली नहीं है। अच्छा। अंगूठा लगा रहे जी भी
2: यारों ने लागो आप तो नौकरी करता हैं छोरी अन भणियोड़ी है तो यार लागो नहीं कि भाई के मुँह के अनपढ़ थी शादी करूं।
3: पहला एरो है कि आजकल तो मतलब जो भी शादी बाजी करे तो सब अपने दुल्हन ने पसंद करें करे। पहला वो जमानो नहीं तो पहला जो भी शादी हुई थी वे माँ बाप करता वॉइस ओपन करना पड़ता। पहले माँ बाप हमारी शादी की थी जी जी। वो मैंने मतलब एक री तो
2: चलो अच्छी बात है। आप कहना है भाई के पहला जो शादी हुई थी तो माँ बाप जो पसंद करता इस आज के जमाना में तो लड़का खुद पसंद करे लड़का लड़की ने वेरो सिस्टम नहीं तो ठीक है। हमें आप बताओ आपके परिवार में आपके कतरा बच्चे हैं?
3: हमारे बे बच्चा ने एक बच्ची है।
2: बे बच्चा आपने कहा करे और बच्ची कहा करे?
3: एक बच्चों मारे दुकान करे रियो है जी। नहीं एक मारे सीआईटी कॉलेज में लैब असिस्टेंट में काम करे रियो है।
2: दुकान वाला कानों में सीआईटी कॉलेज वाला कानों में?
3: दुकान वाला नाम में शैलेश कुमार ने सीआईटी कॉलेज में करवा हितेश कुमार है।
2: सीआईटी कॉलेज में वे क्या करे हैं?
3: वो सीआईटी कॉलेज में लैब असिस्टेंट रो काम करे रियो है बटे।
2: चलो अच्छी बात। तो आपने तीन ही बच्चों ने आप बनाया बच्ची ने बनाई थी?
3: हाँ तीनों ने पढ़ाया मैं जी। बी बच्चा तो हमारा मैट्रिक पास है ने बच्ची है वह हमारी नाइन्थ पास है।
2: अच्छा, बच्ची की शादी हुई या गरेज है?
3: नहीं बच्ची की शादी हुई है अहमदाबाद में की दी है उन्नी शादी उनने भी बच्चा है जी। एक बच्चो भी पौ साल करीब ने बीजो है वो अभी बे तीन महीना रो है।
2: तो मैं आपने पूछो बच्ची ने आप धक्के क्यों नहीं बने? आजकल तो कह भाई बेटियों ने खूब पढ़ावनी जो फोने
3: बच्ची ने पढ़ावारी घड़ी कोशिश की थी बच्ची रो मन लास्ट में जाए ने भनवारो में थोड़ा ऊस हो तो ने वड़े आगे पढ़ाई करवाती इनका कि जो पसे वह पढ़वास नहीं चाहती तो उसे क्या करे उस।
2: चलो श्रोता बंधुओं अपने रणछोड़ जी अपना जीवन का पढ़ावरे बारे में बात बता रहा है कि ये रेलवे में 10वीं पास करें नौकरी लगा था और आबरूड में नौकरी लगा था और 38-32 साल की सर्विस करें एंड रिटायरमेंट हुआ है और आज एक घरीज है अनोर अभी बच्चा है एक बच्ची है बे बच्चा एक बच्चा अनोर सी आई टी कॉलेज में है और बीजो बच्चों दुकान चला है तीसरी बच्ची ने भी है शादी कर दी थी पर वंते पहला पढ़ा वाली कोशिश की थी पर बच्ची नहीं बनी, वो अलग बात है। विद्या करनी जीवन में वह करनी वह ठीक है। और अनोर जीवन भी मतलब एक मध्यम वर्गीय बीती तो यूँ नहीं भाई को खादो पीदो परिवार वे गरीब वर्ग तो पांच छः भाई बहन था तो एरो पालन पोषण भी मध्यम वर्गीय हुआ था ठीक है। श्रोता बंधुओं अपने रणछोड़ जी बारोट जो अपने मेहमान है वे अपना जीवन रहा अनुभव अपना तजुर्बा अपने बता रहा है और भी अनोर बारे में आप बात करें पर एक छोटो सो ब्रेक लो, ब्रेक के बाद में फिर अनोरा तजुर्बा जानला। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनता रहो मुस्कराता रहो।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: लाइफ इज अ बुक, जीवन एक बहुत सुंदर किताब है। रीड इट, उसको पढ़ो, है ना। कुछ एक अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़नी चाहिए। एक किताब रिसेंटली जो मैंने पढ़ी है और वो है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी। और एक और किताब मुझे अभी रिसेंटली बहुत अच्छी लगी थी, एंड दैट वाज हु वुड क्राई व्हेन यू वुड डाई। जब हमारी मृत्यु होगी ना तो कौन कौन लोग रोएंगे। फिर मैं किताब पढ़ने लगा तो मुझे ये एहसास हुआ, मृत्यु के नजदीक जब हम हैं और अगर हमने अपने लाइफ को रिवाइंड करके देखा, अगर हमारे जीवन के प्रति हमारी बहुत अच्छा पॉजिटिविटी आया तो मींस माय लाइफ इज अ वेरी रियल सक्सेस। हमें इस जीवन को देखकर खुशी में रहना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एक बातों को फॉलो करना है। हो सके ना तो बीच बीच में उपवास करने का। कौन सा उपवास करना है? कोई शरीर को कष्ट देने की बात नहीं है, लेकिन उपवास करना है दो बातों का, और एक है न्यूज़पेपर्स का। हफ्ते में एक दिन न्यूज़पेपर को थोड़ा बंद करो, हफ्ते में एक दिन टीवी को थोड़ा बंद करो, और हो सके तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। मैं आपको कुछ एक अच्छे और किताबों का सजेशन करूंगा, अगर हो सके तो वो किताबों को जरूर पढ़ना। एंड दैट इज नंबर वन इज इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा, जो आपको ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से मिलेगा। इटर्नल वर्ल्ड ड्रामा रिटन बाय आदरणीय जगदीश भाई जी, बहुत अच्छी किताब है। एक और किताब मैं आपको सजेस्ट करूंगा और वो है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये भी किताब हो सके तो आप जरूर खरीदना और पढ़ना। और एक जो सबसे अच्छी किताब मुझे लगी है वो आप जरूर पढ़ना, और वो है आदिदेव ब्रह्मा। हिंदी में अवेलेबल है, और वो है ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और जैसे जैसे आप ये किताबें पढ़ेंगे आपको ये समझ में आएगी कि यस, दुनिया जो है किस तरफ बढ़ रही है, और कैसे ये दुनिया परिवर्तन हो रहा है, और कैसी एक सुंदर दुनिया की स्थापना।
2: ब्रेक के बाद में अपना समाज कार्यक्रम रामायण रेडियो मधुबन ने सुनने वाला सगला श्रोता और स्वागत है ना अपने मेहमान रणछोड़ जी बारोड, जो सिंगा कॉलोनी सातपुर में रहे है, उन्होंने भी स्वागत है। तो मैं अपना जीवन का और भी अनुभव है उन्होंने बारे में जानकारी लो हूँ। रणछोड़ जी, मैं आपने पूछू हूँ कि आप बताओ आपने जीवन रमाए कोई एरो खुशी रो पल बताओ जो आपने खूब खुशी हुई है।
3: खुशी तो मारे नैन को बच्चों उन्हें एक बच्चों हुआ तो वने वक्त पर मुझे ज्यादा खुश हुआ तो, क्योंकि तो एक दादा व्यवहार हो अपन उमंग थी ने उत्साह तो वह खुशी मैंने सबसे ज्यादा जीवन में लगी।
2: नैन का बेटा रहे बेटा हुआ जरे आपने खूब खुशी हुई थी, बेटी बेटी तो आप खुश नहीं रहता?
3: बेटी बेटी तो भी खुश होता है, वो तो भगवान की मर्जी है। बेटी वे के बेटा वाले पहले मतलब बच्चों कोई भी बेटा तो खुश है। आज भी मारे बे छोरो और बे छोरी है तो बड़ो खुश हूँ। हाँ। नमो मारो जीवन मैं बच्चों रहा खेले कूदे ने वनो हाथे मारो जीवन पास वे रही हो, आप बड़ी बड़ी खुशी है। जीवन एक सबसे बड़ी खुशी है कि वनो हाथे मुँह रह रही हूँ ने वे माँ ने दादा दादा करे तो मन बहुत अच्छा लगे।
2: तो दादाजी उन्होंने फेरवा ले जाता भी कड़ी
3: फेरवा ले जाओ बाहर कटे जानो तो हाथे हाथे ले जाओ अपना बच्चा तो नहीं जिद करे नहीं आवे
2: बच्चा घोड़ा बनाना अपने फेरवे माते बेन घोड़ा बनाना
3: घोड़ा बड़ा तो खैर नहीं बनाता है यार नौबत आई है घोड़ा बना वाले तो बाकी ठीक है। उन्होंने मनोती प्रेम खूब राखो अपे ने बच्चा भी अपना खूब प्रेम दादा दादा करता दादा दादा आवे अपने पे
2: अच्छी बात है। तो आपरे बेटो और बेटियों भी है तो अच्छी बात है। बेटियों हमेशा मतलब घर ही रौनक वे बेटियों और बेटियों मतलब जन घर में वे वन घर में लक्ष्मी रवास वे है तो बेटियों है तो बहुत खुशी की बात है। पर हमें आपने पूछू हूँ कि आपरे जीवन रमाए खुशी रो पल तो बतायो, हमें आपरे जीवन में एरो कोई पल बताओ जनते आप खूब दुखी हुआ वो।
3: मारा सबसे बड़ा भाई साहब था वे ऑफ हुआ जरे मने खूब ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वे मने ज्यादा शरारता ने प्रेम रखता मारे ऊपर एले दुख तो वने दार हुआ तो मने ज्यादा कि मारो भाई आज वेता तो आज वनो रे आशीर्वाद ठीक रहे तो
2: बे भाइयों ने जोड़ी टूट गई।
3: हाँ टूट गई वे क्योंकि वे मारे पास रहता वटे जनते ज्यादा प्रेम तो
2: देखो भाई भाई तो बिल्कुल दुख वे से और परिवार रो एक मेंबर जाए तो हर एक ने दुख हुए तो मोनो आपरी बात हमें आप बताओ आपरे जीवन में आप कड़ी ना आदर्श मोनो।
3: हाँ मुँह मारे माँ बाप ने आदर्श मोने नोने उन्होंने राह ऊपर आले रियो आज भी वही से अपना रवैयो।
2: जी जी आप अपने माता पिता ने आदर्श मनो रिया हो कि उन्होंने आशीर्वाद जा आज आप फलतो फूलतो परिवार है और आज आप अच्छा मुकाम माता हो। ठीक है, आप बताओ आपरे जीवन रमाए आपरे धर्म पत्नी रो कतरो सहयोग रियो?
3: अपने धर्म पत्नी तो ये रो है कि ओपे पहला नौकरी करता
2: जी।
3: नौकरी करता तो बीबी तीनदार बारे रहता
2: जी, जी,
3: वने वक्त पर अपनी धर्म पत्नी पूरा परिवार ने लेन मारे भी बच्चा था ने बच्ची थी अब वन कने रीते वा राखती वन सहयोग तो मारो खूब ज्यादा है क्योंकि धर्म पत्नी घरे ने मु बीबी तीनदार नौकरी जाता मालगाड़ी हलारता जो टेका है घर धर्म पत्नी से पूरा घर हम भरती।
2: आज वे रेडियो पर होबले रही आपने तो आप उनका संदेश देना चाहो अपने वास्ते का मैसेज छोड़ना चाहो?
3: मारे पत्नी रो खूब सहयोग रियो ने आज दिन तक भी सहयोग है क्योंकि अने उम्र में पत्नी अपनो सहारो है ने ओपे पत्नी रो सहारो तो एक बीजारो सहारो है ने पहला भी अने बिचारे खूब तकलीफ देखी है। आदर्श ये है कि मतलब मारी पत्नी अगला जन्म में अपनी जोड़ी वाइस मले अत्री मारी उम्मीद है।
2: चलो भगवान ने आप प्रार्थना करो रिया भाई के जो आपकी धर्म पत्नी है वह अगला जन्म में आप बने। ठीक है, मुझे भगवान ने क्यों वही कहना जोड़ी पासी मिला अगला जन्म। हमें आप बताओ आप रिटायरमेंट हुआ हमें आप अपना जो वो समय समाज सेवा स्तर आप कतरो योगदान देना चाहो?
3: समाज में जाओ पे ना कोई सहयोग हुए तो उन्हें लायक तो पे करो बाकी अपनो आदर जीवन का है कि एक छोटा बच्चा रे दुकान है वड़े में बैठ ने थोड़ा टाइम पास करो ने हो जवार थोड़ो फरवारो काम करो जाके अपना स्वास्थ्य अच्छो रहे।
2: आज आपकी उम्र कितनी हुई है?
3: मारी उम्र 63 रनिंग है जी।
2: 63 साल हुआ आपकी उम्र ने फिर भी एकदम फिट है शरीर अन्नो का राज है?
3: अन्नो राज तो है कि ओपे ज्यादा अपने मतलब चिंता ने दूर भगवान की कोशिश करो चिंता अपने पर आवे तो ओपे अपनो माहौल चेंज करे दो तो चिंता है अपने महसूस नहीं हुई थी बस अरे वो अपने कारण है।
2: ठीक है, और क्या मतलब है कि आप कभी चिंता नहीं करता बिल्कुल फ्री मूड में रहो अन वास्ते आप फिट हो शरीर थी। चलो अच्छी बात है, हमें आप बताओ आज आपने रेडियो पर खूब मन खोबले लिया है तो आप सबने का संदेश देना चाहो?
3: सबने वो संदेश को देखो जीवन में दुख सुख तो आवतो रहे ने जीवन है एक दफे तो मतलब इंसान जानो से वो तो सुनिश्चित है अने करतो पे हमेशा खुश रहो ने हंसता रहो बीजो ने हसावो तो वो अपने जीवन में अपने भी मतलब फिटनेस रही ने सामने वाला भी मतलब फिटनेस रही ओ मतलब मारो संदेश है ने हमेशा आदमी ने खुश रहना चाहिए। देखो उतार चढ़ाव दुख सुख तो दुनिया में आवता रहा ना आवता रही ने जाता रही अने थी घबरावारी बात है नहीं है।
2: तो श्रोता बंधुओ अपने मेहमान रणछोड़ जी एक संदेश देना चाहे बेटियों बारे में तो बेटियों का वे है वन बारे में आपने बता रहा है तो एक जो एक संदेश दे रहा है आप सुनो।
3: देखो बेटो है चाहे बेटी है बेटी भी अतरो काम करे जितरो बेटो करे आज रे जमाना रम है ने बेटी वे तो बड़ी खुशी की बात वेणी खुश वेणो सी जे अने आरो एक संदेश दे रियो आस की एक बूंद सी होती है बेटिया स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटिया रोशन करेगा बेटा तो एक ही कुल को दो दो कुल की लाज होती है बेटिया कोई नहीं है दोस्तों एक दूसरे से कम हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटिया कांच की राह पर ये खुद ही चलती है रहेगी औरों के लिए फूल बोती है बेटिया बेटी पराया धन होती है यह हम सुनते आए दर्द विदाई का क्या होता है आज समझ पाए गम खुशी का रिश्ता कैसा यह अजीब है भाई हमारी परछाई हमसे ले रही है विदाई।
2: श्रोता बंधु अनोर एक कविता भाव कह रहा है कि बेटियों एक कुलरो ने दो दो कुलरो नाम रोशन करे है और बेटी रो दुख का वे वो वापिस जोड़े कि बेटी अर घरती विदाई वे तो ना माँ बाप जोड़े बेटी घरती विदाई हुई अन्नी कैरी कैरी मतलब उन्होंने दुख लागे अने अलावा बेटियों अपने घर में लक्ष्मी रा अवतार है तो बेटी वे तो खुशी मनाओ और बेटो वे तो खुशी मनाओ घनी ठकोने का वे कि बेटी रो जन्म वे જ્યારે હુંપડો બજાવે અને બેટારો જન્મ વે જ્યારે વે થાળી બજાવે તો આપણે એરો નહીં કરનો બેટીરો જન્મ વે તો બી થાળી બજાવણી હે ઓર બેટારો જન્મ વે તો બી થાળી બજાવણી હે તો આપણે મહેમાનને કહો કે આજ આપ રેડિયો મધુબન ઉપર આપણા જીવનના પડાવ બતાવ્યા હે તો આપને કેરો લાગી રહ્યો
3: મને ખૂબ અચ્છો લાગો હે ને હંમેશા મારો એક સંદેશ હે કે બેટીઓથી બી અત્રો પ્યાર કરનો જોઈએ જો બેટોથી કરો કેમકે બેટી આજકાલ તો મતલબ ગવર્મેન્ટ બી બહુ સહાયતા દે રહી કે બેટીઓને અચ્છી પડે તો નોકરી બી અચ્છી મળી જાય બેટો કરતો પહેલાં બેટીઓને મળે હે તો પછી કા હર્જે આપણે બેટી પેદા કરવામાં રોવા ને રતન કરવાની કોઈ જરૂરત નહીં હે મતલબ બેટી બી ને આવે જેટલો અત્રો સન્માન દેણો થઈ જાય
2: ચલો અચ્છો સંદેશ હે કે ભાઈ બેટી ઘરમાં આવે તો બી વણીને માન રાખો બેટો જન્મ વે તો બી મનો માન રાખો અચ્છી વાત હે તો શ્રોતા બંધુઓ અમે આપણે મહેમાન રણછોડજી બારોટ જો સિંગા કોલોની સાતપુરમાં રહી રહ્યા હે રેલવે સર્વિસથી રિટાયરમેન્ટ લીધો હે ઓર આપણને જીવનના પડાવ બતાવ્યા હે અને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હે અને રેડિયો મધુબન ખૂબ આભાર પ્રકટ કરે હે આપણો અમૂલ્ય સમય રેડિયો મધુબન વાસ્તે આપ દીધો હે તો આપણને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ હે ઓર હું કેસી જીનગર અમે વાતો તો આપો ખૂબ કરે હે કહું પર સમય દેખતા ખાતર હું આપની વાણીને વિશ્રામ દેઉં હું ઓર આગલે હપ્તે ફેર એક અલગ ટોપિક ઉપર વાત કરી હું આપ સુન રહ્યા હો રેડિયો મધુબન સુનતા રહો મુસ્કરાતા

0: नरेंद्र मोदी जी के मिशन लाइफ के संकल्प को आप सजग रहकर मजबूती दे सकते हैं और रोजाना के कामकाज में कुछ आसान उपायों से अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं। पौधों, फर्श और वाहनों आदि में पानी के उपयोग के लिए होस पाइप या पाइप के बजाय बाल्टी का उपयोग करें। एसी और आरओ से निकले पानी का पुनः उपयोग करें। जल इकाइयों को रिचार्ज करने के काम को बढ़ावा दें और औरों को भी प्रेरित करें। सब्जियों को साफ करने के बाद पानी का पुनः उपयोग पौधों को पानी देने या ऐसे किसी अन्य कार्यों के लिए करें। घर, स्कूल और कार्यालयों में वाटर हार्वेस्टिंग बॉडीज का निर्माण करवाएं। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अपनाइए। मिशन लाइफ से दुनिया बेहतर बनाइए।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: Radio Madhuban 107.8 FM. Sunte raho, muskurate raho. Sunte raho, muskurate raho.
1: Sangeet. संगीत के बारे में क्या कहें, जैसे सब कुछ संगीत में समा जाता है। स से जैसे पूरी सृष्टि ही संगीत है, ग से जैसे हर ग्रह नक्षत्र तक वो म्यूजिक, वो संगीत, वो सुर पहुंच जाते हैं। त की बात करें तो शायद तीनों लोग ही एक साथ झूम उठते हैं जब ऐसा संगीत उत्पन्न होता है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो दूर दूर से गोपियां दौड़ी चली आती थी। क्या जादू है इस संगीत में। कहते हैं तानसेन जब गाते थे तब बादल भी गरज उठते थे, तब दिए भी जगमगा जाते थे। इस संगीत के जादू को जीवित रखते हैं कई ऐसी हस्तियां हैं भारत में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी आपको मिलाएं उन सितारों से जो कुछ चमक रहे हैं और कुछ जल्द ही संगीत के आसमान में बहुत ऊंचा स्थान पाने वाले हैं। आज हम आपके सामने एक और गेस्ट, एक और मेहमान को लेकर आए हैं जो कि संगीत के ऐसे ही जगमगाते सितारे हैं, जिनका नाम है सोम जी, जो कि आए हैं नेपाल से। उनसे बातें भी करेंगे और उनके गीत भी सुनेंगे। बहुत मधुर आवाज है, बहुत कमाल का गिटार बजाते हैं। सोम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू आरसी, थैंक यू सो मच।
1: सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने आपका पूरा नाम, आपके घर में कौन कौन है एंड आप क्या करते हैं।
2: अच्छा, नमस्कार, मेरा नाम सोम गुरुंग है, मैं नेपाल से हूं और नेपाल की बहुत सुंदर नगरी जिसे पोखरा बोलते हैं, जहां बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारे टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, उसी जगह से मैं हूँ और मेडिटेशन करते हैं, अपने जीवन में कुछ नई जिंदगी, नए नए अनुभव करते हैं, तो पहले से ज़्यादा मेडिटेशन के बाद बहुत अच्छा अनुभव करते हैं।
1: ओके, ठीक है। और जैसा आपने बताया सोम जी, मेडिटेशन के आप एक्सपीरियंसेस के बारे में तो आपसे बात करेंगे ही, म्यूजिक के बारे में कुछ बात करेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि म्यूजिक का कार्यक्रम है तो चलिए पहले आपका एक गाना सुन लेते हैं, उसके बाद लौट कर आएंगे और आपसे करेंगे संगीत के बारे में खूब सारी बातें। रेडियो मधुबन 90.4 FM पे दोस्तों, आइए अगला गाना आप सुनेंगे सोम जी की आवाज में। तो पहला गाना आप जो हमारे दोस्त जो आपको सुन रहे हैं उन्हें कौन सा सुनाना चाहेंगे?
2: So, any songs, आपकी चॉइस में?
1: मेरी चॉइस तो वैसे बहुत सारे गाने पसंद है, सोचना मुश्किल है, क्यों ना अच्युतम केशवम से शुरुआत करें।
2: हाँ, श्योर, बहुत प्यारी गीत है।
1: तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अच्युतम केशवम, ये सुंदर सा भजन सोम जी की आवाज में। लौट कर आएंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन पर लौट कर आ गए हैं हम। संगीत की ये सभा लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं सोम जी, जिनकी आवाज में आपने सुना बहुत सुंदर भजन अच्युतम केशवम। ये गीत सुन के मुझे तो ऐसा लगा कि शायद एक अलग ही माहौल बन चुका है और अब बोलने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ऐसे गीत सुन के सच में ऐसा लगता है कि बस सुनते रहें और कुछ ना कहें। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और सोम जी से और ढेर सारी बातें करनी है, तो आइए फिर से उनका स्वागत करते हैं। सोम जी, आप जैसा आपने अपने बारे में तो बताया, मैं चाहूंगी आप अपने संगीत की जर्नी के बारे में बताएं। कब से आपको संगीत पसंद था या कब से शुरुआत हुई आपके सफर की?
1: अच्छा, संगीत के बारे में, जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल में हम गिटार बजाते थे, उतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो मेरे स्कूल के एक फ्रेंड बहुत अच्छा गिटार वो प्ले करता था, तो उसके हिसाब से जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार का साउंड मैंने सुना, तो वो गिटार के जो साउंड है वो मेरे दिल को छू गई। तो स्कूल में एक वैकेशन, समर वैकेशन था उस टाइम पर, के एक गिटार खरीद करके तो थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में एक महीने के ट्रेनिंग के बाद थोड़ा थोड़ा गीत बजाने और दोस्तों के साथ थोड़ा हम करने, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपरेशन हो गई। तो ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके करके, कोई टीचर्स तो नहीं है हमारे, फिर भी दोस्तों के साथ टीचर्स के वीडियोस देख करके, तो ऐसे ऐसे ही हमने बहुत मेहनत की और गिटार से शुरू किया। तो थोड़ा बहुत ड्रम्स भी बजाते हैं, कीबोर्ड थोड़ा बहुत करते हैं, तो स्पेशलिटी मेरा गिटार ही है। तो मैं अभी लगभग 20 साल से ज़्यादा हो गए मेरे गिटार बजाए हुए, लेकिन ऑन एंड ऑफ, बीच में छूट भी गए थे कुछ ऐसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम के हिसाब से। तो अभी फिर मेडिटेशन के साथ साथ अभी म्यूजिक भी अभी जुड़ चुके हैं, तो अभी मैं ये भी करना शुरू किया हूँ।
0: क्या बात है। और जब आपने म्यूजिक शुरू किया, आप, क्योंकि यूथ की बात करें तो उन्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है तो करियर बनाना चाहते हैं, तो आपने भी अपना करियर बनाया म्यूजिक में?
1: जी, करियर जब स्कूल से आउट हुआ तो उसके बाद में छोटे मोटे प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा प्रोग्राम के लिए तैयारियाँ करते थे, तो फ्रेंड्स के साथ जुड़ जाते थे। तो बाद में जब थोड़ा थोड़ा जब मैच्योरिटी लेवल आई, तो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन से मिलना हुआ, तो उनके साथ अच्छे अच्छे गाने कंपोज करने लगे। तो कभी कभी ऐसे ही बार में, क्लब में, तो ऐसे प्रोग्राम्स के लिए ऑफर आते थे, तो उधर जा करके थोड़ा बहुत कर लेते थे। तो उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा हमारी जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो इंक्रीज होती चली गई। तो बाद में एक एज बैंड बोल करके हमने, नेपाल में क्वाइट पॉपुलर है ये यंगस्टर के बीच, तो उस बैंड में काम करने का मौका मिला। तो हमने जो काम किया, तो उसके हिसाब से हम बहुत सेटिस्फाई भी है, लेकिन बीच के कुछ ऐसे ही पढ़ने के सिलसिले में, कुछ ऐसे ही स्टडीज़ के मामले से करके हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अभी बैंड तो कंटिन्यू है, फिर भी मैं अब्रॉड चला गया था, तो उसके हिसाब से थोड़ा डिस्कनेक्टेड रहा। फिर अभी ये मौका मिला है, तो अभी मैं अपने खुद के लिए मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कंपोज करता रहता हूँ अभी। तो अभी थोड़ा तीव्र रूप से थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ अभी।
0: तो मतलब आपका जो बैंड आपने बताया, तो उस समय आप लोग परफॉर्मेंस करते थे स्टेज पे और सब जगह, तो मैं आपसे ये चीज़ ज़रूर जानना चाहती हूँ, जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं वो कुछ ऐसा करें बने, तो क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होती हैं जब हम एक बैंड की बात करते हैं, क्या स्किल्स इम्पोर्टेंट होती हैं वहाँ पे?
1: तो क्या है, म्यूज़िक इसको एक कला बोलते हैं, एक आर्ट बोलते हैं। तो कला के लिए एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बहुत ज़रूरत होती है, तो इसको हम शॉर्टकट में नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको फाउंडेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। तो फाउंडेशन तो आप, जैसे कि आपके घर के माहौल, जिस जगह पे आप रहते हो, जो आपके अंग संग के लोग हैं, इसके रंग भी आपको अवश्य लगते हैं। तो इसीलिए म्यूजिक में आगे बढ़ने के लिए अच्छे अच्छे जो पुराने म्यूजिशियंस हैं उनके गाने सुनने पड़ेंगे, तो कैसे वो कंपोज करते थे, क्यों ये गाने उस जमाने में फिर लिखे थे, बनाए थे 50 साल आगे, फिर भी अभी भी वो उतना ही प्रिय है, बहुत सुंदर है, लोग अभी भी उनको सुनना पसंद करते हैं। तो इसमें क्या है कि उन लोगों की जो डिसिप्लिन थी, एक बात से बोलते हैं आध्यात्मिक हिसाब से बोलते हैं, तो उसमें एक प्योरिटी थी वो कलाकार में, क्योंकि उन दिनों के कलाकार बहुत प्योर रहते थे। तो उन दिनों के कलाकार और आज के कलाकार अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत बहुत ये बीच में बहुत दूरी हो गई है, क्योंकि आज के आर्टिस्ट वो भूल गए हैं कि ये जो कला है इसमें अगर आगे बढ़ना है, लॉन्ग टाइम स्टेबल रहना है, तो इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है
0: जी।
1: सो आप हमारे टीचर्स, गुरु, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्ग लोग जो सिखाते हैं, उसको भी आत्मसात करते हुए अपने नेचर को सुधारते हुए अगर ऐसा करते हो तो ज़रूर किसी न किसी दिन ये ज़रूर रंग ले आएगी। ये छुपे नहीं रह सकते, भले देर हो लेकिन ये बहुत अच्छा कर सकती है।
0: जी जी, मतलब कि जो संगीत है उसके प्रति हमारी जो सच्चाई है, जो हम उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, हमारे दिल भी उसी में है तो दिमाग भी उसी में है, तो वो सच्चाई शायद बहुत ज़रूरी है।
1: जी।
0: सिर्फ अच्छा दिखना नहीं स्टेज पे, लेकिन उस फील में होना कि हम अपने लिए गा रहे हैं।
1: जी हाँ, दिल से,
0: दिल से,
1: दिल को छूना बहुत ज़रूरी है। जी,
0: और दिल को छूने के लिए दिल से गाना जरूरी है।
1: जरूरी है
0: जी, तो बहुत अच्छी बात है, अपने डेडिकेशन की भी कही समझी। आगे भी कुछ बातें करेंगे आपसे, लेकिन एक और गीत की ओर आगे बढ़ना चाहेंगे, तो अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अगला गीत मैं एक बार श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा एज अ मैंने आरुषि जी को भी बोला है कि थोड़ा टाइम की कमी थी तो मैं उतना प्रिपेयर कर नहीं पाया, फिर भी आज हम अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तो थोड़ी समय में पूरा ट्राई किया हुआ है, अगर कोई मिस्टेक्स आपको सुनाई दे तो भी इसको आप स्वीकार कर ले, अगर फ्यूचर में कोई मौका मिलता है तो आप लोगों को अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस करके, लोग अभ्यास करके आपको ज़रूर सुनाएंगे। तो अभी आपके लिए मैं कृष्णानी वाला गीत आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, बहुत प्यारी सॉन्ग है।
0: चलिए दोस्तों, इस प्यारे से गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में, और मैं आपको बता दूं कि वो गा भी रहे हैं और साथ साथ गिटार भी वो खुद ही बजा रहे हैं। तो आइए इस गीत को सुनते हैं सोम जी की आवाज़ में, रेडियो मधुबन पर सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: अपने मुस्कुराने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा दोस्तों, और गाने का भी, गुनगुनाने का भी, क्योंकि ये कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड जो हम आपके लिए लेकर आते हैं संडे को रात 8 बजे. आप भी जुड़ सकते हैं. अगर आप भी एक कलाकार हैं, आपको लगता है कि आप आसपास रहते हैं, आप हिस्सा बनना चाहते हैं इस कार्यक्रम का, तो आप हमें मैसेज भेज सकते हैं. नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. साथ ही मैसेज भेज के हमें ये भी बताइए ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है. सोम जी, जैसा आपने बताया कि आपका एक बहुत फेमस बैंड जो रहा नेपाल में, जो है अभी भी, तो क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम म्यूज़िक, हमें पसंद है, आपने कहा डेडिकेशन ज़रूरी है, बहुत प्रैक्टिस की है, लेकिन साथ में काम करने में या हम बहुत जगह परफॉर्म करने जाते हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं, और आप अगर आए तो आपने क्रॉस कैसे किए?
1: बहुत प्यारी क्वेश्चन है ये. जो मैटर है, हर एक को फेस करना पड़ता है इससे. तो नॉर्मली सबके लाइफ में तो ये तो स्ट्रगल तो करना पड़ता ही है. फिर भी अगर बैंड की बात करें तो, क्योंकि एक बैंड में नॉर्मली 5-6 से एक बैंड बनता है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है. तो 5 लोग होंगे तो 5 हेड होंगे उधर, उनके अपने विचार होते हैं, अलग अलग विचार होते हैं, संस्कार होते हैं. तो इसलिए तो जब ग्रुप में काम करते हैं तो थोड़ा संस्कार की बातें भी आती हैं. फिर भी
0: नेचर अलग अलग
1: होती है, उनके ग्रोन अप अलग होते हैं. तो फिर भी अगर आर्ट म्यूजिक की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत अगर हम स्पिरिचुअलिटी को समझ सकते हैं, इस ज्ञान को, तो इजीली इस समस्या को हम कोप कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है. पहले मुझे मालूम नहीं था इसके बारे में जब मैं बैंड में था, तो फिर भी मेरी नेचर क्या थी, मैं ओवर रिएक्ट नहीं करता था. तो दोस्तों के साथ मैं उनके साथ एडजस्ट हो करके उनको भी मनाता था. तो एज अ न्यूट्रल में रहकर, बीच में रहकर मिलाने की ट्राई करता था. तो थोड़ा बहुत ये इस नेचर से उनको भी थोड़ा बहुत लाभ हुआ. मैं कभी कभी गलत भी हो सकता हूँ, फिर भी वो भी ट्राई करते थे, हम भी ट्राई करते थे. क्योंकि जो भी हम स्टार्स देखते हैं, ये रॉक स्टार देखते हैं, सेलिब्रिटी देखते हैं, ये लोग ऐसे ही ऊपर नहीं पहुँचते. इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन तो होता है, ज़रूरत होती है. इसीलिए क्या लगता है अभी जो बोला मैंने कि थोड़ा बहुत अनुशासन, क्योंकि ऐसा जो टीवी में देखते हैं, जो वीडियोस में हम देखते हैं, उनका लाइफ ऐसा नहीं रहता है. वो लोग 4 बजे से आगे उठते हैं, उनके डेली लाइफस्टाइल ऐसी रहती है. एक दो मूवीज़ में, एक दो बार पार्टीज़ में देखते होंगे, लेकिन ज़्यादातर जितने भी अच्छे आर्टिस्ट हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं. वो बहुत मेहनत करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड करते हैं. ऐसे लोग ही सफल होते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ऐसा लगता है. इसलिए स्पिरिचुअलिटी को अगर हम कला से जोड़ेंगे, संगीत से जोड़ेंगे, तो ये बहुत प्रोडक्टिव भी होगी, सेटिस्फाइड भी रहेगा.
0: क्या बात है. और मुझे लगता है आपने एक लंबी जर्नी के हिसाब से, स्टेबिलिटी के हिसाब से बताया
1: जी.
0: क्योंकि सक्सेस भी है तो उतार चढ़ाव भी है
1: जी.
0: तो अपने आप को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है ऐसे समय में, जिसमें मेडिटेशन जो है बहुत मदद करता है,
1: बहुत मदद करता है,
0: जैसा आपने कहा
1: जी.
0: तो हम आगे भी आपसे कुछ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे. सोम जी, अगला गीत आप हमें कौन सा सुनाएंगे आज?
1: अगला कोई तो है जो.
0: ओके, चलिए तो ये गीत सुनते हैं ओम जी की आवाज़ में. और आपको कैसा लगा ये गाना, आप हमें ज़रूर बताइए कि गाना एंड गिटार सोम जी, क्योंकि दोनों प्ले कर रहे हैं इस वक्त रेडियो मधुबन के स्टूडियो में, तो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, हमें मैसेज करके बताइए 9414151415 पर, यानी कि 9414151415 पर.

0: बार फिर से लौट कर आ गए हैं हम. कार्यक्रम है मधुबन अनप्लग्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन. हमारे साथ है सोम जी, जो कि बहुत एक फेमस बैंड के मेंबर भी हैं और साथ साथ वो संगीत में कई लोगों को अब सिखा भी रहे हैं, तो कई जगह परफॉर्म कर चुके हैं, गिटार भी बजाते हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले करते हैं, साथ में बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी, तो उनसे आज हम बातें कर रहे हैं. सोम जी, जैसा आपने अपने बैंड के बारे में तो बताया, यहाँ पे म्यूजिक के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि म्यूजिक जब आप शुरू करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आपको कोई एक माहौल की ज़रूरत होती है या क्या लगता है क्या उस वक्त आपको ज़रूरत होती है?
1: जी, मेरे विचार से जब से मैंने गिटार पकड़ा है, ये गिटार एक मेरे कंपेनियन के जैसा है, एक फ्रेंड की तरह, क्योंकि लोग होते हैं, दोस्त भी ऑल द टाइम हम साथ नहीं रह सकते, लाइक परिवार भी हम साथ में नहीं रह सकते, लेकिन ये जो गिटार है, गिटार माना कला, इसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर हर एक इंसान कुछ ऐसी चीज़ों से है तो निर्जीव है, लेकिन इसमें बहुत सारे ये ब्रह्मांड की चीज़ इसमें समाई हुई है, तो इसको फ्रेंड बनाएंगे तो आप कभी अकेले फील नहीं करोगे. तो बाद में जब मेडिटेशन जब हमने लर्न किया, तो लगने लगा कि हाँ, स्टाइल तो एक ही है, ये स्थूल रूप में है और ये जो मेडिटेशन है ये अंदरूनी बात है. तो मुझे लगता है अगर कोई इसी हिसाब से कला में जुड़ जाता है, अगर एक फ्रेंड बना लेते हैं उस चीज़ को, तो वो भी उसी तरह आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेगी. उसके लिए आपके डेडिकेशन और आपके उस प्रति जो रिस्पेक्ट है, भावनाएं हैं, वो बहुत मायने रखती है. तो
0: लेकिन सोम जी, अक्सर ऐसा समझते हैं कि मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी ये एक एज के बाद ज़रूरी है, यूथ को क्या ज़रूरत है?
1: अभी तो मेरे हिसाब से लगता है कि यूथ को ही ज़्यादा ज़रूरत है.
0: अच्छा.
1: क्योंकि अभी जो संसार में हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ें अभी बन रही है, ये साइंस वाले, अभी ये डिजिटल दुनिया है, जो कुछ भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ क्या कर रहे हैं, मन को भड़काती है, डिस्टर्ब करती है, और हमारे जो ब्रेन है, जो मेमोरी है, उसकी पावर को ये घटाता है, तो इसको कोई ना कोई हार्म पहुंचाते रहता है. तो जिस तरह से आज लोग डिपेंडेंट हो गए हैं इन चीज़ों से, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, अब ये सोशल मीडियाज है, ये बहुत हमारी आत्मा की शक्ति को, मन की शक्ति को ये डिप्लीट करती है. तो मुझे लगता है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं रहते हैं, ज़्यादा डिपेंड रहते हैं स्कूल के, कॉलेज के स्टूडेंट्स, यंगस्टर्स ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहते हैं, क्योंकि इसके छूटने पर अगर किसी दिन हमारे पास मोबाइल नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो ये दिन क्या होता है उनके लिए ख़राब रहती है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि हर एक यंगस्टर्स अगर वो स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में अपना ले, तो एक अंदरूनी शक्ति जो खुद से इंजॉय कर सकते, खुद से बातें कर सके और अपनी एग्जिस्टेंस का वो खुद पता कर सके कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मुझे क्या करने हैं मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लक्ष्य उद्देश्य क्या है. तो अगर ज़िंदगी में ये बातें किसी को समझ में आ जाता है, तो वो संसार जीत सकता है, ऐसा मुझे लगता है.
0: बहुत अच्छी आपने बात कही सोम जी, और ये मुझे लगता है क्योंकि करियर हमारा जो हमें बनाना है या हम बना रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है. तो हर सिचुएशन को फेस करने के लिए, अपने मन को और ताकतवर बनाने के लिए आप मेडिटेशन साथ साथ कर सकते हैं, जैसा कि सोम जी भी प्रैक्टिस करते हैं. तो अगला गीत सोम जी आप हमें कौन सा सुनाएंगे?
1: अभी हमारे पास ओम जय जगदीश
0: जी
1: गाना है, तो मैं श्रोताओं को ये सुनाना चाहता हूँ.
0: जी। चलिए, तो हम ये गीत, ये आरती सुनते हैं, लौट कर आएंगे कार्यक्रम मधुबन अनप्लग्ड में. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.

0: घड़ी की आवाज तो कह रही है कि इस वक्त आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है, लेकिन दोस्तों मधुबन अनप्लग्ड कार्यक्रम लेकर आते हैं तो सुवादे के साथ आते हैं कि अगले हफ्ते फिर से जरूर आएंगे। आज हमारे साथ सोम जी जुड़े हैं जो कि बहुत बहुत सुंदर मेलोडियस आवाज में हमें एक दूसरी दुनिया की ओर लेकर जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज और डेफिनेटली ऐसी आवाज ऐसे गीत हो तो ऐसा लगता है कि अच्छा दिन भर कुछ और सोच रहे थे लेकिन अब मन फिर से करता है कि एक नई सोच की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मन पॉजिटिव, मन शक्तिशाली तो नया कुछ सोचने का दिल भी करता है ना दोस्तों। तो आइए सोम जी से जाते जाते मैं आपसे बस यही जानना चाहूंगी कि यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। कई बार जब हम अपने करियर में आगे बढ़ते हैं तो एक लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं कि हम, क्योंकि लेट नाइट भी है, पार्टीज भी हैं, दोस्त भी हैं और पैसे भी आने शुरू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा पीछे हो जाता है, छूट जाता है कभी कभी। तो आप क्या कहना चाहेंगे
1: इसके लिए? मैं अपना अनुभव बताना चाहता हूँ। तो कोरोना से आगे लगभग 3.5 साल मैं नेपाल के जेल में, हमारे ब्रह्म कुमारी के एक मेडिटेशन सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ से गवर्नमेंट से हमने स्वीकृत ले करके, तो वहाँ पर जाते हैं, उनको मेडिटेशन सिखाते हैं, रोज़ रोज़ उनकी समस्याओं की बातें, उनको मोटिवेट करते हैं। तो मैंने क्या देखा यंगस्टर में, तो ज़्यादातर जितने भी ये गलत कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, ये सब गलत खान पान और गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ों से दिल बहलाना और गलत संगत के कारण बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो अभी वहाँ भी जेल में अपने जीवन बिता रहे हैं। तो देखा तो उनको जब हम काउंसलिंग करते हैं तो हर एक यंगस्टर के पीछे वो एक अंदर से उनकी चाह तो होती है, फिर भी वो मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो इसलिए वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं, कोई शराब का, ऐसे जो गलत आदतें हैं इन चीज़ों का सहारा लेने से, क्योंकि उनकी जो खान पान है, खान पान गलत होने के कारण, एक घटना मैं बताता हूँ क्या हुआ था। तीन दोस्त मिले थे तो तीन दोस्त की मीटिंग हुई, तो मीटिंग होने के साथ क्योंकि वो गलत चीज़ खान पान करते थे तो होटल में गए, वो होटल में जा कर के गलत चीज़ खाए, शराब पी। वो खाने के बाद क्या हुआ, आजकल हर एक के हाथ में मोबाइल होते हैं तो मोबाइल में ज़्यादातर लोग गलत चीज़ ही देखते हैं और ये तो यंगस्टर लोगों की आदत जैसी बन गई अभी। तो उसके बाद क्या हुआ, उनमें जो अंदर गलत चीज़ वो सेवन कर रहे थे और गलत चीज़ देखने से उनके वो जो माइंड पे एक ट्रिगर हो गया, उनको वो चाह अंदर से निकल गया, वो क्या बोलते हैं, वो राक्षसीपन होते हैं ना अंदर से, वो निकलने लगे, तो उनके गलत विचार आने लगे, तो उन्होंने जाके ऐसे गलत व्यवहार किए, तो उसके हिसाब से वो अभी जेल में है वो लोग। तो मैंने देखा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में खान पान को सुधारते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, जैसा अन्न वैसा मन बोलते हैं, जैसा आहार वैसा विचार बोलते हैं, तो भगवान भी यही कहते हैं, ईश्वर भी यही कहते हैं, अगर आपके खान पान अच्छे हो तो आपके दोस्त, आपके संग अच्छे मिलेंगे। क्योंकि आपके खान पान अच्छे नहीं हैं, जहाँ भी जाओगे गलत चीज़ खाओगे तो गलत ही लोगों को आपको संगत मिलेगी, तो इसीलिए इन चीज़ों से बचना है तो सबसे पहले आपको गलत खान पान से बचना होगा। गलत चीज़ जो सेवन करते हैं, जो इस शरीर के लिए गलत है, जो हानिकारक है, ऐसे चीज़ों से बचना है
0: जी।
1: और जो हम देखते हैं टीवी में, मोबाइल में, जो अच्छे नहीं हैं, जो हम परिवार के साथ देख नहीं सकते, जो अश्लील है, तो ऐसे चीज़ें अगर ना देखें तो ये इसमें ही बहुत लाभ मिलेगा
0: जी।
1: और उसके बाद में संगत, आपके जितने दोस्त हैं उनको भी आपको विचार करना है, क्योंकि आपके पास चॉइस है करना ना करना, कैसे संग के साथ आप रहना नहीं रहना, ये आपके साथ चॉइस है। इसलिए ये तीन चीज़ों को आप यंगस्टर विचार करेंगे, इसको समझ पाएंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी
0: जी। थैंक यू सो मच सोम जी. और जैसे आपने कहा गलत हैबिट्स नहीं, तो अगर नशे की ओर या गलत और आदतों की ओर बढ़ते हैं तो जीवन में जो सपने हम जीना चाहते हैं वो शायद कहीं जाके ब्रेक लग जाता है वहाँ पे, जो नहीं होना चाहिए, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी हो. तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा. सोम जी आपने जो बातें कही जीवन की, वो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी विजडम है
1: जी.
0: तो हम ज़रूर इसमें से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे. जाते जाते आप हमें आखिरी आज के इस कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे?
1: तो आखिरी गाना ये मूवी का सॉन्ग है, शायद हर एक ने सुना हुआ होगा, ये आसियाना गीत. ये बहुत प्यारी गीत है, आप सभी श्रोताओं के लिए पेश करना चाहता हूँ.
0: चलिए ज़रूर सुनेंगे. बहुत खूबसूरत ये गीत सोम जी की आवाज़ में हम सुनेंगे. गिटार भी उन्होंने बजाया है, गाया भी उन्होंने है. और दोस्तों जाते जाते आपको रेडियो मधुबन का नंबर फिर से बता देते हैं, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम, अपने गाँव का नाम लिख कर हमें भेज दीजिए. नंबर है 9414151415, यानी कि 9414151415. संगीत को अपने जीवन में हमेशा शामिल रखिए. संगीत उम्र नहीं देखता, पर आप संगीत से जुड़े रहेंगे तो जीवन और खुशहाल होगा. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन

आकम खान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, माने आवे पिया जी हिचकी, मारो वादीलो चितारे माने आवे हिचकी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए संपर्क करावे हमारे टेलीफोन नंबर है 9001313752, 9001313752, ये हमारे टेलीफोन नंबर है। मधुबन रेडियो की तरफ से प्रसारण किया जा रहा है राजस्थानी लोकगीत आवे माने हिचकी। हमारा संगीत कला केंद्र है जहां हमारे संगीत बच्चे सिखलाई लेते हैं। बच्चों को संगीत सिखलाई के लिए हमारे को कमायचा, खड़ताल, ढोलक, हारमोनियम सिखाया जाता है। तो संगीत सिखलाई के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम में जरूर हमारे संपर्क करें। संगीत निर्देशक आकम खान

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

शांति। आज 14 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। और उसी पर बाबा ने बहुत सुंदर महावाक्य स्पष्ट किए हैं। रात कौन सी है, राही कौन है और थकावट किस में होती है। बाबा कहते ये कलयुगी अज्ञानता की अंधियारी रात है, जहां मनुष्य खूब भक्ति करते हैं, परंतु राही जो आत्मा है भक्ति करते करते भी थक गई है। तभी तो पुकारते हैं उस परमात्मा को कि आकर हमारी थकावट मिटाओ। थकावट किस बात से होती है, तो बाबा कहते जब बच्चे देह अभिमान के वश हो जाते हैं तो देह अभिमान ही थकाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो। देह अभिमान खाली थकाता नहीं है, बाबा कहते कभी कभी बहुत बर्बाद कर देता है। ये देह अभिमान का उल्टा नशा व्यक्ति को गिराता है। इसलिए बाबा बच्चों को बार बार कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनेंगे तो बाप को सहजता से याद कर सकेंगे और याद से ही सच्ची कमाई होती है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे याद की यात्रा में कभी थकना नहीं है। देह अभिमान के तूफान थकाते हैं, देही अभिमानी बनो तो थक दूर हो जाएगी। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सा संस्कार 21 जन्म की श्रेष्ठ तकदीर को बिगाड़ने वाला है। उत्तर है, अगर किसी में रूठने का संस्कार है, देह अभिमान ही तो रूठाता भी है। तो बाबा कहते अगर किसी में रूठने के संस्कार है, बाप से व पढ़ाई से रूठ जाते हैं तो 21 जन्म की तकदीर बिगड़ जाती है। 21 जन्मों की तकदीर बिगड़ जाती है। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे देह अभिमान के वश कभी भी उल्टा नशा नहीं चढ़ना चाहिए कि मैंने इतनों को समझाया, इतनी मदद की। देखो बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, फिर भी कितना निरहंकारी। इसलिए सी फादर, कितना सुंदर तरीके से बाबा समझाते, शिव बाबा इतनी बड़ी अथॉरिटी फिर भी कितना निरहंकारी है, इसलिए सी फादर फॉलो फादर। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों ने गीत सुना और जो योगयुक्त सर्विसेबल बच्चे हैं वह इसका अर्थ झट समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? हम रात के राही, अर्थात हम ब्राह्मणों की अब रात पूरी हुई है। कलयुगी अज्ञानता के अंधियारी रात पूरी हुई है। भक्ति मार्ग को रात कहा जाता है, क्यों? क्योंकि अंधेरी रात में तो लोग भक्ति करते हैं, भगवान को पुकारते हैं। आधा कल्प रात का पूरा होता है, हद का भी दिन और रात है, या फिर ब्राह्मणों का आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात होती है। इस समय जबकि बाप आते हैं तो अंधेरा है, प्रभात होने का पहला पूर है। संगम युग को बाबा ने कहा प्रभात होने का पहला पूर है, सवेरा हो रहा है, बच्चे जानते हैं। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे याद
की यात्रा में थक नहीं जाना। जैसे जिस्मानी यात्रा होती है, आगे पैदल जाते थे, बहुत धीरे धीरे बीच बीच में मंजिल बनी रहती है, मालूम रहता है हमको फलानी फलानी मंजिल पर ठहरना है। आगे बहुत श्रद्धा से पैदल जाते थे, उसमें बड़ी मेहनत है, अब यह तो बहुत सहज है। ये तो याद की यात्रा है, स्थूल यात्रा की तो बात ही नहीं है। इसको कहा जाता है सहज याद व योग। सिर्फ बाप को याद करना है, थकने का मतलब ही है, थकावट कब होती है, थकने का मतलब ही है देह अभिमानी बनना। जैसे ही देह अभिमान आया, थकावट शुरू होती है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, माया के विघ्न पड़ेंगे। बाबा कहते देह अभिमानी बनेंगे, माया के विघ्न भी पड़ेंगे, परंतु इसमें थक नहीं जाना है। थक जाने से देह अभिमान आ जाता है। बाप कहते बच्चे शरीर निर्वाह के लिए काम तो करना है, उसके लिए छुट्टी है। बाबा ये नहीं कहता काम धंधा छोड़ दो। 8 घंटा शरीर निर्वाह, 8 घंटा आराम, बाकी 8 घंटा इसमें दो। अभी तो पूरा 8 घंटा कोई देते ही नहीं, अंत में 8 घंटा तक रहेंगे। चार्ट को बढ़ाते रहो, यहां जब आकर बैठते हो तो याद दिलाई जाती है, जिसको तुम निष्ठा कहते हो। शुरू शुरू में योग को निष्ठा कहते थे। बाबा की याद में आकर बैठते हो, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यहां आकर याद में बैठना है, बाद में भूल जाना है। नहीं, ऐसे बहुत है, समझते हैं 5-10 मिनट योग करके उठे, परंतु बाप तो कहते हैं धंधा धोरी करते कहां आते जाते हो तो भी तुम योग में रहो। कहां गंगा स्नान आदि करने जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना, दुनिया में कहां भी जाते हैं तो राम राम जपते हैं ना। यहां तुमको कुछ सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। यहां कोई मंत्र जाप आदि सिमरना नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। ये बाप बच्चों से ही बात कर रहे हैं, तुम्हारा कल्याण ही है याद की यात्रा में, इसमें थकना नहीं है। याद में ही माया भी आती है, थकाने का अनुभव करती है तो देह अभिमान में ले आती है। तो बाबा कहे इसमें थकना नहीं है, इसमें तूफान बहुत आएंगे। तूफान कोई मिट्टी आदि के नहीं, माया के तूफान आने से क्या होता है, बुद्धि का योग टूट जाता है। फिर देह अभिमान में आने से धंधा दोरी बच्चे आदि सब याद आ जाते हैं। बाप कहते अब तो ये धंधा दोरी आदि सब खलास हो जाने हैं, तुम्हारे बच्चे वारिस बनने ही नहीं है, सब खत्म हो जाने हैं। अभी तो वारिस बेहद के बाप के खड़े हैं, हद का वर्षा मुर्दाबाद होना है। शाहूकार लोग समझते हैं अब बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा, फिर यह होगा। बाप कहते हैं अभी इतना टाइम नहीं है, ये दुनिया अपने अंतिम सांसों में चल रही है, तो बाबा कहते अभी इतना टाइम नहीं है, इसलिए दुनिया से बिल्कुल मोह हटा दो, नष्ट मोहा बनना है। ये तो कब्रिस्तान है, अभी भी देखो जहां जहां युद्ध चल रहे हैं सारी भूमि कब्रिस्तान बनती जा रही है, वीरान होती जा रही है। ऐसे ही दुनिया का हाल होना है। बंधा धोरी बच्चों आदि के चिंतन में मरेंगे तो मुफ्त अपनी बर्बादी कर देंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो आबादी बहुत होगी। देह अभिमान में आने से बर्बादी होती है। देह अभिमान में आएंगे, शिव बाबा को भूल जाएंगे तो बर्बादी होती है। देही अभिमानी बनने में आबादी होती है। जितना याद करेंगे उतना भविष्य
21 जन्म वर्षा पाएंगे, याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहे याद नहीं करेंगे तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, वो फिर कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। इतनी बड़ी घाटे की बात है, ख्याल करना चाहिए। हम पूरा वर्षा कैसे पाए, हम बाबा से पूरा वर्षा कैसे पाए। धन की भी बहुत लालच नहीं रखनी चाहिए। आज की दुनिया में देखो इतना भ्रष्टाचार जो हो रहा है, उसका मूल कारण क्या? इतनी लालच जो मनुष्य के अंदर आ गई है। तो मच में नहीं जाना चाहिए। फिर क्या करते हैं, कोई दिवाला मारते हैं तो बहुत फिक्रात हो जाती है, शिव बाबा को बिल्कुल भूल जाते हैं। फिर क्या दोष देते हैं, फिर दोष रखते हैं कि ज्ञान में आए तब दिवाला मारा है, बीमार हो पड़े हैं। बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि बीमारी आदि होती है यह तो कर्म भोग है। बाबा कहते ये नहीं समझना चाहिए बीमारी आदि होती है यह तो कर्म भोग है। बाबा कहते नहीं, देखो बाबा कितना पॉजिटिव हमें बनाते हैं। कर्म भोग समझेंगे तो दुखी होंगे, कौन से मैंने ऐसे कर्म किए जो ये भोगना आए। बाबा कहते अच्छा है, विकर्म विनाश हो जाएंगे। अगर बीमारी आदि आई तो ये भी विकर्म विनाश करने का एक तरीका है। बाबा कहते धर्मराज के डंडे खाने से तो बीमारी अच्छी है ना, धर्मराज के डंडे खाए और विकर्म विनाश हो, उससे तो बीमारी से अगर हिसाब चुकतू होता है तो अच्छी बात है। कर्म भोग चुकतू करना है, यह तो महारोगी शरीर है। पांच तत्व है ही तमो प्रधान, तो महारोगी शरीर है, कितनी संभाल की जाती है, चलते चलते खड़े हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। ऐसी पुरानी दुनिया को तो बुद्धि से एकदम भूल जाना चाहिए। बच्चे देखते हैं बाप नया घर बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, कहते हैं बाबा जल्दी से मकान बनाओ। स्कूल में भी अगर कोई पिता मकान बना रहे हैं तो पुराने से एकदम दिल हट जाती है, और क्या कहते हैं पिता को, जल्दी से मकान बनाओ, पुराने मकान में तकलीफ बहुत है। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया तो बहुत गंदी है। तुम्हारा यह है बेहद का संन्यास, वह संन्यास करते हैं घर बार का, उसको हद का संन्यास कहा जाता है। तुम संन्यास करते हैं विकारों का, कितना अंतर है। वो घर बार का संन्यास करते, तुम विकारों का संन्यास करते। बाप कहते देह सहित देख के जो भी तुम्हारे संबंध है सबको तोड़ मां में कम याद करो। ये दुनिया जो इन आंखों से देखते हो इनको भूल जाओ। अभी तुम्हारी बुद्धि जानती है हम स्वर्ग की राजधानी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ये सब कब्रिस्तान हो जाना है, इससे प्यार नहीं रखना है। आजकल मनुष्य के पास पैसे बहुत है तो विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है, काम बिगर रह नहीं सकते हैं। चार पांच वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं, बाबा के पास भी आएंगे, चार पांच वर्ष पवित्र रहे फिर लिखते हैं, बाबा आज इनको भूत लगा, काला मुंह कर दिया, कितना धक्का खाया, एकदम पांच मंजिल से गिरे। बाबा कहते एकदम पांच मंजिल से गिरे, पहले पहले है देह अभिमान, ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया। बाबा कहते देह अभिमान में आकर के ऊपर से गिरा ठक, पुर्जा पुर्जा हो गया, खलास, हड़गुड़ बिल्कुल ही टूट जाते हैं। पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है, यह है सबसे बड़ी चोट। काम की चोट को बाबा कहते सबसे बड़ी चोट।
इसलिए बाबा कहते काम महाशत्रु है। विकार को ही पतित पना कहा जाता है। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। भारत में ही संपूर्ण निर्विकारी थे ना, भारत ही निर्विकारी था, अब भारत विकारी है। संपूर्ण निर्विकारी सूर्यवंशी को कहेंगे। संपूर्ण निर्विकारी है सूर्यवंशी। बलराम चंद्र के राज्य में भी विकार की बात नहीं रहती, परंतु कला तो कम हो जाती है। दो कला कम हो गई, 14 कलाधारी बने, 1250 वर्ष कम हो गए, तो वह दुनिया की ताकत तो कम हुई ना, थोड़ी सी कम हुई ना। इसीलिए उनको सतो प्रधान फिर सतो कहा जाता है। सत्यु को सतो प्रधान, रेता को सतो कहा जाता है। तुम चाहते हो हम मम्मा बाबा को फॉलो कर सूर्यवंशी महाराजा महारानी बने, इसमें तकलीफ व खर्चे आदि की तो बात ही नहीं है। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, सिर्फ याद करना है। इसको ही सहज योग कहा जाता है। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाबा के आगे तो सब महारथी है, इसमें योग पूरा चाहिए तब कुछ तीर लगे। योग जब पूरा होगा तब बाबा कहे तीर लगे। योग बल है ना, योग की बहुत कमी है। बाबा जानते हैं बच्चों में योग की बहुत कमी है। विघ्न भी योग में बहुत पढ़ते हैं। बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चे बाप से व पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। देह अभिमान ही मनुष्य को ऐसा बना देते जो रूठ जाते। रूठेंगे तो 21 जन्म तकदीर से रूठेंगे। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। बाबा को तरस आता है, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी रूठ पड़ते हैं। नशा चढ़ जाता है देह अभिमान का। मैंने इतनों को समझाया है, देह अहंकार आने से गिर पड़ते हैं। इसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। शिव बाबा को कोई अहंकार है? बाबा पूछते, शिव बाबा को कोई अहंकार है? कितना निरहंकारी है, और है भी कितनी बड़ी अथॉरिटी। कहते भी है मैं साधारण तन में साधारण घर में आता हूं, शाहूकार के घर में थोड़ी आता हूं। तो अब बच्चों को जागना है। बाबा युक्ति तो बड़ी अच्छी बतलाते रहते हैं, तुम बच्चों की ही देरी है। ब्रह्मा अनुसार अर्जुन अवस्थाएं जोर नहीं भरी है, आगे चल जोर भरेगी। हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि इतने इतने वर्षों में स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह अखबार आदि में मनुष्य पढ़ेंगे तो आकर तुमसे पूछेंगे। थोड़े वर्ष के अंदर स्थापना होगी तो विनाश भी जरूर होगा, ढेर आएंगे। ये प्रॉपर्टी आदि थोड़े समय के लिए है। इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हैं। बाबा कहते इस प्रॉपर्टी को तुम कोई प्रॉपर्टी थोड़ी समझते हो। तुम जानते हो यह तो थोड़े रोज के लिए है। ये मकान आदि रहने के लिए बनाए हैं, क्योंकि मधुबन में बहुत बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। हेड ऑफिस मधुबन है। आज तुम क्या करते हो कल क्या करेंगे? यहाँ तपस्या करते हो फिर दिल्ली वृंदावन आदि में जाकर राज्य करेंगे। आज तपस्या कर रहे हैं फिर राज्य करेंगे। हमारा यादगार कैसे खड़ा है? ये अच्छी रीति दिखाना है। जो काम हम

अभी कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले भी किया था। पहले पहले शिव बाबा के मंदिर बनाते हैं, बाकी दिलवाड़ा मंदिर आदि तो बाद में बने हैं। बुद्धि से काम लेना होता है। दिलवाड़ा मंदिर का भी हिसाब निकाला जाए तो निकल सकता है। पूरा हमारा यादगार है, तुम जानते हो, यह स्थापना का यादगार है। दिलवाड़ा मंदिर यह भी स्थापना का यादगार है। तो मीठे मीठे बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। यह सब सर्विस बढ़ाने की युक्तियां निकालनी है। राम गयो रावण गयो गयो बहु परिवार, जिनका बहु परिवार है, रावण का देखो कितना बड़ा परिवार है, राम का कितना छोटा परिवार है। गायन राइट है, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप बैठ समझाते हैं तो भी निश्चय नहीं बैठता है। इतना अच्छी तरह से बाबा समझाते, बाबा कहे तो भी निश्चय नहीं बैठता है। शरीर निर्वाह अर्थ भी कर्म तुमको जरूर करना है। हाँ, जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे हैं पांडव, वह तो गवर्नमेंट से पालना ले सकते हैं। उनकी सारी संभाल हमको करनी पड़े। अवस्था बच्चों की ऐसी होनी चाहिए, बाबा की याद में इस दुनिया का सब कुछ भुलाना है। याद की यात्रा में जो पक्का मस्त रहेगा, उनकी अवस्था भी बहुत मजबूत होगी। जैसे कि शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो, अवस्था इतनी मजबूत मस्त होंगी तो बाबा कहे शिव बाबा की याद में रह तुम शरीर छोड़ते हो। सन्यासी ब्रह्म की याद में शरीर छोड़ते हैं तो भी वायुमंडल में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। बाबा को अनुभव है, मनुष्य मरते हैं तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना, इसमें भी ऐसा होता है। पिछाड़ी में जैसे कि सब कुछ भूल जाते हैं। अब हमको वापस घर जाना है। देह अभिमान छूटता जाता है। पिछाड़े में शरीर खुशी से छोड़ना चाहिए। ऐसी अवस्था हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए और खुशी से शरीर छोड़ना चाहिए, हर्षित मुख, बस हम कहां जा रहे हैं। ऐसी अवस्था जब होगी तब विजय माला में पिरोने लायक बनेंगे। तुम्हारे में शांति की करंट है। कोई भी आते हैं तो कहते हैं यहाँ शांति बहुत है। मधुबन में आते हैं कहते यहाँ शांति बहुत है। यह है रियल शांति। आत्मा शरीर से डिटैच हो जाती है। तुम जानते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। हम अपने स्वधर्म में बैठ जाते हैं। कर्म के बिना तो कोई मनुष्य रह नहीं सकते। वो लोग हठयोग से क्या क्या नहीं करते हैं। तुम अब समझते हो हमारा स्वधर्म ही शांति है। यहां हम आए हैं इसलिए पाठ बजाने, अब वापस घर जाना है। बाप कहते मुझे याद करो और घर को भी याद करो। बाप को याद करने से वर्षा मिलेगा। बाप कहते मुझे भी घर में याद करो। बाबा को याद करो परमधाम में। यहां तो मैं टेम्पररी आता हूं। तुम्हारी बुद्धि शांति धाम में टिकनी चाहिए। बाबा की याद में घर का भी वर्षा लेना है। वह है आत्माओं का घर, यह है जीवात्माओं का घर। अपने घर को भी नहीं भूलो, बाप को भी नहीं भूलो। बाप को याद करने से ही पवित्र बन घर चले जाएंगे। ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया। याद करने से आत्मा पवित्र बन जाएंगी, घर जाएंगी, और ज्ञान को धारण करने से फिर राजाई करने आएंगे नई दुनिया में। जितना हो सके औरों को रास्ता बताते जाओ। ऑलवेज सी फादर, रास्ता बताओ
बस देखना है किसको देखना है, एक बाप को देखना है। तुम जानते हो बाप ने क्या किया, सब कुछ माताओं को दे दिया। उसने ही डायरेक्शन दिया कि सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा सब कुछ माताओं की सर्विस में लगाओ। एक को देख दूसरे ने फॉलो किया, स्वाहा हो गए। शुरू शुरू में बहुत परिवार स्वाहा हुए, परंतु फिर जब टिक भी सके ना, ड्रामा अनुसार भट्टी भी बननी थी, पाकिस्तान हिंदुस्तान हुआ। तुम्हारी भट्टी पहले शुरू हुई पाकिस्तान में, तुमने नदी को क्रॉस किया। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, प्रैक्टिकल में तो अब तुम सुनते हो ना, फिर कल्प बाद तुम ही सुनेंगे। अब बाप कहते हैं हियर नो इविल सी नो इविल, धंधा आदि बल करो परंतु हियर नो इविल, बुरी बातें सुनो नहीं। बाप कहते हर बात में श्रीमत लो। बाबा इस हालत में हम क्या करें, तो बाबा सब बता देंगे। कोई भी बात पूछनी हो तो तुम बाबा के पास आओ। तुम डरते क्यों हो, कदम कदम पर पूछना है। अभी भी अमृत वेले बाबा से पूछ सकते हैं। ये नहीं समझना है अब तो साकार में बाबा है ही नहीं, अब किसको पूछे। बाबा कहते अमृत वेले तुम बाबा से सच्ची दिल से जो पूछेंगे बाबा उत्तर देंगे। नहीं कैच हुआ तो मुरली में भी किसी न किसी प्रकार से उत्तर मिल जाते हैं। श्रीमत पर चलने से कदम कदम में पदम है। तुम्हारा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है उसमें पदम है। तो कितनी कमाई हो रही है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विजय माला में पिरोने के लिए इस शरीर से डिटैच होने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। वे अभिमान को छोड़ते जाना है, इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है। दूसरी पॉइंट, तो मच धन के लालच में नहीं जाना है। बाप की याद के सिवाय दूसरा कोई चिंतन न रहे। कभी भी बाप से व पढ़ाई से रूठना नहीं है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। मालिकपन की स्मृति द्वारा हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करने वाले कंबाइंड स्वरूपधारी भव। कंबाइंड स्वरूपधारी भव, पहले अपने शरीर और आत्मा के कंबाइंड रूप को स्मृति में रखो। शरीर रचना है, आत्मा रचता है, इससे मालिकपन स्वतः स्मृति में रहेगा। मालिकपन की स्मृति से स्वयं को हाईएस्ट अथॉरिटी अनुभव करेंगे, शरीर को चलाने वाले होंगे। दूसरा, बाप और बच्चा शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से माया के विघ्नों को अथॉरिटी से पार कर लेंगे, अथॉरिटी से पार कर लेंगे। आज का स्लोगन है विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। विस्तार को सेकंड में समाकर ज्ञान के सार का अनुभव करो और कराओ। आज का व्यक्त इशारा है ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते पाप कटेश्वर व पाप हरनी तब बन सकते हो जब याद ज्वाला स्वरूप होगी। इसे याद द्वारा अनेक आत्माओं की निर्बलता दूर होगी। इसके लिए हर सेकंड
हर श्वास